0: को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार।
2: आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में निकली भव्य तिरंगा रैली, 1600 मीटर का तिरंगा बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन। उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी, दो दिव्य स्वरूप में दिए भक्तों को दर्शन, प्रशासन की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली में फूलों की घाटी, मॉनसून की फुहारों के बीच अब तक 18,000 पर्यटकों ने किया दीदार, घाटी में मौजूद 500 से ज्यादा किस्म के फूल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स, 9 भूमि बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल। लायन डे के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ में भव्य आयोजन समारोह में छात्रों ने लिया हिस्सा, शेरों के संरक्षण का संदेश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर फ्रेम को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई होगी जिसमें रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो को इसी एंगल से लगातार वायरल किया जा रहा है, क्या है सच्चाई आगे बताएंगे। अगली खबर उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, क्या है इसकी सच्चाई आगे देखिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: रांची में राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। जेबीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत के प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अधिकारियों को जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
4: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में जमीन पर बैठे छात्र अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उन्हें भी अपने साथ जमीन पर बैठने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो रांची का है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीओ और एडीएम को भी प्रदर्शनकारियों के बीच जमीन पर बैठकर खुली बातचीत करनी पड़ी। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
3: असल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो रांची का है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसडीओ और एडीएम को भी जमीन पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तस्वीरें देखी, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक सीबीआई जांच की लिखित मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 7 अगस्त से लेकर अब तक 6 राउंड से अधिक की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई जानना जरूरी हो गया था। सर्च के दौरान यह जानकारी सामने आई कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में मंत्रियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और छात्र संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वीडियो में जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो किसी गेस्ट हाउस जैसे नहीं लग रहे हैं, ये किसी कॉलेज की बिल्डिंग जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि एसडीओ और एडीएम को जमीन पर बैठकर बातचीत के लिए मजबूर किया जाता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर होती। लिहाजा हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर किया जाने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो मिला। इसके कैप्शन में इसे धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का बताया गया था। वीडियो में यह भी जानकारी दी गई थी कि BBMKU में परीक्षा के नतीजों में देरी, लाइब्रेरी और बेंच की कमी तथा पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 11 सूत्रीय मांग पत्र रखा। इस दौरान बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने अधिकारियों से उनके साथ जमीन पर बैठने के लिए कहा। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में है प्रदर्शन 27 जुलाई 2026 को हुआ था। सर्च के दौरान हमें झारखंड के कई स्थानीय मीडिया चैनलों पर भी इस वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जुलाई को विश्वविद्यालय में LLM की पढ़ाई शुरू करने, सेंट्रल लाइब्रेरी और लैब बनाने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे AISA के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी थी। इस तरह हमारी पड़ताल से स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो झारखंड के रांची का नहीं बल्कि धनबाद का है, जहां विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 27 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में लाठी डंडे और कुंडाल से कुछ लोग एक ढांचे को गिरा रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि यह बांग्लादेश का वीडियो है जहां पर हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां कट्टरपंथियों का एक गुट जबरन एक हिंदू परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन ढांचे को गिरा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, लगातार ढांचे को गिराने में लगे रहते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो है, जहां कट्टरपंथियों का गुट जबरन हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इसे सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया लगा। ऐसे में अगर वीडियो बांग्लादेश का बताकर वायरल किया जा रहा है तो इसमें असमिया क्यों सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमने फिर से वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा। इस दौरान हमें ऐसा लगा कि ये दो गुटों के आपसी विवाद का मामला हो सकता है, क्योंकि हमें सर्च के दौरान इसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें असम के एक फेसबुक पेज पर 29 जुलाई की एक पोस्ट मिली। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक, असम के गोसाई गांव सब डिवीजन के उच्चतारी गांव में नुरुल खान और गनी शेख की अगुवाई वाले दो गुटों के बीच जमीन के पुराने विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। लगातार सर्च के दौरान हमें असम के कई स्थानीय न्यूज आउटलेट्स पर इस झड़प के बारे में वीडियो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार गनी शेख के ग्रुप ने नुरुल खान के उस घर को गिराने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बन रहा था। नुरुल खान के परिवार ने आरोप लगाया कि गनी शेख और उसके साथियों ने उनके निर्माणाधीन घर पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। परिवार ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस ने शेख और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने गोसाई गांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी नारायण बोरो से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि हमलावर और पीड़ित दोनों में से कोई हिंदू नहीं था। FIR में 5 लोगों के नाम शामिल थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये वीडियो असम के गोसाई गांव का है, जहां जमीन के विवाद को लेकर दो मुस्लिम गुटों के बीच झड़प हो गई थी। रिदीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
3: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपके लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: एक छोटी बच्ची ने अपनी क्रिएटिविटी से एक साधारण सी नोटबुक को इतना खूबसूरत डॉल हाउस बना दिया कि उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। नोटबुक का हर पन्ना खुलते ही एक नए कमरे में बदल जाता है।
6: फिर ये बेडरूम में जाएगी।
5: वीडियो में देखा जा सकता है कि शुरुआत में नोटबुक का एक पेज गुड़िया के बेडरूम की तरह बनाया गया है। कमरे में एक छोटा सा बेड है जिसमें पेपर डॉल को अंदर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कागज से बने कवर को हटाकर गुड़िया को बाहर भी निकाला जा सकता है। यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए भी बनाया गया है। इसके अगले पन्ने पर एक छोटी सी वार्डरोब बनाई गई है। इसमें गुड़िया के लिए अलग अलग कपड़े रखे गए हैं जिन्हें बाहर निकालकर उसे पहनाया जा सकता है। बच्ची ने कपड़ों से लेकर अलमारी के दरवाजों तक हर चीज को काफी ध्यान से तैयार किया है। अलमारी के दरवाजे भी खुलते हैं और अंदर रखे छोटे छोटे कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद नोटबुक में एक बाथरूम आता है। यहाँ छोटी सी शावर, सिंक और टॉयलेट तक बनाया गया है। पेपर डॉल को बाथरूम के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर खेला जा सकता है। इस वजह से पूरा सेट किसी छोटी सी प्लेसेट जैसा लगता है।
6: फिर ये किचन में जाएगी और फ्रिज से मैंगो निकालेगी।
5: नोटबुक आगे खुलती है तो एक प्यारा सा किचन दिखाई देता है। यहाँ गुड़िया के लिए छोटी डाइनिंग टेबल बनाई गई है जहाँ वो बैठ सकती है। साथ ही एक छोटा फ्रिज भी है जिसे खोला जा सकता है। हर कमरे में फर्नीचर और छोटी छोटी चीजों को अलग अलग रंगों से सजाया गया है जिससे पूरा डॉल हाउस काफी जीवंत नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी चीज को बच्ची ने कागज, रंगों और अपनी कल्पना के सहारे तैयार किया है। इसमें ना कोई महंगा खिलौना है और ना ही किसी बड़े सेट की जरूरत पड़ी। बस एक नोटबुक और ढेर सारी क्रिएटिविटी से उसने अपने लिए पूरी छोटी सी दुनिया बना ली।

0: ब्राजील का ये प्यारा वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में एक 5 साल की बच्ची अपने क्लासमेट को लंच के समय खाना खिलाती नजर आ रही है। बच्चा बिना हाथों के पैदा हुआ है, इसलिए उसे खाना खाने में मदद की जरूरत पड़ती है। सबसे खास बात यह कि बच्ची ने उसकी मदद के लिए किसी के कहने का इंतजार नहीं किया, उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने दोस्त को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बच्ची के छोटे से काम में इतनी मासूमियत और अपनापन नजर आया कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
0: प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ के बीच ये मजेदार बातचीत लोगों का दिल जीत रहा है। दरअसल जब माँ अपनी बेटी से पूछती है कि उसे पापा पसंद है या माँ, उसके बाद बच्ची ने जो जवाब दिया उसे सुनकर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
1: आप किसको करते हो ज्यादा प्यार?
2: देखो मामा को तो दोनों ही पसंद है।
1: दोनों ही पसंद हो? नहीं, एक एक की बात करो।
2: पर मम्मा आपको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पापा का जो प्यार है ना अलग ही है। मेरे को तो पापा को सोच के ही मेरे दिल में पता नहीं क्या ही जा रहा है।
1: क्या ही जा रहा है?
2: मतलब पापा ना मेरे फेवरेट है।
1: और मम्मा?
2: मम्मा थोड़ी कम है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग बच्चे के इस मासूम लॉजिक की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपनी छोटी बेटी को गणित पढ़ा रही है।
3: टू माइनस टू कितना होता है? यही तो पूछा था तुमसे और तुम रोए जा रहे हो। कितना होता है टू माइनस टू?
0: अपनी रोती हुई बेटी से पूछती है टू माइनस टू कितना होता है। बच्ची रोते हुए गलत जवाब देती है और कहती है 5।
3: क्या बच्चा?
0: ये सुनकर बच्ची को समझाने के लिए माँ एक आसान उदाहरण देती है। वो कहती है मानो मैंने तुम्हें लंच में 2 रोटी दी और तुमने वो दोनों खा ली, तब तुम्हारे पास क्या बचा? बच्ची रोते रोते पूरी मासूमियत से जवाब देती है सब्जी। बच्ची का मासूमियत भरा जवाब लोगों को खूब हंसा रहा है।
3: अभी तुम्हें लंच में मानो तुम्हें 2 रोटी दी मैंने, तुम्हें लंच में मैंने 2 रोटी दी और तुमने दोनों खा ली, तो क्या बचा?
2: सब्जी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें एक पिता की बेटी के लिए की गई खास कोशिश नजर आती है। महंगे इंतजामों से दूर ये सरप्राइज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले लोग पिता के प्यार और सोच की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पिता ट्रक चलाते हैं और काम की वजह से उनका काफी समय सड़क पर ही गुजरता है। ऐसे में बेटी के जन्मदिन पर किसी बड़े होटल या पार्टी हॉल में सेलिब्रेशन करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पिता ने जिस ट्रक से वो अपना काम करते हैं उसी के अंदर बेटी के लिए छोटा सा बर्थ सेटअप तैयार कर दिया। ट्रक को रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया गया। इसके अलावा बेटी के लिए गिफ्ट भी रखे गए थे। वीडियो में ट्रक के अंदर का नजारा किसी छोटी सी बर्थडे पार्टी से कम नहीं लग रहा। जब बच्ची वहां पहुंचती है और अपने लिए इतनी खूबसूरत सजावट देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिता का ये सरप्राइज उसके लिए कितना खास है। टीचर ने अपनी क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर या किताब की लाइनें पढ़कर समझाने के बजाय पूरा प्रयोग करके दिखाती हैं। इसके लिए क्लास की लाइट बंद कर दी जाती है और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद वो एक शीशे और लेजर बीम की मदद से बच्चों को समझाना शुरू करती हैं कि आखिर लाइट किसी सतह से टकराने के बाद किस तरह वापस लौटती है। लेजर की रोशनी जब शीशे पर पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में वापस जाती हुई दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों के लिए और ज्यादा साफ तरीके से दिखाने के लिए हवा में पाउडर का इस्तेमाल भी किया गया। इससे लेजर बीम का रास्ता साफ नजर आने लगा। ऐसे में बच्चों को सिर्फ ये बताया नहीं गया कि प्रकाश कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से पूरी प्रक्रिया को होते हुए भी देखा। यही इस वीडियो की सबसे खास बात है। कई बार किताब में पढ़ी हुई कोई चीज कुछ देर बाद याद नहीं रहती, लेकिन जब उसे किसी प्रयोग के जरिए समझाया जाता है तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इस टीचर ने भी कुछ ऐसा ही किया।

0: सफर के दौरान अक्सर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो बाद में यादगार बन जाती हैं। कुछ ऐसा एक स्केच आर्टिस्ट और टीटी के साथ हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर भावुक भी हो रहे हैं। दरअसल स्केच आर्टिस्ट आकाश सेल्वारासु ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास जनरल क्लास का टिकट था और वो बाथरूम की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान वहां टिकट चेक करने के लिए टीटी पहुंच गए। उन्होंने आकाश से टिकट मांगा। आकाश ने अपना जनरल टिकट दिखा दिया। स्लीपर कोच में जनरल टिकट पर सफर करने की वजह से टीटी ने रेलवे के नियमों के मुताबिक उनका जुर्माना काट दिया। इसके बाद टीटी ने अपने टैबलेट पर रेलवे का QR कोड दिखाकर उनसे जुर्माने की रकम ले ली और आगे बढ़ गए। देखने में ये बिल्कुल सामान्य टिकट चेकिंग की घटना थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीटी के वहां से जाने के बाद आकाश के दिमाग में उनका चेहरा रह गया। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करने का फैसला किया और कुछ ही देर में टीटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। आकाश ने इतनी बारीकी से उनका चेहरा कागज पर उतारा कि तस्वीर देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ देर बाद आकाश ने वो स्केच टीटी को जाकर दे दिया। पेंटिंग हाथ में आते ही टीटी ने हैरानी से पूछा कि मेरी पेंटिंग है? आकाश ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद टीटी ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। उन्होंने आकाश से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की कि अगर संभव हो तो पेंटिंग को थोड़ा और बेहतर कर दें। आकाश ने उनकी बात मान ली और उन्होंने टीटी के स्केच को और निखारा और आखिर में उन्हें उनकी तस्वीर दोबारा सौंप दी। सबसे भावुक पल तब आया जब दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाई। इस दौरान टीटी की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। शायद उनके लिए ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी बल्कि उस सफर की ऐसी याद थी जिसे वो लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
1: हम किधर जा रहे हैं?
2: किधर जा रहे हैं?
1: आप रेडी हो?
2: हाँ रेडी।
0: हमारी पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती है। ईश्वर की नानी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और घर के कामकाज में बिता दी थी। उन्होंने न तो कभी हवाई जहाज देखा था और न ही कभी अपने घर से दूर किसी ट्रिप पर गई थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों की आदत होती है कि वे कभी खुद के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हमेशा परिवार की जरूरतें ही सबसे पहले आती हैं।
2: तेरे को नींद हो जाए रे? हाँ ये बेटी, तेरे को नींद बहुत आ रही है।
0: जब ईशा का परिवार इस काबिल बना कि वे घूमने फिरने का आनंद ले सके, तो ईशा ने तय किया कि इस बार पहला हक उनकी नानी का है। ईशा उन्हें पहली बार फ्लाइट से गोवा ले गई। एयरपोर्ट लाउंज के अनुभव से लेकर विमान की खिड़की से बाहर झांकने तक नानी के चेहरे का हावभाव देखने लायक था।
2: विमान से आए रहे, कैसा ट्रेन से नहीं आए रहे। आया मजा आया बाबा, अभी हम जा रहे हैं गोवा में मजा करने को।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: बात करते हैं गणपति महोत्सव की, जो भले ही इस साल 14 सितंबर से आरंभ हो रहा है लेकिन तैयारियों की तस्वीरें अभी से ही नजर आने लगी हैं, खासकर महाराष्ट्र से। भले गणपति उत्सव आज महाराष्ट्र से निकलकर देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है लेकिन महाराष्ट्र की धरती से शुरू हुआ गणेशोत्सव अंग्रेजों के जमाने से चले आ रही पुरानी गणेश मंडलों की रौनक को लेकर काफी मशहूर रहा है। इन्हीं में से एक है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जहां इस बार के गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
2: विघ्नहर्ता सिद्धिदाता भगवान गणपति की भक्ति भले ही सब जगह एक जैसी ही हो लेकिन महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की रौनक के तो कहने ही क्या। 10 दिन के उल्लास और उत्साह को दर्शाने वाला महाराष्ट्र इस पर्व के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता के संदेश को बरसों से देता चला आ रहा है। यही वजह है कि दशकों से महाराष्ट्र की धरती पर हर तबके से जुड़े लोग इस 10 दिन की अवधि को बप्पा के आने की खुशी के रूप में मनाते आ रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में गणपति मंडल बने हैं जो हर साल गणपति महोत्सव की तैयारियां करते हैं। ऐसा ही एक गणपति मंडल है पुणे का श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल, जिसने 14 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस गणपति मंडल ने क्रांति दिवस पर इस साल के गणेशोत्सव के लिए थीम रखी। श्री गणेश सुवर्ण धाम, जबकि पारंपरिक रूप से उत्सव मंडप के लिए वासा पूजन समारोह भी यहां आयोजित किया गया।
3: क्रांति दिन है आज और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे और आज क्रांति दिन की निमित्त आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीजें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पूना में ऐसे LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आज इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया जा उनके माता पिता उनके भाई वो खुद यहाँ है ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद हो।
4: स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी ब्रिटिशांविरुद्ध
2: श्रीमंत बाहू साहेब रंगारी गणपति मंडल के अनुसार उनका मंडल आजादी से काफी पहले से गणेशोत्सव का आयोजन करता आया है। इस उत्सव के दौरान परंपरा बरकरार रहे, उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए खास तौर से DJ मुक्त रहने का भी संकल्प मंडल की तरफ से पिछले साल लिया गया था, जिससे यहाँ आने वाली खासकर यंग जनरेशन गणेशोत्सव से जुड़ी समृद्ध परंपरा के मर्म को समझे।
3: 2006 से अगर ये गणेशोत्सव को एक कैंसर, मैं तो कैंसर रोग जो लगा है वो है DJ। आज अण्णाभाऊ साठे जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होती है, लहूजी वस्ताद की जयंती होती है, आप देखते हैं उसमें कि 10-11 साल के लड़के किस प्रकार की नाच करते, ये अपनी संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है कि ये DJ मुक्त होना ही चाहिए। पिछले साल 50 से 50 मंडल जो DJ पे थे वो कन्वर्ट हुए हैं, इस साल ऑलरेडी हमारे पास 25 से 30 मंडल कन्वर्ट होने को तैयार है पारंपरिक पे। और मुझे खातरी कि अगले 4-5 साल में पूना का एक जो गणेश उत्सव ये 100% DJ मुक्त हो।
2: बता दें कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गणपति महोत्सव बरसों से महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है। कभी 1893 से सार्वजनिक रूप में विराजित किए गए गणपति बप्पा पंडालों से होते हुए बाद के सालों में घर घर विराजना शुरू हुए और तभी से इसने महाराष्ट्र में परंपरा का रूप ले लिया। इस साल ये उत्सव गणेश चतुर्थी यानी 14 सितंबर से आरंभ होकर 23 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। इसलिए बुद्धि समृद्धि और विघ्नहर्ता स्वरूप की पारंपरिक पूजा अर्चना के प्रतीक इस पर्व का उल्लास अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सावन की शिवरात्रि की क्या है महिमा, सावन की शिवरात्रि का क्या होगा उपाय, और सावन की शिवरात्रि का क्या होगा पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सावन की शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, सुबह से शिवालय के बाहर लगी कांवड़ियों की लंबी कतारें। शिवरात्रि के साथ आज मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग। सावन के महीने में इस साल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए रिकॉर्ड श्रद्धालु, उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक 4,43,00,000 से ज्यादा भक्तों ने भरा गंगा जल, अकेले हरिद्वार में 63,60,000 रहा आंकड़ा। सावन की शिवरात्रि पर झांसी के प्रसिद्ध झरनापति महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, एक ही शिवलिंग में होते हैं शिव शक्ति के दर्शन, अर्धनारीश्वर रूप में विराजे हैं भोलेनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की जोरदार तैयारी, सिर्फ 51 रूपए देकर श्रद्धालु करा सकेंगे यज्ञ, 13 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा आयोजन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हर हर तिरंगा अभियान के दौरान दिखे देव देशभक्ति के रंग, 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ भारत माता की जयकार, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
8: एक मोहनदास बाबा नाम के महात्मा थे, ओम जी, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, कलयुग की घटना है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम मोहनदास था। आहा, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनका एक चेला था, नाम रामदास था। ध्यान से सुनना, बड़ा प्रिय शिष्य, निरंतर सेवा करता, जो गुरु जी आज्ञा देते वही पालन करता, बिना गुरु की आज्ञा के भोजन भी नहीं करता, इतना आज्ञाकारी। उनकी नियमावली बड़ी कठिन थी मोहनदास जी को। वो भोजन ठाकुर जी को प्रसाद लगा के पाते थे, पर प्रसाद लगाकर ठाकुर जी को भोजन जो पाते थे, तो जो प्रसाद बनता था, उस प्रसाद बनने का नियम था कि कोई प्रसाद बनते हुए ना देख ले। तो झोपड़ी के अंदर चौका चूल्हा होता और झोपड़ी को चारों तरफ से बंद कर देते थे, और रामदास चेला बढ़िया प्रसाद सिद्ध करता, फिर सीधा ठाकुर जी के पास ले जाता, गुरु जी भोग लगाते, फिर पाते, फिर बचा हुआ प्रसाद शीत प्रसादी को चेला पाता, ऐसा नियम था। एक दिन एक घटना घटी। रामदास लकड़ियां लेने थोड़ा दूर चला गया, तो कुछ अंग्रेज, वृंदावन में अंग्रेज घूमते ही रहते, कुछ अंग्रेजों की टोली वहां से निकली, तो जिस झोपड़ी में प्रसाद बन रहा था उससे धुआं निकल रहा था, एकदम गोल गोल झोपड़ी थी, रसोई घर घास फूस का। अंग्रेजों को लगा कि कुछ अजीब चीज है, बड़ी छोटी है और धुआं निकल रहा है, लगता है कोई आग वाग तो नहीं लग गई। तो एक अंग्रेज ने ऐसा थोड़ा सा घास फूस को हटा के झांका, देखा तो पाया कि अंदर रसोई बन रही है और ठीक ठाक बन रही है, कोई आग वाग नहीं लगी, तो अंग्रेज चले गए। जब अंग्रेज चले गए, इधर रामदास लकड़ी लेकर आया, उसे तो पता नहीं था ऐसा हुआ है। इसके गुरु जी अंदर बैठे हुए ध्यान में बैठे थे, दूसरी झोपड़ी में जहां ठाकुर जी बैठे थे, तुरंत भागे भागे बाहर आए, ए रामदास जी, जी, जी गुरु जी, इधर आओ। अभी कहां गए थे गुरु जी? लकड़ियां लेने गए। अरे आजकल बड़े लापरवाह हो गए, बड़े नालायक हो गए, तरह तरह की बातें तेज तेज आवाज में कहना प्रारंभ कर दी। हमारे ठाकुर जी की रसोई बनते हुए किसी ने देख ली, तुमने देखा? हमने तो नहीं गुरुजी देखा, क्षमा करो हम देख नहीं पाए। जबान लड़ाते हो, देखा नहीं, लापरवाही करते हो, बड़े आलसी हो गए हो, देर से उठते हो। ऐसा कहते कहते गुरुजी को बड़ा क्रोध आ गया। बड़े क्रोधी थे, भयंकर क्रोधी। इतना क्रोध आया कि पास में पड़ा हुआ एक डंडा था लकड़ी का, उसको उठा करके जोर जोर से पीटना प्रारंभ किया। इतना मारा कि वह रामदास खूब हट्टा कट्टा शरीर का था महाराज, लेकिन बेचारा गिर पड़ा। पर एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि हमें मत मारो, हमारी कोई गलती नहीं है, लकड़ियां लेने गए थे। एक बार भी ना नहीं कहा। बेचारा हाथ जोड़े, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी गलती हो गई, कहते कहते बेचारा लेट गया। और गुरुजी ने खूब डंडों से पिटाई की और डंडा फेंक दिया और डंडा फेंक करके अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, वो उठा, उसने शरीर ठीक किया, स्नान किया। जो रसोई बनी थी उस रसोई को गायों को डाल दिया, फिर से चौका चूल्हा किया, पुनः रसोई बनाने लगा। बनाते बनाते शाम हो गई, थाली परोसी, गुरुजी के पास लेकर गया, गुरुदेव प्रसाद पाओ, कृपा करो। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद भी पाया। तब तक और देर हो गई, इसने सोचा अब शाम हो गई, अब कल प्रसाद पा लेंगे। गुरुजी लेट गए। जब लेट गए तो पहले के जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, दीपक हुआ करते थे, तो दीप जल रहा था झोपड़ी में, वो गुरुजी के चरणों को दबाने लगा, रोज की आदत थी, गुरुजी के चरणों को दबाने लगा। तो दबाते दबाते एक आंसू की बूंद गुरुजी के पैर पर गिरी, अश्रु बूंद। गुरुजी ने कहा, रामदास जी, जी गुरुजी, क्या बात है, तुम रो रहे हो? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें पीटा, हमने तुम्हें मार लगाई, ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहे हो? रामदास रोता हुआ कहने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, चरणों को माथे पर रखकर, रामदास ठीक हो? लेटा लेटा बोला, गुरुजी लगता है हमारी जिंदगी का ये अंतिम क्षण आ गया है। हम हैं तो ठीक, पर यदि आप बुरा ना माने, अपराधी तो हम हैं ही हैं। जब तक हमारे प्राण ना निकल जाएं, तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। ये हमारी इच्छा है कि हम आपको देखते हुए अपने प्राणों को त्यागें। गुरु जी डांट के बोले, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते, कुछ नहीं होना है, चुप रहो, कुछ नहीं होना है। लेटा लेटा बोला, गुरु जी सच कह रहे हैं। गुरु जी सामने खड़े हुए, इसने कहा, गुरु जी मर तो रही है, शरीर तो छूट ही रहा, आपके चरणों का चरणों तक पीने का बड़ा मन है, लेकिन हम उठ नहीं सकते, आप ही कृपा करो कि हमारे पास आ जाओ। तो गुरुजी नजदीक गए, अंगूठा ऊपर किया, एक शिष्य ने जल डाला, उसने चरणों तक पिया, और चरणों तक पीते ही हृदय पर हाथ रख करके बोला, गुरुदेव अब कृपा करो, जल्दी से सामने पहुंच जाओ, हमारी श्वास रुक रही। गुरुजी तुरंत गए, सामने पैरों के पास खड़े हो गए। रामदास तुम भगवान नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। इसने कहा, गुरुजी आप मुस्कुरा। तो गुरुजी बढ़िया मुस्कुराने लगे, सब चेले कीर्तन करने लगे, गीता पाठ करने लगे, इसकी श्वास तेज चलने लगी। तेज श्वास चलते चलते ये बीच में ही चिल्ला करके बोला, गुरुजी हम केवल आपको देख करके मरना चाहते हैं, किसी दूसरे को और को देख करके नहीं मरना चाहते, किसी दूसरे को। अरे हमारे बगल में तो कोई नहीं, हम अकेले हैं। गुरुजी आप झूठ बोल रहे हैं, आपके दाहिने अंग पर एक बालक खड़ा हुआ है, सांवरा सलोना है, मोर मुकुट पहने हुए है, पीतांबर धारण किए हुए है, बंसी हाथ में लेकर के हमें अपनी तरफ बुला रहा है। तो हमको बुला रहा है, जा इतना कहा। गुरु जी की भी आंखों में आंसू आ गए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले, रामलाल रामदास तू धन्य है, तुझे लेने के लिए साक्षात ब्रज का राजा ठाकुर आया हुआ, हमारा कन्हैया, हमारा ठाकुर आया, तू धन्य है, धन्य है। अब तक ये दोहा सुना था, गुरु गोविंद दो उखड़े में काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। पर यहां पर तो बात ही अलग है, शिष्य को भगवान दिखाई पड़ गए। जब शिष्य को भगवान दिखाई पड़े, गुरु जी ने कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो किसी ने पूछा कि रामदास को इतनी सहज मुक्ति, मृत्यु और भगवत दर्शन क्यों हुए। तो एक संत ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया, बोले शाम को जो घटना हुई ना गुरु की, उस पिटाई में भी गुरु की कृपा थी। सबसे बड़ा मुक्ति का कारण वो बना। इसलिए मेरे पागलों, गुरु पीठ भी देना वो भी आशीर्वाद समझे। वैसे ऐसा तुम कोई अवगुण करना नहीं कि गुरु पीट है तुम्हें, हाँ ऐसी कोई अपराध नहीं करना कि तुम अब कहो कि बा आज बागेश्वर महाराज जी ने बढ़िया ज्ञान दिया तो कल ही तुम गुरु जी के घर पे चोरी करो। गुरु जी के घर पे चोरी करो तो फिर गुरु जी तुम्हारी पिटाई करो। तुम्हें पूछा जाए कि चोरी क्यों की, पकड़े गए तो ठीक, ना पकड़े गए तो बढ़िया है, और पकड़े गए तो हम तो गुरु जी के यहाँ तो मार खाने आए। तो वैसे ऐसा अपराध करना नहीं, पर सहज बस ऐसा कुछ हो भी जाए तो आप भगवान की कृपा ही मानना, कैसे में भगवान की कृपा है। गुरु की कठोर वचन भी तुम्हारे जीवन को धन्य कर धन्य। कथा के श्रवण से मन की वृथा मिटती है, कथा के श्रवण से, सत्संग से जीवन में आनंद आता है, कथा के श्रवण से विचार की शुद्धि होती है, कथा के श्रवण से बुद्धि की शुद्धि होती है, कथा के श्रवण से भुक्ति भी मिलती है, कथा के श्रवण से मुक्ति भी मिलती है, और कथा के श्रवण से भक्ति भी प्राप्त होती है। तो कथा क्यों जरूरी, बोले भैया जीवन को रसमय बनाने के लिए कथा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कथा क्यों जरूरी है, बोले भैया कथा है तो पुरातन पर है सनातन। अच्छा पुरातन में सनातन क्या, बोले वैसे तो कथा पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई है, राम जी का अवतार बहुत वर्ष पहले हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार भी बहुत पहले वर्ष हुआ था, पर हुआ तब था, पर जो कथा कही गई है वो आज भी सत्य है, वैसी ही घट रही। तो है तो पुरातन पर पुरातन में भी सनातन है, वो आज भी घट रही है। इसलिए आप कोई भी फिल्म बार बार नहीं देख सकते, पर कथा तो बार बार सुन सकते, और सुन ही रहे। देखो हम कितनी कथा नहीं कह रहे, जितने कथा वाचक हैं साफ कह रहे, वो सब सुन रहे, आप हमारी भी सुन रहे, कोई मौका लग जाता है दूसरे महापुरुष की भी सुनते, फिर मौका लग गया गांव में भी सुन रहे, फिर मौका लग गया मोबाइल पे भी सुन रहे, फिर मौका लग गया टीवी पर भी सुन रहे। कथा वही है, देखो कितनी बार से कंस मर रहा है पर अभी तक नहीं मरा, कितनी बार तुमने भी कंस मृत्यु मरने की कथा सुन ली पर वो कंस ज्यों का त्यों है। बोले क्यों, बोले बाहर का कंस तो मर गया कथा का, भीतर वाला नहीं मरा। और हमें लगता है आप कथा में बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। पर कथा अंदर कैसे बैठेगी, बोले भैया खाली होकर बैठोगे तो ही बैठेगी कथा। जैसे खाली बोतल में भरी हुई बोतल का पानी भरना, तो क्या करोगे, बराबर में रखोगे कि एक नीचे एक ऊपर? खाली बोतल नीचे, भरी बोतल ऊपर, तो भरी हुई बोतल का जल खाली बोतल में चला जाए। बोलो हाँ या ना। अच्छा आप दोनों बराबर में करो, या खाली बोतल ऊपर करो भरी बोतल नीचे, तो क्या खाली बोतल में जल भरेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं भरेगा। ऐसे ही आप विकारों से भरे हुए बैठोगे कथा में, और हम तुम्हें कथा सुनाए तो तुम्हारे भीतर नहीं भरेगी, पर यदि खाली होकर के बैठोगे कथा में तो हमें लगता एक वाणी ही तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगी, एक वचन ही, प्रवचन नहीं, एक वचन जीवन को धन्य कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ये दूसरी बात हो गई कि कथा में मत बैठो, कथा को हृदय में बैठा रो। तीसरी बात सुनो, कथा में तीसरा फायदा एक और बहुत बढ़िया है। बोले क्या? बोले देखो, कथा है दर्पण, पता लगता है कि हम कितने भजनानंदी हैं, कितने नहीं हैं, और हम कितना दिखावा कर रहे हैं, और कितनी हकीकत है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब कथा में बैठते हैं तब ये समझ आ जाता है कि भाई देखो, ये जो कथा हो रही है ऐसे ऐसे आदमी जब कह नहीं पाता तो सुन तो लेते हैं। अब किसी को बता तो नहीं सकते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो करें क्या। हाँ हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आत्मसात करना चाहिए, आज से हम कोशिश करेंगे। तो कथा में जितनी देर बैठोगे कुछ ना कुछ नई नई बात मिलेगी, अच्छी बात मिलेगी, उससे मन के विकार दूर होंगे, विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेगा तो स्वाभाविक है आपका जीवन भी बदलेगा, आपका जन्म भी बदलेगा। कथा से एक चौथा फायदा है, पूछो क्या फायदा है चौथा, पूछो जोर से पूछो। कथा शुद्ध करती है, क्या करती है? हैं? शुद्ध मन को शुद्ध करती। और एक संत कहते थे, जवानी शुद्ध होनी चाहिए, बुढ़ापा सिद्ध होना चाहिए। अरे भाई ये सीटी क्यों बजा रहे हो? सीटी क्यों बजा रहे? ठटरी के बारे बहुत सीटी बजा रहे, अभी हम उल्टा टांग देंगे। हाँ तो ये चौथा फायदा, चौथा फायदा क्या है? बोले भैया कथा शुद्ध करती, क्या करती है? बोलो बोलो बोलो, शुद्ध करती। जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। पर जब बुढ़ापा सिद्ध कैसे होगा? जब जवानी शुद्ध होगी तभी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो शुद्ध कैसे हो? बोले विचारों से। बोले विचार कहां शुद्ध होंगे? बोले कथा में। ऐसे समझो, कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर को नेट में यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है? वायरस आ जाते, आ जाते कि नहीं आ जाते? जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो स्लो चलने लगता। उसी वक्त क्या करते हैं व्यक्ति, जब वायरस ज्यादा आ जाए, स्लो चलने लगे, तो एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते। वो क्या करता? पूरे वायरस को खत्म कर देता, फिर एकदम स्मूथ कंप्यूटर चलने लगता। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही संसार सागर के कंप्यूटर में ये माइंड हमारा कंप्यूटर जैसा चलता है, सबका, ये सबका माइंड कंप्यूटर जैसा चलता है। जब इसमें वासनाओं के बुरे वायरस आ जाएं तब कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जहां कथा रूपी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया तो ये विचारों की शुद्धि कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पांचवी बात सुनो, कथा का पांचवा लाभ ये है कि आप जितनी देर कथा में बैठोगे कम से कम उतनी देर तो पाप से बच जाओगे। हाँ मान लो आप कथा में ना होते तो कहां होते? घर पे होते, या तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चल रहा होता, या रील चल रही होती, या किसी की चुगली चल रही होती, या कुछ थोड़ा अलग टाइप के लोग फिल्म देख रहे होते, या कुछ और बड़े वाले राम राम राम वो अलग होते, या किसी को गाय

पर कथा में आ गए तो सब भूल गया। कर्जा लेना है, देना है, झंझट है, लफड़ा है, उससे मिलना, उसका ये, उनको मिलना, ये गाड़ी वहां रखनी, ये मकान वहां ठीक करना, वहां के काम धाम का क्या हुआ, चुप। कथा में कुछ भी याद नहीं रहता। बोलो रहता है? नहीं रहता। ये कथा में बढ़िया फायदा है भैया, पाप से बचो हमेशा, पर हमेशा ना बच पाओ तो थोड़ी देर कथा के लिए समय निकाल लिया करो, कम से कम उतनी देर तो बचे ही रहोगे। ये कथा का पांचवा लाभ कि भाई उतनी देर पाप से बचते। और हमारे एक संत कहते थे, सुनो, कोई व्यक्ति भगवान के भजन पूजन में जो समय लगाता ना, वो आयु में नहीं स्वीकार होती, घटती नहीं। इसलिए आपने सुना होगा, अमुक महात्मा इतने साल जिए, देवरा हवाले बाबा इतने साल जिए। क्यों जिए? बोले एक तो कारण योग था उनके पास, सिद्धि थी, और दूसरा कारण बोले वो सदैव भगवान में लीन रहते थे, और जो भगवान में सदैव लीन रहता है उनकी आयु घटती नहीं है, बढ़ जाती है। और इसका एक और इसी में फायदा, बोले क्या? बोले हम भगवान को समय देंगे, भगवान की कथा में उनके लिए समय निकालेंगे, तो कभी हम पर मुसीबत आएगी तो भगवान अपने लिए भी समय निकालेंगे। हैं? वैसे तो होना यही चाहिए, समस्या आवे तो समस्याओं के पास जाकर, भगवान के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाके कहो भगवान हमारे निकट हैं। संत कहते, भैया कथा सुनने के अनेक लाभ हैं, जो भी जीव एक घड़ी आदि घड़ी आदि मोपनी आद तुलसी चर्चा राम की हरही कोट अपराध, एक घड़ी में से आदि घड़ी में से भी आदि घड़ी यदि भगवान की कथा के लिए समय निकालता है, उस जीव का कल्याण तो होता ही होता है, उसका जीवन तो धन्य होता ही होता है, जन्म भी उसका धन्य हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।

0: की क्या है महिमा, सावन की शिवरात्रि का क्या होगा उपाय, और सावन की शिवरात्रि का क्या होगा पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे।

0: रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन की शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, सुबह से शिवालय के बाहर लगी कांवड़ियों की लंबी कतारें। शिवरात्रि के साथ आज मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग। सावन के महीने में इस साल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए रिकॉर्ड श्रद्धालु, उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक 4,43,00,000 से ज्यादा भक्तों ने भरा गंगा जल, अकेले हरिद्वार में 63,60,000 रहा आंकड़ा। सावन की शिवरात्रि पर झांसी के प्रसिद्ध झरनापति महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, एक ही शिवलिंग में होते हैं शिव शक्ति के दर्शन, अर्धनारीश्वर रूप में विराजे हैं भोलेनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की जोरदार तैयारी, सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु करा सकेंगे यज्ञ, 13 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा आयोजन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हर घर तिरंगा अभियान के दौरान दिखे देशभक्ति के रंग, 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ भारत माता की जयकार, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज का दिन बेहद खास है, आज सावन की शिवरात्रि है, देशभर के शिव मंदिरों में रात से ही श्रद्धालु जुटे हुए हैं, महादेव के जलाभिषेक के लिए शिवालय में भारी भीड़ है, दूर दूर से कांवड़िए पवित्र नदियों के जल और शुद्ध जल लाए हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तगण लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनका नंबर आए तो वो महादेव पर जलाभिषेक करें। सावन की शिवरात्रि के पावन पवित्र दिन का इंतजार हर शिव भक्त को रहता है। यूं तो पूरे सावन भर शिवालय में भारी भीड़ रहती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने वालों की आस्था और उत्साह देखने लायक होता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज के पावन दिन पर वाराणसी से उज्जैन तक, प्रयागराज से गाजियाबाद और बुलंदशहर तक हर जगह महादेव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सावन शिवरात्रि पर बन रहे महासंयोगों, राजयोगों और शुभ योगों में हर कोई शिव कृपा का भागी बनना चाहता है। कोई जलाभिषेक कर महादेव को प्रसन्न करना चाहता है तो कोई संगीत के माध्यम से भोलेनाथ की स्तुति कर रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ देवघर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो उज्जैन के महाकाल की है, जहां ये सुबह की भस्म आरती की तस्वीर है, जहां महादेव की भस्म आरती की जा रही है और मंत्रोच्चार के बीच भस्म आरती हो रही है।

0: और ये तस्वीरें हरिद्वार से देखिए, सुबह सुबह भक्त किस तरह से घाटों पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और श्रद्धा भक्ति की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां सुबह सुबह मंदिर में शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पवित्र जल लेकर शिवालय की ओर भक्त बढ़ रहे हैं और महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए हर कोई बेताब है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। लंबी लंबी कतारों में भक्त सुबह से मंदिरों में शिवालय में पहुंचे हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें हरिद्वार से, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है मंदिरों में। देखिए किस तरह से पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार से गौमुख से यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई बेताब है महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए। लंबी लंबी कतारों में सुबह से भक्त जो है वो दिल्ली के मंदिरों में शिवालय में पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के साथ। आज सावन का महीने का शिवरात्रि का त्यौहार पूरे भक्त इस वक्त मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भोलेनाथ का पर्व जो है आज पूरा देश मना रहा है। भक्त जो है सुबह से मंदिरों का रुख कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। और ये गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां भक्तों का तांता लगा है अपने आराध्य की पूजा करने के लिए, उन पर जल अर्पित करने के लिए। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। देखिए किस तरह से भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। शिवालय में हर हर महादेव की गूंज आपको चारों तरफ सुनाई देगी और श्रद्धा और भक्ति के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको बैद्यनाथ की तस्वीर दिखाई, दिल्ली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी तस्वीर गाजियाबाद के शिवालय की, जहाँ भक्त सुबह सुबह मंदिर में पहुंचे हैं जलाभिषेक के लिए। और अब ये तस्वीरें मेरठ से, देखिए भक्तों का तांता हर जगह लगा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गाजियाबाद हो और चाहे वो मेरठ हो। सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंचे हुए हैं। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज भोलेनाथ का दिन, लगातार कावड़ यात्रा चल रही थी और आज वो दिन आ गया जब भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाएगा। और शिवरात्रि के पावन दिन पर कई महासंयोग भी बन रहे हैं और उसी के साथ भक्त जो है सुबह सवेरे महादेव को जल अर्पित करने के लिए शिवालय पहुंचे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक तस्वीर है वाराणसी से और दूसरी तस्वीर है मेरठ से। भक्तों का तांता बिल्कुल आपको एक जैसा दिखेगा, हजारों की संख्या में भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं अपने आराध्य के दर्शन मात्र के लिए। हर हर महादेव की गूंज के साथ भक्त जो है सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी है और कब वो महादेव का जलाभिषेक करें। तो सावन शिवरात्रि श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस दिन श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा भी करते हैं। पंचांग अनुसार शिवरात्रि का पावन पर्व श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आज ये तिथि देर रात 1:52 तक रहेगी। तो हर हर महादेव के जयकारे के साथ भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसी कारण से ज्यादातर कांवड़िए भी कांवड़ जल इसी दिन चढ़ा रहे हैं। और बता दें कि भक्तों को सावन की शिवरात्रि पर पूरे दिन जलाभिषेक का अवसर जो है वो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह के समय ही कांवड़िए जो है जलाभिषेक कर सकते हैं, आज का पूरा दिन जो कांवड़िए हैं वो जलाभिषेक कर सकते हैं। महादेव का जलाभिषेक आज पूरे दिन रहेगा क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है। आज व्रत लेने का भी जो है वो सौभाग्य लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि आज के दिन बड़े ही मंगल योग भी बन रहे हैं। शिवालय में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की आराधना कर श्रद्धालु सुबह से ही शिवालय में पहुंच चुके हैं। और ये वाराणसी से सीधी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से भक्त जो हैं वो देर रात से ही मंदिर पहुंच चुके हैं और सुबह होने का इंतजार भी लोगों से नहीं हो रहा, क्योंकि आज शिवरात्रि के पावन दिन पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, उनका दुग्धाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह से जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको रोड खचाखच भरी नजर आएंगी, क्योंकि भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। और सावन की शिवरात्रि के पावन मौके पर आज भोलेनाथ को लोग जो है वो सुबह से देखिए दुग्धाभिषेक प्रभु का हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, कांवड़िए पहुंच रहे हैं मंदिरों में और गंगा जल जो वो लेकर आए हैं अर्पित करने के लिए महादेव को। तो देशभर के शिव मंदिरों में रात से ही श्रद्धालु जुटे हुए हैं महादेव के जलाभिषेक के लिए। शिवालय में भारी भीड़ है, दूर दूर से कांवड़िए पवित्र नदियों का जल लेकर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए डमरू की आवाज आपको लगातार सुनाई दे रही होगी, किस तरह से शिवालय में डमरू वादन हो रहा है। भक्तगण लंबी लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने नंबर आने का इंतजार उन्हें है कि महादेव का कब वो जलाभिषेक करें। सावन की शिवरात्रि के पावन पवित्र दिन का इंतजार हर शिव भक्त को रहता है। यूं तो पूरे सावन भर ही शिवालय में भारी भीड़ रहती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि एक खास मौका होता है जब जलाभिषेक कर आप आस्था और उत्साह के तमाम रंग देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि आज के पावन दिन पर किस तरह से भक्त जो है मंदिर में पहुंचे हैं।
1: हम लोग दशमेश्वर महाराज में आए हैं, जल और चढ़ाए हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम लोग यहाँ मंदिर में आए हैं, मंदिर में बढ़िया सब अच्छे से पूजा पाठ हो गया है, सब होता है। आज शिवरात्रि है, हम तो डेली ही आते हैं। यहाँ खूब भीड़ भाड़ है, सब लोग अच्छे से नहा धो रहे हैं, कांवरिया वाले खूब आते हैं, सब कुछ है। हमारा नाम मंजू पांडे है। मैं
2: आज सावन की शिवरात्रि है और शिवरात्रि का बहुत बड़ा ही महत्व होता है, शंकर जी की इस दिन पूजा की जाती है। तो आज हम लोग सुबह ही आकर गंगा स्नान के पहले, फिर वहां से आए हम लोग दशाश्वमेध मंदिर है जो कि प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां शंकर जी की हमने पूजा की, अभिषेक किया और उनका ध्यान किया और ये सब करके मतलब बहुत अच्छा लगा। और शिवरात्रि का तो एक विशेष महत्व होता है, तो इस दिन शंकर जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। जो लोग मतलब पूजा करते हैं, जिनकी आस्था रहती है, वो शंकर जी की पूजा करते हैं। और सुबह ही हम लोग आए थे, गंगा स्नान कर चुके, उसके बाद अभी मंदिर में पूजा करके अब हम लोग घर जा रहे हैं। मेरा नाम विभा पांडे है, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ।
0: तो देखिए तमाम रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सावन के महीने पे शिवरात्रि का अत्यंत पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के समापन और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन बेहद खास माना जाता है। आज के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भोले तो भोलेनाथ हैं, उन पर धतूरा, भांग, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से ही वो खुश हो जाते हैं। और इसीलिए भक्त जो हैं सुबह से शिवालय पहुंचे हुए हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली शिवरात्रि को सावन की शिवरात्रि कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा व जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, लेकिन सावन की शिवरात्रि का दिन अत्यंत पावन और फलदायी माना गया है। पूरे देश के शिव भक्त और कांवड़ियों के लिए दिन एक उत्सव की तरह होता है। इस दिन देश भर के प्रमुख शिवालय और ज्योतिर्लिंगों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। तो देखिए किस तरह से सुबह से भक्त जो हैं वो शिवालय में पहुंचे हुए हैं, हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ के जयकारों के साथ मंदिर परिसर खचाखच आपको भरे दिखाई देंगे। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं वाराणसी से, उज्जैन से, बैद्यनाथ से, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जगह जगह महादेव को प्रसन्न करने के जो है वो तमाम रंग आप देख सकते हैं, किस तरह से भस्म आरती की गई, फिर उनका श्रृंगार किया गया, फिर आरती हुई और मंत्रोच्चार के बीच लगातार जो है वो शिवलिंग पर लोग जलाभिषेक करते नजर आए। जहां एक तरफ कांवड़ियों की भीड़ आपने देखी कि किस तरह से कांवड़िए जो हैं वो अपनी यात्रा पर निकले थे और आज वो दिन आ गया है जब वो प्रभु पर गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सुबह पूजा हो रही है, आरती हो रही है और मंत्रोच्चार के बीच, डमरूवाद के बीच भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है, क्योंकि आज है सावन की शिवरात्रि। आज भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा दिन माना जाता है। वैसे तो पूरा महीना जो है वो भोलेनाथ का माना जाता है, सावन का पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, लेकिन आज का दिन, शिवरात्रि का पावन दिन, भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, सबसे ज्यादा खास वो होता है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं पावन दिन पर तमाम रंग, अलग अलग शहरों से किस तरह से श्रद्धालु सुबह से भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में, शिवालय में पहुंचे हुए हैं।

0: तो शिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर शहर से तमाम रंग हमने आपको दिखाए, किस तरह से भक्त जो है वो शिवालय में पहुंचे हुए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और चलिए अब रुख करते हैं जीएनटी एक्सप्रेस का।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: आज देशभर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि, मंदिरों की बड़ी रौनक, भोले के जयकारों से गुंजायमान हुए शिवालय। सावन की शिवरात्रि पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लगी लंबी कतार, महादेव के जलाभिषेक के लिए कावड़ियों में लगी होड़। भगवान भोलेनाथ के दर्शन को ललाए दिखे भक्त, शिव भक्तों की सहूलियत के लिए किए गए कड़े सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी देर रात ही जुटने लगी शिव भक्तों की भीड़, भोलेनाथ के लगे जयकारे। गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने विधि विधान से की बाबा का पूजा पाठ और जलाभिषेक, बोलबम किनारों से गूंजा मंदिर परिसर। श्रावण मास में सोमनाथ मंदिर में पहुंचेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, 13 अगस्त से 11 सितंबर तक मंदिर में दर्शन और सुरक्षा की खास तैयारी की गई। सोमनाथ मंदिर में पहली बार 30 दिन का 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ होगा, सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु इस यज्ञ में बन सकेंगे यजमान। श्रावण में बाबा सोमनाथ का हर दिन किया जाएगा अलग और खास श्रृंगार, चारों सोमवार समेत खास दिन पर निकलेगी भगवान की भव्य पालकी यात्रा। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए टॉय ट्रेन, व्हील चेयर और गोल्फ कार्ट की होगी सुविधा, पूजा और रहने की बुकिंग की जा सकेगी सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन। श्रावण के हर सोमवार को सोमनाथ में होगा कला महोत्सव, जिसमें भक्ति और संस्कृति की दिखेगी झलक। झांसी में अनोखा झरनापति महादेव मंदिर, एक ही शिवलिंग में शिव शक्ति का स्वरूप, अर्धनारीश्वर रूप में विराजे हैं भोलेनाथ। झरनापति महादेव मंदिर सावन में जलाभिषेक को यहां उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है मंदिर परिसर। झरनापति महादेव मंदिर की अनोखी मान्यता, शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा सफेद, निचला काला, एक ही पिंडी में शिव पार्वती के दर्शन। रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगनाओं से जुड़ा है मंदिर, तलवारबाजी, कुश्ती और मलखंब का होता है यहाँ अभ्यास, लक्ष्मीबाई युद्धाभ्यास से पहले भोलेनाथ का लेने आती हैं आशीर्वाद। झरने के नाम पर पड़ा झरनापति नाम, मंदिर के पीछे कभी बहता था बड़ा झरना, सच्चे मन से जल चढ़ाने पर मनोकामना पूरी होने का विश्वास। औरैया में पुष्प वर्षा से कांवड़ियों और शिव भक्तों का स्वागत, एएसपी और पुलिसकर्मियों ने बरसाए फूल। देवकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों शिव भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, लंबी कतारों में भक्त करते रहे इंतजार। गाजियाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, शिव भक्तों का फूलों से किया गया स्वागत, अफसरों और विधायक ने मंच से बरसाए फूल। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा का दिखा अनोखा रंग, पुष्प वर्षा से कांवड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। ड्रोन और कंट्रोल रूम से कांवड़ यात्रा की निगरानी, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ मार्ग। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, पूरा महादेव में पहला बार बना पिंक प्लान, पिंक शिविर और पिंक टॉयलेट तैयार। महिला अफसरों के हाथ सुरक्षा की कमान, हर पिंक शिविर में महिला अफसर तैनात, महिला कांस्टेबल भी रहेंगी मुस्तैद, परेशानी पर तुरंत मिलेगी मदद। महिलाओं के लिए विशेष बसें तैनात, ई व्हीकल की सुविधा भी मिलेगी, कांवड़ मेले में दिखेगा पिंक पहरा, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा पर फोकस। कांवड़ियों से केसरिया हुआ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, हर तरफ गूंज रहा है बोलबम का जयकारा, झूमते गाते बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना हुए कांवड़िए। चंदौ चंदौली के कावड़ियों ने जमाया भक्ति रंग। प्लेटफॉर्म पर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। शिव भजनों से भक्ति में हुआ स्टेशन। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक की है तैयारी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन की शिवरात्रि की क्या है महिमा, सावन की शिवरात्रि का क्या होगा उपाय, और सावन की शिवरात्रि का क्या होगा पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में, क्या है शिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रकाश के लिंग के रूप में शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि कांवर में जल भर के लाने से और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पापों का प्रायश्चित होता है। अब सावन की शिवरात्रि पर शिव जी की उपासना कैसे करेंगे? स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। दोपहर 12 बजे के पहले शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद धूप दीप फल मिठाई पुष्प इन वस्तुओं से पूजन करिए शिव जी का, और शिव जी के मंत्रों का जप करिए। शिवरात्रि की रात में शिव मंत्रों का जप करिए। इसके अलावा रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर चार पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करें, और हर पहर में शिव जी को जल अवश्य अर्पित करिएगा, उसका महत्व सबसे ज्यादा है। अब ये जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए। एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा और हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहिएगा। आपका विवाह शीघ्र होगा। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए क्या उपाय करेंगे। शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या रात के समय में 11 घी के दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से मनचाहे रोजगार की और नौकरी की प्राप्ति होगी। बेहतर स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करेंगे। इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम जूम सह माम पाले पाले, ओम जूम सह माम पाले पाले इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और संभव हो तो शिवलिंग से स्पर्श कराकर एक रुद्राक्ष का दाना या एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करिएगा। स्वास्थ्य और आयु में सुधार होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं 11 अगस्त मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: सावन की शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भाग। सुबह से शिवालय के बाहर लगी कांवड़ियों की लंबी कतारें। शिवरात्रि के साथ आज मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग। सावन के महीने में इस साल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए रिकॉर्ड श्रद्धालु। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक 4,43,00,000 से ज्यादा भक्तों ने भरा गंगा जल। अकेले हरिद्वार में 63,60,000 रहा आंकड़ा। सावन की शिवरात्रि पर झांसी के प्रसिद्ध झरनापति महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। एक ही शिवलिंग में होते हैं शिव शक्ति के दर्शन। अर्धनारीश्वर रूप में विराजे हैं भोलेनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की जोरदार तैयारी। सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु करा सकेंगे यज्ञ। 13 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा आयोजन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हर हर तिरंगा अभियान के दौरान दिखे देव देशभक्ति के रंग। 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ भारत माता की जयकार। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत।
0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
10: नमस्कार।
0: तो चलिए आज आपको जानकारी देते हैं कि आज इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं पंडित जी के साथ। आज चर्चा का विषय है सावन की शिवरात्रि। चूंकि सावन की शिवरात्रि का मौका है, सावन की शिवरात्रि क्यों खास होती है, इस दौरान कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, तब के बारे में हम जानकारी पंडित जी से लेंगे। अंत में जाकर आपको महाउपाय के बारे में भी बताएंगे, आपकी राशियों के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या कहता है।
6: सावन की शिवरात्रि पर जब भी मौका मिले बेहतर होगा शाम के समय शिव मंदिर में एक घी का दीपक जरूर जला दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 11 अगस्त 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
6: दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्यों खास होता है पंडित जी, और इसकी महिमा क्या है, उसके बारे में जानकारी दीजिए।
6: जी देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि माना जाता है। सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि शिवरात्रि पर प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि शिवरात्रि पर शिव जी का विवाह भी हुआ था। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल जाता है। शिवरात्रि पर व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की दो शिवरात्रियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है फाल्गुन की शिवरात्रि जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है इसीलिए सावन की चतुर्दशी यानी शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से कांवर में जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अपनी मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों से जल भरते हैं और लाकर ज्योतिर्लिंग पर या अपने आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कांवर में जल भर करके ला करके अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इससे पापों का नाश होता है।
0: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या है।
6: मेष राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: पंडित जी एक चीज बताइए, शिव जी की उपासना के चूंकि दिन है तो क्या सही विधि विधान है जिस तरह से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं?
6: शिव जी की उपासना सावन की शिवरात्रि पर कैसे करना चाहिए, क्या सरल और उचित तरीका होगा वो आपको बताते हैं। स्नान करिए, 12 बजे के पहले नहा लीजिए, स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। इसके बाद शिव जी को मंदिर में जा करके जल अर्पित करिएगा। और इसके बाद अलग अलग वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इनसे शिव जी की पूजा करिए। और पूजा करने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। शिवरात्रि पर दिन में पूजा करने का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व रात की पूजा का है। तो रात में शिव मंत्रों का आप चाहें तो जप करें और मध्य रात्रि में रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ करिएगा। अगर आप चार पहर की पूजा करते हैं शिवरात्रि पर तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करिएगा। हर पहर में दूध, दही, घी और शहद के अलावा शिव जी को जल भी चढ़ाइएगा। शिवरात्रि में आप दिन में जितनी भी पूजा करें, शाम को जितनी भी पूजा करें, लेकिन रात की पूजा करना आवश्यक है। अगर शिवरात्रि में आप रात को जग करके पूजा करें तो उसके परिणाम और उसके प्रभाव ज्यादा शुभ होंगे।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली तीन राशियों का भी हाल पंडित जी से ही जान लेते हैं कि इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
6: कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। रिश्तों में समस्या आ सकती है। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं। धन लाभ के योग हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों के सवालों का वक्त हो चला है। आपका पहला सवाल कौन सा है पंडित जी से जाने, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, परेशानी है, उसका निवारण आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल ईमेल आईडी के माध्यम से इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
6: जी,
0: पहला
6: आज का पहला प्रश्न दिव्या जी ने हमें लिखा है और दिव्या जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 15 जून 1990 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 8:15। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। दिव्या कह रही हैं कि मेरा विवाह 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अब मेरा विवाह नहीं चल पा रहा है, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? दिव्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह के चलने की संभावना दिखती है। थोड़ी सी शांति और धैर्य बनाए रखिए, इस साल के अंत तक आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, साल 2026 के लास्ट तक। थोड़ी सी शांति रखें, मामला हल होने वाला है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम एक एक बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और जानते हैं कौन से दर्शक का अगला सवाल पंडित जी तक आया है।
6: जी, अगला प्रश्न सुधीर जी ने हमें लिखा है और सुधीर जी हमें हरिद्वार उत्तराखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1980। जन्म का समय रात में 11:35। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। सुधीर जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सुधीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना है कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी नौकरी बदलेगी, आप बेहतर नौकरी में जाएंगे और नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। नौकरी आपकी जल्दी बदल जाए, नौकरी आपकी बेहतर हो जाए, इसके लिए सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा।
0: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, प्रश्न ये है कि धन की प्राप्ति के लिए इस दिन कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं जिसका भरपूर फायदा हर किसी को प्राप्त हो?
6: सावन की शिवरात्रि पर धन प्राप्त करने के प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये भगवान शिव को अर्पित करें। इन वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को जल की धारा अर्पित करें और फिर भगवान शिव से धन प्राप्त करने की प्रार्थना करें। सावन की शिवरात्रि पर अगर रात के समय में आप ऐसा करते हैं और शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: चलिए, इस उपाय के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। अब अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछते हैं कि इस दौरान क्या करना चाहिए? संतान अगर किसी को नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिवरात्रि पर कौन से ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिसका फायदा दंपत्ति को मिले? पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे।
6: अगर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? सावन की शिवरात्रि पर पति पत्नी एक साथ मिल करके शिवलिंग पर गाय के दूध का बना हुआ घी अर्पित करेंगे। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे

0: स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि किसी का अगर विवाह नहीं हो रहा, किसी की शादी किसी वजह से रुकी हुई है, शीघ्र विवाह वो करना चाहते हैं, तो कौन कौन से अचूक उपाय ये सभी कर सकते हैं?
0: शीघ्र विवाह के लिए आप सावन की शिवरात्रि पर एक विशेष प्रयोग प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में कर सकते हैं। शिवलिंग पर अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र अर्पित करिए प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में, और एक एक करके बेल पत्र चढ़ाइएगा। हर बेल पत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये हर बेल पत्र के साथ कहिएगा। और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर सावन की शिवरात्रि पर ये प्रयोग करते हैं या करती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: पंडित जी, अब ये बताइए कि रोजगार प्राप्ति के लिए मनचाही नौकरी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस दौरान कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जो ये लोग कर सकते हैं?
0: अच्छे रोजगार के लिए, बेहतर नौकरी के लिए सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? शिवरात्रि पर प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाएंगे। जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाइएगा। अगर प्रदोष काल में संध्या काल में उपाय करते हैं तो पहले उपाय करें फिर 11 घी के दीपक जलाएं। अगर रात में उपाय करते हैं तो पहले उपाय करें और फिर 11 घी के दीपक जलाइएगा। रोजगार और नौकरी की समस्याएं

0: हल हो जाएंगी।
1: चलिए रोजगार प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से अचूक उपाय करने हैं वो तो पंडित जी ने आपको बताया। बात करते हैं स्वास्थ्य की, सेहत की और आरोग्य रहने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय जो किए जा सकते हैं इस दिन, वो पंडित जी से जानते हैं।
0: सावन की शिवरात्रि पर अगर आप प्रार्थना करें, पूजा करें, तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिए। अगर मंदिर में बैठने का स्थान मिले तो मंदिर में ही ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय इस मंत्र का 11 माला जप करिए, या घर पर आकर के इस मंत्र को 11 माला जपिएगा। अगर संभव हो तो एक दाना रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श कराकर या रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करिएगा। अगर सावन की शिवरात्रि पर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी।
1: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ पहुंच गए हैं और अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना।

रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए फिर से वापस आते हैं दर्शकों के सवाल के ऊपर। और अगला सवाल कौन से दर्शक ने भेजा है इस शो में पंडित जी से अपना प्रश्न पूछने के लिए। पंडित जी आपसे ही जानते हैं कि कौन सी दिक्कत का समाधान आप करने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न सपना ने हमें लिखा है और सपना हमें रांची झारखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अप्रैल 2002, जन्म का समय दोपहर के 1:45, जन्म स्थान है रांची। सपना कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकूंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सपना, अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के क्षेत्र में प्रयास करें तो बैंकिंग या फाइनेंस आदि के क्षेत्र में आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकेंगी। और अगर आप अभी से तैयारी करें तो साल 2027-28 का अच्छा समय है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है इस शो में दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक ने पंडित जी को भेजा है।
0: जी अंतिम प्रश्न उदय प्रताप जी ने वाराणसी से लिखा है हमें। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1965, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म का स्थान है सिवान, बिहार। में लिखते हैं वाराणसी से। उदय प्रताप जी कह रहे हैं कि बहुत समय से मैं मकान बनवा रहा हूं लेकिन मेरा मकान आधा ही बन पाया है, पूरा नहीं बन पाया है, तो मेरा मकान कब तक पूरा होगा और नए मकान में मैं कब तक जा पाऊंगा। उदय प्रताप जी, आपका मकान बनने का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि आपका मकान 2027 के अप्रैल के पहले बन पाएगा और 2027 के जून के बाद आप नए मकान में प्रवेश कर पाएंगे। शनि की निगेटिव स्थिति की वजह से प्रॉपर्टी के मामले में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ऐसा करिए, रोज सुबह शाम 1-1 बार शनि चालीसा का पाठ करिए और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन लोगों का जन्मदिन है 11 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिनका जन्मदिन 11 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर और धन की स्थिति ठीक रहेगी, संपत्ति निर्माण के योग बन रहे हैं, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शो के अंत की तरफ और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी को तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते या तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन स्कंद पुराण ऐसा कहता है कि शिव जी और विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण के महीने में, सावन के महीने में शिव जी को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं।
1: और चलिए पंडित जी से जानते हैं 11 अगस्त 2026 यानी मंगलवार के शुभ के बारे में।
0: दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का यथाशक्ति जप करिएगा, स्वास्थ्य और धन के मामलों में लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है, पंडित जी से जानते हैं।
0: आज की गुडलक राशि है वृषभ। आप जब शिव जी की पूजा करें तो उनको सफेद फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
1: चलिए, इस शो से जुड़े हुए तमाम उपायों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। हमने तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की, जिसका इंतजार आपको रहता है। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या है?
0: जी, अगर आप मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे रोली मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान, और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: भारत के खूबसूरत मोर अब देश की सरहदों से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर जिनेवा में अपनी छटा बिखेरेंगे। जी हां, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 5 मोर उपहार में दिए हैं जो अब जिनेवा स्थित यूएन परिसर की शोभा बढ़ाएंगे। इसे भारत की पिकॉक डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी के जरिए दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है।
2: भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर अब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मेहमान बनकर पहुंचे हैं। जिनेवा में यूएन के कैंपस में ये अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को मोर के रूप में शानदार तोहफा दिया गया है। एक खास कार्यक्रम में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक ताचियाना वालोवाया को इन मोरों का अनूठा उपहार सौंपा। बता दें कि भारत ने 45 साल बाद यूएन को मोर गिफ्ट किया है। इस बार भारत की ओर से 5 मोर भेंट किए गए हैं। इनमें 4 नीले और एक दुर्लभ सफेद मोर शामिल है। ये मोर महज भारत की ओर से यूएन को दिया गया सामान्य तोहफा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारत और संयुक्त राष्ट्र के बरसों पुराने और लंबे रिश्ते की याद भी दिलाता है और आपसी सहयोग के इरादे को भी जाहिर करता है। इन मोरों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कूटनीतिक रूप से दुनिया में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से बढ़ावा देने में मददगार हो सकते हैं। असल में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिस जगह पर स्थित है उसका मोरों से गहरा संबंध रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। ये जगह स्विट्जरलैंड के मशहूर कला प्रेमी गुस्ताफ रेविलियोट की संपत्ति थी। 100 साल से ज्यादा वक्त तक ये इलाका मोरों की कुनबे से गुलजार रहा था। 1954 में यहाँ एक मोर काफी चर्चा में रहा था। वो वहाँ पहुँचे तत्कालीन सोवियत प्रतिनिधि मंडल की कार पर सवार हो गया था जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में आ गई थी। हालांकि बताया जाता है कि 1950 के दशक में यहाँ पर मोरों की आबादी घटने लगी थी जिस पर चिंता भी जताई गयी थी। वहीं 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली के चिड़ियाघर से मोरों का जोड़ा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को गिफ्ट में भेजा था। इसके 45 साल के बाद एक बार फिर भारत की ओर से यहां एक साथ 5 मोर भेजे गए हैं। भारत से भेजे गए मोरों को संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलहाल अस्थायी बाड़े में रखा गया है। ये मोर करीब 3 महीने तक यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद इन्हें खुले में घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खबर है कि जल्दी ही इनके नामकरण के लिए यूएन की ओर से प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। मोर को सुंदरता और गरिमा का प्रतीक भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के परिसर में इन्हें लाए जाने से यहाँ इनकी आबादी बढ़ने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जरा सोचिए, समंदर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई दें तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
3: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
4: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival and right on the beach here and the wind is beautiful. The people are beautiful. The weather's all beautiful.
3: दिन ही नहीं, इस इवेंट ने रातों को भी रोशन रखा। रात में आसमान में पतंगों का शानदार नजारा दिखा। अंधेरे आसमान में रोशनी से जगमगाती पतंगों ने कोलंबो के स्काईलाइन को एक अलग ही अंदाज दे दिया। समंदर की लहरें, खुला आसमान और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है, बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जोड़ा। यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
1: रब्बाद बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश की 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणपति के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि करीब एक महीने पहले ही परंपरा के अनुसार कोल्हापुरचा राजा और पुणे में गोल सर्कल मित्र मंडल के गणपति का आगमन हो चुका है। गजानन गणपति विनायक गौरीपुत्र या विघ्नहर्ता, सच्चे मन से जिस नाम से बप्पा को पुकारा जाए वो अपने भक्तों का दुख हरने में देरी नहीं करते। 10 दिनों के गणेश उत्सव दौरान भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं।

0: अगर सच्चे मन से याद किया जाए तो गौरी नंदन भगवान विनायक गणेश चतुर्थी से एक महीने पहले भी अपने भक्तों को दर्शन के लिए आ सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति में आखंड डूबे भक्त अगर शुद्ध निश्चल मन से बप्पा को पुकारे तो वो अपने भक्तों का दुख हरने में देरी नहीं करते। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव से करीब एक महीने पहले ही कोल्हापुर चा राजा पधार चुके हैं। बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ हजारों की संख्या में गौरी पुत्र भगवान गजानन के स्वागत के लिए सड़कों पर दिखे। ढोल ताशों की गूंज के बीच प्राचीन शहर कोल्हापुर का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, जिससे 10 दिनों के गणेश उत्सव से पहले शहर में त्योहार की शुरुआत हो गई। भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से भी भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक गणपति के जन्मोत्सव के मौके पर बप्पा की भक्ति का रस सिर्फ मुंबई के दिव्य और भव्य गणेश पंडालों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोल्हापुर में भी गोल सर्कल मित्र मंडल की तरफ से पिछले कई वर्षों से लालबाग के राजा के रूप में गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जाती है। श्रद्धा और भक्ति के इस भाव की वजह से कोल्हापुर में रहने वाले गणेश भक्तों को लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई तक करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ती।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों के उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: चौदह फुट ऊंची गणेश प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के स्वरूप वाली इस प्रतिमा के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिसकी वजह से पूरा शहर गणेश भक्ति में डूब गया। गणेश आस्था से जुड़ी कुछ ऐसी ही तस्वीर पुणे में भी दिखी, जब गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों से पूरा शहर गूंज पड़ा। वहाँ भी 10 दिनों के गणेशोत्सव से करीब एक महीने पहले श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणपति मंडल से जुड़े विघ्नहर्ता का आगमन हुआ। भारतीय संस्कृति, उत्साह और उत्सव के प्रतीक ढोल ताशों की गूंज के बीच भगवान गणेश की ऐतिहासिक मूर्ति लकड़ी और भूसे से बनी है। स्थापना के बाद से आज तक इस अनोखी मूर्ति के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। अपने इस अनोखे स्वरूप में बप्पा एक राक्षस का वध करते हुए दिखाई देते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के संघर्ष का प्रतीक है। इस उत्सव की शुरुआत केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता जगाने के लिए की थी। ऐतिहासिक परंपराओं को संजोए हुए इस ऐतिहासिक उत्सव को पहली बार तकनीक से जोड़ा गया है।
2: क्रांति दिन है आज, और हमारे जो फाउंडर थे वो क्रांतिकारी थे, और आज क्रांति दिन के निमित्त आज वासा पूजन भी और डेकोरेशन का अनावरण, ये दोनों चीज़ें हुए हैं। मुझे लगता है आज फर्स्ट टाइम पूना में ऐसी LED स्क्रीन पे डेकोरेशन का अनावरण जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है। और आज इस साल का अगर आप डेकोरेशन देखेंगे, श्री सुवर्ण गणेश धाम, गणेश धाम मतलब गणेश नगरी, गणेश का घर, और सोने ये किया जा उनके माता पिता, उनके भाई, वो खुद यहाँ है, ऐसा डेकोरेशन में दिखाया है। और मुझे श्योर हूँ कि मैं जो लाखों भाविक इस 10 दिन में इस जो ये गणपति श्रद्धा स्थान है उनके दर्शन करने आएंगे, तभी ये डेकोरेशन देखिए आनंद होगा।
0: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से यह पर्व शुरू होता है और इसका समापन चतुर्दशी के दिन होता है। 10 दिनों के उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ बप्पा के गुणों और उनकी तारीफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में गौरी नंदन अपने भक्तों की राह में आने वाले विघ्न को हरने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होगा और इस जगह पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए हैं। अभी से लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बार सुरक्षा के लिए AI का भी इस्तेमाल किया गया है।

0: 15 अगस्त देश के लिए बेहद खास दिन, वो दिन जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए अभी से लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा घेरे में इस बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS, बायोमेट्रिक्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और AI इंटीग्रेटेड CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सुरक्षा का ऐसा हाईटेक पहरा है जिससे किसी भी अपराधी का बचकर निकल पाना मुश्किल होगा।
1: कि इस बार देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और उसके मद्देनजर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। तो जो लोग 15 अगस्त को यहाँ आना चाहते हैं, लाल किले पर आना चाहते हैं, वो समय से आए, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो काफी पुख्ता होगी, जो चेकिंग है वो काफी ज्यादा सख्त होगी।
0: राजधानी दिल्ली में खासकर लाल किले के आसपास के इलाके में इस बार सुरक्षा व्यवस्था में AI तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। साथ ही करीब दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों समेत 20,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं।
2: स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो भी वंदे मातरम है और इसीलिए यहाँ पे वंदे मातरम की ही थीम पे सारा प्रोग्राम होगा। और इसके अंदर जो सुरक्षा इंतजामों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा इंतजाम काफी डिटेल में हम लोग काफी समय से तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस।
0: लाल किले और उसके आसपास 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पूरे इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है।
1: 1,000 CCTV का जो फीड है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है और ये बस नॉर्मल CCTV फीड नहीं है, बल्कि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी जो है वो प्रयोग किया गया है। एनालिटिक्स की अलग टीम बनाई गई है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की अलग टीम बनाई गई है।
0: और खास बात ये है कि कई कैमरे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स से लैस हैं, यानी कैमरे सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि तस्वीरों और गतिविधियों की जांच कर संदिग्ध गतिविधि या किसी अज्ञात वस्तु को पहचानने में मदद करेंगे।
1: जैसे सर ये स्क्वायर बन के आ रहा है तो ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है?
3: सर इसकी जो सेटिंग है, कैमरे की सेटिंग और उसका जो ग्रेविटी नोटिस करी जाती है कि कितना एग्जैक्ट इसका मैच आता है, उस पर हम फिक्स कर देते हैं। अभी जैसे जिन लोगों का नाम एज वगैरह मेंशन हो रहा है, किस एज ग्रुप के हैं, मेल है फीमेल है, इस तरह से आइडेंटिटी आती है।
0: जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी सुरक्षा की पैनी नजर है। लाल किले के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। किसी भी बिना अनुमति वाले ड्रोन की गतिविधि को समय रहते डिटेक्ट करने और उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। यानी लाल किले की सुरक्षा का ये घेरा जमीन से लेकर आसमान तक बनाया गया है, जिसका मकसद साफ है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को लाल किले के आसपास पहुंचने से रोकना जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आज सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का भी अनुपम संयोग। जलाभिषेक के लिए शिवालय में भक्तों की भारी भीड़।

0: भारी जनसैलाब। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 4,43,00,000 से भक्तों ने भरा गंगा जल। अकेले हरिद्वार में 63,60,000 रहा आंकड़ा।
1: सावन की शिवरात्रि पर झांसी के प्रसिद्ध झरनापति महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। एक ही शिवलिंग में होते हैं शिव शक्ति के दर्शन।
0: सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की तैयारी। सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु करा सकेंगे यज्ञ। 13 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित।
1: श्रीनगर में खेलों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया गया स्विमिंग समर कैंप। बच्चों को सिखाया जा रहे हैं वाटर सेफ्टी और तैराकी के बुनियादी गुर।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियों में जुटी सेना। 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल। 7 तोपों से 3-3 फायर कर दी जाती है सलामी।
1: की खुशोभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: शुभ समाचार की शुरुआत सावन की शिवरात्रि के साथ करेंगे। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत मंगलकारी होता है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करते हैं उनकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है।
0: तो वहीं सावन के दौरान मंदिरों में भी आस्था अपार नजर आ रही है। देश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ज्योतिर्लिंग से लेकर हर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। काशी, सोमनाथ, महाकाल और बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्ति का अद्भुत रंग दिखाई दे रहा है।
1: तो वहीं कांवड़ यात्रा में भी दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में करीब 4.25 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर लौट चुके हैं। अब गंगा जल लेकर लौटे कांवड़िए मंदिर में उसे अर्पित कर रहे हैं। लिहाजा सावन की शिवरात्रि पर देश भर के शिवालय में भक्तों का तांता लग रहा है।
0: उधर महाकाल की नगरी उज्जैन की भी बात कर लेते हैं। सावन उत्सव वहां भी मनाया जा रहा है। यहां पर सावन महीने में भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इस वर्ष उनकी 2 सवारी निकल चुकी है। सावन के दूसरे सोमवार को निकली महाकाल की सवारी में भक्ति, परंपरा और उत्सव का संगम देखने को मिला।
1: इस बीच प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। यहां सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु यज्ञ करवा सकते हैं। ये आयोजन 13 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा, तो इसके बारे में भी विस्तार से आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
0: आज देश भर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। देशभर के शिवालयों में महादेव के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार देखी जा सकती है। आज काशी से लेकर उज्जैन तक के शिव मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। कांवड़ियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है।
1: सावन की शिवरात्रि पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में भक्त इन पलों के साक्षी बने। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई।
0: झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सावन की शिवरात्रि पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। शिवरात्रि पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा।
1: श्रावण के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और हाथी पर मनमहे स्वरूप में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। महाकाल मंदिर में विधि विधान से पूजन के साथ ही राजाधिराज बाबा महाकाल की शाही सवारी शुरू हुई। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल जब मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो पुलिस के सशस्त्र जवानों ने बैंड की धुन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और शाही सवारी में भक्ति के रंग भी खूब नजर आए।
0: महाराष्ट्र के जालना में श्री संत गजानन महाराज की पालकी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पालकी के दर्शन के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीरें देखने को मिली। पालकी श्री क्षेत्र पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी का पूरा करने के बाद शेगांव की ओर लौटते हुए जालना से होकर गुजर रही है।
1: और तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। यहां अगस्त क्रांति दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के नेतृत्व में 700 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जहां एक और पूर्व सैनिक की अनुशासक भागीदारी देखने को मिली, तो वहीं छात्र छात्राओं ने लेजियम गरबा नृत्य के जरिए तिरंगा यात्रा को जोश और उत्साह से भर दिया। यात्रा का प्रमुख आकर्षण 700 फीट लंबा विशाल तिरंगा रहा।
0: उत्तराखंड के चमोली में इस साल फूलों की घाटी में रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक घाटी में कुल 18,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। इनमें 122 विदेशी सैलानी भी शामिल है। सैलानियों की यह संख्या पिछले साल किसी अवधि यानी कि अगस्त 2025 से करीब 3,000 ज्यादा है।
1: चीन के चोंगकिंग में 12 साल के 3 बच्चों ने 1 मिनट में 496 बार रस्सी कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तीनों ने एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में कमाल किया। तीनों बच्चों ने कई महीनों तक रोज जमकर अभ्यास किया। उनकी टीम रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में 8 से 10 घंटे तक ट्रेनिंग करती है। इन बच्चों ने अपनी जीत का श्रेय मेहनत और टीम वर्क को दिया।
0: अभिनेता अरशद वारसी की पॉपुलर वेब सीरीज असुर के अगले सीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। खबर है कि असुर 3 की शूटिंग अगले महीने शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असुर के क्रिएटर गौरव शुक्ला अब तीसरे सीजन में डायरेक्टर की कुर्सी संभालेंगे। एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद असुर 3 का हिस्सा बन
3: गली लगा के कीड़ा है
4: उसे माफ कर दीजिए।

0: तो शुभ समाचार की शुरुआत सावन की शिवरात्रि के साथ करेंगे। देश भर में शिवरात्रि का महापर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर शिवालय में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। दिल्ली से लेकर हरिद्वार और उज्जैन से लेकर देवघर तक हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़िये लंबी यात्रा पूरी कर अपने आराध्य महादेव के दरबार में पहुंचे हैं और पवित्र जल से भगवान शिव का महाअभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। कहीं गंगा जल से जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं दूध दही शहद और बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। झारखंड के देवघर में आस्था का एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों कांवड़िये महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। बोलबम के जयकारों के बीच बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से लोग सुबह सुबह मंदिर में शिवालय में पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, और हरिद्वार से सीधा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांवड़ियों की यात्रा का आज इसी के साथ समापन हो गया है। आज महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है।
1: तो वही वाराणसी में देर रात से भक्त काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचना शुरू हो गए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। सुबह सवेरे की तस्वीरें सामने आई। शिवरात्रि पर भक्त पहुंचे हैं महादेव को जल अर्पित करने के लिए, और ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारों के इंतजार के बाद भक्त विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया।
0: तो देवघर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। इस दौरान बाबा के धाम को खास तौर से सजाया भी गया है। पूरा मंदिर परिसर भक्तों के जयकारे से गूंज रहा है और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, हर हर महादेव भोले शिव। तो देखिए किस तरह से शिवरात्रि पर आज के दिन भक्तों का ताता जो है वो मंदिरों में लगा हुआ है। तमाम कांवड़िये इस वक्त मंदिरों में पहुंचे हैं, शिवालय में पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, और देखिए लाखों की संख्या में आपको यहाँ कांवड़िये नजर आएंगे, और उन सब के बीच आम लोग भी हैं जो शिवरात्रि पर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवघर की, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे।
2: आज जो है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है श्रावण का, लगभग मान के चलिए कि सावन आधा लगभग समाप्त होने की ओर है, और विशेष दिन यह है कि बाबा को आप एक लोटा जल और जरा सा एक बिलपत्र एक लोटा जल चढ़ाइए और सच्चे मन से बाबा का पूजा करते हृदय से पुकारिए, बाबा आपके पास मिलेंगे जहां आप वहां हैं वहीं बैठे हुए।
3: शिवरात्रि का व्रत होता है, शिव जी का विशेष दिन होता है, उसमें भी आज मंगलवार है। स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारी, भौमवार दिन और शिवरात्रि संयोग से बाबा का लगा है और भक्त लोग आ रहे हैं अपनी अपनी कामनाओं को लेके और बाबा के ऊपर जलार्पण कर रहे हैं माँ पैदल कांवर यात्रा लेके, और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग ज्योतिर्लिंग हैं, सभी भक्तों की कामना ये शीघ्रादि शीघ्र पूर्ण करने वाले हैं।
1: तो देखिए सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और ऐसे में मान्यता है कि सावन में महादेव की आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और सावन की शिवरात्रि यानी महादेव की भक्ति का पवित्र दिन उनकी कृपा पाने का सबसे शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कांवड़िये हरिद्वार और दूसरे पवित्र तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालय तक पहुंचते हैं, विधि विधान से महादेव का अभिषेक करते हैं। दिल्ली से लेकर हरिद्वार उज्जैन से कर देवघर तक हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, और कांवड़िये आस्था के साथ अपने आराध्य को जल अर्पित कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत मंगलकारी होता है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।

0: तो आज शिवरात्रि का पावन दिन और तमाम श्रद्धालु सुबह से ही शिवालय में पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे श्वेता झा गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर से जुड़ रही हैं, मनीषा लड्डा हमारे साथ दिल्ली गौरीशंकर मंदिर से जुड़ रही हैं, पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से और रोशन जायसवाल हमसे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। तो सबसे पहले रुख करना चाहेंगे श्वेता झा का, जो इस वक्त दूधेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद है। श्वेता, किस तरह का माहौल आप देख रही हैं? सावन का पावन महीना और उस पर आज शिवरात्रि का दिन, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, सुबह से लगता है खुद इंद्रदेव जो है भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मौजूद हैं।
1: बिल्कुल, सबसे पहले चूंकि मैं शिवालय में हूँ, एक बार जयकारा हो जाए भोलेनाथ का,
2: हर महादेव हर महादेव।
1: अभी आप लोग तस्वीरें दिखा रहे थे देश के कोने कोने से, देवघर की तस्वीरें आपने दिखाई और भी देश में अलग अलग जहां शिवालय है उसकी तस्वीरें दिखाई। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर की है। सबसे पहले आपको इस मंदिर की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरह से यहां दूर दूर से करोड़ों शिव भक्त इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही ये तांता लगातार लगा हुआ है। सावन का महीना यानी कि भोले का प्रिय महीना, और जहां पर हजारों हजार की तादाद में कांवड़िए जो है गंगा जल भरकर हरिद्वार से यहां पर पहुंचे हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। शिव भक्ति का ये वो चरम है जब आज देश के कोने कोने से यहां श्रद्धालु आस्था के दरबार में पहुंचे हैं। आज गाजियाबाद का ये दूधेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से शिवमय हो गया है। घंटियों की आवाज, बोलबम के जयकारे, गंगा जल से लेकर जल कहाँ भरा?
3: हरिद्वार।
1: हरिद्वार से जल भरकर आ रहे हो तो एक कांवड़िया यहाँ पे, हालांकि हजारों कांवड़िए हैं, ये देखिए पांव में छाले इनके पड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज शिवालय में आकर जल चढ़ाना है, मनोकामना पूरी होनी है। कितनी खुशी हो रही है आज?
3: बता नहीं सकते आपको,
1: सारी परेशानी भूल गए।
3: जी, परेशानी है ही नहीं हमारी लाइफ में तो,
1: क्योंकि भोले साथ है।
3: जी,
4: परेशानी तो कष्ट हो
3: जाए। हम तो
1: कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हरिद्वार से जल लेकर के आ रहे हैं। देखिए लगातार यहाँ पर कांवड़िए जो है दूर दूर से आ रहे हैं, कह रहे हैं ना परेशानी हमें किस बात की है जब भोले हमारे साथ हैं। दरअसल ये जितने भी कांवड़िए हैं इनके मन में बस यही एक कामना है, एक बात है कि भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं?
5: हरिद्वार से।
1: कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था की, इतनी परेशानी के बावजूद आप लोग जाते हैं और उसके बाद जल लेकर आते हैं?
5: हाँ जी बिल्कुल।
1: भोलेनाथ में कितनी श्रद्धा?
5: बहुत शक्ति है जी, बहुत शक्ति है, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं।
1: पैरों में
6: आ रहे भोले बाबा से, इस मारे जा रहे हैं और इस मारे आते हैं,
7: उनकी शक्ति से तो यहाँ तक आ जाते हैं लोग।
1: कब से?
7: 1 तारीख से चले हुए हैं और आज 10 तारीख है, कल रात आए हैं 9:30 बजे।
1: कुछ खास मनोकामना जो भोलेनाथ से मांग?
7: बस भोले बाबा की दुआ बनी रहेगी ऐसी। तो
0: चलिए श्वेता, आपके पास लौटेंगे आप और उससे भी बात कीजिएगा। मनीषा के पास एक बार लिए चलते हैं, दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में मनीषा मौजूद है। मनीषा, कल भी आप दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में गई थी, कल से लेकर आज आप वहां पर कितना उत्साह देख पा रही हैं, कितनी भीड़ वहां पर है श्रद्धालुओं की?
8: पूजा में तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज हर एक शिवालय से जयकारे तो आपको सुनने को जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ एक भक्ति और एक आस्था जो दिखाई देने वाली है वो है कांवड़ यात्रियों की, क्योंकि आज इनका दिन है। लंबे सफर के बाद, ढेर सारी कठिनाइयों के बाद जो है वो आज आखिरकार जो है जल लेकर दिल्ली पहुंचे और अपने अपने आसपास के शिवालयों में जो है जल अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त आपको आरती होते हुए नजर आ जाएगी। हालांकि इससे पहले पूरा डाक कांवड़ियों का ग्रुप मेरे साथ था, लेकिन अभी वो जो है वो चले गए, तो बारी बारी कर जो है डाक कांवड़िए भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त आरती की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मंदिर का जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई इकट्ठे मिलकर जो है यहाँ पर आरती कर रहा है, क्योंकि मंदिर की अगर आरती की बात करूँ तो वो सुबह के समय होती है, लेकिन जितने भी ये भक्त है आपको यहाँ पर अलग अलग समय पे आरती करते हुए एकजुट होते हुए जो है वो नजर आ जाएगी। क्योंकि भोलेनाथ को जब याद करना होता है तो कोई समय नहीं देखता, बस उन्हें याद किया जाता है। आस्था देखी जाती है, भक्ति भाव देखा जाता है।

0: दूं कि किस तरीके से वो जल जो है वो अर्पित करके जो है मंदिर से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो शिवालय में आपको एक बार लेकर चलती हूँ क्योंकि महादेव के दर्शन जीएनटी के सभी दर्शक कर सके मैं वो अवश्य चाहूंगी। तो आपको मैं एक बार तस्वीरें अंदर से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है आपको नजर आ जाएगी, आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से जो है जो यहाँ पर भोले है वो यहाँ पर जो है आ रहे हैं और बस यहाँ से जो है जल अर्पित करते हुए जो है आपको तस्वीरें नजर आ जाएगी। अंदर काफी ज्यादा भीड़ है तो मैं शायद अंदर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन बाहर से तस्वीरें दिखा रही हूँ कि आज आपको डाक कावड़ियों की सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। मंदिर वैसे आपको थोड़ा खाली नजर आ जाएगा, बाहर लंबी लंबी लाइनें आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन
1: जी मनीषा, तो तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं गौरीशंकर मंदिर से। और गुड न्यूज टुडे पर हम आप शिवरात्रि की रौनक तो आपको दिखा ही रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के शुभ दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन आप कर सकते हैं, सौराष्ट्र के सोमनाथ धाम की शुभ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, त्र्यंबकेश्वर धाम के लाइव दर्शन भी आप कर सकते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के दर्शन पूजन से सभी रोग बाधाएं दूर होती हैं, महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो देखिए 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, आप तीनों तस्वीरें देखिए और घर बैठे दर्शन कीजिए। काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोमनाथ धाम की तस्वीर भी आपके सामने है, और तीसरी तस्वीर है त्र्यंबकेश्वर धाम की नासिक से। तो तीनों भोलेनाथ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो तीनों धामों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जीएनटी के माध्यम से आप तीनों धामों के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर आपके सामने है, सोमनाथ धाम से आपकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और त्र्यंबकेश्वर धाम से भी तस्वीरें आपके सामने।
2: तो देश के अलग अलग कोनों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं पंकज के पास जो कि प्रयागराज में मौजूद है। पंकज, तस्वीरें दिखाइएगा, कितना अद्भुत वहां पर भक्तिमय माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से आज इस पावन अवसर को मनाया जा रहा है।
3: यह सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है, और आज जो शुभ संयोग है, आज मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन है, और शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का भी दिन है, तो दोनों ये शुभ संयोग जो लोगों को वो देखने को मिल रही है। भक्तों की जो भीड़ है यहाँ लगी हुई है, ये मनकामेश्वर मंदिर है, और ये सभी मन की कामनाएं पूरी करती है। सावन का महीना चल रहा है और तमाम भक्त यहाँ रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और उनका भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है, और यहाँ पर भक्त पूजा कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी भक्त आकर भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, और यहाँ ऋणमुक्तेश्वर मंदिर भी है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप 51 सोमवार को जल चढ़ाएंगे तो हर तरह के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह शंभू शिवलिंग है, और यहाँ पर जो मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने भी यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। तो प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर का एक अलग महत्व है, और यहाँ पर
1: जी पंकज, मनकामेश्वर मंदिर की एक अलग आस्था है। और लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ रोशन भी बने हुए हैं। रोशन हमारे साथ शिव की नगरी काशी से बने हुए हैं, मान्यता है कि जो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर ले उसको कोई और दर्शन की जो है आशा नहीं रहती है, और कितने भक्त हैं जो आज सुबह से शिवालय पहुंचे हुए हैं भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। रोशन
4: जी, देखिए बिल्कुल जो आता है भगवान भोलेनाथ,
5: ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो प्रधान शिवलिंग है काशी विश्वनाथ, वहाँ पर सभी की भक्तों की आने की एक अपनी मनोकामना और इच्छा होती है। सबसे ज्यादा जो शिव भक्त होते हैं वे काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर आते हैं। ऐसे में सावन का महीना हो और साथ ही साथ शिवरात्रि जो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पे आती है, इस दिन बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और उनको पुष्प चढ़ाने और बिलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। इसी वजह से देर रात से ही तमाम श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि कल सावन का दूसरा सोमवार भी था, तो कहा जाए तो अनवरत परसों से ही लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। और जैसे ही आज मंगला आरती भोर में समाप्त हुई, आम श्रद्धालुओं के लिए द्वार मंदिर के खोल दिए गए, देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं, और सबकी बस एक ही इच्छा है।

0: फिर वे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का दर्शन कर पाए, उनका जलाभिषेक कर पाए। और ये भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से भी डाइवर्जन किया गया है, कोई भी बड़ी गाड़ी इस विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रूट पर नहीं चल सक रही, नहीं चल पा रही है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, वे लगातार बाबा के दरबार में आ रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारे इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए। कोई कंवड़ियों के रूप में आ रहा है, कोई आम श्रद्धालुओं के रूप में आ रहा है, तो कोई जो स्थानीय लोग हैं वे भी आज शिवरात्रि पर दर्शन करने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है, कहाँ से हैं आप? आज शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, इसको लेके कितनी इच्छा थी बाबा का दर्शन की और आज कितना अच्छा लग रहा है आपको?
1: चलिए ठीक है रोशन, आगे भी वहां पर श्रद्धालुओं से बात करिएगा और हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मिल जाएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व, सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: आज है सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालय में भक्तों की भारी भीड़।
1: कावड़ में उमड़ा भारी जनसैलाब, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 4,43,00,000 से भक्तों ने भरा गंगा जल, अकेले हरिद्वार में 63,60,000 रहा आंकड़ा।
13: सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की तैयारी, सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु करा सकेंगे यज्ञ, 13 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजन।
1: सैलानियों की पहली पसंद बन रही मेघालय की राजधानी शिलांग, हरी भरी पहाड़ी, झरने देखने दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी।
13: श्रीनगर में खेलों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया गया स्विमिंग समर कैंप, बच्चों को सिखाए जा रहे हैं वाटर सेफ्टी और तैराकी के बुनियादी गुर।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियों में जुटी सेना, 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल, 7 तोपों से 3-3 फायर कर दी जाती है सलामी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। आज सावन की शिवरात्रि है। इस पावन पर्व पर महाकाल की नगरी उज्जैन शिव में उठी। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। और जब बाबा के भव्य दरबार में भक्तों के लिए खुला तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक हुआ। दूध दही घी शहद और शक्कर से महादेव का पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया। चंदन भस्म पुष्प और रत्नाभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और इसके बाद मंगला आरती में दीपों की रोशनी और घंट घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया।

0: तो ये महाकाल की भस्म आरती आपने देखी। अब आपको सीधा दुधेश्वरनाथ मंदिर लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, तस्वीरें दिखाइएगा कि वहां पर व्यवस्था आके भक्तों के लिए कैसी की गई है, और लगभग कितना इंतजार भक्तों को करना पड़ रहा है भोलेनाथ के दर्शन के लिए।
1: एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर जो है, हल्की बारिश शुरू हो गई है, और सनातन में जैसा कि हम मानते हैं कि जब इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और जब भी कोई शुभ कार्य होता है वर्षा होती है। आज जाहिर सी बात है सावन का कह ले शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, भोलेनाथ का प्रिय महीना, और आज सबसे बड़ा दिन, ऐसे में बारिश होना इससे शुभ क्या हो सकता है। शिवालय में आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें हैं भोले के भक्तों की, दूर दूर से आए हैं, कावड़ लेकर के यहां पहुंचे हैं, हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे हैं शिवालय में अर्पित करने के लिए। और दूधेश्वर महादेव मंदिर की महिमा ही अपरंपार है। आप देख सकते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, तमाम पुलिस के यहां पर आला अधिकारी भी मौजूद है ताकि यहां भोले के भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही मंदिर प्रशासन की तरफ से भी अलग से पुरुष और महिलाओं की टीम यहां पर बनाई गई है, जिनको आप सफेद टी शर्ट में देख रही होंगी, ये मंदिर प्रशासन की तरफ से है। किसी भी तरह की कोई अनियमितता या फिर दिक्कत परेशानी भोले के भक्तों को ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। आइए अब आपको बताते हैं, महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्योंकि यहां पर आज का दिन विशेष है। महाराज जी, सावन और उस पर शिवरात्रि, इससे शुभ दिन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज दुधेश्वर महादेव मंदिर में लगातार जल तो चढ़ाया ही जा रहा है, शाम की तैयारी क्या?
2: निश्चित तौर पे भगवान शंकर का आज यह विशेष दिन हम सभी के लिए एक उल्लास और उमंग का दिन है, जो सभी श्रद्धा के साथ कांवरिये जलाभिषेक करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। और ये सब परम पूज्य श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी की पावन अध्यक्षता में सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं।
1: आज शाम की विशेष क्या तैयारी?
2: आज विशेष तैयारी है, बाबा का श्रृंगार होगा जिसमें 56 भोग होगा, और 56 भोग के साथ बाबा महाकाल के रूप में एक श्रृंगार होगा, और बहुत भव्य श्रृंगार होगा बाबा का, और उस श्रृंगार का सभी के दर्शन मिलेंगे और सभी भक्तों का कल्याण होगा।
1: श्रृंगार के बाद आप बता रहे थे कि विशेष यहाँ पर एक भव्य आरती भी होती है, लगभग कितने बजे के आसपास हम देख पाएंगे?
2: हम जो है श्रृंगार हमारा 7 बजे से प्रारंभ होगा, 7:30 बजे तक श्रृंगार होगा, 7:30 बजे से 8 बजे तक भव्य भगवान की आरती होगी, उस आरती का दर्शन समस्त भक्तों को होगा, ये बाबा की कृपा रहेगी।
1: मात्र हाथ में एक लोटा जल और बेलपत्र, इतना चढ़ा देते हैं भोले प्रसन्न हो जाते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि महादेव को और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए।
2: इसीलिए कहा जाता है उनको, आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरत हरह दीन जन जानी, ऐसे ही अवघड़ दानी जो पल में खुश होने वाले होते हैं, एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, और उनको एक कोई शब्द भी ऐसा कह दो तो उन्हें उस शब्द से भी प्रसन्नता हो जाती, उससे भी आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही भगवान शंकर हैं, जिनकी पूजा करने के लिए, जिनकी आराधना करने के लिए दूर दूर से हजारों कांवड़िए यहाँ पर आए हैं, आसपास से लोग भी आए हैं, जरा उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि आज की बात है, आज विशेष दिन है, आइए आपको एक बार तस्वीरें हम फिर से दिखा देते हैं। देखिये किस तरह से हाथ में ये लोटा लिए हुए है, और विशेष कर देखिये उनको जो चढ़ता है धतूरा, भांग और साथ ही साथ बेलपत्र। आप कहाँ से आए? आप हर साल आते हैं?
3: सर आते हैं।
1: आप लोग कहाँ से हैं?
4: जी मालीवाड़ा चौक से, गाजियाबाद से ही हूँ मैं, हर साल आती हूँ।
1: कितनी श्रद्धा भोलेनाथ?
4: बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, अपने मन से भी ज्यादा।
1: कुछ विशेष मनोकामना जिसके लिए आप आई हैं, या फिर बस भोले से मिलना है?
4: भोले से मिलना भी है, और सब कृपा उन्हीं की है, मनोकामना तो कुछ कह ही नहीं, सब कुछ दिया है उन्होंने बिना भोले ही, और हर समय हर मुसीबत में वही हमारे साथ खड़े रहते हैं। बाबा के सिवा कोई नहीं है हमारा,
1: बाबा के सिवा कोई नहीं है। एक बार जयकारा हो जाए भोलेनाथ का।
4: हर हर महादेव,
1: हर हर महादेव। कहाँ से आई
5: हैं? मैं कालकागढ़ी चौक से।
1: और आप वहाँ हरिद्वार से आ रहे हैं?
6: हरिद्वार से आ रहा
1: हूँ। कितने लोगों की टीम थी आप?
6: 2 लोग साथ में गए थे हम।
1: कितने सालों से जा रहे हैं?
6: ये मेरी 9वीं कांवड़ है।
1: 9वीं कांवड़ है। कुछ विशेष मन में कामना लेकर जाते हैं?
6: नहीं, बस बाबा की उसमें जाते हैं।
1: सबसे पहली बार जब आप गए थे तो कौन लेकर के गया था और आपको लगा कि आप बस हर साल मुझे जाना?
6: अपने पिताजी के साथ गया था मैं, मेरे पिताजी मेरे को साथ लेके गए थे, तब से पैदल कांवर ला रहा हूँ और ये भी कांवर है, हरिद्वार से पैदल ही कांवर लेके आए हैं, आज भोले को जल चढ़ाना है।
1: रास्ते में कई कठिनाइयां परेशानी क्योंकि नंगे पांव आप लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं?
6: नहीं बिल्कुल नहीं, पांव में छाले भी पड़े, पट्टी भी दोनों पैरों में, लेकिन बस बाबा का आशीर्वाद है, पहुंचना था और पहुंचे टाइम से।
1: आपने मंजिल तक पहुंच गया, भोले को जल चढ़ाना?
6: जी बिल्कुल, ये गंगा जल है हरिद्वार से तो बाबा के ऊपर करना है।
1: क्या बात है, तो आप जितने भी यहाँ कांवड़ से मिलेंगे ना, कांवड़ियों से मिलेंगे, हर किसी की एक अपनी कहानी है। जैसा उन्होंने बताया, उनके पिताजी उनको लेकर के जाया करते थे, तब से उनके मन में ये कामना थी कि वो भी जाएंगे और उसके बाद से जो ये शुरू हुआ इनका कांवड़ लेकर के जाना हरिद्वार, हर साल ये जा रहे हैं, कई सालों से जा चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूर दूर से लोग आए हैं जो कांवड़ लेकर।
0: श्वेता बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। और उसी के बीच गुड न्यूज टुडे पर हम आज शिवरात्रि की रौनक तो आपको दिखा ही रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के शुभ दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन आप कर सकते हैं, सौराष्ट्र के सोमनाथ धाम की शुभ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, त्र्यंबकेश्वर धाम के लाइव दर्शन भी आप कर सकते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के दर्शन पूजन से ही सभी रोग बाधाएं दूर होती हैं, महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ की, दूसरी सोमनाथ की और तीसरी त्र्यंबकेश्वर धाम की। तीनों धामों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज सावन में शिवरात्रि का शुभ दिन, जब पूरा देश भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहा है, बम बम भोले के जयकारों से हर मंदिर हर शिवालय जो है वो गूंज रहे हैं। कांवड़ यात्रा का आज इसी के साथ समापन हुआ, आज भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सभी कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएंगे।
3: तीन धामों के बाद अब तस्वीरें दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की आपको दिखाते हैं। मनीषा, भक्तों से बात करिएगा और बताइएगा कि आखिर कितनी क्या मनोकामना भक्त वहां पर लेकर आए हैं भोलेनाथ के सामने।
1: बिल्कुल, मैं शुरुआत ही जो है डाक कांवड़ियों से करती हूँ क्योंकि ये जो है इनके इनसे बात करना आज के दिन मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि इन्हीं का ही दिन है। ये लंबे सफर के बाद, ढेर सारी कठिनाइयों के बाद जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग कांवड़ लेकर आए हैं, आज आपने भोलेनाथ पे जो है शिवलिंग पर जल अर्पित किया है, कैसा लग रहा है और क्या मनोकामना के साथ आपने यात्रा की?
7: बढ़िया हुई, मैंने मनोकामना मांगी, मनोकामना बढ़िया हो गई हमारी, जल चला दिया भोले को हमने।
1: यही मनोकामना थी परिवार के लिए आपने मांगा?
8: नहीं कुछ नहीं,
7: परिवार की मांगी भोले।
8: हर साल जाते हैं, हर साल।
1: अब घर जाकर क्या करने का है? घर जाके क्या करना है?
8: अब जाके आराम ही करना है, बस आराम करना है, बस
1: महादेव को याद करना
7: है। हाँ, 5 दिन से
8: याद करेंगे अगले साल का बस।
1: आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है मनोकामना के साथ भक्त जो है यहाँ पर पहुँचे, आपने भी जल चढ़ाया।
7: हाँ जी, हाँ जी,
1: तस्वीर आपको यहाँ पर इसी तरीके की नजर आएगी, हर कोई जो है जल चढ़ा के जो है मंदिर से बाहर निकल रहा है और मन में ढेर सारी आस्था जो है वो नजर जरूर आएगी, क्योंकि आज का दिन है, हर कोई जल चढ़ाने आया है क्योंकि सावन शिवरात्रि है और जो बारिश है उसकी भी शुरुआत होगी और हर अच्छे काम पर जो है इसी तरीके की जो है बारिश जरूर होती है और सावन का जब महीना हो, बारिश ना हो तो वो अधूरापन लगता है, तो हर सावन इसी तरीके से देखा जाता है कि बारिश जरूर होती है और लोग जो है, मैं लोग दिखा रही हूँ कि लोग किस तरीके से जो है खुशी से जो है वो जल चढ़ा के बाहर निकल रहे हैं। और पीछे की तस्वीरें भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे जो है लोगों की भीड़ दिख जाएगी कि किस तरीके से डाक कांवड़िया जो है वो लगातार आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और जो है जल अर्पित कर रहे हैं। तो वाकई में आज का दिन जो है इस चीज को और भी ज्यादा खास बनाता है क्योंकि ये जो कांवड़ यात्री है इनके लिए वाकई में आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। ढेर सारी कठिनाइयों के बाद, लंबा सफर होने के बाद, कितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन इनका जो दृढ़ संकल्प था वो मजबूत रहा और उसी ने जो है इनको आगे बढ़ाया और आज चेहरे पर आपको थकान नजर नहीं आएगी, चाहे कितना भी इन्होंने रास्ता जो है लंबा सफर जो है वो तय किया हो, आज सिर्फ जो है खुशी नजर आने वाली है, परिवार से मिलने की खुशी है। अच्छा, मैं ये भी सवाल इन लोगों से एक बार करती हूँ कि आज कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत से जो भक्त है मुझे चढ़ाने के बाद आप लोग परिवार संग नजर आ रहे हैं।
9: हाँ जी, मैम
1: शर्मा रहे आप, ये इनसे बात करती हूँ कि किस तरीके से लग रहा है, आज जल चढ़ा दिया आपने, अब परिवार से मिलने की कितनी खुशी है?
9: बहुत खुशी होगी,
1: मिल लिए परिवार से? ये
9: नहीं जी, अभी मिलेंगे।
1: अच्छा, अभी जाकर मिलोगे?
9: हाँ जी।
1: तो मनोकामना पूरी हुई लगता है या आगे भगवान को देखेंगे?
9: भगवान जरूर करेंगे मनोकामना।
1: हाँ। तो
0: मनीषा देखिए कठिनाई और परिश्रम जितना भी हो लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद सभी अपने कष्ट भूल जाते हैं और यही तो भोलेनाथ का कमाल है। आप देखिए किस तरह से भक्त जो हैं इतने कठिन परिश्रम के बावजूद भी उनके चेहरे पर हंसी है। बने रहिए हमारे साथ और चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से काशी का जहां से रोशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, मनीषा ने बताया देखिए दिल्ली में तो इंद्रदेव जो है बड़े प्रसन्न हो गए और खुद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो क्या काशी में भी बारिश हो रही है?
10: जी देखिए काशी में अभी थोड़ा भगवान भास्कर में सुबह दर्शन हुआ है, लेकिन बात करें बीती रात की तो पूरी रात बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है। थोड़ा सा आज धूप निकली है, सुबह का वक्त है
11: लेकिन उसके बावजूद तो लोगों के उत्साह में, लोगों की आस्था में कहीं भी कभी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हमारी मौजूदगी है। देख सकते हैं कि चारों श्रद्धावान है। आज सावन की शिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक दुर्गाभिषेक करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और हमारे साथ तमाम जो कांवड़िया हैं भी पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं बड़े उत्साह के साथ है ये जल लेकर अलग अलग लोगों से यहाँ बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं और बड़े ही उत्साहित है और पूरे ही हर्षोल्लास के साथ से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं?
12: हम प्रयागराज से।
11: कहाँ से जल लेकर आए हैं और कितना उत्साह है?
12: उत्साह तो बहुत है, जल तो यहीं से भरे हैं, उत्साह बहुत है, दर्शन तो बहुत है।
11: का संयोग है तो मान रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बेहद ही खास है।
12: वो तो बेहद खास है, हम लोग बाबा धाम से दर्शन करके आ रहे हैं सुल्तानगंज जल चढ़ा के, हमने पैदल गए बाबा धाम का जल दर्शन किए, तत्पश्चात उसके बाद हमने बोला काशी विश्वनाथ का भी हमने दर्शन करना है तो हमने काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आज आ गए। जैसा कि आज 13 भी है मान रहे हैं, कल भी 13 भी था, आज भी 13 है, आज भी बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन हो जाए, बहुत भाग्य से हम आए हैं। तो इसके बाद हम विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे।
11: कितने दिनों से यात्रा पे निकले हैं और कितने किलोमीटर की यात्रा?
12: हम लोग तो निकले हैं 5 तारीख से निकले हैं और कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी तो हम लोग तय किए हैं और अप डाउन 2000 किलोमीटर।
11: अभी भी थकान कहीं से दिख नहीं रहा?
12: थकान बिल्कुल भी थकान नहीं,
11: बाबा का आशीर्वाद है।
12: सब बाबा भोलेनाथ से आ रहे हैं आप लोग
13: यहाँ पे? तो आज तीसरी बार आए बाबा भोलेनाथ
11: से। कब से आ रहे?
12: 2001 से। साल में 2 साल बाद हर साल हम लोग जाते हैं, 7 साल से हम लोग बाबा धाम लगातार जा रहे हैं।
11: देख सकते हैं कि नंगे पांव है ये, कुछ ने स्लीपर डाली है तो कुछ पूरी तरह से बड़ा 8 किलोमीटर की जो कठिन यात्रा है वे पैदल करके चले आ रहे हैं। हाथों में गंगा जल है और पूरी तरह से भक्ति से लवरेज है, भक्ति से उत्साहित है और
0: बिल्कुल रोशन है, भक्तों की आस्था बयां करती ये तस्वीरें हैं। एक बार प्रयागराज भी हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। पंकज, क्योंकि समय लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में वहां पर क्या भीड़ भी बढ़ रही है? अभी भी श्रद्धालु उतने ही उत्साह के साथ आ रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए?
14: बिल्कुल, आज सावन की शिवरात्रि है और सावन की शिवरात्रि पर जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में जो भक्त है वो जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं और ये कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तो शुभ संयोग है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर भक्त हैं, हम जानेंगे कि किस तरह से आज सावन की शिवरात्रि और भगवान भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं और आज बजरंगबली का भी दिन है।
15: आज शिवरात्रि का दिन है, भोलेनाथ आज शिवरात्रि जो भी मांगते हैं सभी मनोकामनाएं पूरी होती
14: है। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक लोटा जल से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं? एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कुछ और महिला है क्या कहेंगी? कितना शुभ संयोग है, कितना अच्छा लग रहा है आगे
15: जाते।
14: बिल्कुल, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और आज मंगलवार का भी दिन है जहाँ बजरंगबली का भी आशीर्वाद मिल रहा है
0: जी,
14: सावन में भोलेनाथ के भी दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं।
0: मनकामेश्वर मंदिर में देख रहे हैं किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और हमारे तमाम संवाददाता हमसे बने हुए हैं लगातार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जीएनटी पर हम शिवरात्रि की रौनक आपको दिखा ही रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के शुभ दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं, सौराष्ट्र के सोमनाथ धाम की शुभ तस्वीरें भी आपके सामने हैं और नासिक से त्र्यंबकेश्वर धाम के लाइव दर्शन भी आप कर सकते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव के दर्शन पूजन से ही आपके सभी रोग, आपकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। और ये तीनों धामों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीरें, सोमनाथ धाम से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, और ये तीसरी तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर धाम की, जहां भक्त जो हैं सुबह से दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है, बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं भोलेनाथ, और फूल बेलपत्र से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, काशी, सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर की।

0: सावन की शिवरात्रि का क्या है महत्व? सावन की शिवरात्रि का क्या है पूजा विधान? और सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: आज है सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालय में भक्तों की भारी भीड़। इस साल कांवड़ में उमड़ा भारी जनसैलाब, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 4,43,00,000 से ज्यादा भक्तों ने भरा गंगा जल, अकेले हरिद्वार में 63,60,000 रहा आंकड़ा। सोमनाथ महादेव मंदिर में 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ की तैयारी, सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु करा सकेंगे यज्ञ, 13 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजन। सैलानियों की पहली पसंद बन रही है मेघालय की राजधानी शिलांग, हरी भरी पहाड़ियां, झरने देखने दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में खेलों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया गया स्विमिंग समर कैंप, बच्चों को सिखाए जा रहे हैं वाटर सेफ्टी और तैराकी के बुनियादी गुर। स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियों में जुटी सेना, 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल, 7 तोपों से 3-3 फायर कर दी जाती है सलामी।

आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन की शिवरात्रि की, इसके पूजा विधान की, साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः 10:09 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य चंद्र बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। क्या है शिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है? देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रकाश के लिंग के रूप में शिव जी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। शिवरात्रि पर व्रत उपवास मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन का महीना चूंकि शिव जी का महीना है इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर लोग पवित्र नदियों से जल भर करके लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कांवर में जल भर के लाने से और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पापों का प्रायश्चित होता है। मेष राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, करियर में आपके दबाव बढ़ेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें,
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब सावन की शिवरात्रि पर शिव जी की उपासना कैसे करेंगे? स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिएगा। दोपहर 12 बजे के पहले शिव जी को जल अर्पित करें और इसके बाद धूप, दीप, फल, मिठाई, पुष्प, इन वस्तुओं से पूजन करिए शिव जी का और शिव जी के मंत्रों का जप करिए। शिवरात्रि की रात में शिव मंत्रों का जप करिए, इसके अलावा रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर चार पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजा करें और हर पहर में शिव जी को जल अवश्य अर्पित करिएगा, उसका महत्व सबसे ज्यादा है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करिए, एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा
और हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय कहिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि पर जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या रात के समय में 11 घी के दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से मनचाहे रोजगार की और नौकरी की प्राप्ति होगी। बेहतर स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए क्या करेंगे? इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। चंदन का इत्र हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम जूं सह माम पाले पाले, ओम जूं सह माम पाले पाले, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और संभव हो तो शिवलिंग से स्पर्श कराकर एक रुद्राक्ष का दाना या एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करिएगा। स्वास्थ्य और आयु में सुधार होगा। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब जान लेते हैं 11 अगस्त मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

एक मोहनदास बाबा नाम के महात्मा थे, ओम जी, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, कलयुग की घटना है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम मोहनदास था। आहा, बड़े अच्छे महात्मा थे। उनका एक चेला था, नाम रामदास था। ध्यान से सुनना, बड़ा प्रिय शिष्य, निरंतर सेवा करता, जो गुरु जी आज्ञा देते वही पालन करता, बिना गुरु की आज्ञा के भोजन भी नहीं करता, इतना आज्ञाकारी। उनकी नियमावली बड़ी कठिन थी मोहनदास जी की। वो भोजन ठाकुर जी को प्रसाद लगा के पाते थे, पर प्रसाद लगाकर ठाकुर जी को भोजन जो पाते थे, तो जो प्रसाद बनता था, उस प्रसाद बनने का नियम था कि कोई प्रसाद बनते हुए ना देख ले। तो झोपड़ी के अंदर चौका चूल्हा होता और झोपड़ी को चारों तरफ से बंद कर देते थे, और रामदास चेला बढ़िया प्रसाद सिद्ध करता, फिर सीधा ठाकुर जी के पास ले जाता, गुरु जी भोग लगाते, फिर पाते, फिर बचा हुआ प्रसाद शीत प्रसादी को चेला पाता, ऐसा नियम था। एक दिन एक घटना घटी। रामदास लकड़ियां लेने थोड़ा दूर चला गया, तो कुछ अंग्रेज, वृंदावन में अंग्रेज घूमते ही रहते, कुछ अंग्रेजों की टोली वहां से निकली, तो जिस झोपड़ी में प्रसाद बन रहा था उससे धुआं निकल रहा था, एकदम गोल गोल झोपड़ी थी, रसोई घर, घास फूस का। अंग्रेजों को लगा कि कुछ अजीब चीज है, बड़ी छोटी है और धुआं निकल रहा है, लगता है कोई आग वाग तो नहीं लग गई। तो एक अंग्रेज ने ऐसा थोड़ा सा घास फूस को हटा के झांका, देखा तो पाया कि अंदर रसोई बन रही है और ठीक ठाक बन रही है, कोई आग बाग नहीं लगी, तो अंग्रेज चले गए। जब अंग्रेज चले गए, इधर रामदास लकड़ी लेकर आया, उसे तो पता नहीं था ऐसा हुआ है। इसके गुरु जी अंदर बैठे हुए ध्यान में बैठे थे, दूसरी झोपड़ी में जहां ठाकुर जी बैठे थे, तुरंत भागे भागे बाहर आए। ए रामदास जी, जी गुरु जी, इधर आओ, अभी कहां गए थे? गुरु जी लकड़ियां लेने गए। अरे आजकल बड़े लापरवाह हो गए, बड़े नालायक हो गए, तरह तरह की बातें तेज तेज आवाज में कहना प्रारंभ कर दी। हमारे ठाकुर जी की रसोई बनते हुए किसी ने देख ली, तुमने देखा? हमने तो नहीं गुरु जी देखा, क्षमा करो, हम देख नहीं पाए। जबान लड़ाते हो, देखा नहीं, लापरवाही करते हो, बड़े आलसी हो गए हो, देर से उठते हो। ऐसा कहते कहते गुरु जी को बड़ा क्रोध आ गया, बड़े क्रोधी थे, भयंकर क्रोधी। इतना क्रोध आया कि पास में पड़ा हुआ एक डंडा था लकड़ी का, उसको उठा करके जोर जोर से पीटना प्रारंभ किया। इतना मारा कि वह रामदास खूब हट्टा कट्टा शरीर का था महाराज, लेकिन बेचारा गिर पड़ा। पर एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि हमें मत मारो, हमारी कोई गलती नहीं है, लकड़ियां लेने गए थे। एक बार भी ना नहीं कहा, बेचारा हाथ जोड़े

0: डंडा फेंक करके अंदर चले गए।
1: थोड़ी देर बाद उसको होश आया, वो उठा, उसने शरीर ठीक किया, स्नान किया। जो रसोई बनी थी उस रसोई को गायों को डाल दिया, फिर से चौका चूल्हा किया, पुनः रसोई बनाने लगा। बनाते बनाते शाम हो गई, थाली परोसी, गुरुजी के पास लेकर गया, गुरुदेव प्रसाद पाओ, कृपा करो। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद भी पाया। तब तक और देर हो गई, इसने सोचा अब शाम हो गई, अब कल प्रसाद पा लेंगे। गुरुजी लेट गए। जब लेट गए तो पहले के जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, दीपक हुआ करते थे, तो दीप जल रहा था झोपड़ी में, वो गुरुजी के चरणों को दबाने लगा, रोज की आदत थी, गुरुजी के चरणों को दबाने लगा। तो दबाते दबाते एक आंसू की बूंद गुरुजी के पैर पर गिरी, अश्रु बूंद। गुरुजी ने कहा, रामदास जी, जी गुरुजी, क्या बात है, तुम रो रहे हो? इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें पीटा, हमने तुम्हें मार लगाई, ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए रो रहे हो? रामदास रोता हुआ कहने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, चरणों को माथे पर रखकर, रामदास ठीक हो? लेटा लेटा बोला, गुरुजी लगता है हमारी जिंदगी का ये अंतिम क्षण आ गया है। हम हैं तो ठीक, पर यदि आप बुरा ना माने, अपराधी तो हम हैं ही हैं। जब तक हमारे प्राण ना निकल जाएं, तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। ये हमारी इच्छा है कि हम आपको देखते हुए अपने प्राणों को त्यागें। गुरु जी डांट के बोले, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलते, कुछ नहीं होना है, चुप रहो, कुछ नहीं होना है। लेटा लेटा बोला, गुरु जी सच कह रहे हैं। गुरु जी सामने खड़े हुए, इसने कहा, गुरु जी मर तो रही है, शरीर तो छूट ही रहा, आपके चरणों का चरणों तक पीने का बड़ा मन है, लेकिन हम उठ नहीं सकते, आप ही कृपा करो कि हमारे पास आ जाओ। तो गुरुजी नजदीक गए, अंगूठा ऊपर किया, एक शिष्य ने जल डाला, इसने चरणों तक पिया, और चरणों तक पीते ही हृदय पर हाथ रख करके बोला, गुरुदेव अब कृपा करो, जल्दी से सामने पहुंच जाओ, हमारी श्वास रुक रही। गुरुजी तुरंत गए, सामने पैरों के पास खड़े हो गए। रामदास तुम भगवान नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। इसने कहा, गुरुजी आप मुस्कुराओ। तो गुरुजी बढ़िया मुस्कुराने लगे, सब चेले कीर्तन करने लगे, गीता पाठ करने लगे, इसकी श्वास तेज चलने लगी। तेज श्वास चलते चलते ये बीच में ही चिल्ला करके बोला, गुरुजी हम केवल आपको देख करके मरना चाहते हैं, किसी दूसरे को और को देख करके नहीं मरना चाहते। किसी दूसरे को? अरे हमारे बगल में तो कोई नहीं, हम अकेले हैं। गुरुजी आप झूठ बोल रहे, आपके दाहिने अंग पर एक बालक खड़ा हुआ है, सांवरा सलोना है, मोर मुकुट पहने हुए है, पीतांबर धारण किए हुए है, बंसी हाथ में लेकर के हमें अपनी तरफ बुला रहा है, तो हमको बुला रहा है। जहां इतना कहा, गुरुजी की भी आंखों में आंसू आ गए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले, रामलाल रामदास तू धन्य है, तुझे लेने के लिए साक्षात ब्रज का राजा ठाकुर आया हुआ, हमारा कन्हैया, हमारा ठाकुर आया, तू धन्य है, धन्य है। अब तक ये दोहा सुना था, गुरु गोविंद दो खड़े में काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। पर यहां पर तो बात ही अलग है, शिष्य को भगवान दिखाई पड़ गए। जब शिष्य को भगवान दिखाई पड़े, गुरु जी ने कहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। तो किसी ने पूछा कि रामदास को इतनी सहज मुक्ति, मृत्यु और भगवत दर्शन क्यों हुए? तो एक संत ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया, बोले शाम को जो घटना हुई ना गुरु की, उस पिटाई में भी गुरु की कृपा थी।

सबसे बड़ा मुक्ति का कारण वो बना। इसलिए मेरे पागलो, गुरु पीठ भी देना वो भी आशीर्वाद समझ। वैसे ऐसा तुम कोई अवगुण करना नहीं कि गुरु पीट है तुम्हें, हाँ ऐसी कोई अपराध नहीं करना कि तुम अब कहो कि बा आज बागेश्वर महाराज जी ने बढ़िया ज्ञान दिया तो कल ही तुम गुरु जी के घर पे चोरी करो, हाँ गुरु जी के घर पे चोरी करो तो फिर गुरु जी तुम्हारी पिटाई कर, तुम्हें पूछा जाए कि चोरी क्यों की, पकड़े गए तो ठीक, ना पकड़े गए तो बढ़िया है, और पकड़े गए तो हम तो गुरु जी के यहाँ तो मार खाने आए। तो वैसे ऐसा अपराध करना नहीं, पर सहज बस ऐसा कुछ हो भी जाए तो आप भगवान की कृपा ही मानना कि ऐसे में भगवान की कृपा है, गुरु की कठोर वचन भी तुम्हारे जीवन को धन्य कर धन्य। कथा के श्रवण से मन की वृथा मिटती है, कथा के श्रवण से सत्संग से जीवन में आनंद आता है, कथा के श्रवण से विचार की शुद्धि होती है, कथा के श्रवण से बुद्धि की शुद्धि होती है, कथा के श्रवण से भुक्ति भी मिलती है, कथा के श्रवण से मुक्ति भी मिलती है, और कथा के श्रवण से भक्ति भी प्राप्त होती है। तो कथा क्यों जरूरी? बोले भैया जीवन को रसमय बनाने के लिए कथा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, कथा क्यों जरूरी है? बोले भैया कथा है तो पुरातन पर है सनातन। अच्छा पुरातन में सनातन क्या? बोले वैसे तो कथा पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई है, राम जी का अवतार बहुत वर्ष पहले हुआ था, भगवान कृष्ण का अवतार भी बहुत पहले वर्ष हुआ था, पर हुआ तब था, पर जो कथा कही गई है वो आज भी सत्य है, वैसी ही घट रही। तो है तो पुरातन पर पुरातन में भी सनातन है, वो आज भी घट रही है, इसलिए आप कोई भी फिल्म बार बार नहीं देख सकते पर कथा तो बार बार सुन सकते, और सुन ही रहे। देखो हम कितनी कथा नहीं कह रहे, जितने कथावाचक हैं सब कह रहे, और सब सुन रहे, आप हमारी भी सुन रहे, कोई मौका लग जाता है दूसरे महापुरुष की भी सुनते, फिर मौका लग गया गांव में भी सुन रहे, फिर मौका लग गया मोबाइल पे भी सुन रहे, फिर मौका लग गया टीवी पर भी सुन रहे। कथा वही है, देखो कितनी बार से कंस मर रहा है पर अभी तक नहीं मरा, कितनी बार तुमने भी कंस मृत्यु मरने की कथा सुन ली पर वो कंस ज्यों का त्यों है। बोले क्यों? बोले बाहर का कंस तो मर गया कथा का, भीतर वाला नहीं मरा। और हमें लगता है आप कथा में बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा आपके अंदर बैठ जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। पर कथा अंदर कैसे बैठेगी? बोले भैया खाली होकर बैठोगे तो ही बैठेगी कथा। जैसे खाली बोतल में भरी हुई बोतल का पानी भरना, तो क्या करोगे? बराबर में रखोगे कि एक नीचे एक ऊपर? खाली बोतल नीचे, भरी बोतल ऊपर, तो भरी हुई बोतल का जल खाली बोतल में चला जाए। बोलो हाँ या ना? अच्छा आप दोनों बराबर में करो या खाली बोतल ऊपर करो भरी बोतल नीचे, तो क्या खाली बोतल में जल भरेगा? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं भरेगा। ऐसे ही आप विकारों से भरे हुए बैठोगे कथा में और हम तुम्हें कथा सुनाए तो तुम्हारे भीतर नहीं भरेगी, पर यदि खाली होकर के बैठोगे कथा में तो हमें लगता एक वाणी ही तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगी, एक वचन ही, प्रवचन नहीं, एक वचन जीवन को धन्य कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ये दूसरी बात हो गई कि कथा में मत बैठो, कथा को हृदय में बैठा रो। तीसरी बात सुनो, कथा में तीसरा फायदा एक और बहुत बढ़िया है। बोले क्या? बोले देखो कथा है दर्पण, पता लगता है कि हम कितने भजनानंदी हैं, कितने नहीं हैं, और हम कितना दिखावा कर रहे हैं और कितनी हकीकत है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जब कथा में बैठते हैं तब ये समझ आ जाता है कि भाई देखो ये जो कथा हो रही है ऐसे ऐसे
प्यारी बात है। तो आदमी जब कह नहीं पाता तो सुन तो लेते हैं। अब किसी को बता तो नहीं सकते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो करें क्या। हाँ हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, आत्मसात करना चाहिए, आज से हम कोशिश करेंगे। तो कथा में जितनी देर बैठोगे कुछ ना कुछ नई नई बात मिलेगी, अच्छी बात मिलेगी, उससे मन के विकार दूर होंगे, विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेगा तो स्वाभाविक है आपका जीवन भी बदलेगा, आपका जन्म भी बदलेगा। कथा से एक चौथा फायदा है, पूछो क्या फायदा है चौथा, पूछो जोर से पूछो। कथा शुद्ध करती है, क्या करती है, हैं? शुद्ध मन को शुद्ध करती है। और एक संत कहते थे जवानी शुद्ध होनी चाहिए, बुढ़ापा सिद्ध होना चाहिए। अरे भाई ये सीटी क्यों बजा रहे हो, सीटी क्यों बजा रहे, ठटरी के बारे बहुत सीटी बजा रहे, अभी हम उल्टा टांग देंगे। हाँ तो ये चौथा फायदा क्या है, बोले भैया कथा शुद्ध करती, क्या करती है, बोलो बोलो बोलो, शुद्ध करती, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। पर जब बुढ़ापा सिद्ध कैसे होगा, जब जवानी शुद्ध होगी तभी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो शुद्ध कैसे हो, बोले विचारों से, बोले विचार कहां शुद्ध होंगे, बोले कथा में। ऐसे समझो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर को नेट में यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है, वायरस आ जाते कि नहीं आ जाते, जब कंप्यूटर में वायरस आ जाते तो स्लो चलने लगता। उसी वक्त क्या करते हैं व्यक्ति, जब वायरस ज्यादा आ जाए स्लो चलने लगे तो एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते, वो क्या करता पूरे वायरस को खत्म कर देता, फिर एकदम स्मूथ कंप्यूटर चलने लगता। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही संसार सागर के कंप्यूटर में ये माइंड हमारा कंप्यूटर जैसा चलता है, सबका, ये सबका माइंड कंप्यूटर जैसा चलता है। जब इसमें वासनाओं के बुरे वायरस आ जाएं तब कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जहां कथा रूपी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया तो ये विचारों की शुद्धि कर देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पांचवी बात सुनो, कथा का पांचवा लाभ ये है कि आप जितनी देर कथा में बैठोगे कम से कम उतनी देर तो पाप से बच जाओगे। हाँ मान लो आप कथा में ना होते तो कहां होते, घर पे होते, या तो मोबाइल पे इंस्टाग्राम चल रहा होता, या रील चल रही होती, या किसी की चुगली चल रही होती, या कुछ थोड़ा अलग टाइप के लोग फिल्म देख रहे होते, या कुछ और बड़े वाले, राम राम राम वो अलग होते, या किसी को गालियां दे रहे होते, या फिर केवल काम की चर्चा कर रहे होते। पर कथा में आ गए तो सब भूल गया, कर्जा लेना है देना है, झंझट है लफड़ा है, उससे मिलना उसका, ये उनको ये गाड़ी वहां रखनी, ये मकान वहां ठीक करना, वहां के काम धाम का क्या हुआ, जब कथा में कुछ भी याद नहीं रहता। बोलो रहता है, नहीं रहता। ये कथा में बढ़िया फायदा है, और ये पाप से बचो हमेशा, पर हमेशा ना बच पाओ तो थोड़ी देर कथा के लिए समय निकाल लिया करो, कम से कम उतनी देर तो बचे ही रहोगे। ये कथा का पांचवा लाभ है कि भाई उतनी देर पाप से बचते। और हमारे एक संत कहते थे सुनो, कोई व्यक्ति भगवान के भजन पूजन में जो समय लगाता ना वो आयु में नहीं स्वीकार होती, घटती नहीं। इसलिए आपने सुना होगा अमुक महात्मा इतने साल जिए, देवरा हवाले बाबा इतने साल जिए, क्यों जिए, बोले एक तो कारण योग था उनके पास, सिद्धि थी, और दूसरा कारण बोले वो सदैव भगवान में लीन रहते थे, और जो भगवान में सदैव लीन रहता है उनकी आयु घटती नहीं है, बढ़ जाती है।
और इसका एक और इसी में फायदा। बोले क्या? बोले हम भगवान को समय देंगे, भगवान की कथा में उनके लिए समय निकालेंगे, तो कभी हम पर मुसीबत आएगी तो भगवान अपने लिए भी समय निकालेंगे। वैसे तो होना यही चाहिए, समस्या आवे तो समस्याओं के पास जाकर, भगवान के पास जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाके कहो भगवान हमारे निकट हैं। तो संत कहते भैया कथा सुनने के अनेक लाभ हैं, जो भी जीव एक घड़ी आधी घड़ी आधी मोपनी आदि तुलसी चर्चा राम की हरि कोट अपराध, एक घड़ी में से आधी घड़ी, आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी यदि भगवान की कथा के लिए समय निकालता है, उस जीव का कल्याण तो होता ही होता है, उसका जीवन तो धन्य होता ही होता है, जन्म भी उसका धन्य हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: जरा सोचिए। समंदर के किनारे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखें और वहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई दें तो नजारा कैसा होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आसमान ने जैसे रंगों की चादर ओढ़ ली हो। मौका था गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का, जहां श्रीलंका ही नहीं दुनिया के कई देशों से आए काइट फ्लायर्स ने अपने हुनर का जलवा दिखाया।
2: आसमान में लहराती पतंगों को तो आपने खूब देखा होगा और इंद्रधनुष की खूबसूरत छटा को भी, पर क्या हो जब पतंगों की दुनिया में इंद्रधनुषी रंग भी शामिल हो जाएं? ये कुछ ऐसा ही नजारा है जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। तस्वीरें हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की। मौका था कोलंबो के गाले फेस ग्रीन में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। इसमें विशाल काय पतंगों के साथ ही अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली छोटी बड़ी पतंगे भी देखने को मिली। यहाँ हर किसी में उत्साह, उमंग और आसमान को छू लेने का जुनून नजर आ रहा था। श्रीलंका में आयोजित ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार करीब 30 देशों के 80 अंतर्राष्ट्रीय काइट फ्लायर्स और 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।
3: This is a beautiful kite festival. I've never seen anything like it. It's such a family friendly festival. And right on the beach here, and the wind is beautiful, the people are beautiful, the weather's all beautiful.
2: Din hi nahi, is event ne raaton ko bhi roshan rakha. Raat mein aasman mein patangon ka shandaar nazara dikha. Andhere aasman mein roshni se jagmagati patangon ne Colombo ke skyline ko ek alag hi andaaz de diya. Samandar ki lehrein, khula aasman और उसमें उड़ती सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। कोलंबो का ये नजारा सिर्फ एक फेस्टिवल की तस्वीर नहीं है बल्कि श्रीलंका की संस्कृति, रचनात्मकता और पर्यटन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश भी है। कोलंबो का ये काइट फेस्टिवल श्रीलंका के पर्यटन अभियान को एक नया रंग देता दिखा। यहाँ पतंगों की डोर ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को भी एक साथ जुड़ा, यानी कोलंबो में पतंगों के बहाने आसमान भी सजा और श्रीलंका ने दुनिया को अपनी खूबसूरती और संस्कृति की एक रंगीन झलक भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
11: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
14: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
15: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
10: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
10: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
17: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था, और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
10: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
19: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
14: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
20: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
21: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
10: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
22: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
10: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
1: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
10: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
5: योग से न सिर्फ तन स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी ऊर्जावान बना रहता है। इन बच्चों को देखिए, अपने फिटनेस के दम पर क्या सुंदर फॉर्मेशन बनाया है, वो भी मिनटों में, कोई चूक नहीं। इनके बीच तालमेल भी गजब का है। योगा स्टूडेंट्स का ये वीडियो देखकर लोग इनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। इनको ये प्लास्टिक की डोरी चाहिए और वो बाइक में फंसी हुई है, सो खूब दिमाग लगाया जा रहा है, कभी इधर से तो कभी उधर से निकालने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन डोरी है कि निकल नहीं रही। पर कौवा भी हार नहीं मान रहा, उसने तब तक कोशिश की जब तक की डोरी निकल नहीं गई। लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं, हमें भी तुरंत हार नहीं माननी चाहिए बल्कि जो चाहिए उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। खेल भी एक्सरसाइज भी, देखिए जरा इन्हें, टास्क मजेदार मिला है। दो अलग अलग घेरे और उनमें ही एक एक पाँव रखना है और फिर एक हाथ गर्दन के पीछे रखनी है और एक हाथ से सामने रखी पेंसिल उठाकर पीछे के चौकोर घेरे में डालनी है। ध्यान रहे पेंसिल बाहर न निकल पाए। प्रतियोगिता दो बच्चों के बीच है और इसे जीतने के लिए दोनों बच्चे जिस तरह से मेंढकों की तरह उछल कूद कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
25: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
14: आज है सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए चुने गए 18 लोग, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी इंटरव्यू। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी बारिश, चमोली में तेज बारिश के बाद रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन भी राहत बचाव में जुटा। सैलानियों की पहली पसंद बन रही मेघालय की राजधानी शिलांग, हरी भरी पहाड़ी, झरने, देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में खेलों के प्रोत्साहन के लिए आयोजन किया गया स्विमिंग समर कैंप, बच्चों को सिखाए जा रहे हैं वाटर सेफ्टी और तैराकी के बुनियादी को। स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियों में जुटी सेना, 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल, 7 तोपों से 3-3 फायर कर दी जाती है सलामी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर,
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
14: स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है। हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार

ध्यान से सुनना है, हर रोग का है समाधान, जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूँ। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सुरनकंद, यह है सुरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट,
सिर्फ

0: शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज है सावन शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए चुने गए 18 लोग, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी इंटरव्यू। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी बारिश, चमोला में तेज बारिश के बाद रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन भी राहत बचाव में जुटा। सैलानियों की पहली पसंद बन रहा मेघालय की राजधानी शिलोंग, हरी भरी पहाड़ियां, झरने देखने दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में खेलों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया गया स्विमिंग समर कैंप, बच्चों को सिखाए जा रहे हैं वाटर सेफ्टी और तैराकी के बुनियादी गुण। स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियों में जुटी सेना, 21 तोपों की सलामी की वजह से रिहर्सल।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारी इस खास पेशकश में पूरा देश बम बम बोले के जयकारों से क्योंकि गूंज रहा है, तो इसी की करेंगे शुरुआत। मंदिरों में भक्तों की कतारें हैं, हाथों में गंगा जल और होठों पर हर हर महादेव का जाप। सावन की शिवरात्रि पर आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर कोई महादेव की भक्ति के रस में सराबोर है। लेकिन इस बार सावन की ये शिवरात्रि सिर्फ एक पर्व पर नहीं है, इस बार महादेव की इस पावन रात्रि के ठीक पीछे छिपा है एक ऐसा अलौकिक, अद्भुत और दुर्लभ संयोग जो कि सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। तो आज जहां देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे बड़ा दिन है, तो वहीं ठीक कल यानी कि शिवरात्रि के ढलते ही आसमान में एक बड़ा खगोलीय और आध्यात्मिक घटनाक्रम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल यानी 12 अगस्त को लगने जा रहा है इस साल का सबसे चर्चित, सबसे अद्भुत और 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण। एक तरफ सावन का पवित्र महीना और शिवरात्रि की पावन ऊर्जा, तो दूसरी तरफ ठीक अगले ही दिन ब्रह्मांड में सूर्य का ग्रहण। सनातन परंपरा में सूर्य को प्राण और शिव को महाकाल माना गया है। ऐसे में जब काल के देव की रात्रि के ठीक बाद सूर्य पर ग्रहण की छाया पड़े, तो ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं रह जाती, ये बन जाता है एक महासंयोग। भोलेनाथ की भक्ति, सावन की पवित्रता के बीच आसमान में बनने जा रहा है दुर्लभ खगोलीय संयोग। इस बार सावन सिर्फ आस्था का महीना नहीं है, बल्कि खगोलीय और ज्योतिष भी है, क्योंकि दोनों ही नजरियों से बेहद खास ये महीना बन गया है। एक ओर करोड़ों शिव भक्त व्रत, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के जरिए देवों के देव महादेव की आराधना में लीन है, तो दूसरी ओर इसी पावन महीने में एक खगोलीय घटना का साक्षी बनने जा रहा है श्रावण अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो करीब 18 साल बाद सावन में फिर से वही दुर्लभ संयोग बन रहा है।

0: महादेव का जय घोष, मंदिरों में गूंजती शंख ध्वनि और भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ा भक्ति का समंदर। सावन का महीना यानी भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और उत्तम मौका। मान्यता है कि इस पावन महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव का जलाभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस बार का सावन सिर्फ भक्ति और साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गवाह बनने जा रहा है एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय संयोग का। जी हाँ, इस बार सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि सिर्फ चंद घंटों बाद इस पावन माह में साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, वो भी पूरे 18 साल बाद। जी हाँ, पूरे 18 साल के बाद ये मौका आया है जब भगवान शिव के प्रिय माह सावन में सूर्य ग्रहण लग रहा हो। एक तरफ जहाँ सावन की शिव भक्ति का उल्लास है, तो दूसरी तरफ आकाश में घटने जा रही ये खगोलीय घटना इस महीने को और भी महत्वपूर्ण बना रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन में सूर्य ग्रहण का पड़ना अपने आप में एक अनोखा और बड़ा आध्यात्मिक संकेत माना जा रहा है।
1: देखिए, जहाँ तक सारे सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। जब कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है, तो यदि प्रभाव वहाँ पड़ रहा है तो यहाँ भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड, जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा।
0: सावन का ये पवित्र महीना भक्ति और संयम का संदेश लेकर आता है। एक तरफ जहां सूर्य ग्रहण प्रकृति के चक्र और समय की गति को दर्शाता है, वहीं भोलेनाथ की भक्ति मनुष्य को हर परिस्थिति में धैर्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इस सावन नियमों का पालन करते हुए करिए महादेव की आराधना और इस अद्भुत संयोग को अपनी साधना से बनाइए और भी फलदायी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: तो एक तरफ जहां कल साल 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन आज शिव भक्तों की भीड़ शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रही है। आपको गाजियाबाद उदेश्वरनाथ महाराज की तस्वीरें अब दिखाते हैं।
3: इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर की है। सबसे पहले आपको इस मंदिर की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ दूर दूर से करोड़ों शिव भक्त इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही ये तांता लगातार लगा हुआ है। सावन का महीना यानी कि भोले का प्रिय महीना, और जहां पर हजारों हजार की तादाद में कांवड़िए जो है गंगा जल भरकर हरिद्वार से यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। शिव भक्ति का ये वो चरम है जब आज देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आस्था के दरबार में पहुंचे हैं। आज गाजियाबाद का ये दुधेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से शिवमय हो गया है। घंटियों की आवाज, बोलबम के जयकारे, गंगा जल से लेकर जल कहाँ भरा?
4: हरिद्वार।
3: हरिद्वार से जल भरकर आ रहे हो, तो एक कांवड़िया यहाँ पे, हालांकि हजारों कांवड़िए हैं, ये देखिए पांव में छाले इनके पड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज शिवालय में आकर जल चढ़ाना है, मनोकामना पूरी होनी है। कितनी खुशी हो रही है आज
4: बता नहीं सकते आपको।
3: सारी परेशानी भूल गए
4: जी।
3: यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से ही भक्तों का इस तरह से तांता लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में शिव भक्त इसी तरह से शिवालय में सुबह से ही आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, जब वो पहुंच पाएंगे उस शिवलिंग तक जहां उन्हें पवित्र गंगा जल अर्पित करना है।
2: तो एक तरफ शिवभक्त महादेव की साधना जप तप में लीन है तो दूसरी तरफ सावन महीने में पड़ रहे सूर्य ग्रहण वैश्विक प्राकृतिक और ज्योतिषीय हलचलों के बड़े संकेत दे रहा है। दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, किस दिन और कब से कब तक लगेगा सूर्य ग्रहण, आइए इस सूर्य ग्रहण और उसके असर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
5: आसमान में अचानक छाएगा अंधेरा, दिन के उजाले में टिमटिमाते नजर आएंगे तारे और दुनिया देखेगी प्रकृति का सबसे दुर्लभ, सबसे रहस्यमय और सबसे अद्भुत नजारा। जी हाँ, महज चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद दिखेगी साल 2026 की सबसे हैरान कर देने वाली खगोलीय घटना। 12 अगस्त यानी कुछ घंटों बाद दिखाई देगा 2026 का दूसरा और अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय विज्ञान दोनों ही नजरियों से ये सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। इस तरह जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर होगा वहां दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। साथ ही श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन पड़ने के कारण इस ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बढ़ जाता है।
1: देखिए जातक खारे सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान की तैयारी करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा।
5: खगोलीय गणना के मुताबिक 12 अगस्त को लगने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वहीं यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तरी अमरीका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा।
6: वो रहेगा ग्रीनलैंड में, आइसलैंड, पुर्तगाल, पश्चिमी रूस, स्पेन, अमेरिका, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब आप कहेंगे जब इसका प्रभाव रहेगा तो हमारे भारत देश में क्यों बार बार दिखाया जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो लग रहा है ग्रहण वो कर्क राशि में लग रहा है, कर्क राशि के साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है।
5: ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ये ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात के समय होगा, इसलिए भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा। भारतीय समय के मुताबिक 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण रात 9:04 से लेकर देर रात 1:27 तक लगेगा और इस दौरान रात 11:17 पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा।
6: 12 अगस्त दिन बुधवार को जो ग्रहण लग रहा है वो सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण हमारे देश में नहीं लगेगा क्योंकि उस समय रात्रि काल होगा और ग्रहण जो लगने का समय है रात्रि को 9:04 पर लगेगा और रात को 1:27 पर समाप्त होने का समय है।
5: भले ही ये
4: ये ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। प्रकृति के साथ सभी राशि के लोगों पर ये अपना असर छोड़ सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं, मौसम में बदलाव और वैश्विक राजनीति में उथल पुथल की संभावनाएं बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है और मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं है।
1: देखिए, ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि यदि जो है ग्रहण जो है आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में दिखाई ना दे, तो उसका ना तो सूतक माना जाता है, ना उसका जो है कोई प्रभाव मंदिर इत्यादि के ऊपर पड़ता है, ना किसी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं जिनके ऊपर मानते हैं कि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4: तो दिल थाम कर बैठिए और सिर्फ इंतजार कीजिए उस पल का जब सावन के पावन माह के बीच आसमान में रचेगा ये अद्भुत खगोलीय इतिहास। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील खगोलीय घटना माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन, मन और वैश्विक व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ता है। सूर्य को आत्मा, पिता, अधिकार, मान सम्मान और साथ ही स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। माना जाता है कि ग्रहण काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाधित होती है, जिससे ये समय भौतिक कार्यों के लिए वर्जित लेकिन आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार क्या है ग्रहण का महत्व और खासतौर से सूर्य ग्रहण क्यों इतना महत्वपूर्ण है।
4: होने वाली है अद्भुत घटना, लगने वाला है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। सूर्य सारी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का जितना असर दूसरे ग्रहों पर होता है उतना ही इसका प्रभाव धरती और मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है तो किसी के लिए ये आफत का सबब बन जाता है। दरअसल सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि इसका अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में वर्णित कई महत्वपूर्ण और युगांतकारी परिवर्तन लाने वाली घटनाएं सूर्य ग्रहण के दिन ही घटित हुई थी। पुराणों के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। इसी तरह रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था उस दिन सूर्य ग्रहण था। इसी तरह महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे थे उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। तो वहीं महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। इसी तरह कृष्ण की नगरी द्वारका जिस दिन डूबी थी उस रोज भी सूर्य ग्रहण था। यानी जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना हुई तो सूर्य ग्रहण से उसका कनेक्शन रहा है। लेकिन विज्ञान की नजर में ये एक खगोलीय घटना है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र इसे अलग नजरिए से देखता है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह माना जाता है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर कुंडली पर इसका प्रभाव भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: धर्म और ज्योतिष से परे अगर विज्ञान की नजर से देखें तो सूर्य ग्रहण की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक अपने अपने टेलीस्कोप और तमाम उपकरणों के साथ सूरज से जुड़े कई रहस्य खोजने में जुट जाते हैं। सुपर पावरफुल कैमरा जिससे सूरज की अनगिनत तस्वीरें खींची जाती हैं, फिर इन तस्वीरों का महीनों तक, कई बार सालों तक विश्लेषण होता है और इस स्टडी से निकल कर आते हैं अंतरिक्ष और खास तौर पर सूरज से जुड़े कई रहस्य।

0: अंतरिक्ष कौतूहल और रहस्य का वो खजाना है जिसे पूरी तरह से जान पाना आज तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सका। धरती अगर इंसान का जीवन है तो चंद्रमा और सूर्य उसका परम सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के बंधन से बंधी है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना चांद की नियति है। दिन और रात के चक्के पर घूमता जीवन यूं तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जब धरती और सूरज की रोशनी के बीच चांद की छाया आ जाती है तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां यह छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूरज का एक हिस्सा छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन जब सूर्य कुछ देर के लिए पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छिप जाता है तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। भले ही अंतरिक्ष में सूरज, धरती और चांद के इस अद्भुत संयोग के ज्योतिष या धार्मिक महत्व को आप न मानते हो, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण ही वो समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेक विलक्षण घटनाएं घटती हैं, जिनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यों की पहेली सुलझाने में मदद मिलती है। 1968 में लॉकयर नाम के वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के मौके पर की गई खोज के सहारे ही सूरज की सतह पर हीलियम गैस की मौजूदगी का पता लगाया था। प्रकाश कणों की गति पर ग्रेविटी के प्रभाव के बारे में आइंस्टीन का नियम भी सूर्य ग्रहण के मौके पर ही सही साबित हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान की गणना के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट का ही हो सकता है, लेकिन इन गिनती के मिनटों में ही दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों को कई काम करने पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीरों और जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण कई महीनों तक चलता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सूर्य और उसकी किरणों के प्रभाव को सही तरीके से समझ लिया जाए तो हैरतअंगेज परिणाम लाए जा सकते हैं। यही वजह है कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को भले ही धर्म और ज्योतिष विज्ञान अपने अपने नजरिए से देख रहे हों, लेकिन दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अंतरिक्ष के कुछ और राज समझने का एक सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इस खास पेशकश में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: देश और दुनिया में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं जिनके पीछे कोई ना कोई धार्मिक मान्यता या कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर सहारनपुर में है, जहां भगवान भोलेनाथ की मौजूदगी के कई दावे किए जाते हैं। लोगों का मानना है कि श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में लगातार 40 दिनों तक अभिषेक करने से मनोकामना पूरी होती है। मंदिर से जुड़ी देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
8: सावन के पावन महीने में धरती का कण कण शिव भक्ति में सराबोर है। बम बम भोले के जयकारों के साथ सुबह से ही मंदिरों में घंटियों की मधुर धुन सुनाई देने लगती है। सावन और उसमें भी खासकर शिवरात्रि के दौरान सहारनपुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर का नजारा ही कुछ अलग होता है। हर रोज भोले बाबा के भक्तों से ये पूरा परिसर शिवमय हो जाता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िये यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भूतेश्वर महादेव मंदिर सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में भोलेनाथ के भक्त यहाँ स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भूतेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं।
9: साधु संन्यासों का उनकी तपोभूमि रही है, जिससे कि स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग भी अष्टकालीन शिवलिंग है, ये शहर के राजा हैं। मतलब अपने आप में शहर में सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा मान्यता, सबसे ज्यादा करने के लिए शहर में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं।
8: भगवान शिव के इस मंदिर की संरचना मराठा काल की स्थापत्य कला से जुड़ी बताई जाती है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित स्वयंभू और अष्टकोण शिवलिंग भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। भूतेश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें भक्त आज भी आस्था और चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुराने समय में यहाँ रात के वक्त भगवान शिव का श्रृंगार अपने आप हो जाता था और घंटे घड़ियाल बजने की आवाज सुनाई देती थी। यहाँ कई बार भक्तों को कुछ अलग ही एहसास होता है, जिसे वे भगवान शिव की मौजूदगी से जोड़कर देखते हैं।
9: समय पर भगवान अपनी उपस्थिति का एक अंदेशा हमें सबको करा देते हैं कि एक हमेशा ज्ञान दे देते हैं कि भाई मैं हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिससे भी जब भी कोई मनोकामना अपनी लेकर आता है, कोई भी एक सच्चे दिल से जो अपनी यहाँ पे प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।
8: भक्तों का अटूट विश्वास है कि लगातार 40 दिनों तक जलाभिषेक के साथ महादेव के सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी गहरी आस्था के चलते प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: आज है सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग भी, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में लगी भक्तों की भारी भीड़। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए चुने गए 18 लोग, 3 सदस्यों की कमेटी दे 2 दिन तक करेगी इंटरव्यू। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी बारिश, चमोली में तेज बारिश के बाद रेस्क्यू में जुटी NDRF की टीमें, प्रशासन भी राहत बचाव कार्य में जुटा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में दिखा देशभक्ति का रंग, पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाइक पर निकाली तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस से पहले तैयारियों में जुटी सेना, 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल, 7 तोपों से 3-3 फायर कर दी जाती है सलामी। सैलानियों की पहली पसंद बन रही मेघालय की राजधानी शिलांग, हरी भरी पहाड़ियां, झरने देखने दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी।

0: में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा।
0: और चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं रंगों की जो सुबह से आपको दिखा रहे हैं। आज सावन की शिवरात्रि का पर्व है, तो देश भर में शिवरात्रि का महापर्व उत्साह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर शिवालयों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। सावन में सोमवार के साथ ही शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन करने के साथ भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत मंगलकारी होता है।
1: जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, गाजियाबाद, दिल्ली, अयोध्या, मुंबई, मेरठ और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़िए लंबी यात्रा पूरी कर अपने आराध्य महादेव के दरबार में पहुंचे। पवित्र जल से भगवान शिव का महाअभिषेक उन्होंने किया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। कहीं गंगा जल से जलाभिषेक हो रहा है, तो कहीं दूध, दही, शहद और बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। महादेव में शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण की ये तस्वीरें देशभर से सामने आ रही हैं।
0: तो चलिए देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग शिवालयों की ये तस्वीरें सुबह से ही लगातार सामने आ रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ ये सिलसिला, अभी देखिए 11 बजे 12 बजे का वक्त हो चला है और अभी भी शिवालयों में ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, अपने भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ और पूरे उत्साह के साथ भक्तगण कतारबद्ध तरीकों से मंदिर में पहुँचते हैं और अपने आराध्य को इस तरह से प्रसन्न करते हैं।
1: तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देश भर से देख रहे हैं। दिल्ली के गौरी मंदिर की तस्वीर, अयोध्या, मुंबई, हर तरफ भक्तिमय माहौल है। सावन की जो शुरुआत हुई उसी के साथ श्रद्धा की अपरंपार तस्वीरें सामने आती रही हैं। और आज क्योंकि शिवरात्रि का मौका है, तो हर कोई पहुंच रहा है भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए और दुग्ध अभिषेक के लिए। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, सिर्फ बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है।
0: देखिए अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान भोलेनाथ को कोई जल अर्पित कर रहा है, कोई भांग, कोई धतूरा, तो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए इसी जद्दोजहद में हर श्रद्धालु। और देखिए भगवान शिव का ये महीना है, तो देश भर के शिवालयों से तस्वीरें तो सामने आएंगी ही। आस्था का सैलाब हर तरफ आपको नजर आएगा। गंगा घाट से लेकर शिवालयों तक हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं।
1: भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग में भी श्रद्धा भक्ति का ऐसा ही उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। सुबह से ही बाबा के इन धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ धाम हो या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, तमाम ज्योतिर्लिंग में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई।
0: और देखिए झारखंड के देवघर में तो आस्था का एक भव्य नजारा देखने के लिए मिल रहा है। लाखों कांवड़िए महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंचे। बोल बम के जयकारों के बीच भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की।

0: तो चलिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिदम जैन और श्वेता झा। देश के अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हमारे खास मेहमान संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्वेता आपके पास आते हुए, श्वेता सुबह से ही आप तस्वीरें तो लगातार हमें दिखा ही रही है, पूरा भक्तिमय माहौल वहां पर हो रखा है, अभी कैसा अद्भुत नजारा आप देख पा रही है? क्या श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है समय के साथ?
1: जयकारा सुनवा देते हैं, का जयकारा हो जाए।
2: जयकारा वीर बजेंगे, बोल शंकर भगवान की जय।
1: बिल्कुल, तो यहाँ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दूधेश्वर महादेव की, और ये देखिए किस तरह से कांवड़िए जो है वो अब पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य तक, और इस तरह से दंडवत करते हुए मंदिर तक ये पहुंचे हैं। तो इसी तरह के आपको एक से एक देखिए, जो डाक बम है वो अलग है, वो दौड़ते हुए अंदर की तरफ जा चुके हैं, और बाकी कांवड़िए देखिए ये भी आए हुए हैं हरिद्वार से। आप कहाँ से आए हुए हैं?
3: हरिद्वार से।
1: आप लोग ग्रुप में गए हुए थे?
3: नहीं, अकेले गए।
1: कितनी श्रद्धा भोलेनाथ सब होने की। देखिए आज का दिन जो है बेहद पावन है, और आज के दिन आपको बता दें देश के जितने भी मंदिरों में, शिवालयों में अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखेगी। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो है प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर। तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूं मंदिर प्रांगण की। देखिए किस तरह से लगातार यहां पर लाइट से सजावट की गई है, फूलों से सजावट यहां पर की गई है, और जैसे जैसे शाम होगी तस्वीर और खूबसूरत आपको नजर आने लगेगी। भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर रात्रि से ही उमड़ पड़ा है, और दूर दूर से चूंकि श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हैं गंगा जल अर्पित करने के लिए भोलेनाथ को। आज चूंकि सावन की शिवरात्रि है, अपने आप में सावन का महीना, जैसा कि हम जानते हैं भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है, और उसकी शिवरात्रि यानी कि शिव को समझने का भी आज दिन होता है। और शिव को समझना है तो आपको पार्वती को भी समझना होगा, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे हैं। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठिन तप किया, लेकिन ये सिर्फ पति को पाने के लिए तप नहीं था, ये समर्पण थी, धैर्य, संकल्प और उस विश्वास का प्रतीक है कि जिसे मन से आपने आराध्य माना है उसके लिए रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो पीछे हटना नहीं है। तो शिव पार्वती का संबंध हमें खूबसूरत आज के दिन मजबूत एक खूबसूरत संदेश भी देता है कि रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं चलता, बल्कि सम्मान से, धैर्य से, एक दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करने की क्षमता इसमें चाहिए। शिव कैलाश के योगी हैं तो पार्वती हिमालय की पुत्री, दोनों के स्वभाव अलग हैं लेकिन दोनों साथ हैं, और यही तो जीवन है, दो अलग व्यक्तित्व लेकिन एक साथ। इसलिए शिव पार्वती को सिर्फ दंपत्ति के रूप में हम नहीं देखते, बल्कि उदाहरण है, ये प्रतीक है चेतना और शक्ति के। और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मन में शिव और पार्वती के लिए वही भाव लिए हुए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लगातार कतारबद्ध दूधेश्वर महादेव मंदिर में आ रहे हैं। जुबान पर बस एक ही शब्द है, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। हर उम्र के लोग आपको, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग आपको मिल जाएंगे अपनी पूरी श्रद्धा लिए। मैं कहाँ से
4: आया? गाजियाबाद सिद्धार्थ विहार से।
1: हर साल आप?
4: जी जी हर साल आते हैं।
1: इतनी श्रद्धा?
4: बहुत श्रद्धा, श्रद्धा की कोई गिनती नहीं है, अनंत श्रद्धा।
1: जयकारो
2: बस शंकर भगवान की।
0: चलिए श्वेता, लौटती हूँ आपके पास, बहुत ही सुंदर तस्वीरें, दोबारा लौटती हूँ आपके पास। मनीषा के पास जाना चाहूंगी। मनीषा आप भी दिखाइए जरा किस तरह का अद्भुत नजारा आपके पीछे नजर आ रहा है।
5: आज कांवड़ियों का दिन है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको डाक कांवड़ जो है, कांवड़िए जो है वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से आज इनमें वो जोश नजर आने वाला। हालांकि जोश उनका तब से ही था जब इनकी ये यात्रा जो है वो शुरू हुई, लेकिन आज महादेव के दर्शन करने के बाद और साथ ही साथ उन जलाभिषेक करने के बाद जो है इनको तसल्ली मिली है, इनको खुशी मिली है, इनका जो संकल्प था वो पूरा हुआ है। तो वो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से इनका जो जोश है आज वो एकदम ही ज्यादा आपको नजर आने वाला है। लेकिन मैं मंदिर की भी तस्वीर तस्वीरें दिखा देती हूँ कि मंदिर के अंदर का नजारा आपको किस तरीके से नजर आने वाला है शगुफ्ता। हालांकि आज उस तरीके की भीड़ नजर नहीं आएगी जिस तरीके से सोमवार के दिन देखी जाती है, लेकिन सावन शिवरात्रि है तो बाहर मंदिर में के बाहर जो है लाइने नजर नहीं आएगी, लेकिन मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि भक्तों का जो आना का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रसन्न करने की उनको जो तैयारी है वो जो है करते हुए भक्त जो है वो नजर आ जाएंगे, और वाकई में ये बेहद ही चेहरे पे खुशी भी देता है और मन को सुकून देता है जब आप महादेव के निकट होते हो। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको हर एक भक्त जो है पूजा अर्चना करते हुए जो है वो नजर आ जाएगा। हाथों में आप देख सकते हैं कि आपको जल का लोटा, दूध का लोटा जो है, बेलपत्र, फूल आदि जो है, तमाम चीजें जो है आपको वो नजर आ जाएगी। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है भक्तों के मन में जो आस्था है महादेव के प्रति वो नजर आने वाली है। एक तरफ डाक कावड़ी मैं आपको दिखाई रही हूँ और दूसरी तरफ ये आस्था आप देख सकते हैं कि रेनकोट पहनकर भी जो भक्त है वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें मैं बोल सकती हूँ कि नजर आ रही, क्योंकि सावन का महीना है और बारिश ना हो ही नहीं सकता, लेकिन उस बारिश के बावजूद अगर इस तरीके की आस्था लोगों में नजर आती है कि चाहे कितना भी बारिश हो रहा है, भीग कर भी वो यहाँ पहुंच रहे, तो तसल्ली मन को मिलती है। आपसे ही मैं बात करती हूँ, रेनकोट पहनकर आए हो लेकिन आए जरूर हो आप,
6: बहुत अच्छा लग रहा है,
5: आपका चेहरा बता रहा है कि आपके मन को बहुत सुकून मिला है।
6: यस यस, क्योंकि विश्वास इसी पर है।
5: कहाँ से आए हो आप?
6: दिल्ली से ही।
5: दूर, ज्यादा दूर से तो नहीं आए, पास से आए हो। चलो आप, मैं चाहूंगी आप प्रार्थना करो कि क्या आप उसमें लीन नजर आ रहे हो, लेकिन पीछे की तस्वीरें दिखाती हूँ आपको, मुस्कुराते हुए चेहरे जो है शगुफ्ता नजर आ जाएंगे और हर कोई जो है यहाँ पर इसी तरीके की तपस्या करते हुए आपको नजर आ जाएगा। कैसा लग रहा है, मन को कितनी शांति मिली आज?
7: हाँ, बढ़िया बढ़िया लगा, बढ़िया बढ़िया बोले शंकर कृपया से।
5: जल चढ़ा दिया?
7: हाँ चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया। सुबह का आया हूँ मैं, मेरे को 9 बजे का।
5: सुबह से आप आए?
7: हाँ, सुबह 9 बजे का।
5: यहाँ पे सेवा कर रहे हैं?
0: चलिए ठीक है, मनीषा आपके पास लौटी है और भी भक्तों से बात करिएगा। रिदम के पास चलते हैं, रिदम वहाँ पर कैसा मौसम है, क्योंकि मनीषा बता रही है कि यहाँ पर थोड़ा रिमझिम मौसम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और भोलेनाथ पर जल अर्पित कर रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाएगा रिदम जयपुर।
8: बिल्कुल, जयपुर में अभी जयपुरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि इंद्रदेव भी शिवरात्रि का जो दिन है उसमें खुद आए और भगवान शिव का जलाभिषेक करें, पर अभी जो मौसम है वो कुछ अलग कह रहा है। हालांकि आसमान में धूप है, बाहर बहुत ज़्यादा उमस है, पर फिर भी जो भक्तों की आस्था है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। अभी आरती का जो समय है वो चल रहा है, सभी भक्त जो है वो भगवान शिव की आरती कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ ही समय में उनके भोग का समय हो जाएगा। और सावन की जो शिवरात्रि है इसमें भक्तों का जो तांता है वो इस कदर लगा हुआ है कि जगह बिल्कुल नहीं बची है, हर एक भक्त इंतज़ार कर रहा है कि कैसे वो भगवान शिव तक पहुँचेगा। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो नज़र आ रही हैं। श्रृंगार की मैं बात करूँ तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान शिव का जो दरबार है वो फूलों से अभी सजाया गया है, पर सिर्फ अभी जो फूल सजाए वही नहीं, पर इसके अलावा भी शाम में बहुत ही भव्य श्रृंगार, बहुत ही अलौकिक श्रृंगार यहाँ होने वाला है, जिसके तैयारियाँ दूसरी तरफ चल रही है, जहाँ पे देश विदेश से आए अलग अलग तरीके के जो फूल हैं वो मंगवाए गए हैं, फूलों की भव्य झांकी लगने वाली है। और एक खास बात और जो इस सावन में है वो ये है कि जयपुर के मंदिरों में घूम रही है एक ऐसी गाड़ी कि जिससे जो भी भक्त भगवान शिव को कुछ भी अर्पित कर रहा है, चाहे वो फूल चढ़ाना हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो या अन्य जो भी सामग्री है, तो उसका बिल्कुल भी अपमान नहीं किया जाएगा, उसको खाद में रिसाइकल कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक तरफ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वो सारी जो सामग्री है वो इकट्ठा इस तरीके से की जा रही है, एक एक करके मंदिर प्रांगण के बाहर वो गाड़ी खड़ी है जिसमें वो जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो जाती है और उसके बाद में वो रिसाइकल हो जाती है। एक बार फिर मैं आपको भक्तों की भीड़ दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार भक्त नजर आ रहे हैं। और एक खास बात ये भी है, क्योंकि जयपुर का ये मंदिर है और राजस्थान में तीज का और सावन का महत्व बहुत ज़्यादा है, जहाँ महिलाएं लहरिया पहने नजर आती हैं, तो हम देख रहे हैं कि सुबह से जितने भी महिलाएं यहाँ आ रही हैं वो लहरिया पहने नजर आ रही हैं, अलग अलग रंग में अपनी लहरी की साड़ी या लहरी के सूट्स जो हैं वो पहने हुए वो यहाँ मंदिर में आई हैं। और इस सावन के जितने भी सोमवार हैं, जितने भी दिन हैं, उसमें हम यही रंग जो हैं वो इस मंदिर में देखते हैं, जो इसको और भी खास बनाता है, क्योंकि जयपुर में वो एक राजस्थानी झलक जो है वो दिखाता है। अब सुबह से यहाँ पे जो भक्तों का तांता लगा हुआ है शगुफ्ता, मैं बताना चाहूँगी कि हर एक भक्त अपने हाथ में जल का, दूध का लोटा लिए नजर आ रहा है, जलाभिषेक करने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि सावन की जो शिवरात्रि है उसको बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि जितनी भी मनोकामनाएं हैं, सच्चे मन से मांगी हुई जो भी दुआएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। आज के दिन व्रत रखा जाता है, तो जितने भी व्रतवासी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो इस समय पे मंदिर में नजर आ रहे हैं। हालांकि वर्किंग डे आज है,
9: फिर भी तस्वीरें दिखाते रहिएगा। लौटती हूँ आपके पास, संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, प्रश्न आपसे ये है कि सावन की शिवरात्रि का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो सावन की शिवरात्रि का असल आध्यात्मिक महत्व क्या है, और सावन की शिवरात्रि बाकी शिवरात्रियों से कैसे अलग है, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे आपसे।
10: जी, पहले शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोलो, एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः संभवाय चे, मयो भवाय चे, नमः शंकराय चे, मयस्कराय चे, नमः शिवाय चे, शिवतराय चे। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा जाता है कि साल में जो है, जब कृष्ण पक्ष में जो है 12 जो चतुर्दशी आती है वो शिवरात्रि कहलाती है, और ये जो एक शिवरात्रि है और एक महाशिवरात्रि आती है जो फरवरी के महीने में आती है, और श्रावण का जो मास होता है, श्रावण का जो पर्व होता है, इसको श्रावणी पर्व भी हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि भगवान के ऊपर कहते हैं ये जल का समय है, जब प्रकृति और नेचर जो है सब जो है संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, और भगवान शंकर की कृपा सबके ऊपर बन जाती है। और कहा जाता है कि आपको शायद मालूम हो, श्रवण कुमार जो थे वो भी जो है इस वक्त जो है अपने माता पिता को ले जा करके, और श्रावण के महीने में उन्होंने भी जो है इस यात्रा को किया। भगवान राम ने किया, परशुराम जी ने किया, रावण ने किया, और ये जो महीना ऐसा है कि इस महीने में जो भी भगवान शंकर की उपासना करता है, अलग क्या है आपने पूछा, अलग क्या है कि इस वक्त जो भी पूजा पाठ जब तक किया जाता है भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जल मग्न जो है पृथ्वी होती है, और नदियों का जल भी बढ़ जाता है, प्रकृति और नेचर में हरियाली होती है, क्योंकि हरा भरा सब कुछ हो जाता है। तो ये समय ऐसा समय होता है जिसमें सबका मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, और इस समय में जो भी आराधना तप किया जाता है उसका महत्व भी बढ़ जाता है, और आपको आपके जल तत्व कह देंगे जीवन के अंदर पांचों तत्वों में जो जल तत्व है, प्रकृति के अंदर जल तत्व की जब मात्रा बढ़ती है तो प्रकृति में खुशी और आनंद आ जाता है, और कितने भी प्रकार के रोग हों उनसे जो है मुक्त हो जाते हैं। और ये समय एक ऐसा समय है जिसमें शिव और पार्वती दोनों की उपासना जो है करनी चाहिए, और मंगला गौरी का मंत्र भी जरूर करना चाहिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम देवी मंगल चंडी के होम होम पट स्वाहा, इस प्रकार से इनकी पूजा पाठ अगर आप करते हैं, या पंच तत्वों की पूजा करते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र इत्यादि अर्पित करते हैं, क्योंकि जो कहते हैं रज सत और ब्रह्म जो तीनों गुण हैं उनको धारण करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, तो ये एक ऐसा समय है जब आप भगवान की उपासना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, और उस आराधना से भगवान शंकर जो है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और उसमें निशारात्रि की पूजा का जो है निशिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व रहता है, जो 11:59 से लेकर 12:43 का समय रहेगा, और उसमें जो पूजा 44 मिनट में जो पूजा आप करेंगे उस पूजा का काफी बड़ा महत्व माना गया है। और चार पहर की पूजा कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी ने जो है बड़ा तप किया, और उस तप के प्रभाव से जो है उनको भगवान शिव स्वरूप में वर के रूप में प्राप्त हुए, और यह समय जीवन के लिए सुख में और आनंद में देने वाला होता है, और इस वक्त प्रकृति नेचर सब प्रफुल्लित है, इसलिए इसमें जो भी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, और सफेद चंदन अगर अर्पित करते हैं, आज मंगलवार का दिन है तो लाल चंदन भी जो है आज के दिन आप कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वो विशेष करके लाभ करें।
9: जी संजय जी, चलिए लौटती हूँ आपके पास। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने समझाया कि आज के दिन का आध्यात्मिक महत्व क्या है। श्वेता, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, श्वेता, शाम तक, हालांकि शिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि शाम तक यहाँ पर कार्यक्रम चलेंगे, तो शाम तक क्या कुछ रहने वाला है, कुछ जानकारी मिल पाई है?
11: बिल्कुल शगुप्ता, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महंत गिरिशानंद जी महाराज से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि आज शाम को यानी कि 7 बजे के आसपास यहाँ पर भव्य श्रृंगार होने वाला है भोलेनाथ का, और उसके बाद लगभग 7:30 से 7:45 के बीच में महाआरती का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसे तमाम श्रद्धालु जो उस वक्त यहाँ पर आ रहे होंगे वो लोग भी देख पाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है आपको बता दें कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, और खास करके इस तरह के जो कांवड़ हैं, जो आप देखिए जिस तरह से दंडवत करते हुए हरिद्वार से, आप कहाँ से आ रहे हैं?
12: करो वीर बजरंगे,
11: हरिद्वार
12: जी बोली, हरिद्वार से आ रहे हैं
11: आप दंडवत करते हुए वहाँ से आ रहे हैं?
12: हाँ बोली, जल लेके वहीं से आ रहे हैं, हरिद्वार से।
13: चलो

0: भक्ति है उनके लिए सफल हो जाती है हमारी। वहां से हरिद्वार से आते आते बोली ये देख लो, पता ही नहीं लगता कब गाजी बाजी आते हैं, कब नमन में ऐसी हंसते रहती है, हंसते खेलते आ जाते हैं। थोड़ी बारिश होती है, कठिनाई होती है, पर सब मन लगता है भोले बाबा सब।
1: अभी भी लगातार ऊपर से बारिश,
0: बहुत बारिश हो रही है, ये सब भोले बाबा का आशीर्वाद है। हमारे भोले जो धूप में ना आए बारिश में।
1: बिल्कुल,
0: जयकारो वीर बजरंगे।
1: बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, देखिए इसी तरह से दंडवत करते हुए यहाँ पर लगातार ये खास करके ये जो लेन है वो बनाया गया है जितने भी भोले दंडवत करते हुए आ रहे हैं उनके लिए। देखिए आपको बता दें कि सावन की शिवरात्रि जिसके लिए आज यहाँ पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं, खास करके तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं दूधेश्वर महादेव मंदिर की। यहाँ पर भव्य तैयारी तो की ही गई है, विशेष करके आपको लाइटिंग एक बार फिर भी आपने कैमरा मैन शैलेंद्र को बोलूंगी, देखिए किस तरह से लाइटिंग, हालांकि शाम के वक्त ये ज्यादा खूबसूरत लगे। भोलेनाथ की तस्वीर है उसमें इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगी हुई है और साथ ही साथ अंदर फूलों से सजाया गया है मंदिर के गर्भगृह को, लेकिन इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए हम अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम बाहर से दिखा रहे हैं ताकि भोले जितने भी आ रहे हैं दूर दूर से उन्हें कम से कम अपने आराध्य तक पहुंचने में देर ना हो, इसीलिए हम थोड़ी सी दूरी हम बनाए हुए हैं भोले से ताकि ये लोग यहाँ पर जा सके। लेकिन इसके अलावा बोल दें कि यहाँ पर आपको हम बता दें कि आज का दिन कई मायनों में खास हो जाता है। आज सावन का सोमवार, सावन जो कि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, और ऐसे में शिवरात्रि जो कि शिव की रात्रि है, शिव यानी कि उजाला, वो स्रोत जो हमारे अंदर के अंधकार को खत्म करता है, इसलिए आज रात विशेष करके लोगों के जगने की, जागरण की परंपरा है। लोग पूरी रात जो है वो जागरण करते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं, और लगातार जिस तरह से यहाँ के महंत जी ने भी हमें बताया कि विशेष करके आज शाम को यहाँ पर भव्य आरती होने वाली है, लेकिन लगातार भक्तों को किसी तरह की कठिनाई ना हो, और खास करके जो डाक बम लेकर के आ रहे हैं, जो भोले दूर दूर से आ रहे हैं, आप बताइए, हमने ऐसे ऐसे भोलों को देखा है जिनके पैर में छाले पड़ गए हैं, पट्टी बांध कर किसी तरह से वो आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई शिकन नहीं है और लगातार इसी तरह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनके लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किया गया है और आज वो तमाम भोले जलाभिषेक कर आज अपने जो भी मनोकामना उनकी थी वो यहाँ पर पूरी होगी।
2: ठीक है श्वेता, आपके पास लौटेंगे और भी तस्वीरें दिखाइएगा। रिदम आप तस्वीरें दिखाइए, भक्तों से वहां पर बात करिए, कैसे कैसे मनोकामना भक्त वहां पर लेकर आए हैं भोलेनाथ के पास, दर्शन किन किन को हो चुके हैं, कहाँ से वो आए हैं।
3: बिल्कुल, मैं यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाती हूँ, सभी भक्त इस समय पर भोले के पास में नजर आ रहे हैं, हम उसी तरफ आपको लेके चलेंगे क्योंकि वहीं सारे भक्त हैं और सारे, मैं इनसे बात करूंगी। मैम क्या मनोकामना है आप लेके आए?
4: मनोकामना बस बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाए।
3: आज शिवरात्रि आपने व्रत रखा है?
4: हाँ व्रत रखा है।
3: तो व्रत बच्चों के लिए रखा है, पति के लिए रखा है, क्या
4: के लिए? पति के लिए, पूरे घर परिवार के लिए, सबके लिए।
3: अच्छा मैम क्या मनोकामना है आप लेके आई है?
5: हम तो रात दिन यही काम करते हैं बाबा के।
3: अच्छा यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो अंदर खड़े हैं, कुछ ही समय में भोग का जो टाइम है वो होने वाला है, इसीलिए सभी भक्तों को अभी वहाँ भोले के पास से थोड़ी दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, जिससे भगवान शिव को, महादेव को जो है वो भोग चढ़ाया जा सके। तो लगातार मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, श्रृंगार बहुत ही भव्य किया गया है, जितने भी भक्त हैं वो इस समय इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भोग पूरा होगा और उसके बाद में वापस से जो जितने भी भक्त हैं जो हाथ में जल लिए इंतजार कर रहे हैं वो भोले तक पहुँच पाएँ और उनको जल अर्पण कर पाएँ। यहाँ सभी की मनोकामनाएं नजर आ रही हैं और ये देखा जा रहा है कितने निस्वार्थ भाव से यहाँ पे हर कोई खड़ा है, अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव तक पहुँचा रहा है, क्योंकि आज का जो पावन दिन है वो इसीलिए जाना जाता है। और ऐसे ही क्योंकि जिन लोगों ने व्रत रखा है तो कहा जाता है कि शाम को रात को चार पहर की जो पूजा होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो उसी के लिए सभी भक्त आज शाम को वापस से यहाँ आएंगे। मैं एक बार श्रृंगार जो होने वाला है उसकी कुछ तैयारियाँ दिखाती हूँ। देखिए चारों तरफ मंदिर में लाइट्स लगाई गई हैं, हालांकि वो लाइट्स अभी जलती नजर नहीं आएंगी, दिन का समय पर ये लाइट से सजा रखा है। और ये जो तैयारियां हो रही है ये है कुछ विदेशी और देसी फूल जो हैं वो लाए गए हैं और लाखों की संख्या में ये फूल यहाँ पे है जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद
2: है तो इस मौके को और भी खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां मंदिरों में और शिवालयों में की गई हैं। चलिए लौटती हूँ आप सभी के पास, आप सभी बने रहिए, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कंधे पर कांवड़, हाथ में गंगा जल और कदमों में भोलेनाथ तक पहुंचने का संकल्प, देश देश भर से कांवड़ियों से

0: कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। खास बात यह है कि इन कांवड़ियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बेटियां भी हैं जो इस कठिन धार्मिक यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं।
1: लेकिन इन महिला कांवड़ यात्रियों के हौसले के आगे मुश्किलें छोटी पड़ती नजर आती हैं। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने अब से कुछ देर पहले ऐसी ही महिला कांवड़ियों से बातचीत की है, देखिए।
2: तो मेरे साथ चार महिला कांवड़ यात्री है और इनके कंधों पे सिर्फ कांवड़ नहीं है बल्कि एक जुनून है, एक संकल्प है, एक आस्था है जो ये अपने साथ कई किलोमीटर का इन्होंने सफर तय करा और उसके बाद हरिद्वार से दिल्ली आ पहुंचे। तो एक महिला कांवड़ यात्री के लिए सिर्फ एक शारीरिक थकान नहीं होती बल्कि एक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि आप जब कांवड़ यात्रा के लिए निकलते तो आप अकेले निकल रहे हैं या फिर एकजुट होकर ग्रुप में निकल रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है कि स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रखा जाए, किस तरीके से शारीरिक चुनौतियां जो आएगी उसका ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो सवाल मन में आता है वो है सुरक्षा, कि इनकी सुरक्षा का ध्यान कौन और किस तरीके से रखेगा। तो ये चार महिला कांवड़ यात्री दिखा रही हूं। अच्छा, इनकी सबसे पहले तो मैं उम्र ही बता दूं, ये तकरीबन 13 से 16 साल की इनकी उम्र है और 13 से 16 साल की उम्र के ये बच्चे जो है एक लंबा सफर तय कर आए। शुरुआत आपसे करूंगी, सबसे पहले नाम बताइए अपना।
3: मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है।
2: मोहिनी, आपका नाम क्या है?
3: मोनिका।
2: मोनिका, आपका?
3: कौशल। कौशल।
2: कौशल, और आपका?
3: पायल।
2: पायल, तो देख सकते हैं कि ये चार प्यारी बच्चियां कम कम उम्र की है, दिल्ली के रहने वाले हो। सबसे पहला सवाल ये कि इतना जोश कैसे आया और ये मन में कैसे आया कि मुझे भी जो है कांवड़ लेने जानी, वो भी महिला होकर?
3: बस ऐसे सबको देखा और हमारा भी मन करा, हमारे भाई जाते थे उन्हें देख देख के हम भी जाने लग गए, वो हमें अपने साथ ले गए, बस चले गए,
2: साथ लेके चले गए। अच्छा, तो आप लोग भाइयों के साथ गए थे?
3: भाई और मामा।
2: भाई और मामा के साथ, लेकिन ये सारे आपके दोस्त हैं, आप लोग के बहने हैं?
3: नहीं, दोस्त हैं।
2: अच्छा, चाचा था, वो एक दोस्त भी है आपके साथ। अच्छा, ये पहली कांवड़ यात्रा है आपकी?
3: नहीं, दूसरी जोड़ा है।
2: दूसरी है ये, दूसरी। अच्छा, दूसरी में आपने जोड़े में किया है, लेकिन सुरक्षा का सवाल सबसे बड़ा रहता है कि सेफ्टी कैसी होगी। वुमेन सेफ्टी जो है आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमारा देखरेख जो है वो कौन करेगा। आपके साथ भाई लोग गए, भाई तो गए, मामा भी गए, लेकिन फिर भी एक मन में तो रहता है ना कि स्वास्थ्य भी है, इतना वजन कैसे हम उठाएंगे?
3: नहीं उठा लेंगे।
2: उठा लिया? कैसे उठाया? कितना वजन आप लेके चले हो?
3: 1250
2: किलोमीटर, 10 से 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन का सफर, 250 किलोमीटर का जो है रास्ता इन्होंने तय करा और साथ ही साथ 12 लीटर का जो है ये जल यहाँ पर लेकर आए हैं। 12 लीटर जल, एक लड़की से अगर 12 लीटर जल आप उठाने के लिए बोलोगे तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा वजन है जो अपने कंधों पर जो है इतने लंबे सफर में तय करके जो है साथ में लेकर आ रही है। इन्हीं का वजन की अगर मैं बात बोलूँ तो 30 या 35 किलो से ज्यादा का इनके लड़कियों का जो है वो वजन नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो संकल्प की हम बात कर रहे हैं वो संकल्प, वो जोश जो है इन बच्चियों में और इनकी माताओं में महादेव ने ही दिया है, जो इन्होंने पूरा अपनी जो यात्रा है वो अच्छे से सफलता के साथ जो है वो पूरी करी है। हरिद्वार से दिल्ली के सफर जो है इन्होंने यात्रा जो है पूरी करी और आज आखिरकार वो दिन आ गया है जिस दिन ये अपने प्रिय भोलेनाथ पर, अपने महादेव पर जो है जल अर्पित करेंगे, इनका संकल्प जो है वो पूरा होगा और वापस से घर की ओर रवाना होंगे। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज चुने।
0: इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज है सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। सावन की शिवरात्रि पर आज कावड़ यात्रा का अंतिम दिन, कावड़ मार्गों पर दिख रहा शिव भक्तों का सैलाब, डाक कावड़ ने भी पकड़ी रफ्तार। इक्कीस अगस्त को रामकोट परिक्रमा की वर्षगांठ पर निकलेगी शोभा यात्रा, आयोजन की तैयारियां तेज, श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे होती है परिक्रमा। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए चुने गए 18 लोग, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी इंटरव्यू। जम्मू कश्मीर के शोपियां में दिखा देशभक्ति का रंग, पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा।
3: सैलानियों की पहली पसंद बन रही मेघालय की राजधानी शिलांग, हरी भरी पहाड़ी, झरने, देखने को दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी।

0: और देखिए सावन की शिवरात्रि का पर्व हम जीएनटी पर आप सभी के साथ मना रहे हैं, तो इस खास मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन भी शिवमय हो उठी है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई और जब बाबा के भव्य दरबार भक्तों के लिए खोला गया तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक हुआ। दूध दही घी शक्कर शहद से महादेव का पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया।
1: चंदन भस्म पुष्प और रत्न आभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। इसके बाद मंगला आरती में दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया है।

0: आज हमें भस्म आरती के दर्शन किए, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बाबा की जब आरती स्टार्ट होती है, लाइट बंद होती है, तो उस टाइम बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात महाकाल प्रकट हो गए हों लोगों को आशीर्वाद देने के लिए।
1: जो मैंने भस्म आरती देखी, इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था। हर किसी शख्स के चेहरे पे मैं देख पा रही थी कि कितना उनके आंखों में दुख दर्द प्रेम भरा हुआ था, जैसे ही वो शिवलिंग को देख रहे थे।
2: शिवरात्रि का दिन है और आज ही बड़ा विशेष दिन है, भगवान भोलेनाथ के प्रिय दिन है और बाबा महाकाल की आज भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को पंचामृत से अभिषेक किया गया, भगवान को भोग लगाया गया, भगवान का श्रृंगार किया गया भांग रायपुर से। उसके बाद बाबा की दिव्य भस्म आरती की गई भगवान की। सभी भक्तों ने यहाँ पे आज भस्म आरती का लाभ लिया और भगवान महाकाल से जो मांगा है वो भगवान महाकाल सबकी मनोकामना पूर्ण करते, सबकी रक्षा करते, सबको कालों का काल हरते हैं। जय श्री महाकाल।
3: और चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी किसी का प्रश्न है वही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है तो किसी ने पूछा है कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, कौन सा मंत्र जप करना ज्यादा फलदायी होगा आज के दिन में?
4: जी देखो, पंचतत्वों का जो मंत्र है नमः शिवाय है, ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है। इसके अलावा ओम हूं जुम सह, भगवान शिव का जो मंत्र है ओम हूं जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम् जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वभूभू तैजुं ओम ओम। तो जो मेन मंत्र है नमः शिवाय है, वो जो हमारे पांच तत्व हैं, फाइव एलिमेंट हैं, उनको बैलेंस करता है और हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से ही बना है। तो आप जितना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, आपको शारीरिक मानसिक भौतिक सभी प्रकार की प्राप्ति होगी। और आज एक ऐसा योग भी है जैसे चतुर सागर योग होता है, ऐसे चतुर ग्रह योग भी बन रहा है जिसमें चारों तत्व, बुद्ध जो है प्रकृति और नेचर का प्रतीक है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, ये सारे के सारे संयोग जो जुड़ रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो गुरु का ही नक्षत्र है उसमें ये चतुर्सागर चतुर्ग्रही योग बन रहा है जो आपको शारीरिक मानसिक भौतिक और सभी प्रकार के सुखों और आनंद को देने वाला है। कहते कि भगवान शिव भी जो है डिस्ट्रॉयर लॉर्ड है। अगर आप चाहते हैं संसार रूपी सागर से मुक्ति पाना, जीवन के अंदर सुख शांति पाना, कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की प्राप्ति जब होती है, आप जब भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं और मन ही मन उनका स्मरण करते हैं। और आज जो है महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसा दिन है जब आप पंचामृत से भगवान को जल अर्पित कर देते हैं तो आपके मन में जितने भी भाव होते हैं वो भाव मुक्त होकर के और भगवान शिव की शरण में रहते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग है उनके अगर आप दर्शन कर लेते हैं जीवन काल में, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका अगर दर्शन कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में जो है शुभता आती है। और अगर जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सके एक अमरनाथ को भी कर ले तो भी जीवन जो है भगवान का आशीर्वाद पूरा मिल जाता है। तो ये जो समय है ऐसा समय है जो प्रकृति नेचर सब प्रसन्न है, तो ऐसे वक्त में जो भगवान शंकर की उपासना करते जाएं और उनका ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, साधना करें। और जो लोग मेहनत बहुत करके कावड़ लेकर के आ रहे हैं वो कावड़ ला रहे हैं और भगवान को अर्पित कर रहे हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि भगवान को जब आप जल अर्पित कर देते हैं तो आपका पंच तत्व जो है बैलेंस हो जाता है, आपको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है और आप ईश्वर से सबसे क्लोज हो जाते हैं। ये समय ऐसा है जिसमें आपको भक्ति को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है और भगवान की शरण में जाना है और शिव की उपासना करनी है।
3: और भी जानकारी साझा करेगा, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता आपके पास आते हुए, अभी वहां पर कैसा भक्तिमय माहौल देख पा रही हूँ मैं? देख पा रही हूँ श्वेता आपके साथ कोई खड़ा है वहां पे, वो कौन है, उनसे बात करिएगा।
5: बिल्कुल, आपको भक्ति का माहौल तो हमने दिखाया ही, रेला एक बार फिर से दिखा दीजिए, श्रद्धालुओं का रेला, कावड़ियों का रेला।
6: महादेव, हर हर महादेव,
7: हर महादेव, हर हर महादेव,
8: शंकर भगवान की।
5: इसी तरह से लगातार जितने भी कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, बम भोले और शंकर भगवान की जय के जयकारे यहां लगा ही रहे हैं। दुधेश्वर महादेव मंदिर में आकर जल अर्पण कर रहे हैं। इस वक्त महाराज जी गिरीशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी ये बताइए, पिछली बार की तुलना में, क्योंकि मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं, इस बार मैंने देखा मंदिर की तरफ से भी व्यवस्था ज्यादा अच्छी की गई है, भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो तो मंदिर प्रशासन की तरफ से भी लोगों को लगाया गया है।
6: मंदिर प्रशासन की तरफ से भी लगाया गया है, मंदिर के भी स्वयं सेवक हैं और परम पूज्य गुरुदेव महंत नारायण गिरी जी की पावन अध्यक्षता में बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं और शासन प्रशासन नगर निगम और अपना मेडिकल एमएमजी सरकारी हॉस्पिटल सीएमओ साहब इत्यादि और विधायक जी और यहाँ पे अपने धर्मपाल गर्ग जी के बच्चे आए हुए हैं अनुज गर्ग जी, उन समेत सभी लोग काफी अच्छे से व्यवस्था किया हुआ
5: ताकि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन आज का दिन चूंकि बेहद खास है और बार बार जैसा कि हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि का ये महापर्व, ये महाउत्सव मनाया जा रहा है सनातन में, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। ऐसे में महाराज जी ये बताइए कि आज के दिन विशेष करके हम यहाँ पर बात करें, अब थोड़ी ही देर में सांझ होने वाली है, संध्या होने वाली है, तैयारियां किस तरह से होगी शाम के समय?
6: तैयारियां निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर होंगी। भगवान का बहुत भव्य श्रृंगार होगा, 56 भोग का आयोजन है। तत्पश्चात यहाँ भगवान की महाआरती होगी, जो भगवान का श्रृंगार आज महाकाल के रूप में किया जाएगा और बहुत दिव्य और भव्य होगा। उसके तत्पश्चात भक्तों को कंवरियों का श्रृंगार का भी दर्शन होगा और जलाभिषेक भी होगा।
5: विशेष करके आज भोलेनाथ को अगर हम प्रसाद की बात करें तो क्या कुछ चढ़ाया जाएगा?
6: आज भगवान को विशेषकर पंचमेवा के साथ साथ जो खीर बनाते हैं आज व्रत का, उसका भोग लगेगा।
5: अच्छा, आज के दिन विशेष करके हमने देखा है, खास करके महिलाएं, हालांकि अब तो हर कोई, लेकिन महिलाएं विशेष करके व्रत रखती हैं। और पहले तो हम ये जानते थे कि अच्छे वर की कामना से लोग व्रत रखते थे, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या?
6: इसके पीछे का रहस्य है कि भगवती माँ पार्वती भगवान का इसी समय से व्रत प्रारंभ किया था और व्रत का शुभारंभ उन्होंने बहुत दिनों तक किया, तो इसके लिए जो है कुमारी कन्याएं भी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, साधना करती हैं कि हे भोलेनाथ हमें भी सुंदर वर देना, इसलिए उनकी मनोकामना भी महादेव पूर्ण करते हैं।
5: बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उसमें से कई आपको व्रती भी मिलेंगे। क्या आपने व्रत रखा है आज के दिन?
7: हाँ जी।
5: आपने भी रखा है?
7: हाँ जी।
5: कितने सालों से रख रहे हैं?
7: हम शुरू से लगभग 7-8 साल।
5: शादी से पहले?
7: हाँ जी, 7 साल की उम्र से।
5: तो शिव मिल गए आप?
7: हाँ जी, बहुत अच्छे शिव मिल गए हमें।
5: और आप?
7: हम भी बचपन से ही रख रहे हैं।
5: व्रत रख
7: जी?
5: किस लिए?
7: भगवान के लिए, महादेव के लिए। अपने
5: के लिए महादेव मिले।
3: चलिए, महादेव को प्रसन्न करने का श्वेता देखिए, हर किसी का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना तरीका है। लौटती हूँ श्वेता आपके पास। मनीषा आपके पास आते हुए यही चीज जो श्वेता बोल रही थी, क्या आपकी भी मुलाकात कुछ व्रतियों से हो पाई है मंदिर में?
5: बिल्कुल, मेरे साथ अभी थे, अब पीछे देखा तो गायब हो गए अशोक गुप्ता, लेकिन बहुत सारे भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। व्रत रखा है आज?
8: यस मैम, रखा
5: है। किस लिए रखा ये बताइए?
8: बस इतनी श्रद्धा है, क्योंकि जो प्रेम होता है अपना, जैसे शिव और पार्वती का प्रेम हमारा भाई, हम लोग प्रतीक्षा किए इतने 3000 वर्ष तक, तो इसलिए हमें बस उसकी वजह से खुशी से हमारे अंदर एक भावना होती है ना, जो शिव पार्वती के लिए, बस वही उसी से। बस
5: आपने रखा है व्रत? आपने किस लिए रखा है?
7: ये कि अच्छा, वो
5: कहते ना कवारी लड़कियां तो अच्छे वर के लिए रखती है,
7: वो भी हो सकता है। हाँ,
5: अच्छा, वो भी हो सकता है, बस बोल दिया है, व्रत रख दिया है, जो होगा देखा जाएगा।
7: हाँ,
5: अपना काम कर दिया है। भीग के रेनकोट पहनकर आए हो, आस्था सबसे ऊपर है,
9: सबसे ऊपर है, बिल्कुल सच का।
5: मेरे भी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है।
9: थैंक यू सो मच।
5: ये आई थिंक भोले के भक्त जो है, भोले के दर्शन करने के बाद ऐसी मुस्कुराहट के साथ बाहर,
9: बहुत बहुत, और जो यहाँ पर एक बार आ गया जीवन में उसके इसी प्रकार इतनी मुस्कान आ जाती है कि वो भी दूसरों को बांटता है उल्टा, सच में।
5: तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा अभी जो है जोत जलाएंगे, क्योंकि अंदर जो है इतनी भीड़ है, तो अंदर आप जोत जलाने का किसी को जगह नहीं है, तो ये जो है इस जगह बाहर पे जो है जोत जलाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रभु को प्रसन्न किया जा रहा है, हर तरीके की जो प्रसाद है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, भक्तों के साथ भीग के आ रहे हो, अच्छा तो लग रहा होगा?
10: बहुत अच्छा लग रहा है।
11: दर्शन के लिए आए थे, भोलेनाथ के दर्शन हो गए, जल चढ़ा दिया, बहुत अच्छा।
5: आपने व्रत रखा?
11: मैंने फास्ट है जी।
5: आपने भी फास्ट रखा है? बहुत कम मुझे यहाँ पर जो है पुरुष मिले जिन्होंने व्रत रखा है।
11: मैं हर साल रखता हूँ जी।
5: हर साल रखते हो? कहाँ पर लेने जाते हो?
11: नहीं मैम,
5: लेकिन व्रत रखते हो। आस्था है जिस हिसाब से जो है रखना चाहो। आपने रखा है ये बताइए।
12: हाँ जी।
5: क्या मनोकामना है?
12: कुछ भी नहीं है, बस रख लिया।
5: झूठ बोल रहे हो? अच्छा, वर मांगा है? मांगा है, देखा सच निकल गया।
13: हर हर
5: महादेव के प्रिय भक्तों की तस्वीर दिखा रही उषा गुप्ता। चेहरे पे मुस्कान तो है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो है फोटो सेशन भी यहाँ पे लगातार जो है वो चलता हुआ आपको दिख जाएगा, क्योंकि हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो ये यादें जो है यहाँ से जो है समेट कर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं मंदिर की तस्वीरें दिखाऊंगी। अंदर काफी
3: मनीषा भक्तों की एक उम्मीद भी है, जिस वजह से तमाम भक्त जिनसे आप बात कर रही थी उन्होंने व्रत रखा हुआ है कि उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण हो। रिदम के पास चलते हैं, एक बार मनीषा आपके पास लौटेंगे। रिदम, वहां से भी भक्तों से बात कीजिएगा, बताइएगा कि वहां पर कितने भक्तों ने व्रत रखा है जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए आए हैं।
14: बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये व्रत रखा है। पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, जितने भी भक्त हैं वो अभी दर्शन में लीन हैं, और दूसरी ओर बचे हुए जो भक्त हैं खास करके जो जिन्होंने व्रत रखा है वो अभी पूजा अर्चना में व्यस्त हैं, वो पाठ में व्यस्त हैं। हालांकि पंडित जी हमारे साथ में बैठे हैं जिनके पास में मैं आपको लेके जाना चाहूंगी और उनसे जानेंगे आज की क्या मान्यताएं हैं और आज के व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं। पंडित जी, सावन की आज शिवरात्रि है, आज का जो व्रत होता है बहुत पावन माना जाता है, उसके पीछे की मान्यता?
15: श्री तारकेश्वर नाथ की जय। आज का जो दिन है श्रावण मास का परम पाव दिन है, आज मंगलवार है और चतुर्दशी है। मंगलवार और चतुर्दशी तिथि होने से सिद्धि योग बनता है और साथ में श्रावण मास है और भगवान भोलेनाथ की जो तिथि है मासिक तिथि चतुर्दशी, उसे शिवरात्रि का महत्व हो जाता है। शिवरात्रि के जैसे पर्व की तरह हो जाता है, तो आज के दिन भगवान जो भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ की जो स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, पूजा करता है, उसको शिवरात्रि के व्रत का फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ आशुतोष शिव शंकर उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं।
14: अच्छा, आपने जैसे बताया कि मनोकामनाएं आज के दिन पूरी होती है पंडित जी, पर कुछ कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, शादीशुदा महिलाएं भी रखती हैं और आजकल पुरुष भी रखते हैं, तो किस कुछ को कैसा वाला लाभ मिलता है और क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ करना होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए?
15: आज मंगलवार है और चतुर्दशी तिथि है, जिन कन्याओं के मंगल ग्रह खराब होता है या मांगलिक होती है उन कन्याओं को श्रावण मास में मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। मंगला गौरी का जो विधान है श्रावण मास में, श्रावण मास के मंगलवार से ही प्रारंभ होता है। श्रावण मास में जब भी मंगलवार पड़ता है तो उससे मंगला गौरी का व्रत चालू होता है। आज के दिन मंगला गौरी का व्रत करने से जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है या जिनके घर में अशांति रहती है, पति से बनती नहीं है या और कोई उपद्रव होता है, तो उसको मंगला गौरी की पूजा करना चाहिए। मंगला गौरी का जो विधान है वो 5 साल का विधान है। 5 साल तक हर श्रावण मास में मंगलवार के दिन मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती की पूजा करते हैं, इसमें 16 तरह की वस्तुएँ चढ़ती है। मान लो 16 श्रृंगार की सामग्री है, 16 की संख्या में उसको भगवान के पार्वती जी के भोग लगना चाहिए। जैसे मान लो बर्फी चढ़ानी है उसको, तो 16 के नग में चढ़ावे, इस तरह से उसको पूजा करनी चाहिए। अब पुरुष को जो है, मान लो कोई पुरुष मांगलिक है, उसका मंगल है, तो उसको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए।
3: चलिए, सबका मंगल ही मंगल हो, शिवरात्रि का देखिए उद्देश्य यही है। रिदम, बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता, मनीषा और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, और संजय जी आपका शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए कि आज के दिन का उद्देश्य क्या है। चलिए, इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे इसी पर्व से जुड़ी हुई।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद देखिए, देश भर में भगवान शिव के अनेक प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं। प्रयागराज में गंगा तट पर स्थित कोटेश्वर धाम भी भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा ही मंदिर है जिसका अपना अलग धार्मिक पौराणिक महत्व माना जाता है।
1: सावन के महीने में प्रयागराज का यह कोटेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए, खासकर शिव भक्तों के लिए बहुत खास है। और इस मंदिर की लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना खुद की थी। और ऐसा कहा था जब वो रावण का वध करके प्रयागराज पहुँचे थे महंत के पास, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, लिहाजा आप 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करिए, उसके बाद आपके ऊपर से ब्रह्म हत्या का दाग हटेगा। लिहाजा भगवान श्री राम ने यहाँ पर बालू के कर्ण से 1 लाख शिवलिंग बनाए, उसके बाद उनके ऊपर जो द्वेष था वो समाप्त हुआ। लेकिन जब उन्होंने जिस शिवलिंग की स्थापना की वो प्रयागराज के इस कोटेश्वर महादेव मंदिर में रखा गया, और आज भी ये माना जाता है कि भगवान राम द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की मान्यता काफ़ी है। और सावन के महीने में शिव भक्त इसलिए आते हैं कि भगवान शिव उनके कष्टों को दूर करते हैं, और सावन का महीना इसीलिए इस मंदिर के लिए यानी कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर भक्त सावन में यहाँ पहुँचकर इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है। आनंदराज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज।
0: इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। शिवरात्रि के तमाम रंग आपको दिखाते रहेंगे जीएनटी पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: आज है सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगलागौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालय में भक्तों की भारी भीड़। सावन की शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर शिवालय पहुंच रहे शिव भक्त कांवड़िए, कांवड़ मार्गों पर दिख रहा है शिव भक्तों का सैलाब, डाक कांवड़ ने भी पकड़ी रफ्तार। इक्कीस अगस्त को रामकोट परिक्रमा की वर्षगांठ पर निकलेगी शोभा यात्रा, आयोजन की तैयारियां तेज, श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे होती है परिक्रमा। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए चुने गए 18 लोग, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी इंटरव्यू। जम्मू कश्मीर के शोपियां में दिखा देशभक्ति का रंग, पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। सैलानियों की पहली पसंद बन रही है मेघालय की राजधानी शिलांग, हरी भरी पहाड़ियां, झरने देखने दूर दूर से आ रहे हैं सैलानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: आज देशभर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि, मंदिरों की बड़ी रौनक, भोले के जयकारों से गुंजायमान हुए शिवालय।
7: सावन की शिवरात्रि पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लगी लंबी कतारें, महादेव के जलाभिषेक के लिए कावड़ियों में लगी होड़। भगवान भोलेनाथ के दर्शन को ललाए दिखे भाग, शिव भक्तों की सहूलियत के लिए किए गए कड़े सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी देर रात से ही जुटने लगी शिव भक्तों की भीड़, भोलेनाथ के लगाए जयकारे। गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने विधि विधान से किया बाबा का जलाभिषेक, बोलबम के नारों से गूंजा मंदिर परिसर। प्रयागराज के कोटेश्वर धाम में लगा शिव भक्तों का तांता, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं भक्त। कोटेश्वर धाम का धार्मिक और पौराणिक महत्व, मान्यता के मुताबिक रावण वध के बाद भगवान राम ने यहीं रेत से 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर की थी भगवान शिव की आराधना। प्रयागराज का नैनी अरैल घाट शिव भक्तों के लिए अनूठी पहल, पूरे सावन घाट पर फ्री रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। घाट पर आयोजक संस्था की ओर से हर श्रद्धालु को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है पूजा की समस्त सामग्री, हर तरफ नजर आती है मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक करते भक्तों की भीड़। संगम नगरी के तट पर हर साल आयोजित किया जाता है ये सेवार्थ धार्मिक कार्यक्रम, आसपास के जिलों से भी अरैल घाट पर रुद्राभिषेक करने पहुंचते हैं लोग। सावन की शिवरात्रि पर उज्जैन में भगवान महाकाल का हुआ अभिषेक, हर हर महादेव के लगे जयकारे। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, बोलबम के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। काशी में सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की गई मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। श्रावण शिवरात्रि के चलते भारी संख्या में एक बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हुआ पूरा वातावरण। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक। हरिद्वार में श्रावण मास में सोमनाथ मंदिर में पहुंचेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, 13 अगस्त से 11 सितंबर तक मंदिर में दर्शन और सुरक्षा की खास तैयारियां की गई। सोमनाथ मंदिर में पहली बार 30 दिन का 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञ होगा, सिर्फ 51 रुपए देकर श्रद्धालु इस यज्ञ में बन सकेंगे यजमान। श्रावण में बाबा सोमनाथ का हर दिन किया जाएगा अलग और खास श्रृंगार, चारों सोमवार समेत खास दिन पर निकलेगी भगवान की भव्य पालकी यात्रा। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए टॉय ट्रेन, व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ट की होगी सुविधा, पूजा और रहने की बुकिंग की जा सकेगी सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन। श्रावण के हर सोमवार को सोमनाथ में होगा कला महोत्सव जिसमें भक्ति और संस्कृति की दिखेगी झलक। गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब, लाखों शिव भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। मेरठ के बाबा ओघड़नाथ मंदिर में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सावन की शिवरात्रि पर उतारी गई भगवान जगन्नाथ की आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। इंदौर सेंट्रल जेल में गूंजा हर हर महादेव का उद्घोष, 1000 कैदियों ने बनाए 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी। महज 1 घंटे में पूरा हुआ शिवलिंग निर्माण, इसके बाद विधि विधान से हुआ भोलेनाथ का महाभिषेक, कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। बगहा में अनोखी कावड़ लेकर निकला भक्त, 3 पालतू डॉग्स के साथ कर रहा है कावड़ यात्रा। 12 दिन में 111 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रामनगर के नर्मदेश्वर शिव मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र, उनके पालतू डॉग शेरू, टाइगर और मोती भी इस धार्मिक यात्रा का हिस्सा। संभल में नजर आई अनोखी कावड़। सीएम योगी और आईपीएस के बिश्नोई की फोटो लगाकर ब्रजघाट गंगा घाट से जल लेकर संभल पहुंचे कावड़िया का जत्था। सावन के पवित्र महीने में सड़क मार्ग और ट्रेनों के माध्यम से अपने शिव मंदिरों के लिए रवाना हो रहे हैं भक्त। कावड़ यात्रा में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर ले रही हिस्सा। कुछ महिलाएं पहली बार कर रही हैं कावड़ यात्रा, कहा भोलेनाथ में उनका अटूट विश्वास। सावन में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अलग अलग रंग, कावड़ लेकर धार्मिक यात्रा पर निकली महिलाएं। कंधे पर भारी भरकम कावड़ उठाए नजर आ रही है महिला कावड़, अलग अलग मनोकामना के साथ कर रही है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा में हर आयु वर्ग की महिलाएं शिव भक्त, सफर के दौरान इंस्टा रील्स बनाने की भी होड़। संभल में भी महिला कावड़ियों की रौनक, हरिद्वार और ब्रजघाट गंगा घाट से कावड़ लेकर पहुंची महिलाएं। कावड़ में ला रहे हैं पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगी महिलाएं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और सुविधा को लेकर संतुष्ट। देहरादून दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाली तीज उत्सव के मौके पर आयोजित महिला संवाद और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर खास आयोजन, स्विमिंग, कायकिंग और कैनोइंग का विशेष समर कोचिंग कैंप आयोजित। इस कैंप में अलग अलग जिलों के लगभग 80 युवा एथलीट्स ने लिया हिस्सा। घाटी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना इसका मकसद। बांदीपुरा की एक महिला ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल, मशरूम और सब्जियों की खेती को बनाया कमाई का जरिया। घर की छत पर खेती कर बनाया कमाई का एक पक्का जरिया, हर महीने हो रही है 40,000 तक की कमाई। महिलाओं के लिए वरदान बनी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 योजना, सालों से दबंगों से परेशान महिला को एक शिकायत पर मिला न्याय। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एम्बुलेंस व ब्लड डोनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी, विकास कार्यों के लोकार्पण पर जोर। 15 अगस्त के नजदीक आते ही जगह जगह नजर आ रहे देशभक्ति के रंग, शोपिया में पुलिस और नागरिक प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई है तिरंगा यात्रा, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द और गौरव को बढ़ावा देना मकसद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, लाल किले के 5 दंगल पार्क में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले 21 तोपों की सलामी की हुई रिहर्सल। 15 अगस्त की पारंपरिक तैयारियों का एक अहम हिस्सा है यह अभ्यास, राजधानी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद। रक्षाबंधन से पहले कानपुर में सरहद के प्रहरियों के लिए अनोखा कार्यक्रम, देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 3,00,000 राखियां। आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा सेना की अलग अलग पोस्ट पर भेजी गई हैं राखियां, प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से आयोजित विशेष पहल। इस कार्यक्रम में शामिल हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सुजीत बैस बोले, बच्चों के हाथों से बनी राखियां जवानों के लिए बहुमूल्य। चमोली की फूलों की घाटी इस बार बनी हुई है पर्यटकों की पहली पसंद, अब तक 18,856 पर्यटक पहुंच चुके हैं घाटी। फूलों की घाटी में इन दिनों 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल खिले, हरी पहाड़ियां, झरने और फूलों की खूबसूरती पर्यटकों को आ रही है पसंद। इस बार फूलों की घाटी देखने देश की नहीं विदेशों से भी पर्यटक यहां पहुंचे, अब तक 122 विदेशी सैलानी कर चुके हैं घाटी का दीदार। लगातार बारिश के बावजूद इस बार घाटी को नहीं करना पड़ा बार बार बंद, पर्यटकों की बड़ी आमद से स्थानीय दुकानदारों को भी फायदा। घाटी में इन दिनों ब्रह्मकमल, नीला पोस्ट और एनीमोन जैसे दुर्लभ फूल खिले, वन विभाग ने पर्यटकों से फूलों और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में अजब गजब रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के साथ ही सावन में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत मंगलकारी होता है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है।

0: शिव, सावन और शिवरात्रि भोलेनाथ के भक्तों के लिए आज वो खास दिन है जिसका इंतजार उन्हें साल भर रहता है। सावन और शिवरात्रि दोनों महादेव को अति प्रिय हैं। इस पावन अवसर का लाभ उठाने के लिए शिव भक्त लालायित नजर आ रहे हैं। मंदिर और शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा सदियों पुरानी है। सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा का संबंध भी शिवरात्रि से जुड़ा है। कई दिनों की कठिन यात्रा पूरी कर कांवड़िये शिवरात्रि के पावन अवसर पर ही शिवालयों में पहुंचते हैं और पवित्र नदियों के जल से महादेव का जलाभिषेक करते हैं।
1: शिवरात्रि, जिस रात को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की रात के रूप में जाना जाता है, साथ ही श्रावण मास जो भगवान शिव को अति प्रिय है, भगवान शिव की उपासना के लिए वर्ष का श्रेष्ठ मास है। उसमें श्रावण मास की शिवरात्रि का महत्व अपने आप में अनंत गुना फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इस दिन जो ऊर्जा का प्रवाह है वह ऊपर की ओर हो जाता है।
0: शिव निराकार हैं, शिव आदि योगी हैं, शिव आदि देव हैं, शिव चेतना है, शिव श्वास है और शिव ही सृष्टि, शिव अनंत हैं, शिव निराकार हैं, शिव ही देवों के देव महादेव हैं। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की आराधना भी की जाती है। शिव और शक्ति के मिलन को समर्पित शिवरात्रि के मौके पर मंदिर और शिवालयों में रात भर धार्मिक आयोजन चलते हैं। भजन कीर्तन के साथ जागरण में शिव शक्ति का धारा में हर कोई सराबोर नजर आता है।
1: इस दिन यदि साधक साधना करता है, उपासना करता है, भगवान शिव का ध्यान करता है, इस दिन पार्थिव पूजन करता है मध्य रात्रि के समय में, तो भगवान शिव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसे पापों से मुक्ति मिलती है, उसके जीवन के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति होती है। व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है।
0: शिवरात्रि के साथ आज के दिन एक और अनुपम संयोग बना है। सावन मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के साथ ही आज के दिन सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। आज सावन की शिवरात्रि पर ऐसा शुभ संयोग बना है जब भक्त शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना कर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आज सावन की शिवरात्रि, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग, जलाभिषेक के लिए शिवालय में भक्तों की भारी भीड़। सावन की शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर शिवालय पहुंचे शिवभक्त कांवड़िए, कांवड़ मार्गों पर दिख रहा है शिवभक्तों का सैलाब, डाक कांवड़ ने भी पकड़ी रफ्तार। इक्कीस अगस्त को रामकोट परिक्रमा की वर्षगांठ पर निकलेगी शोभा यात्रा, आयोजन की तैयारियां तेज, श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे होती है परिक्रमा। आज से राम मंदिर के नए सीईओ के लिए शुरू हो सकता है इंटरव्यू, फाइनल राउंड के लिए चुने गए 18 लोग, 3 सदस्यों की कमेटी 2 दिन तक करेगी इंटरव्यू। जम्मू कश्मीर के शोपिया में दिखा देशभक्ति का रंग, पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
2: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ पारुल चौधरी, लेकर हाजिर है हम आपके लिए सास बहु अर्पेटिया का ये फ्रेश एपिसोड। ये जो मेकअप है ना, ये सिर्फ हमारे चेहरे को नहीं निखारता बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। और मेकअप के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ सही प्रोडक्ट्स के सही इस्तेमाल से आप एक एलिगेंट और खूबसूरत लुक पा सकती हैं। एक अच्छा स्किन प्रेप, सही फाउंडेशन, थोड़ा सा मस्कारा, उसके साथ साथ एक खूबसूरत सी लिपस्टिक और थोड़ा सा काजल, बस इतना ही काफी है आपकी खूबसूरती, आपकी स्माइल को एनहांस करने के लिए। तो आज तो मेकअप के आसपास ही होगी एंटरटेनमेंट की बातें, उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
3: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, शुरू होगी आरंभी और ध्रुव की नोकझोंक, आरंभी करेगी सच का खुलासा, गुरु और रूहानी करेंगे गौतम का पर्दाफाश, खतरे में पड़ेगी रूहानी की जान, राध्या पर होगा काला साया, प्रथम होगा परेशान,

पति ब्रह्मचारी की अवनी यानी कि वंदना राव संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनका दिनचर्या सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: चेहरे की खूबसूरती नहीं, मन की खूबसूरती ही सबसे बड़ा मेकअप होती है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। वैसे राध्या, आपकी कहानी का नाम भी तो कुछ ऐसा ही है, मन अति सुंदर। क्योंकि जब मन होगा सुंदर तो होगा कहानी में भी सब कुछ सुंदर। लेकिन क्या करें, इनकी कहानी में तो है अनलिमिटेड ट्विस्ट, यानी एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी हो जाती है तैयार, एक सिचुएशन थमती है तो दूसरी आ जाती है और दे देती है इनके दरवाजे पर दस्तक। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
1: सदमे में राध्या, ऊपर वाले से राध्या की गुहार। राध्या को देख प्रथम हुआ हैरान, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में इन दिनों राध्या बेहद परेशान चल रही है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसे में देखिए कैसे अपने हाथों में ताजा फूल लिए

वो अपने घर के मंदिर की ओर बढ़ रही है महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अचानक राधिया की नजर पड़ती है अपने हाथों में उन ताजा फूलों पर जो अब पड़ चुके हैं काले, जिसके चलते उसके हाथों से सारे फूल नीचे गिर जाते हैं और वो घबरा जाती है।

इतना ही नहीं, वो तो महादेव के सामने हाथ जोड़कर विनती भी करती है कि वो उसे कोई राह दिखाए। ऐसे में देखिए कैसे महादेव उसे दे देते हैं आशीर्वाद अपने त्रिशूल के रूप में।

बस फिर क्या, राधिया वो त्रिशूल अपने हाथों से उठाती है और जाकर टेबल पर रख देती है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पर, जहाँ पर नीले रंग की स्याही पड़ी हुई है जो दर्शा रही है विष। ऐसे में वो स्याही देखकर राधिया बेहद परेशान हो रही है, क्योंकि वो स्याही ना सिर्फ जमीन पर है बल्कि उसके हाथों पर भी है, और वो घबराने लगती है।

कि तभी वहाँ पर आ जाता है प्रथम और वो राध्या से जानना चाहता है कि आखिर राध्या को हुआ क्या है, लेकिन राध्या उसे धक्का दे देती है। ये देख प्रथम हैरान है, लेकिन राध्या चुपचाप वहाँ से चली जाती है।

0: दरअसल अभी तक तो राधे को लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है, पर बहुत कुछ नई नई चीज़ें हो गई हैं। वो अचानक से बेहोश हो जाती है और सडनली जब उठती हैं तो किसी तांत्रिक की गुफा में होती हैं। वहाँ से जैसे तैसे घर वापस आ गई हैं, पर अब उन्हें खुद डाउट होने लग गया है कि देर इज सम नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से सब कुछ इतना गलत हो रहा है। तो वो सोचती हैं कि भगवान के पास जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो भोलेनाथ के मंदिर तक जाती हैं पर उनके पास नहीं जा पा रही, एट अ डिस्टेंस ही हैं। फूल चढ़ाने के लिए लेके गई थी वो भी काले हो गए हैं। तो विश्वकन्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राधा पे हावी हो रही है क्योंकि उन्होंने प्रथम को धक्का दे दिया, वो गुस्सा कर रही हैं, कहीं से चली जा रही है। तो अभी राधा को एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है, बट कहीं ना कहीं डाउट आ गया है कि कोई तो नेगेटिव एनर्जी है। अब वो प्रथम को बता पाएंगी नहीं बता पाएंगी, उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगी, या विश्वकन्या उससे पहले ही उनके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाएगी, ये तो नहीं पता है। पर देखते हैं कि विश्वकन्या आगे और कितना विष फैलाएगी हमारे शो में।
1: मुझे इस राध्य को बेहोश करना पड़ेगा।
2: इस राध्य में जरूर कोई बुरी शक्ति है।
1: इस राध्य को हमारे घर से दूर ले जाओ।
3: मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बस राध्य जहाँ भी हो ठीक हो।
4: दूर हटो हमसे वरना।
5: फिलहाल तो राध्या विश्वकन्या से अनजान है, लेकिन घर वाले वो बेहद परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें राध्या कहीं नजर नहीं आ रही। क्या ओमकार, क्या रजनी, क्या प्रथम और क्या घर वाले राध्या को ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ पर पहुँच जाती है राध्या। ऐसे में उसे देख प्रथम बेचैन हो उठता है और जाकर उसे गले लगा लेता है। भाई राध्या की ऐसी हालत में प्रथम उसका ख्याल रखने लगता है और घरवाले उसे जानना चाहते हैं कि आखिर राध्या गई कहाँ थी। अब राध्या कश्मकश में है क्योंकि वो सच बता नहीं सकती कि उसके साथ दादीसा ने चाल चली है, उसे एक तांत्रिक के पास भेजा था। ऐसे में देखिए कैसे राध्या ने तुरंत ही बात को घुमा दिया और सभी घर वालों के सामने झूठ बोल दिया।
6: वो राध्या को फिर से परेशानी शुरू हो गई है। अचानक वो दादी जो हमारी माँ है वो परेशान कर रही है उसको दोबारा से फिर से कि किसी तरह से इसको घर से निकाला जाए। कुछ नागिन आती है और यू नो इधर उधर हमारे घर में घूमती है और सडनली शायद मुझे भी इतना पता नहीं है वो राध्या के ऊपर कुछ ऐसा है कि आती है। फिर माँ जो है उसको तांत्रिक के पास लेकर जाती है, फिर वहाँ से किसी तरह से वो फाइट करके अब वो हमारे घर में आती है। हम उसको घर में ढूंढ रहे थे कि आखिर राध्या गई कहाँ। तो वो तांत्रिक की इधर थी लेकिन जब घर में आई तो फिर दादी को देखकर वो इतनी इमोशनल हो जा रही है कि मतलब यू नो घर को हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करती है। हालांकि उसे पता है कि सारी चीज़ें दादी ने किया है लेकिन फिर भी राध्या ये बताती नहीं है और वो झूठ बोलती है कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और हम जो है उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल में गए हुए थे।
5: फिलहाल तो राध्या ने झूठ बोल दिया है लेकिन उसके अंदर अभी सवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि अब उसके साथ हर चीज गलत हो रही है। इतना ही नहीं, उसे वापस घर में देखकर दादी बहुत परेशान है और अब वो अगली चाल चलेंगी ताकि राध्या को यहाँ से निकाल सके। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: इश्क और मेकअप दोनों का ही सही बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रूहानी। वैसे रूहानी आपकी कहानी में तो हमने देख ही लिया, पहले तो आया यहाँ पर इश्क का जुनून आपकी और गुरु की ये जोड़ी, और उसके बाद देखिए एंट्री हुई किसी और की और कहानी में सब कुछ बहुत ही अलग हो गया। जी हाँ, मैं तो बात कर रही हूँ रेवा की। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन दोनों के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज। क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग ड्रामा? यस ऑफ कोर्स।
8: इस धोखेबाज ने हमारे इकट्ठे किए गए पैसों को बैंक से चोरी हुए पैसे बताकर आपसे आपकी कोठी छीन ली, आपसे आपका सम्मान छीन
9: लिया। करुण ने किया गौतम का पर्दाफाश। घर में शुरू हुआ ड्रामा। गौतम के बंदूक के निशाने पर रूहानी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज गुरु सारे सबूतों और गवाहों के साथ पहुंच गया है घर में। वो अपने साथ पुलिस तो लाया ही है, साथ ही साथ लेकर आया है पुष्पी और गौतम का पीए मिश्रा, जिन्होंने कर दिया है गौतम का भांडाफोड़। इतना ही नहीं, आज तो गुरु और रूहानी ने मिलकर भी गुरु के पापा की आंखें खोली और उन्हें सारा सच बताया, जिसे सुनकर गुरु के पापा देखिए कितने इमोशनल तो है ही, साथ ही साथ गौतम पर भड़क गए हैं।
8: इस धोखेबाज ने हमारे इकट्ठे किए गए पैसों को बैंक से चोरी हुए पैसे बताकर आपसे आपकी कोठी छीन ली, आपसे आपका सम्मान छीन लिया।
10: हमारे
11: दोनों परिवार को बचाने के लिए मैंने सारा नाटक किया। मैंने अपने आप से किया हर वादा इस बारे में।
9: सच का खुलासा हो चुका है और गौतम के काले इरादों का भी। ऐसे में सभी को सच पता चल गया है कि कौन सही है और कौन गलत।
12: मिस्टर गौतम सिंह, आपके पीए ने बयान दे दिया, आगे की कार्रवाई के लिए आपको हमारे साथ चलना
13: होगा। नीचे गिरो,
12: तो आंखें नोच ले जाएंगी तुम्हारी, समझे?
14: तेरा गौतम सिंह, ये हमारा परिवार, हमारी ताकत।
15: बहुत गुनाह कर लिया तुमने गौतम सिंह, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब से तुम राजनेता नहीं, गुनहगार कहलाओ।
11: तुम जैसा घटिया आदमी ना इंसान कहलाने के लायक नहीं है गौतम।
9: भाई गौतम को तो सभी की खरी खोटी सुननी पड़ी, लेकिन इन सब में देखिए कैसे पुष्पी और मामी अपना फायदा ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो पहुंच गई हैं रूहानी और गुरु के पास अपने किए की माफी मांगने के लिए, और देखिए कैसे इनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं ताकि गुरु और रूहानी इन्हें माफ कर दे।
11: हम जानते थे कि तुम माफ करो क्यों। देखो मैनेज, अपने स्वार्थ को पूरा करते करते आप कितने।
9: लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू होता है जब पुलिस गौतम को गिरफ्तार करने आती है और गौतम पुलिस की बंदूक छीनता है और बंदूक के निशाने पर रख देता है रूहानी को। ऐसे में अब रूहानी की जान खतरे में पड़ गई है और गुरु और सभी घर वाले काफी घबरा गए हैं, क्योंकि गौतम पर तो सड़क सवार है, वो कुछ भी कर सकता है खुद को बचाने के लिए। और देखिए वो बंदूक चलाता भी है गुरु की ओर ताकि गुरु को वो जान से मार सके, लेकिन गुरु की जान बचा लेती है पुष्पी। जी हाँ, रक्षक बन पुष्पी गुरु को बचाती है और पुष्पी को लग जाती है। यानी कि गुरु को बचाने के लिए पुष्पी ने अपनी जान दांव पर लगा दी है। अब तो गौतम जेल जाकर ही रहेगा। अब देखना होगा कि इसके बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: जब मन सुंदर होना तो हर लुक अपने आप खास बन जाता है। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आज हमसे हमारी रूही। लेकिन क्या हो रहा है आज रूही और नाहर की इस कहानी में? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट या फिर कोई नई सिचुएशन? क्या आएगी यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से आएगा कहानी में कोई नया ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।

0: चिता को आई मम्मी पापा की याद। दादी ने लगाई भोलेनाथ से फरियाद। जानवी ने सुनाया शुभ समाचार। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज रुचिता के हाथों लग गई है उसकी फैमिली एल्बम, और देखिए कैसे वो फैमिली एल्बम को ओपन कर अपने मम्मी पापा की तस्वीरें देख रही है, उन्हें याद कर रही है और अपने मम्मी पापा के प्यार की प्रशंसा भी कर रही है। इतना ही नहीं, मन ही मन वो यही दुआ मना रही है कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई राजकुमार आए। जो प्रथम के जैसा हो, और जैसा प्रथम रूही से प्यार करता था वैसा ही उसका राजकुमार भी उससे उतना ही प्यार करे, और ऐसे में वो एल्बम को अपने सीने से भी लगाती है।
1: सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिकर।
2: मैं तो अपने मम्मी पापा के ख्यालों में हूँ और एल्बम में भी मैं उन्हीं को देख रही हूँ एंड देख के बहुत इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज उनकी बहुत याद आ रही है। एंड जैसे कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है सो उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत पवित्र बहुत साफ थी। सो श्रावण के महीने में जब भी मैं उनकी फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे शिव पार्वती जी का रूप उन दोनों में दिखता है। सो वो देख के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ एंड देन मुझे ऐसे भी याद आता है कि उनके जैसे मुझे कोई मिलेगा क्या बिकॉज ऑफ मेरा कलर मेरा अपियरेंस। विल एनीवन लाइक मी जस्ट द वे माय डैड यूज्ड टू लव माय मॉम। सो ये सब थॉट्स में आई एम वेरी मच इन्वॉल्व्ड। सो इसमें तो बहुत सारी फोटोज है पुरानी सबकी। ये तो मैं कोई भी फोटो देख के वो फील कर रही थी एक्चुअली। ये वाली फोटो थी जो मैं देख रही थी। बहुत क्यूट सी है।
0: यहाँ रुचिता को अपने राजकुमार का इंतजार है तो वहाँ दादी भी सावन के इस महीने में भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करने के लिए पहुँच गई है क्योंकि वो चाहती है कि उनकी जानवी की शादी सिंघानिया परिवार में हो। ऐसे में देखिए कैसे ना सिर्फ फूल शिवलिंग को दूध से नहला रही है बल्कि मनोकामना भी मांग रही है।
3: घर की बहू बनने का सौभाग्य दिलाइए प्रभु, उसके भाग्य में ये खुशी लिख दीजिए प्रभु। आपसे आपकी ये विनम्र निवेदन करती है, मेरी ये मनोकामना पूरी कीजिए प्रभु, मेरी ये मनोकामना पूरी कीजिए।
0: वो कहते हैं ना सच्चे मन से की गई प्रार्थना रंग लाती है, और वो रंग ले आई है। जरा देखिए कैसे जानवी को आ गया है कॉल, वो भी सिंघानिया के परिवार से, और वो अपने घर में पूजा का इवेंट जानवी से ही करवाना चाहते हैं। ऐसे में जब जानवी ये गुड न्यूज अपनी दादी को सुनाती है तो दादी खुशी के मारे फूली नहीं समाती और पहुँच जाती है भोलेनाथ का फिर से शुक्रिया अदा करने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी है अपनी जानवी को उस घर की बहुरानी बनाने की।
4: निमंत्रण को हमें
5: चले जाना चाहिए बेटा।
4: ये सलवार सूट पहन के जाए
6: बड़ी ना है। अब मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है सलवार सूट पहनने के लिए, और वैसे भी उनका थीम येलो कलर
4: येलो थीम है। अरे ये देख येलो रंग का ही सलवार कमीज है।
0: अब दादी के आगे भला किसकी चलती है, ऐसे में जानवी मान भी जाती है लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है रुचिता पे, और वो पहुंच जाती है रुचिता को अपने साथ चलने की गुजारिश करने के लिए लेकिन रुचिता जाने से मना कर देती है। ऐसे में दादी नहीं चाहती कि ये प्लान पर ब्रेक लगे, इसीलिए वो भी रुचिता से कहती है कि उसे भी जानवी के साथ वहाँ जाना चाहिए।
6: कितने प्यार से बोल रही है। अरे नानी आपको तो पता है ना कल क्या हुआ था।
5: हाँ हाँ मुझे पता है कल क्या हुआ था। तो जब उन्होंने बुलाया है तो चली जा, किसी बहाने उनसे माफी भी मांग लेगी तू। और ये तो हो सकता है कि उन्हें खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया हो। देख मुझे पता है।
0: खैर अब तो जानवी के साथ साथ रुचिता को भी सिंघानिया हाउस जाना होगा। अब देखना होगा क्या इस परिवार का कनेक्शन सिंघानिया हाउस से जुड़ पाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: जिस तरह सही मेकअप आपके चेहरे की खूबसूरती को निखार देता है, उसी तरह ये जो ट्विस्ट आते हैं हमारी कहानियों में, ये भी तो इन कहानियों को निखार देते हैं, क्योंकि ये ट्विस्ट ही लेकर आते हैं इनमें नए नए मोड, लेकर आते हैं हमारे लिए मनोरंजन का मसाला। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ।
8: मैं ऐसा लग रहा होगा कि तुमने थाली फेंक के बहुत बड़ी गलती कर दी, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
9: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई नर्मदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और आज तो उसे वहम हो रहा है कि कोई उस पर अटैक कर रहा है। तभी तो देखिए वो कितनी डरी और सहमी हुई है। भाई इतना ही नहीं, वो तो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में वो चिल्ला चिल्ला कर घर वालों को बुला रही है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर और कोई नहीं बल्कि रज्जी आ जाती है। और उसके बाद तो जो हंगामा शुरू होता है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था।

る。これはこれ、アスパダロ、アスパダロ、ドロー、お願い。

0: भाई मोगरा ने उस लड्डू में ऐसा कुछ मिलाया था जिसके चलते देखिए कैसे नर्मदा को रच्ची की शक्ल पर शैतान नजर आ रहा है और ये देखकर वो बहुत घबरा रही है।
1: भाभी हमारी बात सुनिए, हम हैं भाभी, आराम से। भाभी हम हैं,
2: बचाओ बचाओ।
0: ऐसे में उसकी आवाज सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया और देखिए कैसे रज्जी पर ही इल्जाम लगाने लगा। लेकिन रज्जी ने अपने आप को यहाँ पर सही साबित करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी।
1: आशा, डॉक्टर को कॉल कीजिए ना। ये मिठाई का डब्बा ये कहाँ से है?
3: एक सेकंड,
1: ये सब किया धरा तुम्हारा है ना? तुमने इसमें कुछ नशे वाला मिलवाया होगा। धीरज, आप लोग इसकी सच्चाई जानते हैं ना? आज प्लीज सबको बता ही दीजिए, आज इसने नर्मदा भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग सब सच जानते हैं ना? अब बता दीजिए प्लीज।
4: रज्जी, मोगरा पर दोष मत लगाओ। आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, बात तुम्हारी हो रही है यहाँ पर। बस आशु दादा, आपके पास कोई सबूत है? मोगरा भाभी, आपके पास कोई सबूत है कि ये सब रज्जी ने किया है? नहीं ना, तो फालतू इल्जाम मत लगाइए उस पे।
1: धीरज, नर्मदा ने हमें खुद बताया था कि ये पिछले कुछ दिनों से उसे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही, और ये आज की बात नहीं है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो नर्मदा से खुद पूछ लो। नर्मदा भाभी तुम्हारा पूरा सच वैसे भी सबको बता देंगे एक बार वो ठीक हो जाए तब। अभी हमारे पास तुम्हारी बकवास के लिए कोई टाइम नहीं है। भाभी आप ठीक है ना?
0: ऐसे में मोगरा का प्लान हो गया कामयाब, क्योंकि अब नर्मदा का बच्चा अबॉर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तबीयत बेहद ही ज्यादा खराब है।
1: अब तो कर लो मुंह मीठा।
2: लो, बोला था ना नर्मदा भाभी को हाथ मत लगाना, जान से मार देंगे।
5: तुम देना साथ मेरा।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में भाई अब रक्षित के बाद अपराजिता को हो गया है उससे प्यार, लेकिन इनकी लव स्टोरी शुरू होने के पहले ही फिर एक बार शुरू हो गई है इन दोनों में गलतफहमियां।
4: चले
1: चली चली
4: हो गया ना?
1: क्या

0: भाई असल में रक्षित को ये गलतफहमी हो गई है कि अपराजिता ने रवीना के साथ हाथ मिला लिया है, तभी तो देखिए कैसे वो उस पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अपराजिता अपनी सच्चाई को प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब इन दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ चुकी है।
1: ऑफिस में छानबीन करते हुए देखा, मैंने फिर भी आप पर भरोसा किया। और आपने क्या किया? चोरी छुपे अकेले मेरी कंपनी के राइवल से मिलने आ गई। अगर आज मुझे किसी चीज पर भरोसा है ना, तो आपकी गद्दारी भर।

0: प्लीज सर, आप मुझे गद्दार नहीं बुला सकते। आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ।
1: फरेबी, धोखेबाज, बेईमान, नमक हराम, क्या बुलाऊं मैं आपको? बताइए ना, क्या बुलाऊं मैं आपको?
0: रक्षित भैया,
1: मैं इनसे बात करो, आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा।
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
3: मायरू,
0: ये सब क्या हो गया? माय बिल्ली
3: बेटू, बहुत लंबी स्टोरी, मैं आपको रास्ते में बताता हूँ।
4: स्टेपलेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई मायरा की लाइफ ने ले लिया है बेहद ही बड़ा यूटर्न, जहां वो अपनी इस नई जिंदगी के लिए बेहद खुश है, लेकिन अरमान को हो रहा है उसकी हरकतों पर शक।
5: भाई पार्टी सॉन्ग बजाओ यार।
0: भैया मैं अंदर से पैसे लेके आया, आप प्लीज यहाँ वेट करो।
6: समर दमानी ने हमारे खिलाफ जो भी नॉनसेंस सर्कुलेट कराई है उसे इंटरनेट से हटवाइए, और जिन लोगों और चैनल ने वो आर्टिकल शेयर किया है उन्हें लीगल नोटिस भेजो।
3: मैं कैब से आई है, कितना हो भैया?
7: 2000 दे दो, बाकी के पैसे मैं भैया जी से ले लूंगा।
3: जयपुर से उदयपुर किसी लड़के के साथ आई है,
1: मैं नहीं बता सकता।
4: ऐसे में कहीं ना कहीं इसी डर और शक के चलते देखिए कैसे वो पहुंच गया है जयपुर अपनी बिटिया रानी को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मायरा ने भी जिद पकड़ ली है कि वो घर नहीं जाएगी।
1: मायरू, आप इस तरह से बचकानी जिद नहीं कर सकते।
0: अभी तो आपने कहा कि मैं आपके लिए बच्ची हूँ और हमेशा रहूंगी, तो मैं बचकानी जिद क्यों नहीं कर सकती? आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी मुझे बच्चे की तरह, कभी बड़े की तरह ट्रीट नहीं कर सकते।
1: क्या पापा से किस तरह से बात कर रहे हो? मैं आपके लिए अपना सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पर।
0: Exactly my point. क्या आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ क्यों आए? मैंने थोड़ी देर के लिए आपका फोन नहीं लिया तो आपने फ्लाइट ले ली।
1: जब आप पेरेंट बनोगे ना तब आपको समझ में आएगा। पेरेंट्स बच्चों को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
0: और आपने मुझे सेफ कहाँ रखा पापा? आप तो खुद ही अरेस्ट हो गए। आप मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट तो करो। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंसूंगी तो मैं आपको खुद बताऊंगी, पर मेरे बताने तक तो रुको। अगर आप मुझे नॉर्मली सरप्राइज देने आते तो मैं बहुत खुश होती, पर सिर्फ आपकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने पापा को देख के खुश नहीं हूँ।
8: आपकी जिंदगी में खूबसूरत मेकअप की तरह हजारों एंटरटेनमेंट के रंग लेकर आ रही हैं आप पति ब्रह्मचारी की अवनी यानी वंदना राव। हमने की है इनसे एक खास मुलाकात। तो कैसा है वंदना का घर, कैसी हैं ये ऑफ स्क्रीन, किस तरह रखती हैं ये अपने आप को सुपरफिट। फिर हमने किया है इनके साथ इनके सेट तक का सफर भी। आइए जानते हैं वंदना को अप क्लोज एंड पर्सनल।

0: रियल में वंदना है संस्कारी, लेकिन सीरियल में अपनी है षड्यंत्रकारी।
1: मैं लकी हूँ या नहीं मैं ये नहीं जानती। मैंने आज से आपको अपना भगवान मान लिया।
0: ये है वंदना राव, जिन्हें आप सीरियल ना उम्र की सीमा हो और गुम है किसी के प्यार में देख चुके हैं, लेकिन इन दिनों ये अवनी बनकर ईशा को टेंशन पर टेंशन दे रही हैं, क्योंकि इनके इरादे नेक जो नहीं है। वैसे रियल लाइफ में ये खुश मिजाज की हैं, टेडी संग खेलती हैं।

को पूरा रूम गर्ली गर्ली लगेगा। सो ये मेरे क्यूटीज हैं, आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, मेरे मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब इतने क्यूट क्यूट है। सी मैं बचपन से कलेक्ट करती रहती हूँ, और मेरी मॉम ना जब भी आती है आधे से ज्यादा तो मतलब फेंक देती है कि भाई कितना इकट्ठा करोगी तुम। कैसे इतना बता दो। ये मेरे कबर्ड है जहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स हैं, मैं ओपन नहीं कर सकती हूँ, बट ठीक है आप देख सकते हैं, ये मेरी कबर्ड है, थोड़ा सा ऐसा खोल के

और देखिए, मुझे ये फिगरिंस बहुत पसंद है, ये लिटिल क्यूट पांडा आप देख सकते हैं और पेंगुइन, दीज आर पेंगुइन्स एंड पांडास मैं आपको दिखाती हूँ, छोटू छोटू पांडास, सी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मतलब कुछ ज़्यादा, मुझे थोड़ा रूम ना एस्थेटिक चाहिए और थोड़ा गर्ली भी चाहिए, तो मैं कन्फ्यूजन में रहती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो मुझे जो जो अच्छा लगता रहता है मैं करती रहती हूँ और जो अच्छा नहीं लगता मैं वो हटा देती हूँ। तो बहुत बार ऐसे करती हूँ, ये मेरी चेयर है जहाँ पर बैठ के मैं मेकअप करती हूँ, मोस्टली मैं मेकअप ही करती हूँ यहाँ पर बैठ के, मैं कुछ स्टडी का या किसी चीज़ का कोई काम नहीं करती, सिर्फ मेकअप होता है मेरा यहाँ बैठ के। और ये मेरे रूम से व्यू है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये मेरे रूम से ये बैल्कनी का व्यू है, आप देख सकते हैं, बैल्कनीज वहाँ पे भी हैं, बट मुझे अकेले कभी बैठना होता है, मेरी मॉम को पता है कि भाई इसको अकेले टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ बैठती हूँ, यहाँ चाय कॉफ़ी सब पीती हूँ मैं बैठ के। ये मेरा मिरर है जहाँ पे मैंने फैदर्स और ये सब कुछ ऐसे करके डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे मिरर्स बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे खुद को देखना मुझे बहुत पसंद है गाइस। और यहाँ पे भी मिरर है, ये भी मिरर है, तो मेरे रूम में आपको काफ़ी सारे मिरर मिलेंगे।

0: अब हम लोग कर लेते हैं योगा, क्योंकि फिटनेस भी जरूरी है गाइस। उसके बाद हम लोग चाय बनाएंगे और फिर यहाँ बैठ के हम लोग चाय पिएंगे। चलिए,
1: समय हो चला है इनके दिन के दूसरे पड़ाव का और इनके दिन की शुरुआत होती है योग से, क्योंकि ये सेहतमंद रहना चाहती हैं, चाहे तन से हो चाहे मन से हो। ऐसे में वो अपनी योग की शुरुआत सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करने के साथ साथ सूर्य नमस्कार से करती हैं, क्योंकि यही एक ऐसी क्रिया है जिससे आपकी पूरी बॉडी एक ही बार में स्ट्रेच हो जाती है और योग के आसन करने के लिए तैयार हो जाती है।
0: तो अब मैं सूर्य नमस्कार करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी के लिए बहुत सही है। आप कुछ भी ना करें पूरे दिन, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा टाइम, मतलब आप 10 से 12 सूर्य नमस्कार कर लें, वो भी आपके लिए इनफ है। तो मैं पहले सूर्य नमस्कार करने जा रही हूँ, सो लेट्स स्टार्ट।

0: योग करके वंदना राव ने अपने तन और मन दोनों को ही तंदुरुस्त तो कर लिया, लेकिन अब बारी है तीसरे पड़ाव की, जिसे इनकी बॉडी डबल चार्ज हो जाती है, यानी डबल एनर्जी की, जो इन्हें मिलती है डांस से, और ये इनका रिचुअल है। योग के बाद डांस जरूरी है।
1: तो हम लोगों ने योगा कर लिया है, अब क्विक क्विक हम लोग थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, पहले योगा एंड देन डांस। तो लेट्स डू इट एंड डांस विद मी।

0: डांस कर। इनकी एनर्जी चार गुना बढ़ गई है। ऐसे में इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए चौथा पड़ाव बहुत जरूरी है, जो है चाय की चुस्की। इसीलिए देखिए कैसे वो झटपट पहुंच गई हैं अपनी रसोई में, जहां पर वो अपने हाथों से बना रही हैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह सुबह एक चाय की प्याली दिन को खुशहाल बना देती है।
1: मुझे कॉफ़ी और चाय बहुत पसंद है, लेकिन दोनों ही पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद होती है मैं चाय भूल जाती हूँ, कभी कभी मुझे चाय बहुत पसंद होती है मैं कॉफ़ी भूल जाती हूँ। आजकल वो डेज़ हैं जिनमें मैं कॉफ़ी को भूल चुकी हूँ, मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ, कॉफ़ी वंस इन अ वाइल। तो अभी मेरा मूड कब चेंज होगा, मैं फिर दोबारा से कॉफ़ी पे आ जाऊँगी। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग चाय पियेंगे, और कभी आप लोगों को दोबारा से कभी कॉफ़ी पीने का मन हो तो आप लोग मेरे घर पे आ सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊंगी। हाँ, अब हमारी चाय बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, और हम इसको थोड़ा सा और पकाते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए, और देखते हैं कि कैसी बनेगी चाय। वैसे मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, और इवन मेरी मॉम मेरी कभी तारीफ नहीं करती है, लेकिन मेरी मॉम भी कहती है कि मैं चाय थोड़ी अच्छी बना लेती हूँ।

मोस्टली ना मैं बारिश को इंजॉय यहाँ बैठ के करती हूँ अपनी चाय के साथ. मुझे इवनिंग चाय तो चाहिए ही चाहिए, और इवनिंग चाय में अगर बारिश हो जाए तो ओह माय गॉड.

0: अब हम लोगों ने इतनी सारी एक्टिविटीज कर ली, अब मैं फ्रेशन अप होके और रेडी होती हूँ और चलते हैं मेरे सेट पे।
1: पांचवे पड़ाव में वो तैयार शैयार होकर निकल पड़ती हैं अपने काम के लिए, और जाने से पहले वो ऊपर वाले का आशीर्वाद

लोग निकलते हैं क्योंकि सेट के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। क्विक क्विक, ये मैं मेरे चॉकलेट ओट्स डाल रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग में मैं यही खाती हूँ। बैग एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज,

0: सुबह सुबह मुंबई की ताजी हवा लेते हुए और सारी सिग्नल्स क्रॉस कर वंदना राव पहुंच गई हैं सीधा पति ब्रह्मचारी के सेट पर। और सेट पर पहुंचते ही वो सीधा पहुंची हैं अपने मेकअप रूम में, क्योंकि मेकअप रूम में शुरू होता है इनका छठा पड़ाव और वो पड़ाव है रेडी स्टेडी गो विद मेकअप।
1: सो अब आप हैं अवनी के रूम में और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं मेकअप करने जा रही हूँ और फिर आपकी वंदना अवनी में चेंज हो जाएगी। सो ये वाला कॉस्ट्यूम मैं पहनने वाली हूँ, आप देख सकते हैं, दिस वन आई एम गोना वेयर फर्स्ट और फिर आपकी अवनी आपसे मिलती है जल्दी ही। मैं मेकअप मेरा खुद करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे चेहरे से बहुत प्यार है, तो मुझे किसी के हाथ से किया हुआ मेकअप पसंद नहीं आता है। कई बार हार्ड हैंड से करते हैं कई लोग, तो मुझे मैं बिल्कुल सॉफ्टली बहुत प्यार से ट्रीट करती हूँ मेरे चेहरे को, तो मैं खुद ही मेकअप करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ। लेट्स स्टार्ट।
2: मैंने ये फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया कि हाँ ठीक है यार बात करते हैं और बता क्या चल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट शो, हम लोग काफी ज्यादा हमने बातें शेयर की और चीजें शेयर की, तो ठीक है कभी कभी हम लोग साथ में मस्ती भी करते रहते हैं सेट पे।
1: और स्पेशली जब भी काव्या मेरे रूम में आती है तो बोलती है कि तेरे पास कुछ चटर बटर खाने को है क्या? अब चटर बटर मुझे समझ नहीं आता क्या खाएगी ये, तो इसको कुछ ना कुछ चटपटा खाना होता है।
2: हाँ, लाइक अपार्ट फ्रॉम हमारे लंच के बाद जो थोड़े स्नैक्स होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है किसके पास क्या अलग अलग चीजें हैं वेफर्स में, तो ठीक है हम लोग को थोड़ा बहुत खाते रहते हैं पूरे दिन, बस यही है।

अवनी के मेकअप में इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो फटाफट हो जाएगा सब कुछ। अरे मैं आई शेडो कर रही हूँ और साथ में मेरी विग भी लग रही है और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, ये इसको बेचारे को पूरा दिन मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मेरी विग इतनी हैवी है ना, मैं बार बार बोलती हूँ मेरे यहाँ से खींच रहा है वहां से खींच रहा है, ये बेचारे पूरा ध्यान रखती है।

ये सबसे ज्यादा फेमस अपने ब्लश की वजह से है। इवन मोनिका भाभी का एक सीन भी इसी को देख के किया गया है, याद है।

0: अभी मेरा मेकअप है, सब कुछ हो गया है, पर मैं चेंज करने वाली हूँ। और इधर मैम पूरा लेके खड़ी है सामान की, बस जल्दी से करवा दो चेंज। तो मैं चेंज करती हूँ।
1: तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने मेरे पिंस भी निकाल दिए हैं। तो मैं अवनी आपकी रेडी है कम्प्लीटली, और अभी मेरे को डायलॉग्स मिल चुके, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं अवनी के, तो वो मैं पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे फंबल कभी नहीं करना चाहूँगी। सो अभी मैं जा रही हूँ सेट पे।
2: मेकअप कर और अवनी के कपड़े पहन, वंदना तैयार है अपना काम शुरू करने के लिए। और देखिए सेट पर सीन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, डायरेक्टर भी रेडी है और अवनी को आज इंटेंस सीन करना है क्योंकि अवनी ने सूरज के पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में जो ले लिया है। खैर ये तो कहानी है, लेकिन वंदना भले ही अभी आई हो पर वो सबकी फेवरेट बन चुकी है।
3: बहुत बढ़िया, शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस और मेहनती हैं, डेडिकेशन बहुत ज्यादा है इनमें। एंड डेफिनेटली हर एक जो किरदार है, किरदार में जो यू नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू नो कंफ्यूजन वाली चीजें लेनी थी वो बहुत ही बखूबी तरीके से ली। एंड डेफिनेटली विशिंग फॉर द बेस्ट फ्यूचर एंड बेस्ट लाइफ।
4: थैंक यू सो मच। और मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, सीरियसली मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब मैं इतनी कंफर्टेबल फील किया ना मेरे सेट में, मतलब बहुत टाइम लगता है उस चीज़ पे, लेकिन आपने मुझे बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील कराया, अच्छे से सीन किया हम लोगों ने।
2: तो देखा आपने बैकड्रॉप का नजारा, यानी सब रेडी स्टेडी गो है सीन स्टार्ट करने के लिए। ऐसे में हम भी लेते हैं वंदना राव से विदा और छोड़ जाते हैं इनको इनके शूट पर, जहां पर ये ईशा पर जुल्म ढाएंगी जो कहानी में लाएगा ट्विस्ट। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: आपके फेवरेट स्टार्स भी हमेशा अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, कभी कभी वो एकदम सिंपल से ग्लैमरस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो होता है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा हो जाता है, उनका लुक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है जो कर देता है हम सबको शॉक। बिल्कुल ऐसा ही है हमारे ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
6: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं नए शोज की। सोनी टीवी लेकर आ रहा है तीन तीन नए शोज जिसकी खास झलक हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं केबीसी की। भाई अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति तो आ ही रहा है, ऐसे में देखिए कैसे अमिताभ बच्चन रैप करते नजर आ रहे हैं।
7: ढका जाएगा कड़ियों से कड़ियां तू जोड़ के तू देख, सही ऑप्शन तक पहुंचना सोच के तू देख, ये खेल नंबरों का ना पैसों की बौछार है, ये वॉर है तेरी बुद्धि का थॉट प्रोसेस हथियार है, शून्य से शिखर पहुंचना आसान नहीं होगा, बिना मधे अकल को महान नहीं होगा, या बेबी महान नहीं होगा।
6: और इसी के साथ आएगा कौन बनेगा करोड़पति का मराठी वर्जन, यानी कि जिसका नाम होगा कौन होनार करोड़पति, और इसकी होस्ट होंगी माधुरी दीक्षित। देख लीजिए इसकी एक पहली झलक, जहां महाराष्ट्रीयन अंदाज में माधुरी दीक्षित नजर आ रही है।
8: महाराष्ट्राच्या घरोघरी चर्चा रंगणार, कारण आता खेळ बदलणार, कोण होणार करोडपती।
6: अगला शो है क्राइम पेट्रोल, जिसे होस्ट करने वाले हैं सिंघम यानी कि अजय देवगन। देख लीजिए इसका पहला प्रोमो।
9: रात को घर का ताला लगाना, पर अब जो हो रहा है और ऐसे बहुत सारे केसेस है, जुर्म करने वाला कोई अनजान नहीं अपना होता है, जिन्हें हमारे घर का रास्ता भी पता होता है, कभी कभार चाबी भी होती है और डाइनिंग टेबल पर कुर्सी भी, मतलब कई केसेस में अपना ही खून। इट्स शॉकिंग। तो इस बार क्राइम पेट्रोल में हम ऐसे केसेस सामने लाना चाह रहे हैं जिन्होंने देश को हिला दिया। हमें घबराना नहीं है, हमें समझना है, क्योंकि ये आज हो रहा है ऐसे ही कुछ केसेस में मैं रहूंगा आपके साथ, साथ समझेंगे क्राइम पेट्रोल के नए सीजन में, क्राइम पेट्रोल, क्राइम का करंट सीजन।

0: शो का नाम अब तक रिवील नहीं हुआ है, तो हो जाइए तैयार आपके चहेते सितारों को इन शोज में देखने के लिए।
1: थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा ये एंगल से लो ना, हाँ और आप भी थोड़ा इधर आओ, इधर इधर भाई आप भी यार, थोड़ा बैठो नीचे, थोड़ा नीचे, सामने देखो सामने, ठीक है सब बराबर, गुड टू गो।
0: क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट से नोएना यानी कि बरखा ने शेयर किए हैं ये बीटीएस नजारे, आप भी डाल लीजिए इन पर एक नजर। क्यों?

सावन सोमवार के मौके पर निमृत कौर पहुंची महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे में उन्होंने शेयर की हैं अपनी भक्ति भरी ये तस्वीरें।

रॉकी ने हिना खान के लिए बनाई है ये स्पेशल डिश। ऐसे में सामने आई हैं ये तस्वीरें जहां दिखी रॉकी और हिना की ये प्यारी सी केमिस्ट्री। जल्द आने वाला है बिग बॉस का नया सीजन। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि इस शो में नजर आ सकती हैं अंजलि अरोरा और साथ ही होंगे पर्ल वी पूरी, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। भाई मौका है धीरज और विन्नी के बेटे जैन धूपर के बर्थडे का। ऐसे में ये पहुंचे हैं बर्थडे वेकेशन पर।

बस टीवी के नए शो 108 बेस हॉस्पिटल URI में नजर आएंगे शालिन मल्होत्रा, जो निभाएंगे एक अहम किरदार।

0: जैसे मेकअप के पहले हम करते हैं ना स्किन प्रेप, क्योंकि जितनी अच्छी होगी हमारी स्किन, मेकअप भी उस पर उतना ही अच्छा लगेगा, उतने अच्छे से सेट होगा। और कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यहाँ पर अपनी जिंदगी में डॉक्टर आरंभी को भी। देखिए, कुछ सिचुएशंस को उनको सॉर्ट करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों को उनको भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगी उनकी जिंदगी बैलेंस्ड। लेकर चलते हैं आप सबको डॉक्टर आरंभी के सेट पर और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
1: ध्रुव और आरंभी की नोकझोंक। आरंभी को सच की तलाश, ध्रुव बना आरंभी का सहारा। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी को खुद को बेगुनाह साबित करना है, घर वालों को ये बताना है कि उसने नायरा के दहेज की बात पुलिस तक नहीं पहुंचाई थी और इसी कोशिश में वो लगी हुई है। लेकिन आरंभी पर बराबर नजर रखे हुए है ध्रुव। तभी तो वो जब पुलिस स्टेशन में पहुंची तो वहां पहुंच गया ध्रुव भी, लेकिन आरंभी और ध्रुव का आमना सामना हो गया और देखिए कैसे ध्रुव और आरंभी में नोकझोंक शुरू हो गई।

0: हाँ हाँ जो भी देखा सुना है वो तो कोई इंसान अगर फोन पे बात कर रहा है और तुम एकदम पीछे जाके खड़ा होगी तो वैसे ही बना जाएगा कोई बात बात नहीं घुमा रहा है तो मैंने ड्रॉप किया उसके बाद मैं यहाँ पे आया भाई जी मुझे कहाँ कहाँ पे आके मुझे कौन मिला सरप्राइज आरंभी डिस्ट्रिक्ट से तो मुझे आपने दिख गई था क्या बस तुम मेरा पीछे से देखी मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था तो मुझे क्या कहा था कि तुम पाँच चल के घर जाने वाली हो तो क्या देखी तुम मेरा पीछा करेगी
1: आपको पता है मेरे सामने कितनी बड़ी मुसीबत टूटी हुई है और आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है करने के लिए कि आप किससे मिलते हैं
0: हां हां पता है तुम्हारे सर पे बहुत बड़ी मुसीबत होती है बट द पॉइंट इज झूठ की सबूत तुम मेरे भी चल के घर जाने वाली हो तो तुम यहाँ पे आ गई तो पता नहीं कैसे भी
2: खैर आरंभी पुलिस स्टेशन पहुंची ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार पेनड्राइव पुलिस स्टेशन में कौन देकर गया था। तभी उसे वहां एक शख्स मिलता है जो आरंभी को इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी औरत ने ये पेनड्राइव दी थी और अब आरंभी करेगी सीसीटीवी चेक। भाई पहले तो ये आदमी खबर नहीं बता रहा था लेकिन आरंभी के रिक्वेस्ट करने पर इस शख्स ने सच बता दिया और अब आरंभी सीसीटीवी चेक कर उस शख्स का पता लगाएगी जिसने पेनड्राइव पुलिस स्टेशन में पहुंचाई है। वैसे आरंभी और इस शख्स की सारी बातें छुप छुप कर सुन रहा है ध्रुव।

0: उनकी बात फिर से पहुंचा देता हूँ। हाँ, अभी कल ही एक आंटी आई थी, उससे पहले दो हाउस वाइफ आई थी। अभी पिछले दो दिन पहले कोई आया था जिसने मुझे पेन ड्राइव दी। अरे उस पेन ड्राइव ने तो एकदम बवाली कर दिया। मैंने खुद पुलिस स्टेशन में पेन ड्राइव दी थी। वो आपने सुना होगा वो डॉक्टर लोगों का, वो बहुत सबूत था उसमें। वो क्या नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर पेटर, हाँ नियोक्ता सर उनका। अरे मैडम आप है कौन, आप उन्हीं की फैमिली से तो नहीं है ना? पता नहीं कौन कहा कैसे आके फंसा दिया हमको। नहीं नहीं मैडम, आप
1: नहीं
2: आरंभी निकल पड़ी है नायरा के पास जाने के लिए। तभी वहाँ पर पहुँच जाता है ध्रुव और ध्रुव के मनाने पर आरंभी उसके साथ नायरा के घर की ओर निकल पड़ती है

0: ध्रुव और आरंभ भी नायरा के घर पहुंचे हैं ये सच पता लगाने के लिए कि अगर वो ये बता सके कि नायरा को ये बात किसने बताई। ऐसे में नायरा जितना सच उसे पता था वो बताती है, लेकिन उस शख्स की पहचान अभी भी छुपी हुई है जिसने ये सब कुछ किया।
1: तुझे कुछ भी पता है तो प्लीज
0: मुश्किल घड़ी में ध्रुव आरंभी का सहारा बने हुए हैं। अब देखना होगा कि सच की ओर आरंभी पहुंच पाती है या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सबसे महंगा मेकअप भी उस मुस्कान का मुकाबला नहीं कर सकता जो आपके आत्मविश्वास से आती है। जी हाँ, आत्मविश्वास ही है आपके लिए सबसे खूबसूरत मेकअप। तो बस आप रहे कॉन्फिडेंट, हमेशा मुस्कुराए, फिर ना तो आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत है ना ढेर सारे मेकअप की। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर, जिसे परोस रहे हैं हम आपको राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म।
0: श्रेया काल रानी रखी पार्टी। खुशी लॉकअप जीतने की। सितारों और दोस्तों का मेला।

0: पूछना।
1: भई इनकी करीबी दोस्त शिल्पा और माधुरी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई। इसके अलावा लॉकअप सीजन 2 के कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ नजर नहीं आए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनसाइड नजारे। झूठी खाई।

0: तो भाई बात करें गेस्ट की, तो श्रेया की इस पार्टी में शामिल हुए हैं कई सितारे जैसे कि नेहल, अर्जुन बिजलानी अपनी वाइफ नेहा संग, मिस्टर फैजू, शुभी जोशी, बसीर अली, पलक पुरस्वानी, फरहाना भट्ट, पैमिला तो है ही। इसके अलावा है विशाल आदित्य सिंह, अनुज सचदेवा,
1: कहता है अब घबराना क्या, ताल पे जब झूमे बदन,
0: सुजैन,
1: शर्माना क्या, खुल के झूमो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो,
0: किशोर सुयश, के अलावा श्रेया के कई और दोस्त पहुंचे इस पार्टी में चार चांद लगाने के लिए।

वैसे आज पाजी गर्ल श्रेया स्काई ब्लू कलर के इस आउटफिट में कमाल लग रही है और आज बाकी सभी सितारे भी पार्टी रेडी है। भाई आज की शाम शानदार जो है।

0: कभी नया लुक तो कभी नया किरदार, बस कुछ ऐसा ही होता है आपके फेवरेट एक्टर्स के साथ। और देखिए मेकअप तो प्ले करता है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि मेकअप तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है हमें। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर जो आपको चौंका भी देगा और उसके साथ साथ लेकर आएगा आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: ये रहा तुम्हारे दोस्त के लिए। अच्छा,
2: अरे नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस नए प्रोमो पर, जहां पर माधवी की जोड़ी बनेगी नई मुसीबत।
1: ये रहा तुम्हारे दोस्त के लिए। अच्छा, अरे भागा।
3: ओ फालूदा वाला तो बंद हो गया।
1: बंद हो गया मतलब
3: एफडीए वालों की वजह से
1: बहुत स्ट्रिक्ट हो गए भाई।
4: आई तुम हमेशा तीन चूड़ी पहनती हो ना।
5: अचार में तुरी गिर गई।
4: चूड़ी का टुकड़ा किसी कस्टमर के अचार में से निकला तो

0: हॉलीवुड की मूवी सेवन डॉग्स का ट्रेलर सामने आया है जो कि 21 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इस हॉलीवुड मूवी में नजर आ रहे हैं सलमान खान, बॉबी देओल और संजय दत्त। देख लीजिए इसका ट्रेलर।
1: अब तो भरोसा करोगे?
2: नहीं।
3: वायरसेस की एंट्री के साथ ही प्लेग्राउंड में शुरू हुआ असली केओस।
0: नजर डालीजिए प्लेग्राउंड सीजन 5 के इस नए प्रोमो पर जहां बवाल शुरू हो चुका है।
4: करिए फोर्थ परफॉर्मिंग प्लेयर कौन है?
5: कैप्टनसी क्या मिल गया अपने आपको? पता नहीं कहाँ की महारानी समझने लगा।
6: सामने वाला राम से बात कर रहा है तो 10वें माले पे चढ़ के बात, ऐसे तो संस्कार है।
5: संस्कार में
7: समझ में आई ना?

0: मिस्टर एंड मिसेस परशुराम जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। ऐसे में हुआ इसका लास्ट डे शूट, जहां सभी ने केक काटा और सभी हो गए काफी इमोशनल।
1: हमारी कहानी हमारे मूवमेंट्स को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, बिहाइंड द सीन्स एवरीथिंग, एंड इट रियली मींस अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। ईच एंड एवरी पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग, मेकअप, स्पॉट डालर्स, लाइटिंग, कैमरा डिपार्टमेंट, हर एक टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू।
3: इट इज लाइक अ फैमिली एंड इतना एंजॉय हम लोगों ने किया है, शायरी इस शो में किया। And the best part of this particular show ke hum sab log ek family ki tarah hain, yes, bahut enjoy kiya hai, thank you so much everybody.
0: अक्षय कुमार जल्द नजर आएंगे उनकी आने वाली नई फिल्म सामुक में, जिसकी शूटिंग 23 अगस्त को लंदन में शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हैवान का टीजर भी जल्द रिलीज होने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे और फिल्म हैवान सितंबर 11, 2026 को रिलीज होगी।

राम गोपाल वर्मा लेकर आ रहे हैं नई फिल्म जिसका नाम है पुलिस कंपनी, जो कि इंस्पायर्ड है पुलिस ऑफिसर दया नायक से। अब देखना होगा कि इसमें दया नायक का किरदार कौन निभाएगा।

0: आपने कभी नोटिस किया है आपके फेवरेट किरदार ऑन स्क्रीन तो एकदम दमदार एकदम सुपर ग्लैमरस हो गया, ऑफ स्क्रीन उतने ही सिंपल और सीधे साधे। तभी तो हो जाता है हमें अपने फेवरेट सितारों से प्यार, क्योंकि देखिए क्या कमाल करते हैं वो ऑन स्क्रीन, इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और आज हमने मुलाकात की है ऐसे ही एक सितारे से, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास और जानते हैं इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल।
1: उस जमाने की स्टोरी टेलिंग अलग थी, आज जमाने इस जमाने की स्टोरी टेलिंग अलग है।
2: दामिनी, क्या माफ जाओ।
1: और इमोशंस रिमेन द सेम, लोगों की अभी भी वही एक्सपेक्टेशंस हैं, एम्बिशंस हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं।
2: तुम्हारी तरह दुनिया के सामने जलील नहीं किया मैंने।
1: इंसान नेगेटिव था, वो बहुत ऑब्वियसली नेगेटिव हुआ करता था।
3: उन माँ बेटी को मैंने आज फिर से सास बहू बनाना शुरू कर दिया है।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसी अभिनेत्री जिनका एक ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है और आजकल आप इन्हें देख रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं एज दामिनी।
5: जैसा तुम्हारी बड़ी माँ चाहती है वैसा नहीं होगा गंगा, होगा वो जो मैं चाहती हूँ।
4: मेरे साथ है रावी गुप्ता, वेरी ब्यूटीफुल रैविशिंग। एंड रावी को मैंने जब आई स्टार्ट द जर्नी विद रावी, मुझे याद है कि टेलीविजन जब मैंने देखना शुरू किया था, एक शो मैंने देखा था ये नजदीकियां और सोनी, which was your debut show, and I remember very clearly it was a very coming of age show, and I think aaj ke zamane mein jo web series banti hai wo us type ka show tha. So it was I think early late 90s and 2000s,
1: 99 if I'm not mistaken. Yes. It was 99.
4: So how did ye nazdikiyan happen and your entry and your debut show?
6: Wo apni aankhon se meri zindagi ke sapne dekh rahi hai, un sapno ka kya hoga jo in aankhon ne dekhe.
1: To jo meri एक कोऑर्डिनेटर जो थी, उन्होंने मुझसे कहा कि रावी ये एक सोप बन रहा है, दे वर कॉलिंग इट इंडियाज़ फर्स्ट डेली सोप, उस तरह का।
6: मनीष, एक ऐसी बात है जो मेरी जिंदगी से मेरी सांसों की तरह जुड़ी हुई है।
1: डू यू वांट टू गो फॉर इट ऑडिशन के लिए? मैंने कहा उस समय कुछ इतना सोचा नहीं था अपने करियर के बारे में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज यंग एंड मॉडलिंग में मजा आ रहा था, ग्लैमरस प्रोफेशन था, आई वुड मेक अ लॉट ऑफ पॉकेट मनी। तो ऐसे ही तो शी सेड ट्राई करके देख, तेरा मन करे तो एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। एक्टिंग का, बीइंग एन एक्टर्स डॉटर, मैंने कभी ऑनेस्टली कॉन्शियसली नहीं सोचा था मैं एक्टिंग करूंगी। या तो खैर चली गई, और वहां पर जो डायरेक्टर थे ही वाज ऑडिशनिंग हिमसेल्फ, खुद ही थे, तो उन्होंने मुझे ही टोल्ड मी के नहीं दिस इज, उन्होंने थोड़ा सा मुझे हेल्प किया कि कैसे क्या चाहते थे मुझसे, एंड आई गॉट द पार्ट।
6: ये भी तो साइन है ना हमारी अच्छी फ्रेंडशिप का।
4: एंड रावी के बाद में एक ट्रिविया आपको बताना चाहूंगा, तो हमारी मिस इंडिया के इतिहास में साल 2000 सबसे हिस्टोरिक था, क्योंकि भारत के तीनों क्राउन्स भारतीयों ने जीते थे, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा। एंड उसी ईयर में ही रावी ने भी इन तीनों के साथ मिस इंडिया 2000 में पार्टिसिपेट किया था। तो रावी, यू आर पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक मिस इंडिया ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ
1: वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेजेंटियर्स डेफिनेटली।
4: So tell me something about that time, that training of Miss India, which is very, because उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी, और ये वाला साल तो जो हमारे देश को तीन रतन दिए हैं जो आज बॉलीवुड में आज तक चमक रहे हैं। So what memories you have of Miss India?
1: I have a lot of, you know, इतनी bonding हो जाती है आपकी जब आप दो महीना लगातार रहते हो, not necessarily living with them, मगर सुबह दोपहर शाम आपकी ट्रेनिंग होती है, हर तरह से आपको चलना सिखाया जाता है, एक तरह से आपको ग्रूम किया जाता है, एंड ज्यादातर बहुत सभी बहुत यंग थे, तो आप बहुत यू नो यू हैव स्टार्स इन योर आईज, यू आर इम्प्रेशनेबल, सो इट वाज अ वेरी स्पेशल टाइम फॉर मी, यू नो, एंड आई लर्नड अ लॉट, आई डिड विन, बट इट टॉट मी अ लॉट, यू नो,
4: इट्स लाइक अ स्कूल,
1: इट इज अ फिनिशिंग स्कूल, सो टू स्पीक, यस।
4: तो मेरे साथ रावी गुप्ता हैं, और आपको एक ट्रिविया एक और देना चाहूंगा। तो रावी दरअसल बेटी हैं हमारे टेलीविजन और फिल्मों के बहुत सीनियर एक्टर मिस्टर राजेंद्र गुप्ता की, मैं उनको जानता हूं बतौर बाबूजी ऑफ चिड़ियाघर।
7: कोई तेरे सीने पे बंदूक तान के खड़ा है क्या?
4: एंड ऑफ कोर्स द तनु एंड मनु में कंगना के फादर का रोल वाज आइकॉनिक।
8: मनु शादी करने से इनकार कर रहा है,
9: हो गया ना फिर।
4: रावी राजेंद्र जी की बेटी होना, आई मीन लोग टॉक ऑफ नेपोटिज्म, बट फॉर मी आई थिंक बीइंग एन एक्टर्स डॉटर इट कैन बी एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ।
1: ऑफ कोर्स आप
4: इतने, आपके लिए क्या था वो?
1: नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि डिसएडवांटेजेस तो मैं नहीं काउंट करती ऐसी चीज में कोई भी, क्योंकि मैंने कभी उसको इस्तेमाल ही नहीं किया उस तरह से कि अगर नेपोटिज्म कहना चाहें कि मैं जाके खुद को इंट्रोड्यूस करूं, हाय आई एम रावी गुप्ता, आई एम सो एंड सो डॉटर्स, एंड एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ काम मिलेगा. हमें, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीजें होती हैं या ऐसे किया जाता है.
4: मतलब बचपन से पापा ने आपको दूर रखा था
1: थोड़ा? नहीं, दूर भी नहीं, मगर इस तरह की कोई हमें सीख नहीं दी गई थी कि आपको ये करना चाहिए. यू नो, ही इज अ वेरी स्ट्रेट मैन. हमने जो किया, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने उनसे सीखा नहीं है, दैट आई डोंट कैरी अ सर्टेन लेगेसी विद मी, बट ये जो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म की बात आती है, आई नेवर प्रेजेंटेड माई सेल्फ लाइक दैट, नॉर वॉज आई टॉट कि आपको अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए.
4: लोगों को पता भी नहीं
1: है, नहीं पता है जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, जबकि अब तो फिर भी बहुत लोगों को पता है.
7: तेरे पास भी कोयल की तरह एक हीरो का हार आने वाला है.
4: पूरे 25 साल बाद आप फिर उसी शो में लौटी. वक्त बदल चुका है, ऑडियंस बदल चुकी है, शूटिंग टेक्निक, स्टोरी लाइन सब बदल चुका है, लेकिन बेसिक कोर जो है, क्योंकि साथ भी बहुत ही कदर, फैमिली ड्रामा स्टिल रिमेंस.
9: हाउ डू यू डू दिस? तुम कैसे एक भाई के और दूसरे भाई के बीच में आसपास आती जाती रहती हो?
1: बिकॉज द फैमिली वैल्यूज रिमेन द सेम, यू नो, कोर इमोशंस रिमेन द सेम. लोगों की अभी भी वही एक्सपेक्टेशंस हैं, एम्बिशंस हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इन्हीं चीजों को आई थिंक बस स्टोरी टेलिंग में फर्क है, जो हर एरा की एक अलग स्टोरी टेलिंग होती है.
9: दामिनी, क्या माफ जाओ.
4: रावी, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि से शुरुआत हुई है, आप और हमें दिखे, और आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग कि कैसे आप वर्क और अपनी फैमिली को उसको बैलेंस कर रही हैं. व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस हू लविंग यू सिंस आई थिंक ऑलमोस्ट 25 इयर्स, बट यू लुक द सेम. I think क्योंकि अगर तब था दिव्या में देखा था, आप ऐसे ही लगते.
1: That's very kind of you, Amit. I mean, इसमें भी मैं अपने माँ बाप को ही थैंक यू कहूंगी, क्योंकि जेनेटिक्स तो उन्हीं के ही हैं. Of course, one takes care. The older you are, the harder you have to work. But I really, really appreciate whatever love I've gotten. तब भी और आज भी, और आज भी मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, सराहना मिल रही है, प्रेम मिल रहा है. आई एम डीपली ग्रेटफुल, और आगे भी आई होप मुझे ऐसे ही प्यार मिले. एंड थैंक यू सो मच अमित.
4: थैंक यू सो मच रावी, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, एंड ऑल द बेस्ट ऑलवेज.
1: थैंक यू सो मच.
0: तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है. उम्मीद तो यही है कि आज के इस ग्लैमरस सफर में आपको भी कुछ सिंपल मेकअप टिप्स पसंद आई हूँ. अब देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगी कि मेकअप आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंट खूबसूरती निखारने के लिए होता है. और सबसे खूबसूरत चीज जो आप रोज पहन सकते हैं वो है आपकी स्माइल और आपका आत्मविश्वास. अब लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां. स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल, स्टे ग्लैमरस. बाय.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सावन के शिवरात्रि पर बम भोले के जयकारों से गूंज रहे शिवालय, सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे भक्त, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग। सावन के शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में गंगाजल लेकर शिवालय पहुंच रहे शिव भक्त कांवड़िए, कांवड़ मार्गों पर दिख रहा शिव भक्तों का सैलाब, डाक कांवड़ ने भी पकड़ी रफ्तार। 21 अगस्त को रामकोट परिक्रमा की वर्षगांठ पर निकलेगी शोभा यात्रा, आयोजन की तैयारियां तेज, श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे होती है परिक्रमा। इस साल राखी पर डाक विभाग ने शुरू की वाटरप्रूफ लिफाफा सेवा, छोटा लिफाफा 10 रुपए में, बड़ा लिफाफा 15 रुपए में करवाए जा रहे उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के शोपियां में दिखा देशभक्ति का रंग, पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने निकाली बाइक रैली, बडगाम में भी निकली हर घर तिरंगा यात्रा रैली।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: आज देशभर में मनाई जा रही सावन की शिवरात्रि, मंदिरों की बढ़ी रौनक, भोले के जयकारों से गुंजायमान हुए सारे शिवालय। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर परिसर में जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे भक्त। मंत्र उच्चारण के साथ किया जा रहा भगवान भोले का विशेष जलाभिषेक। बड़ी संख्या में कांवड़िये भी पहुंच रहे हैं कालकाजी मंदिर। ढोल नगाड़ों के बीच में नाचते गाते जलाभिषेक के साथ संपन्न कर रहे अपनी कांवड़ यात्रा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में देर रात से ही जुटने लगी शिव भक्तों की भारी भीड़। भोलेनाथ के लगाए जयकारे। गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने विधि विधान के साथ किया बाबा का जलाभिषेक। बोलबम के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। प्रयागराज के कोटेश्वर धाम में लगा शिव भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार के खुशहाली की कामना कर रहे भक्त। कोटेश्वर धाम का धार्मिक और पौराणिक महत्व। मान्यता के मुताबिक रावण वध के बाद भगवान राम ने यहीं रेत से 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर की थी भगवान शिव की आराधना। प्रयागराज का नैनी अरैल घाट शिव भक्तों के लिए अनूठी पहल। पूरे सावन घाट पर फ्री रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। घाट पर आयोजक संस्था की ओर से हर श्रद्धालु को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही पूजा की समस्त सामग्री। हर तरफ नजर आती है मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक करते भक्तों के लिए। अलवर में शिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दे रही। बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे। सावन के शिवरात्रि पर उज्जैन में भगवान महाकाल का हुआ अभिषेक। हर हर महादेव के लगे जयकारे। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। बोलबम के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। काशी में सावन के शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की गई मंगला आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। श्रावण शिवरात्रि के चलते भारी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे भक्त। बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान पूरा वातावरण। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि को दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हरिद्वार में टूटा कांवड़ का रिकॉर्ड। 4,43,00,000 लोगों ने लिया गंगा जल। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। लाखों शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पुरी में सावन की शिवरात्रि पर उतारी गई भगवान जगन्नाथ की आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। इंदौर सेंट्रल जेल में गूंजा हर हर महादेव। 1,000 कैदियों ने बनाए 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग। महज 1 घंटे में पूरा हुआ शिवलिंग निर्माण। इसके बाद विधि विधान के साथ हुआ भोलेनाथ का महाभिषेक। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवरात्रि पर कांवड़ियों का तांता। बड़ी संख्या में महिला कांवड़ियां कर रही जलाभिषेक। छोटे बच्चों को गोद में उठाए दिखी कई महिला कांवड़। परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना लिए आई हैं बाबा के दरबार। सावन में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कराते हैं बाबा के धाम में। संभल में महिला कांवड़ियों की रौनक। हरिद्वार और ब्रजघाट गंगा घाट से कांवड़ लेकर पहुंची महिलाएं। कांवड़ में ला रही पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगी ये महिलाएं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा सुविधा को लेकर संतुष्ट दिखी। सहारनपुर में दिख रहे शिव भक्ति के अलग अलग रंग। कांवड़ लेकर धार्मिक यात्रा पर निकली महिलाएं। कंधे पर भारी भरकम कांवड़ उठाए नजर आ रही महिला कांवड़ अलग अलग मनोकामनाओं के साथ पहुंचे। कांवड़ यात्रा में हर आयु वर्ग की महिला शिव भक्त। सफर के दौरान इंस्टा रील्स बनाने की भी होड़। औरैया में नजर आई अनोखी कांवड़। कैदी के भेष में कांवड़ लेकर औरैया के प्रसिद्ध भगवान शंकर के देवकाली मंदिर में आया शिव भक्त। कानपुर से अनोखी कांवड़ लेकर औरैया पहुंचे बेड़ियों में जकड़े संदीप। जुर्म ना करने का दे रहे संदेश। बगहा में अनोखी कांवड़ लेकर निकला भक्त। 3 पालतू डॉग्स के साथ करा कांवड़ यात्रा। 12 दिन में 111 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रामनगर के नर्मदेश्वर शिव मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र। उनके पालतू डॉग्स शेरू टाइगर मोती भी। संभल में नजर आई अनोखी कांवड़। सीएम योगी आईपीएस के बिश्नोई की फोटो लगाकर ब्रजघाट गंगा घाट से जल लेकर संभल पहुंच रहे कांवड़ियों के जत्थे। सावन के पवित्र महीने में सड़क मार्ग और ट्रेनों के माध्यम से अपने शिव मंदिरों के लिए रवाना हो रहे तमाम भक्त। महाराष्ट्र के डोंबिवली में भव्य कांवड़ पद यात्रा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से कंधों पर कांवड़ लेकर निकले यात्री। राखी और उपहार भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग की शानदार पहल। राखी पर डाक विभाग ने शुरू की वाटर प्रूफ लिफाफा सेवा। छोटा लिफाफा 10 रुपए में, बड़ा लिफाफा 15 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा। भाई तक सुरक्षित राखी पहुंचाने की पहल। चंदौली में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। यात्रा को लेकर महिलाओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह, गाए देशभक्ति के गीत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ। संत कबीर कुटीर पर की शिष्टाचार की मुलाकात। महिलाओं के लिए वरदान बनी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 योजना। सालों से दबंगों से परेशान महिलाओं को एक शिकायत पर मिला न्याय। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एम्बुलेंस व ब्लड डोनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। विकास कार्यों के लोकार्पण पर जोर। 15 अगस्त के नजदीक आते ही जगह जगह नजर आ रहे देशभक्ति के रंग। शोपिया में पुलिस और नागरिक प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई ये तिरंगा यात्रा। देशभक्ति की भावना राष्ट्र एकता का प्रतीक है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल

0: मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है,

0: तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: सावन के शिवरात्रि पर बम भोले के जयकारों से गूंज रहे शिवालय, सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ रहे भक्त, आज ही मंगला गौरी व्रत का अनुपम संयोग भी। सावन की शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर शिवालय पहुंच रहे शिव भक्त कांवड़िए, कांवड़ मार्गों पर दिख रहा शिव भक्तों का सैलाब, डाक कांवड़ ने भी पकड़ी रखा। 21 अगस्त को रामकोट परिक्रमा की वर्षगांठ पर निकलेगी शोभा यात्रा, आयोजन की तैयारियां तेज, श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे होती है परिक्रमा। इस साल राखी पर डाक विभाग ने शुरू की वाटरप्रूफ लिफाफा सेवा, छोटा लिफाफा 10 रुपए में, बड़ा लिफाफा 15 रुपए में करवाए जा रहे उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के शोपियां में दिखा देशभक्ति का रंग, पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने निकाली बाइक रैली, बड़गाम में भी निकली हर घर तिरंगा यात्रा रैली।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अमावस्या की तिथि जो समर्पित मानी जाती है पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए, सावन में आने वाली इस अमावस्या पर प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे हरियाली अमावस्या की तिथि से जुड़े हुए कुछ खास महाप्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है।

0: सावन में चारों ओर छाई हरियाली, महादेव होंगे प्रसन्न, आएगी खुशहाली। गौरी शंकर की पूजा से होगा कल्याण, अखंड सुहाग का मिलेगा वरदान। पेड़ पौधे खोलेंगे भाग्य के द्वार, धन धान से भर जाएगा घर संसार।
1: जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
0: पितरों की मुक्ति के लिए करें महाप्रयोग, परमेश्वर की कृपा पाने का है ये शुभ संयोग, क्योंकि आ गई हरियाली अमावस्या की शुभ तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश के चलते पेड़ पौधों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसी के चलते सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है।
2: यह तिथि प्रकृति पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, शिव आराधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों के तर्पण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, शनि दोष है, केतु का दोष है, या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का दोष है किसी भी तरीके से, तो उसके शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।
0: हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त यानी कल है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करके आप विधाता की कृपा पा सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की रात 1:52 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 अगस्त को रात 11:07 पर होगा। इसीलिए हरियाली अमावस्या की तिथि 12 अगस्त को होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, इसके चलते गौरी योग का निर्माण होगा। जो जातक पितृ कर्म करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त फलदायी रहने वाला है। इस तिथि फल देने वाले वृक्ष लगाने से उत्तम फल प्राप्त होता है।
2: इस दिन मदार अर्क का पौधा लगाना चाहिए, पलाश जिसे ढाक भी कहा जाता है उसको लगाने से चंद्रमा ठीक होता है, आग मदार का लगाने से सूर्य ठीक होता है, खैर लगाने से मंगल ठीक होता है, आम का जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने से बुध ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होते हैं, गुलर का लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शमी का पौधा लगाने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, इसी प्रकार कुश और दुर्वा इनसे राहु और केतु ग्रह मजबूत होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सावन मास का बुधवार होने के साथ साथ शिव योग और कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना सबसे पुण्यकारी माना गया है। धन ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इस दिन सभी सुहागने पूर्ण मनोयोग से शिव और पार्वती की कृपा पाने का जतन करती है। माना जाता है कि ईश्वर और पितरों की कृपा पाने की ये तिथि अमोघ है। तो आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण विधि।
2: हरियाली अमावस्या पर पितरों के मोक्ष का विधान बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए, पीपल एवं बरगद के वृक्ष के नीचे सायंकाल प्रदोष काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन यदि ऐसा करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है।
0: इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन उपवास रखने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के तर्पण की पूजा विधि करें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस तिथि पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि पर विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी दीर्घायु होता है, साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की कृपा के साथ ही ग्रहों की भी शांति हो जाती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर कैसे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि इस दिन दान और पुण्य करने से ना सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।

0: हरियाली अमावस्या पर करें माता पार्वती संग भोलेनाथ की भक्ति। पितरों के तर्पण और पिंडदान से पितरों की होगी मुक्ति। हरियाली अमावस्या, जब हरियाली की चादर ओढ़ती है धरती, पेड़ पौधों के श्रृंगार से सज जाती है प्रकृति। मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
1: पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करना चाहिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा, विशेष करके पार्थिव पूजन करके, पार्थिव बना करके उसका पूजन कर सकते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दिन भर व्रत रहिए, पितरों के दिन में पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके, घर में ही पति पत्नी यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर के भगवान शिव की विशेष पूजा करें, जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त किया कर्मकांड चार चरणों में किया जाता है। चार चरणों की प्रक्रिया में विश्व देव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना शामिल है। विश्व देव, पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना है। पिंडदान, दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करें। तर्पण, तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोज कराना, चौथा चरण, पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होता है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं हरियाली अमावस्या के खास उपाय।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभिष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, पंचामृत आदि वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और इस दिन उनके किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है।
0: हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी के अभिषेक के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। पांच तरह की मिठाइयों को अलग अलग पांच पीपल के पत्तों पर रखें। ओम सर्वे भयो पितृ देवो भयो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दे लेकिन स्वयं ना खाए। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल रखें। इसमें एक सूखा नारियल और 11 रुपए बांधकर 21 बार घुमाएं। इसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ न लगाए। इसके बाद एक गिलास में जल और गुलाब का फूल रखें। साथ में इत्र और सफेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखे। पितरों से अपनी गलती के लिए माफी मांगे। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करें, तो वो आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। चलिए आपको एक और महा उपाय बताते हैं, जो पितृ दोष की पीड़ा का निवारण कर सकता है। हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं, इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका घर सदैव फलता फूलता रहेगा। तो सावन के पावन महीने में आप भी कीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के जतन, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण।
2: तो चलिए अब आपको बताते हैं सावन की अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दावा किया जा रहा है कि ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में रात होने से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये ग्रहण खास होता है।

0: हरियाली अमावस्या की तिथि पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। सूतक के नियम भी नहीं होंगे लागू, विधिवत होगी पूजा अर्चना। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगी सूर्य ग्रहण की घटना। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को विशेष खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कहीं भी हो, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर पड़ता है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर।
0: जानकार बताते हैं कि जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां उस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होता, इसीलिए 12 अगस्त को मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से ही की जा सकेंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण, दान पुण्य, पितरों के तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात्रि 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:16 पर होगा। इस ग्रहण का समापन 13 अगस्त को प्रातः 1:27 पर होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है, खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को यह खग्रास सूर्य ग्रहण विश्व के कई जगहों से दिखाई देगा और इसका असर भी कई जगहों पर होगा, परंतु भारत भूमि से दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
0: दावा किया जा रहा है कि ये ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी माने नहीं होगा। ऐसे में लोग ग्रहण के कारण कभी भी स्नान किए बिना दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है। इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण की घटना का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए खगोल विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि इसी पावन माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में चंद्र ग्रहण की भी छाया है। तो आप सावन में महादेव की भक्ति कीजिए, जिनके अधीन ही सारे ग्रह हैं। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: टिहरी में पहाड़ी सावन के चौथे सोमवार पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ती है। मान्यता यह है कि इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की तमाम मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाती हैं।
13: टिहरी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा भगवान शिव का प्राचीन सिद्धपीठ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। टिहरी जिले के बेहड़ा गांव में बसे इस मंदिर में सावन के पूरे महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। पहाड़ी सावन के चौथे सोमवार पर कल मंदिर में आस्था की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। दूर दूर से आए भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महादेव को दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करके श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की।
14: श्रद्धालुओं में भी इतनी भीड़ है, पहले सोमवार को लास्ट सोमवार को जो है बहुत भीड़ रहती है। सावन के सोमवार में लोग दूध भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। बहुत ही मान्यता है इस शिवालय की। नीलकंठेश्वर है,
15: बेहड़ा है, यहाँ का नाम कंसाली में पड़ता है। यहाँ पे ये बहुत प्राचीन मंदिर है और जो कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, नैलचामी से लेकर पूरा मतलब पूरी पट्टी के लोग आते हैं। बहुत जाना माना मंदिर है और बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ पे।
13: ये मंदिर टिहरी के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर का वर्णन केदारखंड में मिलता है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना सैकड़ों साल पहले हुई थी। बिलंगना और नैलचामी नदियों के संगम के करीब था। समय के साथ भौगोलिक परिवर्तन से मंदिर अब संगम से दूर हो गया।
16: क्या स्थापना जो है पता नहीं कितने की, बहुत ये लाखों वर्षों पुराना है। इसको जो है बिलंगना और नैलचामी घाट के संगम पे दिखाया गया है। तो हाँ, संगम जो है 2 किलोमीटर दूर चला गया। आदिकाल में इसका वर्णन केदारखंड में, केदारखंड में इसका नाम घड़ेश्वर महादेव के नाम से है। हरेश्वर महादेव के नाम से और ये सिद्धपीठ है।
17: मैं देखो हम तो 40 साल से रह रहे ऐसे हम यहाँ आ रखे हैं, हमारी मकान है यहाँ तो इसको हम 40 साल से जानते हैं और सभी बढ़िया है सुंदर है।
13: पहाड़ों पर बसे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर परिसर में ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो इस मंदिर के प्राचीन होने का प्रमाण देते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर यहां आते हैं। मंदिर में भगवान के जलाभिषेक के साथ ही लोग पूजा पाठ भी करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आराधना करने वाले भक्तों की मुराद महादेव जरूर पूरी करते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
12: देशभर में सावन की शिवरात्रि की रौनक, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, आज ही मंगला गौरी व्रत का भी शुभ संयोग।

सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड के से लेकर झारखंड तक भक्ति की बयार। हरिद्वार में कांवड़ मेले का समापन, देवघर के बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की कतार। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराएं तिरंगा। विकसित भारत का ले संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। आजादी के जश्न से पहले देशभक्ति के रंग में रंगा जम्मू कश्मीर। शोपियां में निकली बाइक रैली, बडगांव में भी हर घर तिरंगा यात्रा। इस साल रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने शुरू की वाटरप्रूफ लिफाफा सेवा। 10 रुपए में मिलेगा छोटा लिफाफा, 15 रुपए में मिलेगा बड़ा लिफाफा।

शिव सावन और सूर्य ग्रहण नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा आज हम इसी को लेकर करेंगे, बात इसकी होगी। आज जहां देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है, आज शिवरात्रि है, तो वहीं कल यानी कि बुधवार को आसमान में एक बड़ी खगोलीय आध्यात्मिक घटना देखने को मिलने वाली है। वैसे इसे वैज्ञानिक घटना भी कहा जाएगा। कल इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सनातन परंपरा में सूर्य को प्राण और शिव को महाकाल माना जाता है। ऐसे में जब काल के देव की रात्रि के ठीक बाद सूर्य पर ग्रहण की छाया पड़े तो ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं रह जाती है, ये बन जाती है एक महासंयोग। तो शिवरात्रि के बाद बन रहा सूर्य ग्रहण का महासंयोग, 18 साल बाद सावन में सूर्य ग्रहण, ग्रहण का राशियों पर असर कितना होगा, कितने घंटे सूर्य ग्रहण रहेगा, सावन में सूर्य ग्रहण कैसे दुर्लभ घटना है, और क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, क्या भारत में लागू होगा सूतक काल, आप ग्रहण के दिन पूजा कैसे करें, करें भी या नहीं करें, क्या मंदिरों के कपाट बंद होंगे, आपकी राशि पर ग्रहण का कितना असर होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे और इन्हीं का जवाब जानने की कोशिश आज करेंगे। हमारे साथ हमारे शो में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आगे मौजूद रहेंगे।

0: तो शिव सावन और सूर्य ग्रहण, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस बार सावन सिर्फ आस्था का महीना नहीं बल्कि खगोल और ज्योतिष दोनों ही नजरियों से अगर देखा जाए तो बहुत खास हो गया है। एक और करोड़ों शिव भक्त व्रत, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक के जरिए देवों के देव महादिदेव की आराधना में लीन है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पावन महीना एक खगोलीय घटना का साक्षी भी बनने जा रहा है। श्रावण अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। करीब 18 साल बाद सावन में फिर वही दुर्लभ संयोग बन रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, तो कल ग्रहण लगेगा और आज है शिवरात्रि। और इसी खास मौके पर गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में आज शाम महादेव के विशेष श्रृंगार और भोग की व्यवस्था भी की गई है। आपको वहीं से तस्वीरें दिखाते हैं।
1: मौजूद हूँ गाजियाबाद के दुधेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर खुद शिव के सबसे बड़े भक्त यानी कि रावण और उनके पिता ने यहाँ पर तप किया था, इसलिए इस जगह को तपोस्थली भी कहा जाता है। मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं और देखिए भोले का जोश किस तरह का है। भोले के भक्तों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। आधी रात से ही हरिद्वार से गंगा जल लेकर लगातार भोले यहाँ पर आ रहे हैं। और आज चूंकि आज सावन की शिवरात्रि भी है, आज वो सबसे बड़ा दिन है जब चारों दिशाओं से जितने भी भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी आस्था यहाँ आकर एक तरह से ठहर जाती है और गंगा जल भोलेनाथ को वो अर्पित करते हैं। बस उनके मन में एक ही कामना है, भोले से मिलना है। कहाँ से आए हो?
2: हम हरिद्वार से आए जी।
1: आज भगवान से वो मुराद पूरी हो जाएगी यहाँ गंगा जल?
2: जी जी मैम जी। बोले
1: क्या मांगा भगवान?
2: बस यही मांगा है कि सब ठीक ठाक रहे घर परिवार में, वो भोलेनाथ से यही मांगा है जी।
1: यहाँ पर आप देखिए आस्था अपार है, लगातार बारिश हो रही है और जब हरिद्वार के रास्ते पर ये जाते हैं तो इतने तमाम कठिनाइयों के बावजूद किसी तरह की दिक्कत अगर भोले के भक्तों से पूछो तो वो कहते हैं कि जब भोले ही साथ हैं हमारे तो दिक्कत किस बात की है, भोलेनाथ खुद सब कुछ दूर करेंगे। और ये है भोले के भक्त। कहाँ से आए?
3: हम तो यही के हैं, लोकल के गाजियाबाद, हरिद्वार से गाजियाबाद।
1: कितने सालों से जा रहे हो?
3: 10 साल हो गए।
1: किसके साथ सबसे पहले गए थे? घर वालों के
3: साथ, दोस्तों के साथ।
1: मन में कोई विशेष कामना?
3: बिल्कुल है जी, सब भोले ने कर दिए पूरे।
1: सब कर दिया है, इतना विश्वास है?
3: बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है।
1: भोले पे
4: बहुत विश्वास है, बहुत लगातार 3 दिन हो गए आते हुए।
1: यहाँ 3 दिन
4: जी
1: सावन में हर बार,
4: हर मंडे आते हैं।
1: इसी तरह से हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज जो है आपको हर एक शिवालय में देखने को मिलेगी। और तस्वीरें आपको हम दुधेश्वर महादेव मंदिर के दिखा रहे हैं, जहां पर देख लीजिए किस तरह से प्रशासन और साथ ही साथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ से भी यहां पर लोगों को लगाया गया है ताकि किसी तरह से भक्तों को यहाँ परेशानी ना हो। और मंदिर में इसी तरह से लगातार भक्त आ रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाम में यहाँ पर विशेष भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। लगभग जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने बताया कि लगभग 7 बजे के आसपास जो है मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार होगा और 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाएंगे, क्योंकि आज शिव और शक्ति का मिलन भी है। इतना बड़ा दिन, इतना पावन दिन, ऐसे में वर्षा भी हो रही है और सनातन में जैसा कि हम मानते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है उसमें वर्षा जरूर होती है, वर्षा भी हो रही है लेकिन भक्तों का जोश कहीं से भी कोई कम नहीं है। तस्वीरें लगातार आपको ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।
0: तो सावन का पावन महीना चल रहा है, आज सावन की शिवरात्रि है, वहीं सावन में ही कल सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ये भोलेनाथ का प्रिय महीना है। सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हुई थी और इस बार 28 अगस्त तक सावन चलेगा। सावन में 4 सोमवार पड़े हैं और सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त, जबकि दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। शिवरात्रि के बाद ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये साल यानी कि साल 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा और इसकी शुरुआत बुधवार रात 9:04 से होगी। फिर ये करीब 4.5 घंटे बाद यानी कि गुरुवार को तड़के 1:27 तक रहेगा। सावन में सूर्य ग्रहण दुर्लभ घटना है। श्रावण अमावस्या के दिन ग्रहण लग रहा है, हालांकि भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आएगा, लिहाजा भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि सभी 12 राशियों पर ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में कल ग्रहण के दिन दान का बेहद अहम महत्व हो जाता है और ये दिन आध्यात्मिक नजरिए से बहुत अहम है। कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। भारत में भले ही सूर्य ग्रहण दिखाई ना दे, सूतक काल भी माने ना हो, लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व बताया जा रहा है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगने वाला है। ये भी बताते चलें कि इस राशि में पहले से ही चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, तो ऐसे में ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी साबित हो सकता है।
5: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर। जैसे धार्मिक स्थल बंद नहीं होंगे, वैसे भी ये रात का समय है। भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:04 से लेकर के 1:28 तक ही सूर्य ग्रहण की स्थिति रहेगी। तो भारत भूमि में ऐसे समय में मंदिर आदि के कपाट वैसे भी बंद रहते हैं, तो सूतक के नियम का कोई आधार नहीं बनता है। भारत में दृश्य नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह भारत भूमि को प्रभावित तो नहीं करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। और इसी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव के संदर्भ में, तो कुछ राशियों को लाभ प्राप्त होगा तो कुछ राशियों को नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त होगा।
0: तो आज शिवरात्रि के साथ साथ सूर्य ग्रहण को लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि देशभर के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। गंगा घाटों से लेकर शिवालयों तक हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा और भक्ति का ऐसा ही उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। सुबह से ही बाबा के इन धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, उज्जैन का महाकालेश्वर, देवघर का बैद्यनाथ या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, तमाम ज्योतिर्लिंगों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। झारखंड के देवघर में आस्था का एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों कांवड़िए महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बोलबम के जयकारों के बीच भक्तों ने विधि विधान से जल अभिषेक किया और बेलपत्र, पुष्प, भांग और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, सुख समृद्धि की कामना की। वहीं जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर शिवरात्रि पर मंदिरों में अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है।
6: बम बोले हर हर महादेव, यही जयकारे हैं जो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है सावन के पावन महीने की शिवरात्रि का। और ये वो मौका है जब हर एक कांवड़िए के चेहरे पे भक्ति भाव, आस्था नजर आती है, और वो नजर आता है जिस तरीके से जयकारे हर एक भक्त इस समय पे लगा रहा है। अगर हम शिवालयों में जाएं तो शिवालयों में भारी मात्रा में भक्त नजर आ रहे हैं। हर एक भक्त के हाथ में जल का लोटा है, दूध है, बेलपत्र है, धतूरा है, और हर एक शिवालय अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। श्रृंगार भगवान शिव का बहुत ही खूबसूरत अभी हुआ हुआ है। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव में भी कुछ ऐसा ही श्रृंगार देखने को मिल रहा है, जहाँ जो शिवलिंग है उसको फूलों से सजाया गया है। जो भगवान शिव का दरबार है वो भी रंग बिरंगे फूलों से, बेलपत्रों से सजाया गया है, और अलौकिक झांकियां जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। हर एक भक्त इंतज़ार करता है कब वो भगवान शिव तक पहुँच पाए। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगाई जाती हैं, तड़के समय से ही भक्त इंतज़ार करने लग जाते हैं कि भगवान शिव उनको दर्शन दें, उनकी मनोकामनाएँ जाने। तो वैसा ही कुछ नज़ारा जो है वो जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भक्तों की भीड़ से भगवान शिव अभी घिरे हुए हैं, हर एक की मनोकामनाएं जान रहे हैं। क्योंकि सावन की ये जो शिवरात्रि है, कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से आप भगवान शिव से कुछ भी मांगे, कोई भी मनोकामना उनके सामने रखें या फिर उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे, तो भगवान शिव आपको एक ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे आपका जो आपके ज़िंदगी में सुख समृद्धि आएगी, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। ऐसे ही इस मंदिर में हर शाम एक बहुत ही खूबसूरत अलग थीम का श्रृंगार होता है, बहुत अलौकिक श्रृंगार होता है। वैसे ही ये सावन की जो शिवरात्रि है, वहाँ जयपुर की और राजस्थान की झलक देखने को मिलेगी, जहाँ देश विदेश से आए फूलों के साथ साथ अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव नजर आएंगे, जिसमें लहरिया थीम जो है उसको भी जोड़ा गया है।
0: चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त नंदिता पांडे जी जुड़ चुकी हैं, श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित प्रकाश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री भी होंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद के दुदेश्वरनाथ मंदिर, जहां पर मेरी सहयोगी श्वेता झा मौजूद है। श्वेता, दिखाइए जरा वहां की रौनक कैसी है और शाम का क्या कार्यक्रम रहने वाला है।
1: बिल्कुल नवजो, सबसे पहले हर हर महादेव। आपको बता दूं कि 30 तारीख, जैसा कि हम जानते हैं कि 30 तारीख से सावन की, पवित्र सावन की शुरुआत हुई थी, और आज के दिन का कांवड़ियों को इंतजार रहता है कि पवित्र गंगा जल वो भरकर, चाहे हरिद्वार से या फिर पवित्र नदी से गंगा जल भरकर भोलेनाथ को वो अर्पित करे। तो यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जैसे ही भक्त यहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले नंदी को यहाँ पर वो जल अर्पित कर रहे हैं, गंगा जल वो चढ़ा रहे हैं, और उनके कान में आप देख सकते हैं जो कि प्रथा रही है कि सबसे पहले जो भी आपकी मनोकामना है आप नंदी के कान में कहते हैं और वो सीधे भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं महिलाओं को अपनी मनोकामना नंदी को कहते हुए, और उसके बाद यहाँ से जो काफिला है श्रद्धालुओं का वो आगे बढ़ता है। और आपको हम तस्वीरें अपने कैमरामैन शैलेंद्र को कहूंगी कि वो दिखाए कि आगे किस तरह से जहां पर शिवलिंग है वहां पर जाते हुए लगातार श्रद्धालुओं को, हालांकि जो ताता है श्रद्धालुओं का सुबह के मुकाबले अगर मैं कहूं भीड़, तो वो काफी कम हुई है, क्योंकि इंतजार जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के दिन का रहता है, यानी कि शिवरात्रि के दिन का रहता है सभी कांवड़ियों का, कि कांवड़िये 30 तारीख से जो अपने अपने घरों से निकले थे पवित्र उन स्थलों से जो पवित्र नदियां हैं वहां से गंगा जल लेकर वो यहां पर पहुंचे, शिवालयों तक पहुंचे, अपने घर के पास शिवालयों तक पहुंचे, और आज के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन उनकी मनोकामना होती है कि वो भोलेनाथ को अर्पित करे जल, तो वो उन्होंने रात से ही, आधी रात से शुरू कर दिया था। इसीलिए अब लोगों की संख्या, अगर श्रद्धालुओं की संख्या हम कहें तो सुबह के मुकाबले काफी कम हो गई है, क्योंकि सुबह से ही लगभग जितने भी कांवड़िए थे, डाक बम हो या फिर उसके अलावा जो दूसरे कांवड़िए थे, वो तमाम लोग आकर गंगा जल चढ़ाकर अपने अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। लेकिन जैसा कि सावन का महीना, हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ का सबसे प्रिय और सबसे पावन ये महीना होता है शिवरात्रि, जिसके बारे में हम मानते हैं कि शिवरात्रि, जिसका अर्थ शिव की रात्रि, एक ऐसी रात्रि जबकि एक भक्त भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, व्रत और जागरण के माध्यम से महादेव के प्रति ये अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। लेकिन सावन की शिवरात्रि की खासियत सिर्फ आप पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। आपको बता दे, इस पर्व के साथ जुड़ी है आस्था, तपस्या और समर्पण की भावना, और ये तमाम चीजें जुड़ी है, तभी आप समझ सकती हैं कि कितनी परेशानी होती है कांवड़ियों को। पूरे रास्ते नंगे पांव वो जाते हैं जल लेने के लिए, कितना भारी वो कांवड़ होता है, कई लीटर अपने साथ वो गंगा जल लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो यहाँ शिवालय तक पहुंचते हैं तो कोई थकान, कोई परेशानी या किसी तरह की दिक्कत उन्हें नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि भोलेनाथ खुद स्वयं उनके साथ हैं, तो फिर उन्हें परेशानी किस बात की। आपको बता दें कि इस बार दुधेश्वर महादेव मंदिर में लोगों का कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, लोग बड़े आराम से आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
7: गाजियाबाद की हूँ।
1: आप हर बार यहाँ आते हैं?
7: हाँ, मतलब रेगुलर।
1: इस बार किसी तरह की दिक्कत
7: नहीं? दिक्कत वैसे भी कभी नहीं होती है, आई मीन आप देख ही रहे हो इतनी पुलिस है, और फिर मतलब खुद के भी वॉलंटियर्स हैं इस मंदिर के, तो दे जस्ट मेक श्योर कि सब चीज इवन लिए जाए, और जितने भी विजिटर्स हैं उनके लिए अच्छे, मतलब सब कन्वीनियंस है
1: ना। इतनी आस्था है भोलेनाथ,
7: ये कैसे मेजर कोई कर सकता है?
0: बिल्कुल,
1: एक अटूट आस्था हो रही कि वो उनके पास बस आ गए, बस सब कुछ पूरा हो गया।
7: मेरी तो उन्हीं की वजह से चल रही है अब तो जिंदगी, वही संभालने वाले है भाई, और कोई नहीं है। उन्हीं के भरोसे चल रहा है अब तक जो चल रहा है, और आगे भी उन्हीं के भरोसे चलेगा।
1: तो यहाँ जितने भी लोग, आपका क्या नाम है?
8: यशवी।
1: अच्छा, तो आप ये बता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, आपने आज व्रत रखा?
9: व्रत नहीं रखा है,
1: लेकिन आप पूजा करती है?
9: इसका कल से ही मन है कि मैं भोले बाबा को यहाँ पे जल चढ़ाऊं, और बहुत ज्यादा श्रद्धा है इनकी, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, और इतना ज्यादा आनंद होता है। ये कल रात से ही बोल रहे हैं कि पापा चलेंगे, मैंने कहा बेटा आज भी अभी बहुत रश है, तो हम
0: बिल्कुल
9: कल मॉर्निंग जाएंगे, कल इवनिंग में जाएंगे तो थोड़ा रश कम हो जाएगा।
1: तो कैसा लग रहा है?
8: मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मेरा मन करता है रोज आने का, मैं आती हुई हूँ।
1: शिव जी के प्रति यही आस्था
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल आस्था है लोगों की। और आपने सही कहा,
1: जब आस्था सर्वोपरि हो तो।
0: हाँ, और सही कहा आपने, क्योंकि इस मंदिर की खास बात यही है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, और खास तौर पर शिवरात्रि जैसे मौके पर खुद मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम वॉलंटियर्स लगाए जाते हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लोग आराम से यहाँ पर आकर जलाभिषेक कर सके। नजर बनाए रखिए श्वेता, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास, खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़े हुए नंदिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ तस्वीरें आज दिखा रहे शिवरात्रि के तमाम रंग, अलग अलग जगहों से तमाम शिवालयों की बहुत ही खूबसूरत भक्तिमय तस्वीरें आ रही हैं। इस बार की शिवरात्रि किन मायनों में खास है, अब देखिए आधा दिन बीत चुका है, रात का बहुत महत्व होता है शिवरात्रि का, क्या ऐसे उपाय आज किए जा सकते हैं ताकि मनोकामना की पूर्ति हो?
8: तो घटना आज की, और आप सभी को जीएनटी के दर्शकों को इस सावन के शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं, कि जिस तरह से महादेव और गौरी के लिए व्रत किया जाता है, मंगला गौरी व्रत भी है और एक पूजा की अर्चना की जाती है, वैसे ही सुख सौहार्द आपके घरों में बसा रहे हमेशा के लिए। और ये बहुत पावन पर्व है, पावन दिन है, पावन समय है, और इस समय छोटे छोटे से उपाय आप करते हैं ना, तो उससे भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। अब शिवरात्रि बोलते हैं तो रात्रि के समय, रात्रि के कई चार प्रहर होते हैं मुख्यतः, और उन प्रहरों में पूजा कैसे करनी चाहिए इसका विशेष विधान होता है। जैसे प्रथम प्रहर जो होता है वो प्रदोष काल से शुरू होता है, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय समय है, उसमें बहुत खुश होके माता पार्वती के साथ नृत्य करते हैं, और मतलब एक बहुत म्यूजिकल टाइम उनके लिए होता है और प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। उस समय उनको गंगा जल से या कच्चे दूध से आप अभिषेक करें और अपनी मनोकामना बोल के, अपना गोत्र बोल करके अभिषेक करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। द्वितीय प्रहर जो होता है, द्वितीय प्रहर में आप उनका अभिषेक करते हैं, दही से आपको करना चाहिए, और अगेन आप अपनी मनोकामना बोल करके अगर करेंगे तो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। द्वितीय प्रहर में आप घी से, देसी घी से आप करिए। और चतुर्थ जो अंतिम प्रहर होता है, उसमें कहते हैं कि भोलेनाथ को शहद अत्यंत प्रिय होता है, और उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का लगभग समय आ जाता है, उस समय आप शहद से अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। बेलपत्री आप लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें आप चंदन से टीका करें, और जो चिकनाई वाला जो हिस्सा होता है उसको शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। बहुत ज्यादा परेशान है किसी चीज से तो जो शिवलिंग की जो जलाधारी जहां से निकलती है, जो उनका राउंड एरिया होता है, जो माता पार्वती का स्थान होता है, वहीं से जब बिल्कुल एग्जिट होता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान बोलते हैं, जो उनकी पुत्री थी, वहां पे बेलपत्री रख करके और एक सेकेंड, 10 सेकेंड हाथ रख करके अपनी मनोकामना बोले, अवश्य पूरी होगी। इस शिवरात्रि से लेके अगली शिवरात्रि तक का में देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए परिपूर्णता लेके आएंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी।
0: बिल्कुल पंडित प्रकाश जोशी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ छोटे छोटे उपाय, हालांकि पूजा हर कोई करता है अपनी तरफ से, जलाभिषेक का समय क्योंकि सुबह से था, और जैसा तस्वीरें भी हम देख ही रहे हैं कि तमाम ज्योतिर्लिंग हो या शिवालय हो, रात से ही कांवड़िए खासतौर पर कतारों में लग जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए, और ये शाम तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ विशेष उपाय जो आज के दिन किए जा सकते हैं प्रभु की कृपा पाने के लिए?
10: देखिए, जैसे कि पहले तो विशेष उपाय के लिए आज का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आज बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन है, कल भी रहेगा, कल ग्रहण रहेगा, तो जब भी बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन होता है तो गज केसरी योग भी बन जाता है। और बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, बृहस्पति धन के कारक होते हैं, दाम्पत्य के कारक होते हैं, विद्या के कारक होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, और मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, और तो हाँ मन के जीते जीत, और साथ ही साथ जो चंद्रमा है यानी कि वो विराट धारण किसने किया है, शिव जी ने अपने अपने जटाओं में धारण किया है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पूजा कर सके, जैसा कि नंदिता जी ने बताया कि घी से अभिषेक कर लीजिए, दही से अभिषेक कर लीजिए, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, पार्थिव का मतलब ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, जिसमें दोष नहीं होता, वो होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन, यानी कि नदी के किनारे की मिट्टी को निकाल के और उसका शिवलिंग बनाया जाता है, और शिवलिंग बनाने के बाद जैसे शिव का आकार, लिंग का आकार दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, उसका अभिषेक किया जाता है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है। तो अगर आप पार्थिव पूजन कर सकें

0: पुष्पं च धूपं तथा नैवेद्यम समर्पितम तब विभु पूजाम ग्रहणाम प्रभु। यानी कि जो ये मानस शिव मानस पूजा का एक स्त्रोत्र होता है
1: जी
0: उसमें ये साफ लिखा है कि मैंने आपको प्रभु बिल्व पत्र चढ़ा के देख लिया, मैंने आपको प्रभु क्या कहते हैं आपको, मैंने भांति भांति के आपको वो श्रृंगार चढ़ा के देख लिया, मैंने भांति भांति की चीजें चढ़ा के देख ली, अब मैं अपना मन भी आपको चढ़ा के दे रहा हूँ। देखिए शिव तो अंतर्यामी है, मैं यही कहूंगा कि आज के दिन शिव तो अंतर्यामी है, अगर आप शिव का जल ही शिव को चढ़ा देंगे तो क्या रहेगा, या
1: बिल्कुल
0: जिन्हें सृष्टि की को उत्पन्न किया है वो अगर आप चढ़ा देंगे तो क्या रहेगा, मतलब आम बात है, अगर आपको चढ़ाना है तो अपना मन चढ़ाइए,
1: जी
0: अपना मन चढ़ाइए, मन से प्रण कीजिए, कुछ अच्छा ही कीजिए, आज के दिन पेड़ लगाइए, अगर आप ये कर सकते हैं तो
1: बिल्कुल सावन का महीना है और बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ है ये पर्व भी है। श्रुति गर्वंधा जी आपके पास आना चाहूंगी, आज के दिन के विशेष उपाय बताइए, क्या कुछ किया जा सकता है?
2: सबसे पहले नमस्कार नवजोत जी, और जीएनटी के माध्यम से मासिक की जो शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, इसकी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। देखिए ग्रह गोचर की मैं अगर बात करूँ ना फिलहाल, तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि आप क्या उपाय कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि मैं कहूंगी कि मंगल कल अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं, तो वो अर्तरा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है वहां पर आ जाएंगे। तो कोई भी, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको बहुत ध्यान से विचरण करने की जरूरत रहेगी कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा ना करें, लाल चीजों का जो है वो आप दान करें, गुड़ का जो है, शहद का, वो आप दान कर सकते हैं, और काले तिल का दान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आज अगर मासिक शिवरात्रि है, अभी तक आप पूजा नहीं कर सके हैं, तो शाम को भी जाके जो है वो आप जल अभिषेक निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है ना, ये तो कथा है समुद्र मंथन से जो निकल कर आती है, कि जब मंथन के समय में शिव जी ने हलाहल पिया तो उनके जो शरीर में जलन पैदा हुई, भगवान श्री परशुराम जो है कांवड़ से वो जल लाकर उन्होंने उनकी वो जो शरीर की समस्या है वो शांत करी, उनका जल अभिषेक किया, तो यहाँ पे रावण का भी नाम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो शांत करने की बात है ना, ये समय ऐसा है कि मन को शांत करने की भी बहुत जरूरत रहेगी, और अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं फिलहाल, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अचूक उपाय ये रह सकता है कि शाम को आप जरूर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें आज के दिन, और काले तिल, शहद, लाल रंग की वस्तु, या केसर के लड्डू, या इस तरह की चीजें जो है, सेब वगैरह आदि इत्यादि जो है, आप निश्चित रूप से दान करें, तो वो जो मानसिक, चाहे वो रोग हो कि आप किसी बहुत ज्यादा चिंता से ग्रसित हैं या किसी रोग से ग्रसित हैं, वो मन को बहुत शांति जो है दिलाने वाले ये उपाय होते हैं। और मुझे लगता है कि शिव की शरण में हम जब जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे हमारा सारा वो जो मन का
1: बिल्कुल
2: अवसाद है वो दूर कर देते हैं।
1: बिल्कुल। चलिए डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किन मायनों में इस बार की शिवरात्रि खास है शास्त्री जी?
3: जय श्री राधे। देखिए शिवरात्रि आज जो है विशेष इसलिए है कि आज गुरुवार है, पुनर्वसु नक्षत्र और पुख नक्षत्र दोनों मिला था, पुनर्वसु जो है पुनः बसने वाला है, जीवन तापद व्यापार कारोबार शांति, और नक्षत्र कर्म के या शनि नक्षत्र होने से हर या प्रोफेशन में एक लाभ के योग प्रदान करता है। शिव जी को शहद जरूर चढ़ाए, शहद ही चढ़ाने से काफी सिद्धि और उनकी प्राप्ति होती है, और ये रात्रि है शिव की, आज रात्रि में भी होगी, दिन में तो हो रहा है, रात्रि में लोग महाभिषेक करेंगे, चार पहर महाभिषेक करेंगे, प्रदोष काल के लोग महाभिषेक करेंगे, इस रूप में भी पूजन करेंगे, मानसिक पूजन करना विधान है, मानसिक पूजन में भगवान को सब ध्यान का विधान है, हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, भगवती भगवत जब जन्म ली राजक्ष प्रजापति घर में, तो उनके जन्म लेने से ही उनके पिता का भाग्य क्षति हुआ, आज जब सती अपने पिता को छोड़ के परित्याग कर गई।

0: शिव के जो अपमान हुआ, तो आज प्रजापति का अपन का घूट साज में दिखता है। तो आज का जो दिन है भगवती का दिन है और भगवान शिव का दिन है। हर व्यक्ति को आज मानसिक से लेकर के षोडशोपचार कार्य करना चाहिए। अब रही बात करेंगे, देखिए सबसे बड़ी चीज इस समय की, जिसके पास इतना समय हो, ध्यान से भी कोई पूछ कर सकता है, वस्तु चढ़ा के भी कर सकता है। राग द्वेष भय इस चीज से को दूर रहना चाहिए। शिव को सब पसंद है, क्या पसंद है? सम नमः भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव के असुर भी पूजन करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: दैत्य भी पूजन करते हैं, देवता भी पूजन करते हैं, भगवान शिव को देते हैं, उनके मन में ऐसा नहीं को नहीं देना है। तो हम लोग भी, आप सब भी सनातन के जो प्रेमी हैं, आज शिव तिथि, शिव की तिथि है, आप जब भी पूजा कर लिए या करने के लिए शाम इंतजार कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ परिवार के साथ कुछ समय भगवान शिव के शिवालय में मंदिर में जरूर है, उससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दैहिक दैविक भौतिक तीन तरह जो ताप है संसार में, जीवन में, घर में, कारोबार, उसका निवारण होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज है शिवरात्रि का पर्व, तमाम शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल ग्रहण भी लगने वाला है। भारत में क्या सूतक काल माने होगा नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और साथ ही साथ आपकी राशि पर कितना असर होगा, इन सब सवालों का जवाब इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: शिव सावन और सूर्य ग्रहण इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाई तमाम तस्वीरें शिवालयों की, जहां पर भक्ति और आस्था का रंग नजर आ रहा था। तो आज शिवरात्रि है, लेकिन कल है सूर्य ग्रहण और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी इसे कहा जा रहा है। सबसे पहले नंता जी, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, सूतकाल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी दो सवाल। पहली बात तो ये कि हम जो लोग भारत में रह रहे हैं वो इसको किस नजरिए से देखें, दूसरा क्योंकि सनातन को मानने वाले पूरी दुनिया में है, कहां कहां नजर आ रहा है और जहां भी नजर आ रहा है वहां क्या प्रोटोकॉल रहेगा इसका।
1: जी बहुत सुंदर प्रश्न नवजोत जी, बिकॉज देखिए इंडिया में, भारत में तो सूतक काल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ नग्न आंखों से हमें ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा है। तो आप आराम से अपना दिनचर्या आप कर सकते हैं, कोई सूतक नहीं है। लेकिन ये जो आपने जो सेकंड पॉइंट बोला कि सनातनी तो पूरे विश्व में है, हर जगह में है, तो जो जो उस ग्रहण की परिधि में आ रहे हैं उनको विशेषकर जरूर उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये टोटल सोलर इक्लिप्स है और टोटल सोलर इक्लिप्स का जो असर होता है ना, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक रहता है। इट्स अ वेरी ड्रास्टिक थिंग और ये हमेशा देखा गया है कि बहुत उत्पात और उत्पत्तियां या नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, शेयर मार्केट में अपहीवल्स होते हैं, किसी सेलिब्रिटी की या नेता की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो वैसे सिचुएशन होती है। अब ये जो ग्रहण पड़ा है ना, इसका विशेषकर असर जो रहेगा वो यूरोप में रहेगा। आप पूरा यूरोप ले लीजिए, इधर इंग्लैंड, आयरलैंड से लेके ऊपर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फिर आर्कटिक, एंटार्कटिक, पैसिफिक ओशंस और रशिया का जो नदन पार्ट्स है, नदन एरियाज टचिंग है, वो सारे एरियाज रहेंगे। मेडिटेरियन एरिया रहेगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका रहेगा। तो ये जो एरियाज है यहाँ पे जरूर परेशानियां आते हुए दिखाई देती हैं और एकदम से अपहीवल्स होंगे। अभी आप देखिए ना कि ग्रहण तो कल है लेकिन उसका असर ऑलरेडी चल रहा है कि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी। अच्छा, ग्रहण क्या है? ग्रहण जब एसेंडेंट जब राइज कर रहा है, जो मेजर पीक टाइम है ग्रहण का, उस समय वहां पे अगर मैंने स्पेन को लेकर के कैलकुलेशंस डाली थी, क्योंकि मैक्सिमम 100% ग्रहण वहां पे दिखाई दे रहा है, तो मकर लग्न बन रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य ग्रहण है। तो आप ये सोच लीजिए आगजनी जैसी स्थितियां, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मोर वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं या हीट वेव्स आ सकती है। अब जैसे यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी आई कि कितने लोग मरे, मतलब यूरोप में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि 40 के बार भी पारा जाएगा और सारी मतलब लगभग सारे AC सब कुछ एवरीथिंग गॉट एग्जॉस्टेड देयर और लोगों के पास चीजें मतलब वो लिटरली समुद्र के अंदर घुस घुस करके अपने को ठीक कर रहे थे, वैसी स्थितियां बन गई थी। तो उस तरह के कैलामिटीज आती है। अब ग्रहण जो पड़ रहा है ना, उस समय अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, चतुर्ग्रही योग यहाँ पे पड़ रहा है। और उस समय कल जो है मॉर्निंग में गुरु भी उदय हो जाएंगे और गुरु ऑलमोस्ट पुष्य नक्षत्र से अश्लेषा की तरफ को जा रहे हैं, 18 अगस्त को अश्लेषा में आ जाएंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र क्या होता है, उसमें ना एक सर्पेंट की तरह होता है, कुंडलिनी राइज करती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, बहुत सारी डीपर रिसर्च का होता है। तो इस समय अगर आप अपने पैरामीटर्स ठीक नहीं करते हैं, अनएथिकल रहते हैं, तो बहुत कष्ट में रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉजिकली अपनी लाइफ को रीसेट करने के बारे में सोचेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप अपने जीवन पे ले सकते हैं। तो उस तरह की मेरे को घटनाएं घटित होते हुए दिखाई देती हैं।
0: एक बार जल्दी से नंदा जी, समय क्योंकि आज हमारे पास बहुत लिमिटेड है और ग्रहण को लेकर आप जानती हैं कि एक घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए हमारे पास वक्त अभी कम है। जल्दी से तमाम खास मेहमानों से सवाल लगातार लेते जाएंगे। पंडित प्रकाश, इस ग्रहण का असर नंदा जी ने समझाया, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, कहां कहां किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा?
2: देखिए, इसका असर जो है आपका अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, स्पेन के अंदर, जर्मनी के अंदर और आपके रसिया के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर, आइसलैंड के अंदर, इन जगह पे यानी समस्त यूरोप में ये इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और भारत में ये दृश्य नहीं है तो यहाँ सूतक मान्य नहीं है। सूतक याद रखिएगा आप, क्योंकि हमारे GNT के व्यूअर इन देशों से भी हमें देख रहे हैं, तो 12 घंटे पहले सूतक सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल में मंदिर के दर्शन, मूर्ति के दर्शन करना निषेध होते हैं, बाल बनाना, नाखून काटना निषेध होता है, साथ ही साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करना निषेध होता है। अगर वहां पर कोई गर्भवती स्त्री है तो उनको भी सावधानी रखनी पड़ेगी, ग्रहण जब ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण काल में सोना वर्जित कहा जाता है। ग्रहण काल के अंदर कोई भी किसी भी व्यापारिक डीलिंग करना या व्यापारिक गतिविधि करना भी निषेध कहा जा सकता है। क्या करना चाहिए ग्रहण काल के अंदर? तो ग्रहण काल जब लग रहा हो, अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग लग रहा है, तो एक तो सूर्य का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, या फिर ओम घृणे सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान के, जैसा अभी श्रावण का महीना आ रहा है तो भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय की जाप कर लें तो अति उत्तम रहेगा। ग्रहण जब चल रहा हो तो उस समय पे आपको एक तो भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय या विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या सूर्य ग्रहण है तो पर्टिकुलर सूर्य ग्रहण का भी एक मंत्र करना चाहिए, ओम घृणे सूर्याय नमः। साथ ही साथ कुछ लोग रोगी हैं तो उनको क्या करना चाहिए, रोगी अगर कोई जल ले रहे हैं तो जल के अंदर, जैसे जल ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी दल डाल के उसके बाद आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर दूध, और ग्रहण में कहीं कहीं पर संहिता के अंदर लिखा है कि बहुत जरूरी हो, जैसे बालक है या कोई वृद्ध है तो वो अगर लॉन्ग, या कोई शुगर पेशेंट है, या जो लोग लंबे समय तक भोजन नहीं कर सकते, मतलब भोजन करने से उनको वीकनेस आती है, तो क्योंकि ये जो ग्रहण है भारत के अनुसार
0: जी
2: करीबन करीबन 7.5 घंटे का ग्रहण है, अगर भारत से अगर इसको देखा जाए तो कहीं कहीं पर अलग अलग जगह पे होगा, तो उनको उस समय पे क्या करना है, तरल चीजें लेनी है, यानी कि आप रस ले सकते हैं, जैसे फलों का रस आप ग्रहण कर सकते
0: हल्की
2: हैं,
0: चीजें
2: आप पनीर
0: लाइट
2: आप ग्रहण कर सकते हैं, चटनी इसमें खा सकते हैं, तो ये इसकी शास्त्र परमिशन देता है, लेकिन किनको, वृद्ध को और बच्चों को। तो जो भी आप खाएंगे उसके अंदर तुलसी का दल यानी तुलसी आप
0: तुलसी
2: जरूर डाल
0: पत्ता
2: दीजिए।
0: जरूर उसमें होना चाहिए। बिल्कुल लौटूंगी श्रुति गुरुवंदा जी, अब आपके पास आऊंगी क्योंकि नंदिता जी पंडित प्रकाश बता ही रहे हैं कहाँ कहाँ कैसे असर होगा। मैं सीधा आपके पास आऊंगी, पहली 6 राशियों के बारे में बता दीजिए क्या करना, असर इन पर कितना हो रहा है।
3: पहली 6 राशियों के बारे में अगर मैं आपको
0: मेष,
3: बताऊं,
0: वृषभ,
3: देखिए
0: मिथुन, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या।
3: बिल्कुल आप चाहते हैं मैं इन 6 के साथ, मतलब 6 की 6 राशियों के लिए एक साथ बता दूं? जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: तो ऐसा है ना कि देखिए थोड़ा थोड़ा प्रभाव जो है मुझे लगता है यहाँ पे यहाँ से ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि देखिए जब भी ग्रहण लगता है उसके बाद सूर्य की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और 17 अगस्त को जो है सूर्य अपना गोचर भी जो है सिंह राशि से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी राशियों को अगर मैं कोई कलेक्टिव चीज कहना चाहूं तो ये कहूंगी कि किसी भी प्रकार के अवसाद से बचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अननेसेसरी गैम्बलिंग से बचेंगे, सेहत का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि मंगल राहु भी ऐसे नक्षत्र जो है वो कल ही से पकड़ रहे हैं, ऐसे नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो गुस्सा, वाद विवाद, इन सब चीजों से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। शिव उपासना करने का सबसे उत्तम समय है, और मैं कहूंगी कि शिव रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़ें या महामृत्युंजय का जाप करें, क्योंकि ये सत्ता वर्ग या अधिकारी वर्ग से जो भी इन राशियों में, मैं कहूंगी कि देखें मेष राशि के चौथे भाव में है लेकिन पंचम भाव में भी सूर्य का गोचर होगा, तो किसी तरह के गेन्स हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी इनको गैम्बलिंग से बचना है। सिमिलरली वृषभ राशि की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो इनके ट्रैवल के इनके योग है, लेकिन ट्रैवल में वहां पे थोड़ा सा ये सावधानी दें, और घर में जो है वो वाद विवाद से जो है वो बचें, इस तरह की चीज है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि इनका जो है ट्रैवल जो है उतने फ्रूटफुल हो सकता है इनके लिए ना जाए, तो वहां पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। कर्क राशि वालों का अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि गैम्बलिंग से बचें, स्टॉक मार्केट में जो अननेसेसरी गैम्बलिंग होती है उस तरीके से उन चीजों से जो है इनको बचने की जरूरत रहेगी। और सिंह राशि वालों को ना किसी भी कंफ्यूजन में मुझे लगता है थोड़ा सा ठहर कर, अगर आप ठहर कर डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन पे जो है बहुत ध्यान देना सभी 6 राशियों को, कि वाणी पर जो है वो संयम रहे, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें, कोई ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट हो सकता है कि आपके मुख से निकल जाए जो आप ही के लिए भारी पड़ जाए, वो थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। बाकी सब शिव कृपा है। इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए मैं कहूंगी कि कल या आज जब भी आपको समय मिले शिव जी का जल अभिषेक जरूर करें।
0: बिल्कुल
3: जी नवजोत,
0: डीपी शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। जो समय बताया गया है ग्रहण का वो कल रात 9:04 से बुधवार रात शुरू हो जाएगा भारतीय समय के मुताबिक, और गुरुवार के तड़के 1:27 तक ये समय रहने वाला है। हालांकि भारत में तो रात होगी, नजर भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ विशेष सावधानियां जो बरतनी चाहिए।
4: देखिए भारत में सूतक नहीं है, ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं होता है। ये 15 दिन में 2 ग्रहण लग रहा है, अभी 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा अगस्त से ही, ये सावने दो करण लगे के मतलब कि आपके विश्व के पटल पे कोई ना कोई अनहोनी की घटना है, पूरे विश्व में का शांति के दौर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं 15 दिन में देखा भूकंप आना, चक्रवात होना, कोई ऐसी घटना करना, कोई विशेष शक्ति के संसार में मान हानि होना, लॉस वगैरह कराता है। सूर्य राजा है तो राजा ऐसे व्यक्ति को ही क्षय कराता है। रही भारत की स्थिति, तो भारत में भी पीढ़ी आज रुपये है। आप देख लीजिए, छात्र आंदोलन हो, नीट आंदोलन हो, यूजीसी का आंदोलन है, झारखंड से दिल्ली तक सब आपके सामने है। ये कोई ना कोई रूप ले लिया। और 26 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी, भारत लिए भी, इसका कोई ना कोई प्रभाव रहेगा। अंतिम खासकर समय ठीक नहीं है, इसीलिए हर व्यक्ति को भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत्र के पाठ
0: बिल्कुल
4: करना
0: शास्त्री
4: चाहिए,
0: जी।
4: भगवान
0: यही
4: का
0: जानना चाह रही थी,
4: स्त्रोत्र।
0: कहाँ कहाँ किस किस को सावधानी बरतने की जरूरत है, वक्त की कमी है। जल्दी से नंदा जी आपके पास आऊंगी। आखिरी 6 राशियां तुला से मीन
1: जी,
0: तक।
1: तुला राशि की बात करें, आपके दशम भाव में ग्रहण पड़ेगा। बॉसेस से बना के रहिए इस समय, स्पेशली जो कंट्रीज मैंने बताई या पंडित जी बता रहे थे अभी, तो उन एरियाज में जैसे कनाडा या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप पूरा सारा हो गया, रशिया वगैरह, आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से, इन सब से बना करके रखनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा कष्ट हो सकते हैं। तुला राशि वालों को अगर ग्रहण की स्थितियों से अपना बचाव करना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा है कि शिव शक्ति की उपासना करें, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके भाग्य स्थान पे ग्रहण का असर हो रहा है। यात्राएं अगर आप प्लान कर रहे हैं, और स्पेशली अगर रिलीजियस यात्राएं कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है, अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस समय, पितृ दोष की शांति करिए। किसी भी मंदिर में आप तुलसी जी का पौधा वहां पे जाके अर्पित कर लें, बहुत अच्छा रहेगा वहां लगाए, या फिर पीपल का पेड़ कहीं आप अगर स्पेशली शमशान एरिया में लगा देते हैं, वो भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। धनु राशि की बात कर लें तो आपको अपने पाँव में तकलीफें ज्यादा उठानी पड़ सकती हैं, एक अचानक से अनायक से किसी रोग या किसी कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना करना पड़ सकता है, प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट एस्पेक्ट। ये ग्रहण का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, और आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है। आज महाशिवरात्रि, अगर आप सुन रहे हैं इस बात को, तो आज के दिन और कल के दिन भी महामृत्युंजय का जाप तो करें करें, लेकिन साथ ही साथ शिव जी को सफेद चंदन से उनका त्रिपुंड जरूर उनके ऊपर बनाएं, वो बहुत आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेके आएगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप पर ध्यान देना है विशेषकर, और एकदम से बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आपके लिए बन सकती है, और ऐसे ही कुछ आपके घर परिवार में भी हो सकता है जीवन साथी के साथ, तो थोड़ा सा संयम बरत के किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको माता लक्ष्मी की इस समय विशेषकर पूजा करनी चाहिए, कन्याओं को दही चीनी खिलाएं या उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करें, गिफ्ट में दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों की बात करूं तो सेहत की तरफ विशेषकर आपको ध्यान देना है, कर्जे वर्जे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंसिव आपको इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस करके रखने हैं, फाइनेंसेस अपने बैलेंस करके रखने हैं, हालांकि इतना ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 6 हाउस में जब ग्रहण पड़ता है तो कुछ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी आपके लिए लेकर आता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति की आराधना करते रहें, गणपति को हरी दुर्वा घास चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वालों के लिए, वैसे ही 7.5 से गुजर रहे हैं आप, तो मानसिक तनाव की स्थितियां तो बन रही है, अभी जो पिछले टाइम से कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा था, अचानक से एकदम से उसमें चीजें थमने लगेंगी, लेकिन ये समय है कुछ नया पढ़ाई लिखाई सीखने का या अपनी लाइफ को री इन्वेंट करने का। जितना आप ऐसा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सावन का महीना है, सावन के महीने में ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य जो देवता होते हैं उनका आधिपत्य जो होता है वो महादेव को ही बोला जाता है, कहते हैं महादेव ही उनका प्रतिरूप है, महादेव की शरण में चले जाए, महादेव को पंचामृत से स्नान कराएं, महादेव को गंगा जल से अभिषेक करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर करेंगे तो ज्यादा आपको फल मिलेगा।
0: बिल्कुल, चलिए वक्त अभी इतना ही, तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन शिवरात्रि के तमाम रंग गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: सावन की शिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। गंगा जल लेकर लौटे कांवड़िए मंदिर में भगवान को गंगा जल चढ़ा रहे हैं। 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में 10 अगस्त की शाम तक करीब 5.25 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भर कर लौटे। देश के कई हिस्सों से आए कांवड़ के अनोखे रंग आपको दिखाते हैं।

0: देश भर में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ सावन की शिवरात्रि का त्यौहार पूरी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से जल भरकर निकले कांवड़ यात्रियों की छटा पूरे कांवड़ मार्ग पर बिखरी रही। डाक कांवड़ के अंतिम दिन सोमवार को बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थान की ओर चले। पैदल, बाइक और डाक वाहन समेत हर तरफ कांवड़ यात्री ही दिखाई पड़े। डाक कांवड़ को एक निर्धारित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचाने के चलते कांवड़िए साइड भोले की आवाज लगाते और सीटी बजाते भागते दिखाई पड़े। जैसे जैसे कांवड़ मार्ग से कांवड़ यात्री आगे बढ़ते चले, वैसे वैसे आस्था की इस यात्रा के रंग गहराते चले गए। ये तस्वीरें मेरठ की है, जहां दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 98 से कांवड़ियों के गुजरने पर विशेष अंदाज में उनका स्वागत किया गया। सिवाया टोल प्लाजा पर बुलडोजर सवार लोगों ने हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और साथ ही उनके बीच फल, पानी, कोल्ड ड्रिंक सब भी भेंट किए। गाजियाबाद से जब बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजरे तो वो दृश्य देखने वाला रहा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में मुरादनगर गंग नहर से NH-58 तक कांवड़िए ही कांवड़िए दिखे, जो आकर्षक कांवड़ों के साथ आगे बढ़ते चले गए। किसी कांवड़िए के चेहरे पर मुखौटा तो किसी ने अपने कंधे पर भगवान शिव को विराजमान कर रखा था। मेरठ, तिराहा, मोहन नगर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते कांवड़ियों का गाजियाबाद में भव्य स्वागत किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए गए मंच से पुलिस कमिश्नर, DGP उपाध्यक्ष समेत कई अधिकारी के साथ ही विधायक अजीत पाल त्यागी भी कांवड़ियों पर फूल बरसाते दिखे। दिलशाद गार्डन में लगे कांवड़ शिविर में बर्फ का शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना। यहां अमरनाथ की तर्ज पर बाबा बर्फानी के दर्शन की व्यवस्था की गई। खूबसूरत तरीके से सजाए गए इस शिवलिंग को स्तर बर्फ की सिल्लियों से तैयार किया गया।
1: ये कांवड़ 30वां कांवड़ शिविर है, इसमें 2 साल कोरोना में लगा नहीं, 28वां कांवड़ शिविर है। 28वां में 28 साल से बर्फ की शिवलिंग बन रही है अमरनाथ बाबा की, जिसमें 70 किली बर्फ की लगती है। इसके अंदर बाबा अमरनाथ के त्रिशूल और इलोद्राक की माला और डमरू घाट में मास आता है। जो कबूतरी भाई जोड़ा असली होता है वो इस बार बारिश और अमरनाथ बंद के कारण बीच में से नहीं आ पाया।
0: सभी कांवड़ यात्री अपनी अपनी जगह पर पहुंचने के बाद पास के शिवालय में जल अर्पित कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग दिखाई पड़े, जिसमें महिला कांवड़ यात्री भी शामिल रही। महाराष्ट्र के अकोला में सखी माहेश्वरी महिला मंडल की महिलाओं ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। भजन कीर्तन के साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये महिला कांवड़ दल राजराजेश्वर मंदिर पहुँचा, जहाँ उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मेरठ से उस्मान चौधरी, गाजियाबाद से मयंक गौड़, दिल्ली से रोहतास यादव और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
2: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। शाम के 5 बज चुके हैं, चाय हाजिर है और आज वाकई मौसम भी अच्छा है,
4: सुबह से मौसम अच्छा। कल आपने जो प्रिडिक्ट किया था ना कि आज भी मौसम
2: नहीं,
4: अच्छा
2: वो मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट किया
4: नहीं, बट वही बातों को हम रिपीट करते हैं ना तो वो हो गया,
2: फाइनली हो गया,
4: फाइनली
2: सावन शिवरात्रि का मजा भी आ रहा है और सुबह से आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं अलग अलग जगह,
4: बहुत सुंदर रंग आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से।
2: तो चलिए, सावन शिवम सुंदरम यही गूंज मन भावन, सावन में इन दिनों छोटे बड़े शिवालयों में हर जगह पर ये गूंज सुनाई दे रही है। आज मध्यम बरखा बहार के बीच शिवरात्रि पर्व पर रौनक कैसी है, इन तमाम तस्वीरों के साथ आज हम आपको लिए चलेंगे तमाम शिवालयों में, दिखाएंगे कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आपको लिए चलेंगे गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर भी, जहां से मेरी सहयोगी श्वेता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
5: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त दुधेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। तस्वीरें हम यहाँ की आपको दिखाएंगे, भव्य और दिव्य तस्वीरें लगातार आ रही है, लेकिन एक छोटी सी झलक जो रंग यहाँ जमा हुआ है, महिलाओं ने जमाया है, शुरू हो जाए।

0: अलग तरीके से मनुहार यहाँ पर हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही कांवड़ यात्रा में कांवड़ किस तरह से कष्ट सह रहे हैं लेकिन उनकी तपस्या की तस्वीरें भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ जोगेश्वर धाम की भी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।
1: बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। श्वेता, बहुत सुंदर तस्वीरें और बहुत अच्छा नृत्य कर रही हैं आपके पीछे तमाम जो महिलाएं हैं, शिव भक्ति में रंगी हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मानसून की चाल की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में कैसी बनी है चाल, साथ ही उमड़ते घुमड़ते बादलों की आवाजाही देश के बाकी राज्यों में कैसी है, दोबारा सुपर एक्टिव हुए मानसून के पीछे की साइंस आपको बताएंगे। साथ ही इस मानसून सीजन विश्व प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर में कौन सा नया रिकॉर्ड बना है इसकी जानकारी आपको देंगे। कुछ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है चाय पर चर्चा में, लेकिन पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देश भर में सावन की शिवरात्रि की रौनक, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, आज ही मंगला गौरी व्रत का भी शुभ संयोग। सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड से झारखंड तक भक्ति की बयार, हरिद्वार में कांवड़ मेले का समापन, देवघर के वैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की कतार। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराएं तिरंगा, विकसित भारत का ने संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर की भी। चमोली की नीति घाटी में मिशन जिंदगी तेज, रस्सियों के सहारे किया जा रहा लोगों का रेस्क्यू, राहत मिशन में ITBP, NDRF, SDRF के जवान मुस्तैद। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: तो हर हर महादेव, यही गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है और जीएनटी पर ये रंग लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। महादेव की भक्ति का रंग हर तरफ चढ़ा है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। सावन के शिवरात्रि पर सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। कोई गंगा जल लेकर पहुंचा है तो कोई दूध दही शहद बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिर्फ आस्था नहीं, महादेव के प्रति वो अटूट विश्वास है जिसके लिए शिव भक्त मीलों का सफर तय करते हैं। कांवड़िये लंबी यात्रा पूरी कर अपने आराध्य के दरबार में पहुंचे हैं। कंधों पर कांवड़ है और मन में भोलेनाथ का नाम है। हर तरफ बस एक ही गूंज है, हर हर महादेव।
1: बिल्कुल, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक, गाजियाबाद से दिल्ली तक, अयोध्या, मेरठ, मुंबई, हर जगह शिवालयों में आस्था का मेला लगा है। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक बहुत मंगलकारी होता है और यही वजह है कि सुबह से ही भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हैं। कहीं पवित्र गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया जा रहा है तो कहीं पंचामृत से भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ की गई महादेव की आराधना से हर मनोकामना पूरी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें इसी आस्था और इसी विश्वास और इसी समर्पण की कहानी बयां कर रही है। तो चले देश भर के शिवालयों की तस्वीरें भी देख लीजिए। आस्था का सैलाब कैसे उमड़ा हुआ है गंगा घाट से लेकर शिवालयों तक। हर हर महादेव और बम बोल के जयकारे गूंज रहे हैं। और जब बात भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों की हो तो फिर श्रद्धा का ये रंग और भी गहरा हो जाता है। चाहे वो गुजरात का सोमनाथ हो या फिर उज्जैन का महाकालेश्वर, देवघर के बाबा बैद्यनाथ की तस्वीरें भी देख लीजिए और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ। हर जगह पर सुबह से ही बाबा के दरबारों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। कहीं हर हर महादेव की गूंज है तो कहीं बोल बम के जयकारों के बीच भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं।
0: और देखिए झारखंड के देवघर की तस्वीरें भी, आस्था का भव्य नजारा आपको देखने को मिल रहा है। लाखों कांवड़िये बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। बोल बम के जय घोष के बीच भक्त विधि विधान के साथ महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए तमाम तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। सीधा आपको श्वेता झा के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुबह से ही वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। श्वेता, सुबह और अभी की तस्वीर में कितना अंतर आप देख पा रही हैं और कैसे रंग हैं?
2: बिल्कुल शगुफ्ता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी थी उसके बाद से हमारा जो पहला गंतव्य था और हमारा जो पहला मकसद था वो जल्द से जल्द दूधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना और यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें दिखाना। क्योंकि सुबह से ही, जैसा कि हमने आपको बताया और तस्वीरें भी दिखाई, कि लगातार कांवड़िये आ रहे थे, डाक बम आ रहे थे, अलग अलग बोल बम अलग अलग आ रहे थे बम यहाँ पर, और यहाँ पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे थे। लेकिन अब जो आस्था का सैलाब है वो तो किसी हाल में कम हो नहीं सकता, लेकिन हाँ थोड़ी भीड़ अभी कम हुई है क्योंकि अब मंदिर के पट बंद होने वाले हैं क्योंकि श्रृंगार अभी प्रभु का होने वाला है। भोलेनाथ का श्रृंगार होगा 6:30 बजे से और उसके बाद 7 बजे के बाद यहाँ पर भव्य और दिव्य आरती होने वाली है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊं, यहाँ जो पहले से महिलाएं थी उन्होंने मुझे बोल रखा था कि एक भजन हमारा आपको सुनना होगा। वो कौन सा भजन है सुनाइए।

0: जैसा कि आप इनके भजनों में भी सुन रहे हैं, ये कह रही हैं कि भोले तुम्हारी दर्शनों के लिए मैं काशी नगरी आई हूँ। तो देश के तमाम शिवालयों में आप चाहे काशी चले जाएं या फिर प्रयागराज में संगम में आप चले जाएं, इस वक्त आस्था का सैलाब इसी तरह से उमड़ा हुआ है। हर शिवालय में सिर्फ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज देखने और सुनने को मिल रही है। तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं वो तस्वीरें, अलग अलग शिवालयों में इस वक्त क्या रंग देखने को मिल रहे हैं।
1: बिल्कुल, तमाम शिवालयों की तस्वीरें और खासतौर पर जहां पर इस वक्त श्वेता मौजूद हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। और सुबह से ही आस्था का ये रंग लगातार दिखा ही रहे हैं हम आपको। और उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, ये हम लगातार कहते ही हैं, हर उत्सव वो लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर ही देखते हैं। और ये तो आस्था का एक बहुत बड़ा उत्सव है। जरा देखिए तस्वीरें और रौनक कैसी है पूरे देश में।
2: यूं तो प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, जिस कड़ी में फागुन मास में महाशिवरात्रि पड़ती है, तो सावन के महीने में भी शिवरात्रि आज के इस खास दिन है। और कहा जाता है कि आज के दिन भोलेनाथ विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनका जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यही वजह है कि आज भोर से ही तमाम जो शिव भक्त हैं, आस्थावान हैं, वे काशी पहुंच रहे हैं। न केवल कांवड़ियों की शक्ल में, आम श्रद्धालुओं की शक्ल में, बल्कि जल अर्पित करने के लिए तमाम गंगा तमाम नदियों से यहाँ जल लेकर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग?
3: हम लोग आ रहे हैं मेजा खास प्रयागराज से।
2: आज का दिन बहुत ही बेहद खास है, कहा जाता है कि आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
3: हाँ, बाबा की इच्छाएं पूर्ति होती है, अपनी इच्छाएं पूर्ति हो, जल चढ़ाने से अपनी पूरी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है।
2: कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ दर्शन करने?
3: यहाँ दर्शन करने हम लोग आ रहे हैं 5-6 साल से आ रहे हैं। और जैसा कि आज शिवरात्रि भी है, तो बाबा को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, अभी सभी मनोकामनाएं इच्छा जो भी है उनसे मांग लो, वो सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं, वो सबके बाबा है, ओ हर हर महादेव।
2: तो न केवल शहर स्थानीय लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, बल्कि प्रदेश और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि आज के दिन बाबा के दर्शन कर लेने से उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
4: सावन का महीना चल रहा है और आज शुभ संयोग भी है, आज मंगलवार का दिन है यानी बजरंगबली का दिन है, और वहीं सावन की शिवरात्रि यानी भोलेनाथ का भी दिन, तो दो दो शुभ संयोग यहाँ पर बने हुए हैं। और जो भक्त हैं उनके लिए आशीर्वाद लेने का एक बड़ा मौका है। तो प्रयागराज के मनकामेश्वर में भक्तों की जो भारी भीड़ है वो लगी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हाथों में बेलपत्र और जल लेकर के भक्त आए हैं और भोलेनाथ से यहाँ पर अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तो प्रयागराज के इस मनकामेश्वर में भक्तों की जो भारी भीड़ है वो लगी हुई है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की ही कोशिश है वो की जा रही है। कुछ भक्तों से हम बात करने की कोशिश करेंगे।
5: आज सावन की शिवरात्रि है और बजरंग बली का भी दिन है, तो यहाँ पर दोनों देवता विराजमान है। मनकामेश्वर मंदिर की बहुत ज्यादा वो लोग आस्था और पूजन बहुत श्रद्धा भक्ति से आते करते हैं, बहुत भीड़ सावन में होती है। और आज की रात्रि तो एक विशेष रात्रि होती है जिसमें रात भर रुद्राभिषेक होता है, रात भर पूजन अर्चन होता है, दिन भर तो होता ही, रात भर भी होता है। बहुत भीड़, गजब की भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती, जो जिस आस्था से जो मनोकामना लेकर आता है उसकी सारी मनोकामनाएं।
6: यहाँ पे आप चाहे एक लोटा जल भी लेके आइएगा ना तो आपकी पूजा सफल होगी। बाकी तो जो बेलपत्र है और गंगा जल है, दूध है, दही है, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मनोकामना तो भोले बाबा सबकी पूरी करते हैं। आप जी, आज सावन की शिवरात्रि है, वैसे भी सावन में पूरे महीने भीड़ होती है, पूरे महीने लोग आते हैं सुबह।
1: चलिए एक बार फिर से हम आपको सीधा लिए चलते हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर, जहां पर हमारे सहयोगी श्वेता इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से भक्ति की अलग अलग तस्वीरें तो दिखा ही रही हैं, लेकिन अभी भी भक्तों का तांता वहां लगा हुआ है। कांवड़िए बेशक कम हुए हैं, उनकी संख्या थोड़ी, क्योंकि वो कल रात से ही जल चढ़ाने के लिए कतारों में लग जाते हैं, लेकिन आम भक्त श्वेता देख रहे हैं आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं आप लोगों की भी बात सुन रही हूँ और यहाँ माता जी बोल रही है कि आप भी मेरे कीर्तन में शामिल होइए और भजन में। मैं इनको बता रही हूँ कि कुछ परेशानियां हैं, ये हो नहीं सकता लेकिन लेकिन हम सुन सकते हैं। क्यों, क्या सुनाएंगी बताइए?
7: हमने सुना दिया।
0: एक और भाई, सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, एक फटाफट। कोई ज्यादा भोला बाबा का
8: बाबा गए के ना से बुंदिया पड़ने लगी।

0: चलिए श्वेता लौटती हूँ आपके पास।
1: आज के आनंद
0: शिव भक्ति के ये रंग अपने आप में बहुत सुंदर रंग है और शिव भक्त में पूरी तरह से लीन ये महिलाएं और पुरुष नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं आपके पीछे। श्वेता लौटती हूँ आपके पास, लेकिन दिल्ली और जयपुर की रौनक दिखानी भी बनती है। सुबह से तस्वीरें तो आपको दिखाई हैं, लेकिन हम जायजा लिया है हमारे सहयोगियों ने क्या कुछ रंग है वहां से दिखाते हैं आपको।
2: आज सावन शिवरात्रि है और देश भर के हर एक शिवालय में जो है सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी चीज जो आज देखने के लिए हर किसी को मिल रही है वो है कांवड़ यात्रियों की इस यात्रा को पूरे होते हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पीछे भोले जो है वो लगातार भात निकलते हुए जो है वो नजर आ जाएंगे, क्योंकि आज लंबी यात्रा जो है इनकी पूरी हुई है। आज आखिरकार इन्होंने अपने महादेव के ऊपर जो है जल अर्पित किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है आस्था और तपस्या दोनों ही है, और वही इन कांवड़ यात्रियों के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट भी लेकर आ रही है कि किस तरीके से आज यात्रा जो है पूरी हुई। कैसा लगा पहले तो हर हर महादेव?
3: हर हर महादेव, वो शंकर भगवान की जय।
2: कैसा लगा आज जल चढ़ाया? अच्छा। मन को कितना सुकून शांति मिली महादेव
3: को? बहुत सुकून मिल रहा है। अब जाकर के नींद आएगी, अब जाकर के नींद आएगी। दो दिन से सोए नहीं है बराबर।
2: कितना लंबा सफर तय कर रहा?
3: हमारे को 280 के समथिंग पड़ गया।
2: 280 किलोमीटर
3: जी।
2: कितने दिन में?
3: हमने पर कल ही जल उठाया था सुबह 9 बजे, 7:30 बजे।
2: आप लोग जो है अपना
3: कंटिन्यू चलते रहे। हाँ जी,
2: परिवार है आपका साथ में। मैं चाहूंगी प्लीज आप भी सामने आइए, आगे आइए आज, क्योंकि आज वाकई में खुशी का दिन है। इतने दिनों के बाद आप थोड़े जो है देखना, आपने देखा है अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हो, एक संकल्प जो उन्होंने लिया था आज पूरा हुआ। कैसा लग रहा है?
4: बढ़िया बढ़िया,
2: अच्छा लग रहा है।
4: हाँ।
2: आपने जल चढ़ाया?
4: हाँ जल चढ़ाया।
2: वाकई में चेहरे पे जो है वो खुशी बताती है कि किस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं कि हरिद्वार से और अन्य पवित्र स्थानों से जो है भोले जल लेकर आ रहे हैं और उनकी आज यात्रा जो है वो पूरी होती हुई जो है वो नजर आ रही है। और कई दिनों की ये लंबी पद यात्रा होती है, पैरों में छाले हो, रास्ते की थकान हो, या कभी तेज धूप गर्मी या फिर बारिश, लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद ये जो कांवड़िया आपको नजर आ रही है ये कभी रुकते नहीं है, बिल्कुल थमते नहीं है। कितनी भी तकलीफ हो, जो शक्ति आस्था सबसे ऊपर हमेशा रहता है।
5: सब भोले बाबा की कृपा है, भोले बाबा की महिमा है। भोले बाबा से बड़े कुछ है नहीं, उनके सहारे हम भी चले आते हैं।
2: आज जल चढ़ा के कैसा लग रहा है?
5: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: अच्छा,
5: बहुत
2: बढ़िया। चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही
5: है, बहुत ज्यादा।
2: ये मुस्कुराहट महादेव को देख कर है या फिर घर परिवार वालों को?
5: दोनों, घर परिवार वाले भी जरूरी, महादेव भी जरूरी है।
2: हाँ
5: जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अनेकों भोले जो है वो नजर आ जाएंगे, अपने परिवार के संग जो है आपको नजर आने वाले हैं। चाहे महिलाओं की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें, दोनों ही कांवड़ यात्री जो है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। और इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने भोलेनाथ तक पहुँचना, उनके चरणों पे जो है गंगा जल अर्पित करना।
3: ये बहुत खुशी है, दिल बहुत खुश हो रहा है। जी जी, सारी यात्रा हमारी सफल।
2: आप बताइए,
6: बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को।
2: आप देख सकते हैं कि परिवार भी पूरा साथ में है और हर किसी का आज जो ये दिन है यहाँ पर जो इनकी यात्रा है वो पूरी हुई है। तो ये तस्वीरें मैं आपको गौरीशंकर मंदिर की दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भक्तों के चेहरे पर आपको रौनक नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
7: जय बम बोले हर हर महादेव, यही जयकारे हैं जो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका है सावन के पावन महीने की शिवरात्रि का। और ये वो मौका है जब हर एक कांवड़िए के चेहरे पे भक्ति भाव आस्था नज़र आती है, और वो नज़र आता है जिस तरीके से जयकारे हर एक भक्त इस समय पे लगा रहा है। अगर हम शिवालयों में जाएं तो शिवालयों में भारी मात्रा में भक्त नज़र आ रहे हैं। हर एक भक्त के हाथ में जल का लोटा है, दूध है, बेलपत्र है, धतूरा है, और हर एक शिवालय अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। श्रृंगार भगवान शिव का बहुत ही खूबसूरत अभी हुआ हुआ है। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव में भी कुछ ऐसा ही श्रृंगार देखने को मिल रहा है, जहाँ जो शिवलिंग है उसको फूलों से सजाया गया है। जो भगवान शिव का दरबार है वो भी रंग बिरंगे फूलों से, बेलपत्रों से सजाया गया है, और अलौकिक झांकियां जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। हर एक भक्त इंतज़ार करता है कब वो भगवान शिव तक पहुँच पाए। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगाई जाती हैं, तड़के समय से ही भक्त इंतज़ार करने लग जाते हैं कि भगवान शिव उनको दर्शन दें, उनकी मनोकामनाएँ जाने। तो वैसा ही कुछ नज़ारा जो है वो जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भक्तों की भीड़ से भगवान शिव शिव अभी घिरे हुए हैं, हर एक की मनोकामनाएं जान रहे हैं, क्योंकि सावन की जो शिवरात्रि है, कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से आप भगवान शिव से कुछ भी मांगे, कोई भी मनोकामना उनके सामने रखें या फिर उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे तो भगवान शिव आपको एक ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे आपके जो आपके ज़िंदगी में सुख समृद्धि आएगी, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। ऐसे ही इस मंदिर में हर शाम एक बहुत ही खूबसूरत अलग थीम का श्रृंगार होता है, बहुत अलौकिक श्रृंगार होता है। वैसे ही ये सावन की जो शिवरात्रि है वहाँ जयपुर की और राजस्थान की झलक देखने को मिलेगी, जहाँ देश विदेश से आए फूलों के साथ साथ अर्ध नारीश्वर रूप में भगवान शिव नजर आएंगे, जिसमें लहरिया थीम जो है उसको भी जोड़ा गया है। राजस्थान में लहरिया की मान्यता बहुत ज़्यादा है, तीज का पर्व जल्द ही आने वाला है, सावन का महीना है, ऐसे में महिलाएँ अक्सर लहरिया पहने नजर आती है, तो वही थीम जो है उसमें आज भगवान शिव यहाँ पर नजर आने वाले हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज स्टूडियो जयपुर।
1: देखिए शगुफ्ता, सावन का महीना और यहाँ लहरिया की बात हो रही है, मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कलरफुल महीना हम इसको कह सकते हैं। कितने सारे पर्व त्योहार आते हैं, आज हम शिवरात्रि मना रहे हैं, कुछ दिनों में रक्षाबंधन, फिर उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व भी आएगा।
8: लहरिया से मुझे याद आया कि आपने दो दिन लहरिया पहना, आज नहीं पहना, जब जिक्र हो रहा है तो इतनी अच्छी सुंदर साड़ियों में ये दिखाई देती हैं आपको नवजोत रंधावा। चलिए सीधा आपको दुधेश्वरनाथ मंदिर फिर से लिए चलते हैं, श्वेता वहां पर मौजूद है, रंग दिखा रही हैं लगातार। श्वेता ये बताइए, शिवरात्रि, शिव की रात, मतलब रात को भी भजन कीर्तन का कार्यक्रम आई एम श्योर कि यहां पर जारी रहेगा, क्या कुछ होने वाला है?
2: बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि का अर्थ ही है कि शिव, यानी कि आप उजाला, उसको प्रकाश के तौर पर शिव को ले सकते हैं, और रात्रि इसलिए क्योंकि वो रात में होता है, और रात को वैसे प्रतीकात्मक तौर पर देखें तो हमारे अंदर जो अंधकार है उसे एक तरह से उसके प्रतीक के तौर पर माना जाता है। तो हमारे अंधकार को दूर करने के लिए शिव किस तरह से आते हैं, इसलिए पूरी रात भक्त यहाँ पर जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाती हूँ, इस वक्त देखिए 5:30 हो चुका है, अब बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पर जो हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही जैसे

0: आखिरी दौर की पूजा यहाँ पर हो रही है मंदिर में। इसके बाद लगभग 6:15 के आसपास कपाट बंद कर दिए जाएंगे मंदिर के। ये मंदिर प्रांगण में सुबह पैर रखने की जगह नहीं थी, जहां इस वक्त अभी हम खड़े हो पा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद अंदर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार यहां किया जाएगा। भव्य श्रृंगार होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज का दिन जो है वो बेहद पवित्र है, बेहद अलौकिक है, और ऐसे में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनका जो सबसे खूबसूरत स्वरूप हो सकता है, आज महाकाल के रूप में इनको यहां पर उनका स्वरूप दिया जाएगा। तो वो श्रृंगार होने वाला है, लगभग उसमें 1 घंटे का वक्त लगेगा। तब तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, जल भी कोई नहीं चढ़ा पाएगा, और उसके बाद 7 बजे के आसपास महाआरती होगी, जिसमें फिर से तमाम श्रद्धालु शामिल हो पाएंगे और भोले का वो स्वरूप देख पाएंगे, जिसमें 56 भोग उन्हें आज लगाया जाएगा।
1: बिल्कुल, चलिए श्वेता बने रहिए और रंग दिखाते रहिएगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। सावन में देखिए शिव भक्तों की तपस्या पूरी होने को है, कोई मीलों की पद यात्रा करके भोलेनाथ के दरबार तक पहुंच चुका है, तो कोई अभी भी हर कदम के साथ अपनी मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। आज कई कांवड़ियों ने महादेव को जल अर्पित कर अपनी मनोकामना और संकल्प पूरा किया, लेकिन आस्था की ये यात्रा अब भी जारी है। हर हर महादेव बम भोले के जयकारों के साथ पूरा माहौल शिवमय हो गया है,
2: और इस बार भी अगर देखा जाए तो सावन में शिव भक्ति की तस्वीरों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी खास नजर आ रही है। सर पर कावड़, जुबां पर भोलेनाथ का नाम और मन में महादेव के दर्शन की आस, कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के कोई साइकिल से बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। कावड़ के भी अलग अलग रंग हैं और अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। कई अनोखी कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी है, तो कहीं महिला कावड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
3: सावन का पावन महीना और महादेव की भक्ति का महापर्व सावन शिवरात्रि पर हर तरफ बम भोले की गूंज है। शहर शहर शिव का जयकारा है। कावड़ मार्ग से लेकर शिवालयों तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महादेव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। इस बीच कावड़ यात्रा के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के भागलपुर में कावड़ियों की एक ऐसी टोली पहुंची, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रंग बिरंगी सजी ये बस जहां से भी गुजर रही है, लोग इसे देखने के लिए रुक जा रहे हैं।
4: हम लोग इसलिए सजाते कि हम लोग को सबका इससे खुशी मिलता है सजाने से।
5: अच्छा, बाबा के दरबार में मनोकामना पूरा होता है?
4: एकदम
5: पूरा। कितने बार से आ रहे हैं?
4: हम तो आए थे लीजिए 2 साल से।
3: असल में इस बस में पश्चिम बंगाल से आए शिव भक्त सवार हैं। महादेव को गंगा जल अर्पित करने के लिए ये श्रद्धालु लंबी दूरी तय कर भागलपुर पहुंचे हैं। इनके लिए कावड़ यात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का भाव है।
6: पूरा बस एकदम सजी हुई है।
7: सर, हम लोग हर साल इसी तरह हम लोग सजा उजा कर आते हैं, हम लोग बाबा की यात्रा करने। हम लोग हर साल ही के इसी तरह है। हम लोग
6: कई बार से आ रहे हैं।
7: हाँ सर,
6: कब से आ रहे हैं?
7: हम लोग हो गया 15 साल से आ रहे हैं लगातार।
6: 15 साल से?
7: यस।
6: एकदम नागालैंड की बस एकदम सजी हुई बस।
7: हाँ सर, हम लोग इसी तरह हर साल भगवान से यही विनती करते हैं कि हम लोग इसी तरह बस सजा कर लाए।
3: यूपी के बागपत में आस्था के साथ साथ महिला कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ महिला कांवड़ियों के लिए इस बार पिंक प्लान तैयार किया गया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाली महिलाओं के लिए अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं।
8: महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था दरी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे रहने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक पॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और वो पूरे मेले में रहेगी।
3: शिव भक्त अंकुर 35 किलो वजनी घुंघरू वाली कावड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं। इस खास कावड़ में घुंघरुओं के साथ डमरू भी लगाए गए हैं।
9: नहीं, मन्नत कोई भी नहीं है। मन्नत एक ही है, मेरा मम्मी पापा ठीक रहे यही, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको।
6: माँ पापा के लिए?
9: हाँ,
6: मम्मी पापा के लिए।
9: हाँ, मम्मी पापा को ले जा रहा हूँ।
6: कितनी बार है? कितनी?
9: 3 साल से आया हूँ।
6: 3 साल से?
9: हाँ।
6: ये 35 किलो वजन लेके?
9: नहीं, इससे छोटा होता था, मैं इससे ज्यादा कर रहा हूँ।
3: वही सिलीगुड़ी के रहने वाले अनिल पिछले 20 सालों से गंगा धाम से बाबा धाम तक की यात्रा कर रहे हैं। खास बात ये कि अनिल करीब 1300 किलोमीटर का सफर साइकिल से ही तय कर रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर आस्था

0: के ये रंग दिखा रहे हैं कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए दूरी मायने नहीं रखती। किसी के कंधे पर कावड़ है तो किसी की जुबान पर भोलेनाथ का नाम। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ और बागपत से मनुदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए ये खूबसूरती है हमारे देश की कि हमारे देश में हर उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और देश के हर कोने से ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें सावन के उत्सव की आ रही है। आज शिवरात्रि का पर्व, सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है और इसी बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बल्कि मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं।
2: तो चलिए सावन के इस मौके पर धार्मिक पर्यटन के रूप में आपको बता दें, मंदिरों के समूह के रूप में जिसे जाना जाता है, उस धाम आपको हम लिए चलते हैं। हमारे एक जो देखने वाले हैं, हमारे जो एक व्यूअर हैं, उन्होंने खास ये वीडियो भेजा है। इस वीडियो को देखिए और जानिए कि बाबा का ये जो विशेष मंदिर है, वहां की वास्तुकला, वहां की आध्यात्मिकता और वहां के जो वाइब्स हैं, एक तरह से उसके द्वारा किस तरह से न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। देखिए

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा, घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आए। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुंचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि जीएनटी की आप सभी दर्शकों से ये अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर आप अपने ही देश की जगहों को प्रमोट करें तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उसे जीएनटी पर जरूर दिखाएंगे। तो चलिए, तमाम शिवधामों के रंग हम आपको दिखा रहे थे। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। आप दुधेश्वर मंदिर से हमारे साथ सुबह से जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें वहां की और वहां की आस्था के रंग भी आप हमें दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे क्यों अगस्त में अचानक सुपर एक्टिव हुआ है मॉनसून।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: देश भर में सावन की शिवरात्रि की रौनक, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, आज ही मंगला गौरी व्रत का भी शुभ संयोग। सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड से झारखंड तक भक्ति की बयार, हरिद्वार में कावड़ मेले का समापन, देवघर के बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की कतार। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराए तिरंगा, विकसित भारत का ले संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर की रील। चलिए अब थोड़ा सा खबरों के रुख को डाइवर्ट करते हैं, बैकग्राउंड दिख लिया है आपने, कैसा लगा आज का मौसम?
4: मौसम बहुत सुहावना है, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, पूछे तो आज ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा था, चाय पकौड़े खाने सुबह बारिश नहीं थी लेकिन फिर उसके बाद 9 बजे बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर ठीक ठाक बारिश शुरू हो गई थी। मौसम बहुत अच्छा, ह्यूमिडिटी कम है,
3: मौसम इज ऑसम। और चाय पकौड़े कहाँ खाने वो आपको पता है, कहाँ पे आप पहुंच सकती हैं, है ना, मेरा घर हमेशा खुला है। अब बात देखिए मौसम की कर रहे हैं क्योंकि मॉनसून ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल लिया है, 2 दिन की सुस्ती के बाद बारिश का सिस्टम फिर से एक्टिव हुआ है, यानी रीएक्टिव। अब दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आसमान बरस रहा है, कहीं झमाझम बारिश है तो कहीं गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तर से लेकर मध्य भारत और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
4: शगुफ्ता मैं आपको एक बात बताऊं, मौसम की जो खबर होती है ना, मेरा मानना है वो बताने की नहीं, वो फील करने की और देखने
3: दिखाने की चीज़ है।
4: सीधा देखते हैं तस्वीरें जो मन को प्रफुल्लित कर देंगी।

0: दो दिन के ब्रेक के बाद सोमवार से दिल्ली बारिश से तरबतर है। जमकर बारिश हो रही है और बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। दो दिन पहले तक उत्तर भारत के आसमान से बादलों के गायब होने के बाद से लग रहा था कि मॉनसून कुछ दिनों का ब्रेक ले सकता है, लेकिन अचानक माहौल बदल गया, बादलों को ताकत मिली और मॉनसून फिर एक्टिव हो गया। मॉनसून की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह सक्रिय मॉनसून ट्रफ को माना जा रहा है, जो अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बना हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया भी बारिश के सिस्टम को ताकत दे रहा है। और अब बारिश की कहानी में बंगाल की खाड़ी का नया चैप्टर भी जुड़ने वाला है, मतलब उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन करीब 12 अगस्त के आसपास लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से मॉनसून को एक नई ताकत मिल सकती है और बारिश का सिलसिला फिर नए सिरे से जोर पकड़ सकता है। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है, तो यहां बादलों की मेहरबानी सोमवार से बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बारिश की वजह से मौसम कूल है। फिलहाल तो अगस्त बारिश के लिहाज से दिल्ली के लिए शुभ साबित हुआ है। दिल्ली में अगस्त की पूरी सामान्य बारिश 233.1 मिलीमीटर मानी जाती है और दिल्ली में बारिश ने यह आंकड़ा 10 अगस्त को पार कर लिया, लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में बारिश बाकी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी दिल्ली में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 13 और 14 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 15 अगस्त को सुबह से दोपहर और शाम के बीच अलग अलग समय पर बारिश हो सकती है, जबकि 16 अगस्त को दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है।
1: सावन का महीना है और आज है सावन शिवरात्रि, और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में जो है सुबह से ही रुक रुक कर जो है हल्की बरसात हो रही है, जिसने वाकई में मौसम को जो है सुहाना कर दिया है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार गर्मी और उमस परेशान कर रही थी, लेकिन बीच बीच में बारिश की वजह से जो है उमस की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने जो है मौसम को थोड़ा ठंडक किया है। ठंडक जो है थोड़ी सी महसूस जो है वो लोगों को हो रही है, और आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से मौसम रहने का जो है वो अनुमान जताया जा रहा है।
0: पहाड़ों पर भी बारिश ने सारी हदें पार कर रखी हैं। उत्तराखंड में आज कई इलाकों में बारिश का अनुमान है, कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में भी मॉनसून एक्टिव रहने वाला है, यानी पहाड़ों पर भी बादलों की मेहरबानी बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान पर मौसम विभाग की खास नजर है। आज कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है और मध्य भारत में तो बारिश का सिस्टम खासा एक्टिव है। मध्य प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया लगातार असर दिखा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी व्यापक बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर मॉनसून ने अभी ब्रेक नहीं लिया है, बल्कि एक के बाद एक बन रहे सिस्टम बारिश को लगातार रफ्तार दे रही हैं। कहीं बादल बरस रहे हैं, कहीं भारी बारिश का अलर्ट है और कहीं नया सिस्टम दस्तक देने को तैयार है, यानी आने वाले कुछ दिन देश के कई हिस्सों के लिए बारिश वाले रहने वाले हैं और मॉनसून का मूड फिलहाल नो ब्रेक सिर्फ बारिश वाला ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चले मॉनसून की बात हो रही है तो आपको हम वाराणसी की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर गंगा धीरे धीरे अपने रौद्र रूप की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर काशी के घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थल अब एक दो पर पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अगर हम पक्के घाटों की बात करें तो गंगा का पानी अपने आगोश में पक्के घाटों को भी ले रहा है।
3: बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है सावन का महीना है, काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, ऐसे में बढ़ता गंगा का जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। गंगा में बढ़ते पानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम में गंगा द्वार से प्रवेश पर भी रोक लग गई है। जल पुलिस और एनडीआरएफ लगातार गंगा में गश्त कर रहे हैं। स्नान करने वालों से लेकर गंगा जल लेकर पहुंच रहे श्रद्धालुओं तक हर किसी को यहां पर अलर्ट किया गया है।
4: बस थोड़ा बोटिंग में दिक्कत आ रही है, घाट से दूसरे घाट जाने में थोड़ी परेशानी है, बाकी बाबा की इच्छा है, पूरा बढ़िया दर्शन करें। हमने बोटिंग करी है, आरती करी है, मजा आ गया।
5: काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। सावन का टाइम है तो भीड़ काफी ज्यादा है और थोड़ा सा फ्लड का भी, जैसे भी आपने बताया कि इशू उस चीज से काफी आया है यहाँ पर, और इसी वजह से अभी सारी बोटिंग भी बंद है।
6: वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाव की ओर है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड रिपोर्ट की बुलेटिन की माने तो गंगा अभी चेतावनी बिंदु से 6.5 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। दो बार आरती स्थल को लगभग पीछे 20 फीट तक शिफ्ट करना पड़ा है। तो वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाटों का संपर्क भी टूट गया है, जिसकी वजह से जोखिम में जान को डालकर लोग एक घाट से दूसरे घाट आ जा रहे हैं। तो वहीं पक्के घाटों की खूबसूरती भी अब कम होने लगी है। बात करें नौका संचालन की तो जल पुलिस ने अग्रिम आदेश तक किसी भी तरह के नाव के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है, गंगा द्वार से विश्वनाथ धाम में प्रवेश को फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि सावन और सावन के सोमवार के मद्देनजर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा के रास्ते प्रवेश करते हैं, गंगा द्वार के रास्ते प्रवेश करते हैं। तो वहीं जल पुलिस एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार गंगा में हाई स्पीड बोट के जरिए एनडीआरएफ और जल पुलिस चक्रमण कर रही है, लोगों को वार्न कर रही है, हिदायत दे रही है कि वे गहरे पानी में स्नान से बचें, बैरिकेटिंग और जेटी के दायरे में ही रह के स्नान करें। माना जा रहा है कि अगर जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो अगले एक दो दिनों में वाराणसी के सभी पक्के घाट पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।
3: वैली ऑफ फ्लावर तो आपने सुना होगा, उत्तराखंड में चमोली की हरी भरी वादियों में बसी है यही फूलों की घाटी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां हर साल जुलाई से अगस्त के बीच में 500 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। मेन मौसम यही होता है, हालांकि अक्टूबर तक इनको देखने के लिए पर्यटक भी खींचे चले आते हैं, लेकिन फिलहाल इस बार काफी संख्या में सैलानी फूलों की घाटी का रुख कर चुके हैं। इससे पहले आप बताएं,
2: हाँ,
3: आपने दीदार किया है?
2: मैंने दीदार नहीं किया, लेकिन मैं यही बताने वाली थी। अच्छी खबर देखिए, इसमें बहुत अच्छी खबर मैं कहूंगी, वो ये है क्योंकि जिस दौरान काफी साल पहले की बात है, जब मैं गई थी श्री हेमकुंड साहब दर्शन करने के लिए, तब हम लोग कहते थे कि फूलों की घाटी, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। अगर इस बार सैलानियों की संख्या बढ़ रही है तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट हम कहेंगे, जिन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि भक्त यहां पर जो भी बद्रीनाथ जा रहा है या श्री हेमकुंड साहब जा रहा है उसी के करीब पड़ती है, तो वहां एटलीस्ट वो दर्शन कर सकता है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं उसकी भी, आइए देखते हैं।
7: मॉनसून का यही तो सीजन है जब फूलों की घाटी में रंग बिरंगी दुनिया बसती है, तरह तरह के फूलों की खुशबू से पूरी वादी महकती है। मॉनसून की फुहारों के बीच उत्तराखंड में चमोली स्थित वैली ऑफ फ्लावर की खूबसूरती इन दिनों कई गुना बढ़ी हुई है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, प्राकृतिक झरने और 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे दुर्लभ फूलों ने घाटी की सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि विश्व धरोहर के रूप में फूलों की ये दुनिया इस साल पर्यटन के मामले में भी कीर्तिमान बना रही है। दरअसल 15 जुलाई से 15 अगस्त तक फूलों की घाटी का मुख्य सीजन रहता है। यही वो समय होता है जब लगभग मॉनसून खत्म होने तक घाटी में रंग बिरंगी किस्म किस्म की प्रजाति के फूल खिले रहते हैं। ऐसे में देश विदेश से सैलानी फूलों की घाटी का दीदार करने आ रहे हैं, जिस वजह से इस बार पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ फूलों की घाटी बढ़ रही है। दरअसल इस बार फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। आंकड़े कह रहे हैं कि अभी तक वैली ऑफ फ्लावर में कुल 18,856 पर्यटक पहुंच चुके हैं, इनमें 122 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। ये संख्या पिछले वर्ष यानी 2025 की इसी अवधि के दौरान आए 15,924 पर्यटकों से करीब 3,000 ज्यादा है, इनमें 416 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे।
8: इस बार जो हमारे भारतीय पर्यटक हैं उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है, और अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास कैंपेनुला लैटिफोलिया, हिमालयन बालसम, एपिलोबियम, पोटेंटिला, लिगुलेरिया, क्रिमेंथोडियम और भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं घाटी में, और घाटी काफी मतलब रंग बिरंगी सी अभी दिखाई दे रही है और जो पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है।
7: भले ही इस वक्त मॉनसून का दौर है, लेकिन लगातार बारिश, भूस्खलन और खराब मौसम के बावजूद फूलों की घाटी को निहारने के लिए पर्यटकों का उत्साह बना हुआ है, जिसे देखकर वन विभाग और स्थानीय कारोबारी संतुष्ट हैं।
8: पिछले बार ऐसा हुआ था कि काफी बार बारिश हुई थी, काफी बार अलर्ट्स आ रहे थे, तो हमें घाटी को काफी बार बंद करना पड़ा था, जिसमें पर्यटकों की मतलब जो संख्या थी उस दिन की वो शून्य थी, पर इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। इस बार बारिश जो जिस समय खुलने का समय होता है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, उस समय में शाम को 5 बजे तक उस समय में ज्यादा बारिश नहीं रहती, तो इससे घाटी लगभग खुली रहती है।
7: फिलहाल तो फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल, नीला पोस्त, एनीमोन यानी विंड फ्लावर समेत कई दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिले हैं। ऐसे में वन विभाग यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों से अपील भी कर रहा है कि यहाँ आने वाला हर शख्स घाटी की जैव विविधता को बरकरार रखते हुए ही फूलों से ढकी इस वादी का दीदार करें। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आजादी के जश्न का रंग अब देश के कोने कोने में चढ़ता नजर आ रहा है। तिरंगा सिर्फ हाथों में नहीं बल्कि हर दिल में दिखाई दे रहा है। देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तिरंगे के साथ देशभक्ति का जोश देखने को मिल रहा है।
3: और पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपियां की है, जहां पुलिस और सिविल प्रशासन की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल की है, आसनसोल की है, जहां 200 फीट लंबे तिरंगे को शान से लहराया गया। और तीसरी तस्वीर है यूपी के चंदौली से सामने आई, जहां बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। संसद में आज सियासी गहमा गहमी के बीच अगर किसी चीज ने माहौल में स्वाद घोल दिया तो वो था अमृतसरी जायका। आय हाय हाय, स्वाद की ये रेसिपी तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन संसद की कैंटीन की तस्वीरें देखिए। आज राजनीति के साथ साथ पंजाब का तड़का भी देखने को मिला। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने सांसदों के साथ खास अमृतसरी दावत का इंतजाम किया। अमृतसर से खास तौर पर मंगाए गए थे छोले कुलचे, ठंडी ठंडी लस्सी, देसी क्रीम से तैयार फ्रूट क्रीम ने सांसदों का दिल जीत लिया। एक नवजोत कुछ रिएक्शन दे दो यार।
2: अमृतसर अगर आप जाएं तो बेहद अच्छा आपको अमृतसरी कुलचे खाने को मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको बताएंगे मच्छरों पर लेजर प्रहार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
10: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन हुनर ऐसा कि दुनिया सलाम करे। चीन के 12 साल के 3 बच्चों ने जंप रोप में ऐसा कारनामा कर दिखाया जो उसे देखकर बड़े बड़े एथलीट्स भी दंग रह गए।
3: बिल्कुल, महज 60 सेकंड्स में 496 सफल जंप्स, और वो भी इतनी जबरदस्त स्पीड और तालमेल के साथ कि देखने वाले देखते रह गए। देखिए नन्हे चैंपियंस की रिकॉर्ड तोड़ कहानी।
7: रस्सी घूम रही है, पैर थिरक रहे हैं और रफ्तार इतनी तेज कि आंखें भी धोखा खा जाएं। ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन नहीं बल्कि बच्चों का कमाल है। ये तीनों बच्चे सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन इनका कारनामा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है। चीन के च्योंगकिंग में इन तीन नन्हे एथलीट्स ने जंप रोप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तीनों के नाम हैं लेंग हाउरान, ओउ जुताओ और जू चेंग सी। तीनों ने 2026 एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में सिर्फ 60 सेकंड में 496 सफल जंप लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस चैंपियनशिप में 9 एशियाई देशों के 1160 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तीन नन्हे सितारों की हुई। जंप रोप के इस स्पीड इवेंट में रफ्तार के साथ तीनों का तालमेल भी बेहद खास रहा। एक छोटी सी गलती और रिकॉर्ड हाथ से निकल सकता था, लेकिन महीनों की मेहनत और लगातार प्रैक्टिस ने इन तीनों को चैंपियन बना दिया। इनकी स्कूल टीम पिछले 26 साल से जंप रोप की ट्रेनिंग दे रही है। बच्चे रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि प्रैक्टिस करते करते इनकी रस्सियां तक टूट जाती हैं। अब इन नन्हे चैंपियंस का अगला लक्ष्य है अगले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसके लिए ये अभी से प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और मेहनत अगर बड़े हों तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चाय पर चर्चा।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए, मच्छरों से अगर आप परेशान हैं ना, तो ये खबर जरा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि चीन ने मच्छरों के खिलाफ ऐसी टेक्नोलॉजी उतार दी है जिससे देखकर आप भी कहेंगे अब मच्छरों की खैर नहीं भाई। चीन के शिनजियांग में एक पोर्टेबल लेजर मस्किटो किलर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये डिवाइस पहले मच्छर को पहचानती है, उसकी हरकत को ट्रैक करती है, फिर 3 मिलीसेकंड्स में लेजर फायर कर उसे खत्म कर देती है। खास बात यह है कि इसमें LIDAR सेंसर और AI विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है।
2: यानी मच्छर ढूंढने का काम अब इंसान का नहीं, मशीन का हो जाएगा। डिवाइस करीब 6 मीटर दूर से ही मच्छर को डिटेक्ट कर सकती है। कैमरे से लेकर आंगन और आउटडोर कैंपिंग तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात 5:00 PM चाय पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: देश भर में सावन की शिवरात्रि की रौनक, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, आज ही मंगला गौरी व्रत का भी शुभ संयोग। सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड से झारखंड तक भक्ति के बयार, हरिद्वार में कांवड़ मेले का समापन, देवघर के बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की कतारें लगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराएं तिरंगा, विकसित भारत का ले संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर की रील। चमोली की नीति घाटी में मिशन जिंदगी तेज, रस्सियों के सहारे किया जा रहा लोगों का रेस्क्यू। राहत मिशन में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर रिलीज, मुन्ना भैया और बबलू पंडित की दमदार वापसी। 4 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।
7: सोना खरीदना हो या बेचना,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है

नमस्कार जी एंड स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता साहिल देव। करीब एक पखवाड़े की कठिन तपस्या के बाद आज वो पावन दिन आया जब शिव के भक्तों को अपने आराध्य के अभिषेक का अवसर मिला। जी हां, 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के बाद से शिव भक्तों को सावन शिवरात्रि का बेसब्री के साथ इंतजार था। यही वजह है कि आज देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब सुबह से उमड़ पड़ा। कांवड़ लेकर नंगे पांव लंबी पद यात्रा के बाद सावन शिवरात्रि के खास मौके पर भक्तों ने अपनी अपनी मनोकामनाओं के मुताबिक मंदिरों में जाकर भोले भंडारे का जलाभिषेक किया और अपनी तपस्या पूर्ण की। सावन शिवरात्रि के इस खास मौके पर शिव की नगरी काशी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिरों में आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा तट पर स्थित भगवान शिव के अनादि ज्योतिर्लिंग का सावन शिवरात्रि के खास मौके पर दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से शिव भक्त पहुंचे और अपने आराध्य की छटा को देखकर भाव विभोर हो गए।

0: भोले के भक्तों की 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ तपस्या का पुण्य फल मिलने का समय आया तो देश भर के शिवालयों में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। 30 जुलाई को कांधे पर पवित्र कांवड़ लेकर तपस्वी वेश में घर से निकले भोले के भक्त सावन की शिवरात्रि पर अपने आराध्य का पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ अभिषेक कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा था। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कलश में भरकर लाए गए पवित्र गंगा जल से भगवान भोले का अभिषेक कर कांवड़िये अपनी तपस्या का पुण्य फल अर्जित कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि को भगवान शिव का अभिषेक करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन शिवरात्रि के दिन अविनाशी शिव की पतित पावन नगरी काशी की छटा अलग ही दिखाई दे रही है। कलिमल हरणी गंगा के तट पर शाश्वत रूप से विराजमान काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन और अभिषेक करने के लिए देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों के बीच अपने आराध्य का अभिषेक कर रहे हैं।
1: कहां से आ रहे हैं आप लोग?
2: हम लोग आ रहे हैं मेजा खास प्रयागराज से।
1: आज का दिन बहुत ही बेहद खास है। कहा जाता है कि आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
2: हाँ, बाबा की इच्छाएं पूर्ति होती है, अपनी इच्छाएं पूर्ति हो, जल चढ़ाने से अपनी पूरी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है।
1: कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ दर्शन करने?
2: यहाँ दर्शन करने हम लोग आ रहे हैं 5-6 साल से आ रहे हैं। और जैसा कि आज शिवरात्रि भी है तो बाबा को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, अभी सभी मनोकामनाएं इच्छा जो भी है उनसे मांग लो, वो सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। वो सबके बाबा है, ओ हर हर महादेव।
0: सावन शिवरात्रि के दिन पूरी काशी भगवा रंग से रंगी नजर आ रही है। भोले की नगरी का हर गली कूचा, हर चौक चौबारा श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। सावन की शिवरात्रि पर अगर काशी आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और अभिषेक का सौभाग्य मिल जाए तो समझिए जीवन धन्य हो गया। यही वजह है कि शिवरात्रि के दिन दूर दूर से भक्त काशी आए हैं और धैर्य पूर्वक लंबी कतार में लगकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं।
3: देखिए, महाशिवरात्रि जो एक होती है जब बाबा का शादी हुआ था, एक ये सावन की शिवरात्रि, आज के दिन का विशेष महत्व सावन में, और आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से बाबा प्रसन्न होते हैं ऐसा माना गया है। गुरुजी लोग वगैरह सब बताते हैं कि आज के दिन बाबा के दर्शन करने चाहिए, पूजा करना चाहिए, इसीलिए हम सब देख ही रहे हैं कितना भीड़ है, सब दर्शन करने आए हुए हैं।
4: आज शिवरात्रि भी है और सावन में बोला जाता है मंगला गौरी पार्वती जी का व्रत भी होता है मंगलवार को, वो सावन में ही होता है, तो आज ही के दोनों एक साथ ही पड़ा है, वही है, वही दर्शन के लिए
1: आई है। और खासकर आज के दिन
4: अभी भी हम पहले मंगला गौरी गए थे दर्शन करने, उसके बाद अब विश्वनाथ जी आके यहाँ पे रुद्राभिषेक कराए।
1: क्या मान रही है आज का बहुत विशेष दिन है?
4: हाँ, सावन में तो पूरे ही दिन विशेष है, ऊपर से आज महाशिवरात्रि है तो और भी ज्यादा ही है।
1: सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है,
4: सारी इच्छाओं की पूर्ति।
0: कहने की आवश्यकता नहीं कि सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। अल सुबह मंगला आरती से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा था और कपाट खुलते ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। इस मौके पर बाबा विश्वनाथ के दरबार की रौनक अलग ही नजर आ रही है। इस अलौकिक अवसर पर बाबा विश्वनाथ के धाम को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों और मनमोहक लाइट से सजाया गया है। श्रावणी शिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज स्थित प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही कांवड़िये पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार भगवान शिव के अंशावतार और श्री राम भक्त हनुमान जी का दिन होता है। ऐसे में जब सावन शिवरात्रि मंगलवार को आई है तो इसका पुण्यकाल कई गुना बढ़ गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन शिवरात्रि पर सच्चे मन से मनकामेश्वर का जलाभिषेक करने से सारे कष्ट क्लेश मिट जाते हैं और सुख शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
5: अद्भुत लोग यहाँ आते भी रहते हैं और यहाँ एक तरह से कहा जाए तो अदृश्य रूप से ईश्वर विराजमान रहते हैं और जो भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी भी मनोकामनाएं रहती हैं वो पूरी होती है। इसीलिए इसका मन कामेश्वर नाम था। जब भगवान श्री राम ने भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया था, उनका आशीर्वाद लिया था, तो उन्होंने ही उनको प्रेरित किया और उसके बाद यहाँ से वो कामदगिरी चित्रकूट गए और उसके बाद उनकी जो यात्रा रही, तो ये भगवान श्री राम ने भी यहाँ मन में जो अनुष्ठान किया था वो उनका पूरा हुआ कि उनका 14 वर्ष का जो वनवास है वो सफल तरीके से पूर्ण हो।
0: मन कामेश्वर मंदिर का पुराणों में कामेश्वर तीर्थ के रूप में जिक्र मिलता है। मान्यता कहती है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब तीर्थराज प्रयाग आए तो अपने मनोरथ पूरे करने के लिए माँ सीता के साथ मिलकर इसी स्थान पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। तभी से ये स्थान अत्यंत सिद्ध और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है।
6: त्रेता में जब भगवान राम संगम क्षेत्र आए थे उन्होंने भी यहाँ सीता जी के साथ जलाभिषेक किया था। सावन चालू है, कल आपने देखा सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष निकला है, लाखों लोगों ने यहाँ भगवान का दर्शन किया है। आज मासिक शिवरात्रि जिसको बोलते हैं और अमावस्या का भी आरंभ आज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब मासिक शिवरात्रि और अमावस्या से दूसरा पक्ष शुरू हो जाता है, शुक्ल पक्ष, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ती है। तो निश्चित रूप से आज भी दुर्लभ संजोग है मासिक शिवरात्रि का और अमावस्या का, और जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से भगवान का जलाभिषेक पूजन अर्चन करेगा, रुद्राभिषेक करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
0: वैसे तो पूरे सावन में ही प्रयागराज के संगम तट पर स्थित मन कामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, पर सोमवार के बाद शिवरात्रि का महासंयोग बनने की वजह से पिछले 48 घंटे से भगवान भोले का ये प्राचीन धाम जयकारों और भजन कीर्तन की मंगल ध्वनि से गुलजार है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी विशेष महत्व है। यही वजह है कि सोमवार से ही भोले के कीर्तन की मंगल ध्वनि पूरे मंदिर परिसर में गूंज रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: सावन की शिवरात्रि भगवान भोले को प्रसन्न करने का अनूठा अवसर होता है। सावन शिवरात्रि के खास मौके पर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने वाले भक्तों को महादेव की साक्षात कृपा प्राप्त होती है, और यही वजह है कि देश के हर हिस्से में मौजूद शिवालय में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम हो या सहारनपुर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर या फिर हरिद्वार स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर, हर जगह वातावरण शिवमय हो गया।

0: सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों की रौनक देखते ही बन रही है। मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया है। करीब एक पखवाड़े की पदयात्रा की थकान भोले भंडारी का अभिषेक करते ही गायब हो जा रही है। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक कर भक्तों को ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया हो। सावन के महीने में झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम की महिमा का बखान शब्दों में करना संभव नहीं है। कांवड़ियों के लिए बैद्यनाथ धाम से ज्यादा सिद्ध स्थान दूसरा नहीं है। बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल कलश में लेकर कांवड़ के साथ 105 किलोमीटर की नंगे पांव यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। बाबा बैद्यनाथ के भक्त इस दौरान अपने पैरों में पड़ने वाले छाले का जरा भी ध्यान नहीं रखते, अलबत्ता इस पीड़ा में आनंद का अनुभव करते हैं। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर बैद्यनाथ धाम की अलौकिक छटा ऐसी है कि यहाँ आते ही मन के सारे कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। इस बार जो खास बात देखने को मिल रही है वो है महिला कांवड़ियों की तादाद। इस सावन में बैद्यनाथ धाम में महिला कांवड़ियों का उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहा है। कंधे पर कांवड़ रखकर सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा के बाद बैद्यनाथ धाम पहुंची महिला शिव भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर दिख रहा है।
1: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से जल उठाए हैं। बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे और सब सुविधा अच्छा मिला है। इस बार सब जगह से अच्छा सुविधा है। बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
2: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहां तक आए।
3: कितना साल से आ रहे हैं?
2: 10 साल से।
0: आपको बता दें कि बाबा बैद्यनाथ आरोग्य के भी देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा रोगों के नाशक के रूप में भी की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ भगवान शिव का जल अभिषेक करता है वो दैहिक, देविक और भौतिक तीनों कष्टों से मुक्ति पा जाता है। इसी विश्वास की वजह से सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर लंबी पद यात्रा करते हैं और बोलबम के जयकारों के पूरे वातावरण को भक्ति की शक्ति से भर देते हैं। इसी विश्वास ने इस बार महिलाओं को भारी तादाद में कांवड़ लेकर बैद्यनाथ धाम आने की प्रेरणा दी है। शिवरात्रि के मौके पर देवघर की सड़कें महिला श्रद्धालुओं से पटी नजर आ रही हैं।
4: तो आवाज से तो कामना सब दिन रहने करता है लोग के, बुरे है कि नहीं रहता है, जो पूरा दे भगवान।
3: क्या मांगेंगे जा रहे हैं? तो
4: बाल बच्चा अच्छा रहे और क्या मांगे, पसी सलामत रहे कहीं रहे।
5: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं। जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते।
3: कब का मरोग खाई थी?
5: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को।
3: फ्राइडे को
5: हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में। हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे बाबा हम लोगों सब चीज शुरू से दे दिए हैं, इसलिए अब ज्यादा नहीं है, सब परिवार को एकजुट रखे, हमारा देश तरक्की करे, यही कामना है।
0: पुराणों और सनातन के स्थंगतों में बैद्यनाथ धाम की अमित महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था। अपने इस मनोरथ को पूरा करने के लिए उसने कठोर तप किया और एक एक कर अपने सिरों को शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग दिया और शर्त रखी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। लेकिन भगवान विष्णु ने इसी बीच लीला कर दी और उनकी माया में आकर रावण को विवश होकर शिवलिंग एक गवाले को देना पड़ा। उस गवाले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जिस जगह पर उसने शिवलिंग रखा वही स्थान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। देवघर से करीब 1350 किलोमीटर दूर स्थित सहारनपुर के भूतेश्वर महादेव के दरबार में भी शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर परिसर में शिव भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई और अभिषेक के लिए सभी श्रद्धालु धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा परिसर गूंजता रहा। भूतेश्वर महादेव के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालुओं ने अभिषेक कर भोले बाबा से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की।
6: यहाँ का बहुत मानता है भैया, हम लोग बहुत दिन से आते हैं जल चढ़ाने के लिए। आज तो बहुत अच्छा लगता है, हमेशा भी अच्छा लगता है। तो मंदिर बहुत माना जाना मंदिर है, ऐसे थोड़ो है, हमेशा भी अच्छा लगता है। जो भी मांगोगे सारा मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है।
0: भूतेश्वर महादेव मंदिर को लेकर शिव भक्तों में बहुत गहरी आस्था है। मान्यता है कि जो भक्त लगातार 40 दिन सच्चे मन से भूतेश्वर महादेव का अभिषेक कर मंदिर में दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोले भंडारी पूरी कर देते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ सुबह से ही उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। शिवरात्रि के दिन अपने आराध्य का अभिषेक कर भक्त भावुक हो जा रहे हैं।
7: बस उत्सव का माहौल है जी, प्रभु कृपा हो रही है, चारों तरफ उत्सव का माहौल है।
8: कब से आप यहाँ इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या मान्यता है
7: इस मंदिर के? मान्यता इतनी है जी, जो कुछ आए सबकी मनोकामना पूरी होती है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं शंकर भगवान।
9: मैं बहुत जब से छोटी जब से आती हूँ सावन में, पूरे सावन आ रही हूँ नंगे पैर सुबह सुबह 5 बजे। आज तो बहुत ज्यादा है, वैसे इतनी भीड़ रहती नहीं है, बट आज बहुत ज्यादा है, मंडे टू मंडे भीड़ रहती है।
8: हाँ,
9: बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। अगर तुम सच्चे मन से मांगो तो हर मंदिर में पूरा होता है, पर इसकी थोड़ी ज्यादा मान्यता है।
0: आपको बता दें कि मराठा काल से जुड़े इस प्राचीन मंदिर में मौजूद स्वयंभू अष्टकोण शिवलिंग के दर्शन का फल अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां भगवान शिव की पूजा की थी। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और साथ ही विजय का आशीर्वाद भी दिया। शिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्म की नगरी हरिद्वार में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। आधी रात से ही श्रद्धालु यहां पहुंचकर कलिमल हरनी गंगा में पावन डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू हुआ वार्षिक कांवड़ मेला शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया। मेले के सफल और निर्विघ्न समापन पर जिले के आला अधिकारियों ने पौड़ी से गंगा जल लेकर कनखल स्थित प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद प्राप्त किया।
10: कांवड़ मेला 2026 समापन की ओर है और आज सभी मंदिरों शिवालयों में अच्छी संख्या में श्रद्धालु कांवड़िए सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में भी आपने देखा कि पिछले 14-15 दिन में काफी संख्या में कांवड़े हरिद्वार आए हैं अन्य राज्यों से, अन्य जनपदों से। 4 करोड़ ऑलरेडी हमारा कल शाम तक ये नंबर क्रॉस कर चुका था। आज भी काफी संख्या में हमने डाक कांवड़ भी देखी है और कांवड़िए हर की पौड़ी रोडीवल वाला क्षेत्र में देखे गए हैं, काफी संख्या में अभी भी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी लगातार समीक्षा करी है और शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं सभी डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेट करके कार्य किया है। कांवड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिले, उनकी सिक्योरिटी अच्छी रहे और पुलिस विभाग की तरफ से SSP साहब के नेतृत्व में अच्छा काम किया गया है। मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, फोर्स के सभी जवानों को और अन्य फोर्सेज जो बाहर से आई थी उनके जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देता
11: हूं। भगवान भोलेनाथ और गंगा मैया की कृपा है और सकुशल संपन्न हुआ जो हमारा कांवड़ मेला है और आज इनफैक्ट अभी तो लास्ट में चल ही रहा है और आसपास के जनपदों से काफी संख्या में बाइकर्स आज सुबह भी जनपद में आमद हुई है और बिल्कुल स्मूथलेस स्नान चल रहा है। जितने शिव भक्त आए हैं उन्होंने जल लेके अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किया है और इन पूरे ड्यूरेशन में कांवड़ मेले में कोई बड़ा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और बिना कोई लाठी के, बिना कोई पुश किए, ऐसा कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है पुलिस के। और जैसा कि ब्रीफिंग में पुलिस वालों को बताया गया था कि संयमित और अच्छा व्यवहार करना है और कांवड़ शिव भक्त जो कांवड़ लेके यहाँ पे आते हैं उनकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान का विषय है, तो ये फ्लॉलेस गया है और इसमें आप सबका भी धन्यवाद।
0: इसमें कोई संदेह नहीं कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में सबसे ज्यादा रौनक रहती है क्योंकि उत्तर भारत के ज्यादातर भक्त गंगा जल के लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार ही आते हैं। और यहीं से पवित्र गंगा जल लेकर अपने मनवांछित शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि महादेव की कृपा आप सबको यूं ही प्राप्त होती रहे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के एरो सिटी में एक ऐसी किताब का विमोचन हुआ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बीमारी से लड़ने की हिम्मत और जिंदगी को जीतने के जज्बे की मिसाल है। किताब का नाम है ब्लू बटरफ्लाई और इसका विमोचन टीवी के मशहूर एक्टर मोहित रैना ने किया। एक्टर मोहित रैना ने इस खास मौके पर लेखिका डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव की जमकर तारीफ की। पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव ने किताब में अपने पति की जिंदगी और कैंसर से उनकी जंग पर दास्तां बयां की है।
8: हम भी कहते हैं कि ब्लू बटरफ्लाईज दिखती है ना तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस, उसको बहुत गुड लक माना जाता है ब्लू बटरफ्लाईज, और बहुत रेयर होती है ये। लेकिन आप कहीं ने अगर देखो तो वो आपको होप देती है, फेथ देती है, करेज देती है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई और टाइटल ये डिस्क्राइब करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहानी नहीं है इस बुक में, कहा ये हमारी जर्नी है।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: देश भर में सावन की शिवरात्रि की रौनक, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, आज ही मंगला गौरी व्रत का भी शुभ संयोग। सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड से झारखंड तक भक्ति की बयार, हरिद्वार में कांवड़ मेले का समापन, देवघर के वैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की कतार। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराएं तिरंगा, विकसित भारत का लें संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर की रील। चमोली की नीति घाटी में मिशन जिंदगी तेज, रस्सियों के सहारे किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू, राहत मिशन में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौजूद। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज, मुन्ना भैया और बबलू पंडित की दमदार वापसी, 4 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: आज देश भर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि, मंदिरों की बढ़ी रौनक, भोले के जयकारों के साथ गुंजायमान हुआ शिवालय। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर परिसर में जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में बढ़ रहे भक्त, मंत्र उच्चारण के साथ किया जा रहा है भगवान भोले का विशेष जलाभिषेक।

0: बड़ी संख्या में कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं कालकाजी मंदिर और ढोल लगाड़ों के बीच नाश्ते गाते अभिषेक के साथ संपन्न कर रहे हैं अपनी कांवड़ यात्रा। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी देर रात से जुटने लगी शिव भक्तों की भारी भीड़, भोलेनाथ के लगाए गए जयकारे। गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने विधि विधान के साथ बाबा का जलाभिषेक किया, बोलबम के जयकारे। प्रयागराज के कोटेश्वर धाम में लगा शिव भक्तों का तांता, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके सुख समृद्धि की कामना की। कोटेश्वर धाम का धार्मिक और पौराणिक महत्व, मान्यता के अनुसार रावण वध के बाद भगवान राम ने यहीं पर रीत से एक करोड़ शिवलिंग बनाकर की थी भगवान शिव की आराधना। प्रयागराज का नैनी अरैल घाट शिव भक्तों के लिए अनूठी पहल, पूरे सावन घाट पर फ्री रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। घाट पर आयोजित संस्था की ओर से हर श्रद्धालु को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है पूजा की समस्त सामग्री। अलवर में भी शिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़, महादेव को जलाभिषेक करने के लिए उड़े कांवड़िए और टांग कांवड़िए। सावन की शिवरात्रि पर उज्जैन में भगवान महाकाल का हुआ विशेष अभिषेक, हर हर महादेव के जयकारे। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, बोलबम के जयकारों की गूंज। काशी में सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की गई मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रावण शिवरात्रि के चलते भारी संख्या में एक बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि को लेकर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हरिद्वार में टूटा कांवड़ का रिकॉर्ड, 4.43 करोड़ लोगों ने गंगा जल उठाया। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, लाखों शिव भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पुरी में सावन की शिवरात्रि पर उतारी गई भगवान जगन्नाथ की आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इंदौर सेंट्रल जेल में गूंजा हर हर महादेव, 1,000 कैदियों ने बनाए 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग। महज 1 घंटे में पूरा हुआ शिवलिंग का निर्माण, इसके बाद विधि विधान के साथ भोलेनाथ का महाभिषेक। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भी शिवरात्रि पर कांवड़ियों का तांता, बड़ी संख्या में महिला कांवड़ियों भी कर रहे हैं जलाभिषेक। छोटे बच्चे को गोद में उठाए देखी कई महिला कांवड़िया, परिवार की सुख समृद्धि की कामना। सावन में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आते हैं बाबा धाम। संभल में भी महिला कांवड़ियों की रौनक, हरिद्वार और ब्रिज घाट गंगा घाट से कांवड़ लेकर पहुंची महिलाएं। कांवड़ में ला रही पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगी ये महिलाएं। सहारनपुर में भी देख रहे हैं शिव भक्ति के अलग अलग रंग, कांवड़ लेकर धार्मिक यात्रा पर निकली महिलाएं। कंधे पर भारी भरकम कांवड़ उठाए नजर आ रही है महिला श्रद्धालु, अलग अलग मनोकामना के साथ कर रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में हर आयु वर्ग की महिला शिव भक्त सफर के दौरान इंस्टा रील्स भी बना रहे हैं। उरैया में नजर आई अनोखी कांवड़, कैदी के भेष में कांवड़ लेकर उरैया के प्रसिद्ध भगवान शंकर देवकली मंदिर में आया शिव भक्त। कानपुर से अनोखी कांवड़ लेकर उरैया पहुंचे बेड़ियों के में जकड़े संदीप, जुर्म ना करने का दे रहे हैं संदेश। बगा में अनोखी कांवड़ लेकर निकला भक्त, 3 पालतू डॉग्स के साथ कर रहा है कांवड़ यात्रा। 12 दिन में 111 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके रामनगर के नर्मदेश्वर शिव पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र। संभल में नजर आई अनोखी कांवड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईपीएस के बिश्नोई के फोटो लगाकर ब्रज घाट गंगा घाट से लेकर संभल पहुंचे कांवड़ियों का जत्था। सावन के पवित्र महीने में सड़क मार्ग और ट्रेनों के माध्यम से अपने शिव मंदिर के लिए रवाना हो रहे लगातार भक्त। महाराज के डोबीवली में मध्य कांवड़ पदयात्रा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध पिंपलेश्वर महादेव के दर्शन। मुजफ्फरनगर में देखा भक्ति काला का रंग। स्कूटी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे। हरिद्वार से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंद्र का जोरदार स्वागत हुआ। हरिद्वार से कांवड़ देकर पहुंचने पर गांव वालों ने स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते हुए नजर आए पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है महाभारत कालीन अनोखा शिव मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर को दुर्योधन ने बनवाया। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर इस पश्चिम मुखी शिव मंदिर में मन्नतें करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। राखी और फार भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग की शानदार पहल। राखी पर डाक विभाग ने शुरू कर दी वाटरप्रूफ लिफाफा सेवा। छोटा लिफाफा 10 रुपए में, बड़ा लिफाफा 15 रुपए में करवाए जा रहे हैं उपलब्ध। चंदौली में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। लोगों ने लगाए भारत माता की जयकारे। यात्रा को लेकर महिलाओं में भी दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। गाए देशभक्ति के गीत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिले पुनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ। महिलाओं के लिए वरदान बनी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 योजना। सालों से दबंगों से परेशान एक महिला को शिकायत पर मिला न्याय। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्बुलेंस और ब्लड डोनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। 15 अगस्त के नजदीक आते ही सामने आने लगा देशभक्ति का जज्बा। शोपिया में पुलिस और नागरिक प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द और गौरव को बढ़ावा देना मकसद। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज। लाल खले के पास दंगल पार्क में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले 21 तोपों की सलामी। 15 अगस्त की पारंपरिक तैयारियों का एक अहम हिस्सा होता है अभ्यास। राजधानी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद। रक्षाबंधन से पहले कानपुर में सरहद के प्रहरियों के लिए अनोखा कार्यक्रम। देश की सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 3 लाख राखियां। आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा सेना की अलग अलग पोस्ट पर भेजी गई राखियां। इस कार्यक्रम में शामिल हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सुजीता बैस बोले बच्चों के हाथों से बनी ये राखियां जवानों के लिए बहुमूल्य। असम में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के तरानों से गुंजायमान हुआ झांसी रेलवे स्टेशन पर। अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए गूंज रहे देशभक्ति के गीत। झांसी समेत रेल मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशनों पर 15 अगस्त तक गूंजेंगे देशभक्ति के तराने। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी आई देशभक्ति के जज्बे की शानदार तस्वीरें। ऑल टेरेन व्हीकल पर निकाली गई तिरंगा रैली। गुजरात के महीसागर जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव। कई गांवों का टूटा संपर्क। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 14 फीट लंबे घायल किंग कोबरा का किया गया इलाज। इलाज के बाद जंगल में छोड़ा गया। सहारनपुर के 71 साल के किसान आदित्य त्यागी गाय के गोबर से बना रहे हैं धूनी कप। आदित्य के बनाए धूनी कप की देश भर में काफी डिमांड। इस काम से उन्होंने कई लोगों को दिया रोजगार। आसनसोल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। संसद के बाहर सांसद बाबुल सुप्रियो ने छेड़ी सुरीली तान, बारिश के बीच बारिश का गाना गाकर लोगों को जीता दिल। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना होगा और आसान, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स। चमोली की फूलों की घाटी इस बार बनी हुई है पर्यटकों की पहली पसंद, अब तक 18,856 पर्यटक पहुंच रहे हैं घाटी। फूलों की घाटी में इन दिनों 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल हैं उपलब्ध, हरी पहाड़ियों झरनों और फूलों की खूबसूरती पर्यटकों को भा रही है। इस बार फूलों की घाटी देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे, अब तक 122 विदेशी पर्यटक भी पहुंच चुके हैं। लगातार बारिश के बावजूद इस बार घाटी को नहीं करना पड़ रहा बार बार बंद, पर्यटकों की बढ़ी आमद से स्थानीय दुकानदारों के खिले चेहरे। घाटी में इन दिनों ब्रह्मकल, नीला पोस्ट और एनीमोन जैसे दुर्लभ फूल खिले हुए हैं। मुंबई में सोने की चट्टान पर विराजे गौतम बुद्ध, 18 लाख की गोल्ड ईंट पर स्थापित हुई प्रतिमा। मुंबई के गोल्डन मैन ने किया अनोखा काम, रोहित पिस्साल ने मरवाई गोल्ड की ईंट। गया जी में शहीद फौजी के डॉक्टर बेटी की अनोखी पहल, फौजियों के बच्चों का मुफ्त इलाज। डॉक्टर बीडी शर्मा को शहीद पिता से मिली देश सेवा की प्रेरणा, सेना और पैरामिलिट्री परिवारों से नहीं लेते फी। पुलवामा हमले ने बदल दी डॉक्टर की जिंदगी, सरकारी नौकरी छोड़कर लौटे डॉक्टर बीडी शर्मा। दिल्ली के आरुष तिवारी ने रच दिया इतिहास, एशियन ओपन फिगर स्केटिंग ट्रॉफी 2026 में जीता सिल्वर। 15 साल के आरुष का कमाल, लगातार 2 साल एशियन ओपन फिगर स्केटिंग ट्रॉफी के मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म के ट्रेलर में मुन्ना भैया नजर आए। फिल्म के ट्रेलर में मिर्जापुर की सत्ता बदला और खून खराबे का नया चैप्टर नजर आया। मिर्जापुर वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है फिल्म। चीन के एक गांव ने बच्चों के लिए खाली जगह पर स्विमिंग पूल बनाया, गर्मी को दूर भगाने के साथ साथ बच्चों को बिना मस्ती का मौका। करीब 600 वर्ग मीटर में बना है ये पूल, पूल में छोटे बच्चों से सुरक्षित स्थान के लिए अलग उथला हिस्सा भी बनाया गया। पूल में पास ही नहर से रोज ताजा पानी भरा जाता है, शाम को पानी निकाला दिया जाता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव के 3 अधिकारी और कुछ स्वयंसेवक लगातार निगरानी भी करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में रोज करीब 200 बच्चों और उनके माता पिता भी यहां पर पहुंचते हैं। फ्रांस से 100 साल बाद अब आइवरी कोस्ट का पवित्र ड्रम निकलकर वापस आया, लोगों ने नाच गाने के साथ इसका जोरदार स्वागत किया। यह ड्रम 1916 में फ्रांसीसी शासन के दौरान आइवरी कोस्ट से ले जाया गया था। आइवरी कोस्ट के लोग इस ड्रम को अपनी पहचान और ताकत का प्रतीक मानते हैं, पहले इसका इस्तेमाल लोगों को खतरे और जरूरी खबरों की सूचना देने के लिए होता था। ड्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। ड्रम की वापसी को आइवरी कोस्ट में अपनी पुरानी संस्कृति वापस पाने की बड़ी जीत माना जा रहा है। चीन के चोंगकिंग में 12 साल के 3 बच्चों ने 1 मिनट में 496 बार रस्सी कूदकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 बच्चों ने साथ साथ कूदकर रच दिया इतिहास, जरा सी गलती उनकी मेहनत पर फेर सकती थी पानी। इन बच्चों ने कई महीनों तक रोज जमकर अभ्यास किया और उनकी टीम रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में से 8 से 10 घंटे तक ट्रेनिंग करती है। बच्चे इतनी ज्यादा रस्सी कूदते हैं कि एक सेमेस्टर में उनकी एक दो रस्सियां टूट भी गई। इन बच्चों ने अपनी जीत का श्रेय मेहनत और टीम वर्क को बताया। थोड़े आराम के बाद टीम अगले साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी शुरू करेगी। चीन के चांगशा शहर में 12,000 वर्ग मीटर में बनाया गया स्नैक किंगडम। यहां पर 6,500 से ज्यादा ब्रांड के हजारों तरह के स्नैक्स उपलब्ध हैं। स्नैक्स किंगडम में 25,000 से ज्यादा चीनी और 10,000 से ज्यादा विदेशी स्नैक्स। यहां पर लोग अपनी पसंद के स्नैक्स खरीद लेते हैं और उसके लिए जीते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजों के बहुत बड़े मॉडल भी लगाए गए हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इनके साथ फोटो खिंचवाना भी लोगों की पहली पसंद है। सिर्फ सामान खरीदे नहीं जाते बल्कि घूमने और मनोरंजन का भी एक अच्छा खासा इंतजाम है। स्नैक किंगडम में खरीदारी को मनोरंजन से जोड़ा भी गया है, यानी यहां लोग का सामान खरीदने के साथ साथ घूमते खेलते और तस्वीरें भी खिंचाते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा, घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आएं। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुँचें। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज़ टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303400992 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएं। उम्र सिर्फ 12 साल लेकिन हुनर ऐसा है कि दुनिया सलाम करे। चीन के 12 साल के 3 बच्चों ने जंप रोप में ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे देखकर बड़े बड़े एथलीट भी दग रह जाए। महज 60 सेकंड में 496 सफल जंप और वो भी इतनी जबरदस्त स्पीड और तालमेल के साथ कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। देखिए इन नन्हे चैंपियंस की रिकॉर्ड तोड़ कहानी।
0: रस्सी घूम रही है, पैर थिरक रहे हैं और रफ्तार इतनी तेज कि आंखें भी धोखा खा जाएं। ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन नहीं बल्कि बच्चों का कमाल है। ये तीनों बच्चे सिर्फ 12 साल के हैं लेकिन इनका कारनामा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है। चीन के चोंगकिंग में इन तीन नन्हे एथलीट्स ने जंप रोप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तीनों के नाम है लेंग हाउरान, ओउ जुताओ और जू चेंगसी। तीनों ने 2026 एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में सिर्फ 60 सेकंड में 496 सफल जंप लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस चैंपियनशिप में 9 एशियाई देशों के 1160 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तीन नन्हे सितारों की हुई। जंप रोप के इस स्पीड इवेंट में रफ्तार के साथ तीनों का तालमेल भी बेहद खास रहा। एक छोटी सी गलती और रिकॉर्ड हाथ से निकल सकता था, लेकिन महीनों की मेहनत और लगातार प्रैक्टिस ने इन तीनों को चैंपियन बना दिया। इनकी स्कूल टीम पिछले 26 साल से जंप रोप की ट्रेनिंग दे रही है। बच्चे रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि प्रैक्टिस करते करते इनकी रस्सियां तक टूट जाती हैं। अब इन नन्हे चैंपियंस का अगला लक्ष्य है अगले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसके लिए ये अभी से प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और मेहनत अगर बड़े हों तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गर्मी से बचने के लिए आपने अब तक एसी कूलर और पहाड़ों का रुख करते लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन चीन ने अपने शहरों में गर्मी से निजात पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है चीन के जिलना शहर की। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गर्मी से परेशान लोग किसी पहाड़ी इलाके में नहीं बल्कि एक इंडोर स्की रिजॉर्ट में पहुँच रहे हैं। मौसम जो है गर्म है बाहर, लेकिन अंदर चारों तरफ बर्फ, बर्फीली पहाड़ियां और पेड़ों पर जमी सफ़ेद चादर आपको नज़र आएगी। समझ लीजिए इस शहर में बाहर की गर्मी का जो सितम है और अंदर सर्दियों जैसा एकदम एहसास आपको होगा। कभी सिविल डिफेंस प्रोजेक्ट रही इस जगह को अब साल भर चलने वाले क्रॉस कंट्री की रिजॉर्ट में बदल दिया गया है, जहां पर गर्मियों में लोग कूल कूल माहौल का मजा ले रहे हैं और सर्दियों में स्कीइंग का रोमांच। यानी चीन में गर्मी को मात देने का अंदाज भी कुछ ऐसा है कि पारा बढ़ा तो लोग बर्फ की शरण में पहुंच गए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश भर में सावन की शिवरात्रि की रौनक, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। आज ही मंगला गौरी व्रत का भी शुभ संयोग। सावन के पवित्र महीने में उत्तराखंड से झारखंड तक भक्ति के बयार, हरिद्वार में कांवड़ मेले का समापन, देवघर के बैद्यनाथ धाम में शुभ भक्तों की कतार। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराए तिरंगा, विकसित भारत का लिए संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर की रील। चमोली की नीति घाटी में मिशन जिंदगी तेज, रस्सियों के सहारे किया जा रहा लोगों का रेस्क्यू, राहत मिशन में ITBP, NDRF और SDRF के जवान मौजूद। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर रिलीज, मुन्ना भैया और बबलू पंडित की दमदार वापसी, 4 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में शिवरात्रि का महापर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर शिवालयों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा। दिल्ली से लेकर हरिद्वार और उज्जैन से लेकर देवघर तक हर तरफ आस्था और भक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है शिवरात्रि पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। जी हाँ, कांवड़िये लंबी यात्रा पूरी कर अपने आराध्य महादेव के दरबार में पहुंचे और पवित्र जल से भगवान शिव का महाभिषेक किया। सावन की शिवरात्रि के शुभ दिन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही।
4: देश भर में सावन शिवरात्रि को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। सावन शिवरात्रि वो पवित्र और पावन दिन है जब शिव भक्तों की आस्था अपने चरम पर होती है। महादेव की भक्ति में लीन कांवड़िये कई किलोमीटर का सफर तय कर अपने आराध्य की चौखट तक पहुँचते हैं और महादेव का जल अभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा और तपस्या को पूर्ण करते हैं।
5: भारतीय परंपरा में सावन और शिव का रिश्ता बेहद गहरा माना जाता है। आपको बता दें कि सावन का महीना आते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती है, शिवालयों में जलाभिषेक हो जाता है शुरू और सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं भगवा रंग में रंगी कांवड़ यात्रा। वही कांवड़िये आज दूर दूर से अपने अपने पवित्र हाथों में गंगा जल लिए हुए यहाँ शिवालयों में अपने अपने शिवालयों में पहुंच रहे हैं और खास करके दूधेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर हमारी मौजूदगी है वहाँ की बात ही अलग है।
6: जी, ये पूरा ग्रुप है हमारा, 10-12 बंदों का ग्रुप।
5: कब से जा रहे हैं?
6: हम हरिद्वार 31 तारीख को निकल गए हुए थे यहाँ से।
5: पहले साल गए हुए?
6: इससे पिछले साल भी गए हुए थे, अब की साल भी गए हैं, हर साल जाते हैं हम हरिद्वार।
5: लेकिन मन में ऐसी कौन सी बात आती है, क्योंकि दिक्कत तो होती है नंगे पांव जाना, इतनी दूर कंकड़ है, पत्थर है, परेशानी है कई तरह की, कैसे चले?
6: बस सब बाबा की महिमा है, बाबा बुलाते हैं और हम थोड़े चले जाते हैं।
4: आस्था और विश्वास की ये तस्वीर किसी एक शिवालय की नहीं बल्कि देश भर के शिवालयों में आस्था इसी तरह से देखने के लिए मिलती है। अलवर में भक्तों का जमावड़ा है। शिवरात्रि के दिन कांवड़ चढ़ाने का खास महत्व है। ऐसे में सुबह से ही सभी बड़े शिव मंदिरों में डाक कांवड़ और कांवड़ चढ़ाने के लिए कांवड़िए पहुंचे। प्रयागराज में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। दूध, गंगा जल, बेलपत्र और फूल अर्पित कर महादेव का पूजन अर्चन कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आस्था और विश्वास की भव्य तस्वीर देश भर के ज्योतिर्लिंग मंदिरों में देखने को मिल रही है। महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लाखों श्रद्धालु शिव धाम पहुँचे। भक्तों की लंबी कतारें हैं और हर कोई अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ धाम हो या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, तमाम ज्योतिर्लिंगों में आस्था अपार है। झारखंड के देवघर में तो आस्था का एक भव्य नजारा देखने के लिए मिल रहा है। लाखों कांवड़िए महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। बोल बम के जयकारों के बीच भक्तों ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया और बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और सुख और समृद्धि की कामना की।
7: श्रावण मास चतुर्दशी प्रदोष काल में जिस दिन पाने से उसी दिन शिवरात्रि का व्रत होता है, शिव जी का विशेष दिन होता है, उसमें भी आज मंगलवार है। स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारी, भौमवार दिन और शिवरात्रि संयोग से बाबा का लगा है और भक्त लोग आ रहे हैं अपनी अपनी कामनाओं को लेके और बाबा के ऊपर जलार्पण कर रहे हैं माँ पैदल कांवड़ यात्रा लेके। और हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग हैं, सभी भक्तों की कामना ये शीघ्रादि शीघ्र पूर्ण करने वाले हैं।
4: इसके अलावा देश में कुल ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु मर रहे हैं। इस दौरान पूरा का पूरा वातावरण बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गुंजायमान हो उठा। शिव भक्तों का मानना है कि सावन महीने की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गाजियाबाद से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हरिद्वार, उज्जैन, काशी, उत्तर भारत के तमाम शिव धामों में कांवड़ियों ने महादेव का जलाभिषेक किया, लेकिन सावन का पवित्र महीना अभी जारी है और महादेव के भक्तों की भक्ति भी लगातार जारी है। खासकर बिहार और झारखंड में तो पूरे सावन ही महादेव के रंग में रंगा नजर आता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है नारी शक्ति की शिव भक्ति। जी हाँ, सावन के महीने में हर दिन शिव भक्ति का अलग अलग रंग देखने को मिलता है। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के देवघर तक कांवड़ियों का सैलाब दिखाई दे रहा है। खास करके महिलाएं बढ़ चढ़कर कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रही हैं।

0: कंधों पर कांवड़, दिल में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की आस और जुबा पर बोल बम का जयकारा, ये तस्वीरें हैं देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम की, जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़िए करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सुल्तानगंज से देवघर पहुंच रहे हैं। कठिन रास्ते, लंबा सफर, पैरों की थकान के बावजूद महादेव की भक्ति के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ रही है। महादेव के प्रति आस्था और विश्वास इतना है कि महिलाएं भी अपने कंधों पर कांवड़ लेकर भक्ति में लीन है।
1: और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
2: सुल्तानगंज जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहाँ तक आए।
3: कितनी है?
4: वैशाली जिला से आए हैं, सुल्तानगंज पे जाके जल भर के बाबा धाम जा रहे हैं।
3: क्या क्या कामना है बाबा से?
4: बाबा से तो कामना सब दिन रहने करता है लोग के, बड़े है कि नहीं रहता है, जो पूरा दे भगवान।
0: सुल्तानगंज में पवित्र गंगा से जल भरकर निकले कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। बिहार के भागलपुर में कांवड़ियों की एक ऐसी टोली पहुंची जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रंग बिरंगी सजी ये बस, जहां से भी गुजर रही है लोग इसे देखने के लिए ठहर जा रहे हैं। इस बस में पश्चिम बंगाल से आए कांवड़िए सवार हैं। महादेव को गंगा जल अर्पित करने के लिए ये श्रद्धालु लंबी दूरी तय करके भागलपुर पहुंचे हैं। इनके लिए कांवड़ यात्रा सिर्फ सफर नहीं बल्कि भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का पर्व है।
5: पूरा बस एकदम सजी हुई है।
6: हाँ सर, हम लोग हर साल इसी तरह हम लोग सजा उजा कर आते हैं, हम लोग बाबा की यात्रा करने। हम लोग हर साल ही के इसी तरह हम लोग।
5: कई बार से आ रहे हैं?
6: हाँ सर।
5: कब से आ रहे हैं?
6: हम लोग हो गया 15 साल से आ रहे हैं लगातार।
5: 15 साल से?
6: यस सर।
5: एकदम नागालैंड की बस एकदम सजी हुई बस।
6: हाँ सर, हम लोग इसी तरह हर साल भगवान से यही विनती करते हैं कि हम लोग इसी तरह बस सजा कर लाए।
0: भागलपुर में शिव भक्ति के एक से बढ़कर एक रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। ये शिव भक्त अंकुर है जो 35 किलो वजनी घुंघरू वाली कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं। इस खास कांवड़ में घुंघरुओं के साथ डमरू भी लगाए गए हैं। सिलीगुड़ी के रहने वाले अनिल पिछले 20 सालों से गंगा धाम से बाबा धाम तक की यात्रा कर रहे हैं। खास बात यह है कि अनिल ये करीब 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर रहे हैं। देवघर जाने का रास्ता शिव भक्तों से पटा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ की भूमि बोलबम के जयकारे से गूंज रही है। महादेव के भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा धाम तक पैदल यात्रा करते हैं और महादेव से मिलन की आस्था की ये डगर आसान नहीं होती, लेकिन जब कदम थक जाते हैं तो कांवड़िए रास्ते में कुछ देर ठहरते हैं, भजन कीर्तन में रमते हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर का विश्राम और फिर कांवड़िए जल लेकर आगे बढ़ते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है।
7: बाबा का दर्शन करने जाना है।
5: बोलो क्या लग रहा है तुमको, कैसा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आने का पहली बार हमको मौका मिला है, इससे पहले आए तो नहीं थे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, ये सब नज़ारा देख के, गाँवों के भाई नज़ारा देख के, गाँव से जुड़ा रहने का, प्रकृति से जुड़ा रहने का, तो शहर की जिंदगी में तो ये सब तो देखने को मिलता नहीं है। लेकिन आने के बाद अच्छा लग रहा है घूमना फिरना, यहाँ जगह जगह पे दिखना, फिर बाबा का दर्शन करना, जल चढ़ाना है, पैदल 108 किलोमीटर जाना है, ये अच्छा लग रहा है।
0: शिव भक्ति की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुल्तानगंज से बाबा धाम तक आस्था अपार है। यात्रा में भक्तों का हर कदम के साथ महादेव पर भरोसा और मजबूत होता है और ये तपस्या बाबा के दरबार तक पहुंचकर जल चढ़ाकर सफल होती है। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
8: सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति और हरियाले का पवित्र और पावन महीना है। इस महीने में जहां प्रकृति हरे भरे रंग में नजर आती है, वहीं महिलाओं पर भी हरा रंग चढ़ा नजर आता है। पटना में महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में सावन महोत्सव मनाया। हरे रंग के परिधानों में सजी महिलाएं सावन के गीतों पर थिरकती नजर आई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है सावन महोत्सव के उल्लास में हरियाली के रंग। जी हाँ, आपको बता दें कि सावन का महीना भक्ति, उमंग और उत्साह का महीना होता है, जिसमें भोलेनाथ की भक्ति में पूरा देश डूबा नजर आता है। इस महीने में शिव शक्ति की आराधना होती है। तीज महोत्सव से लेकर हरे भरे सावन को महिलाएं अपने अंदाज में उत्साह के साथ मनाती हैं। पटना में सावन महोत्सव के दौरान महिलाओं ने भी भक्ति के साथ जमकर सावन उत्सव मनाया। कहीं भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति में महिलाएं गीत गाती और झूमती नजर आईं, तो कहीं हाथों में मेहंदी रचाई गई, कहीं 16 श्रृंगार के साथ महिलाओं ने सावन की खुशियां मनाई। और जब संगीत की धुन बजी तो फिर क्या था, महिलाओं के कदम थिरकने लगे। शिव महोत्सव में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। दरअसल सावन को आमतौर पर भगवान शिव की भक्ति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सावन का महीना महिलाओं के लिए भी खास होता है। इसमें मेहंदी, 16 श्रृंगार, सावन के गीत, झूले और सखियों के साथ मिलकर उत्सव मनाने की परंपरा होती है। इन्हीं परंपराओं की झलक पटना के एक सावन महोत्सव में देखने को मिली, जहां भक्ति और संस्कृति का खूबसूरत संगम देखने को मिला।
3: सावन तो देखिए स्पेशली है प्रकृति से जुड़ाव, ये जो है शिव पार्वती का महीना है, कहिए तो शिव जी के परिवार का पूरा महीना है। और इस महीने में ये महीना जो है हम लोग नारियों के लिए खास होता है। इस महीने में हम लोग तरह तरह के व्रत करते हैं, अपने पति के लिए, परिवार के सुरक्षा के लिए मनोकामना पूर्ण करते हैं सारे शिव जी हम लोग के। और ये प्रोग्राम जो है महिलाओं के लिए स्पेशली किया गया है, ताकि महिला अपने रोजमर्रा की रूटीन से हट के यहाँ पे आए और एंजॉयमेंट करें।
9: हम लोग जैसे कि अभी के टाइम में किसी का उतना टाइम नहीं है कि हम लोग अकेले करें पर्सनली। पहले तौर से सब जो गांव में होती थी तो वो लोग अपने घर के आसपास कुछ अच्छा पकवान बना के सब लोग मिलजुल के इकट्ठे होके सब मनाती थी पर्व त्यौहार। अभी के लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग सब महीने लोग मिल के एक जगह इकट्ठे होके सावन से हम लोग एंजॉय करते हैं। जैसे कि माना गया है कि हरा कलर भी एक सुहाग का प्रतीक है, तो सावन में हरा कलर इसलिए हम लोग पहनते हैं क्योंकि शिव जी जो है ना पार्वती माँ को, मतलब पार्वती जी को सब लोग बहुत सारे उपहार दे रहे थे, तो शिव जी को लगा कि हम अपनी वाइफ को क्या दे, मतलब अपनी धर्म पत्नी को क्या दे, तो वो हरा चूड़ी ला के दिए थे। इसी को लेके एक परंपरा हो गया है कि महिला लोग सावन के टाइम पे सस्ती सवरती है, 16 श्रृंगार करती है और खास करके हरी चूड़ियां जरूर पहनती है सावन में।
8: बढ़ेंगे आगे। स्वतंत्रता दिवस करीब आ रहा है और इस अवसर पर देश में जश्न की शुरुआत हो चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा और शोपिया जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 1600 मीटर लंबी तिरंगा रैली से राष्ट्रीय एकता का संदेश। जम्मू कश्मीर के डोडा और शोपिया में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। डोडा में 1600 मीटर लंबे विशाल तिरंगा को लेकर एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई। इस रैली में 9000 से अधिक स्कूली बच्चों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर देश प्रेम और एकता का अद्भुत परिचय दिया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नागरिकों ने भाग लिया। स्टूडेंट इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति से जुड़े बैनर, पोस्टर और तख्तियों के माध्यम से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, शांति और सद्भाव का संदेश दे रहे थे। वहीं शोपिया में भी बाइक पर एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस तरह की रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और स्वाभिमान को बढ़ावा देना है और इस तरह के आयोजन नागरिकों के दिलों में देश के प्रति सम्मान और अटूट प्रेम को और अधिक मजबूत करते हैं। जिस गोबर को आप आम तौर पर वेस्ट समझते हैं, उस गाय के गोबर से सहारनपुर का एक कारोबारी खूब कमाई कर रहा है। फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हो चुके आदित्य त्यागी ने गाय के गोबर से सम रानी कप यानी कि धूप जलाने वाले कप का निर्माण किया है और इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, देसी गाय के गोबर से कमाई की राह। जी हाँ, आपको बता दें कि सहारनपुर के गांव मगवानी निवासी आदित्य त्यागी के बनाए गए उत्पाद देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खूब बिक रहे हैं और उन्हें हर महीने गोबर के सम्रानी कपों से मोटी आय हो रही है।

0: गाय का गोबर बहुपयोगी होता है। ऐसे में लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस से बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के किसान हैं आदित्य त्यागी। 71 वर्षीय त्यागी गाय के गोबर से एक यूनिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर होने के बाद आदित्य त्यागी ने देसी गायों को पालना शुरू किया, लेकिन दूध बेचने से अपेक्षित मुनाफा नहीं होने की वजह से उन्होंने देसी गायों के गोबर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उन्होंने गायों के गोबर से सम्बरानी या धूनी कप बनाने का काम शुरू किया। धूनी कप में धूप और लोबान जलाने से घर में खुशबू आती है। आज उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से बिक रहे हैं और उन्हें हर महीने लाखों रुपए की आमदनी भी हो रही है। आदित्य त्यागी ने देसी गाय के गोबर में गूगल और लोबान जैसी प्राकृतिक सामग्री मिलाकर ऐसे संबरानी कप तैयार किए हैं, जिनका उपयोग घरों में धूनी देने और वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए होता है।
1: स्टेप बाय स्टेप है, जैसे बनाते हैं गोबर से बनाया तो उसको 3 दिन या 2 दिन छाया में सुखाते हैं, फिर 1 दिन धूप में सुखाते हैं, उसके बाद रख देते हैं। फिर उसका फिलिंग होगा, फिलिंग करने के बाद भी कम से कम 1 दिन अगर अच्छी धूप है, नहीं तो 2 दिन सुखाना पड़ता है, उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है। तो खर्च इस पर अगर सही करेंगे, मतलब सही चीज डालेंगे जो डालनी चाहिए, केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो खर्च ज्यादा आएगा।
0: बाजार में मिलने वाले अधिकतर संबरानी कप कोयले से बने होते हैं, जिनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस निकलती है, जबकि देसी गाय के गोबर से बने इन कप्स को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। अनिल त्यागी के अनुसार उनका उद्देश्य संबरानी कप से केवल व्यवसाय करना नहीं, बल्कि लोगों तक शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद पहुंचाना है।
1: लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों? मार्केट में काला वाला कप आ रहा है, वो कोयले का। अब घर में जलाते हैं शुद्धि के लिए, कोयला जलाएंगे तो उसमें पॉल्यूशन होता है, उससे गाय के गोबर से ऑक्सीजन मिलती है जलने पे, तो इसलिए गाय के गोबर की लोग जागरूक हो गए। गाय के गोबर के संबरानी कप की काफी डिमांड है। इसमें गाय का गोबर है, गूगल लोबान और एक जो कोई नहीं मिलाएगा, बहुत महंगी चीज है, सुगंध कोकिल आती है, वो यहाँ हमारे यहाँ जड़ी बूटी नहीं होती है, नेपाल में होती है। मैं वन विभाग में रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानकारी है, सुगंध कोकिला मिलाते हैं इसके।
0: संबरानी कप से आदित्य त्यागी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। एक संबरानी कप बनाने में लगभग 10 ग्राम देसी गाय का गोबर लगता है, जबकि एक कप की कीमत करीब 10 रुपए पड़ती है। इस हिसाब से गोबर का मूल्य 400 रुपए प्रति किलो से भी अधिक हो जाता है, जबकि उनका संबरानी कप होलसेल में करीब 90 रुपए और ऑनलाइन लगभग 220 रुपए में बिकता है। आदित्य त्यागी को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं, जिनमें दक्षिण भारत से सबसे अधिक मांग आ रही है। इस साल उन्होंने 20,000 संबरानी कप तैयार किए हैं, जिनमें से एक महीने के भीतर ही करीब 1/3 कप्स की बिक्री हो चुकी है।
1: मार्केटिंग की समस्या आती है, हमने उनको कहा कि बेचने की आपको परेशानी नहीं है, कुछ भी आप जितना बनाएंगे हम ले लेंगे, हम अपना कर देंगे। तो कई लोग हमसे, 3-4 लोग हमसे जुड़ गए हैं। अब उनको मटेरियल, जो बनाने का मटेरियल है, क्योंकि दूसरे पर भरोसा नहीं है कि वो क्या मिला देगा, मिक्स मटेरियल हम उनको तैयार करके देते हैं और वो अपने घर में बनाते हैं। उनको मशीन दे रखी है, हमने घर में बनाते हैं और सुखा के हमें दे जाते हैं, उनको पर पीस हम पैसा दे देते हैं।
0: संबरानी कप्स को तैयार करने से लेकर उसकी पूरी पैकिंग तक आदित्य त्यागी अपने घर में ही करते हैं और इसके लिए उन्होंने 5 से 7 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। आज उनकी नौकरी के समय मिलने वाली सैलरी से भी अधिक आमदनी इस व्यवसाय से ही हो रही है। आज उनका ये मॉडल उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है जो देसी गाय पालन से नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: असम के बराक घाटी के छोटे से गांव की रहने वाली हमीदा नूर सल्कन ने इंटरनेशनल कामयाबी हासिल की है। हमीदा ने थाईलैंड के ताइक्वांडो का गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है असम के गांव से थाईलैंड तक कामयाबी का गोल्ड मेडल। जी हां, टैलेंट, कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास से हमीदा नूर ने देश की सीमाएं पार कर थाईलैंड में शानदार कामयाबी हासिल की है। नॉर्थ नारायणपुर की इस लड़की ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हेलाकांडी यानी कि बराक वैली का नाम रोशन कर दिया है। हमीदा नूर लस्कर ने पहले लोकल लेवल पर अपना टैलेंट दिखाया और अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के मैदान में अपनी पहचान बना चुकी है। हमीदा ने केवल एक मेडल नहीं जीता बल्कि उनकी इस जीत में एक इलाके का सपना, एक परिवार की लंबे समय की मेहनत और एक युवा एथलीट के पक्के इरादे और कॉन्फिडेंस की कहानी है। हमीदा की कामयाबी एक मैसेज है, खास करके उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स को अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। एक साधारण परिवार से आने वाली हमीदा की सफलता पर न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा नारायणपुर गर्व कर रहा है। हैलाकांडी की जनता ने हमीदा नूर लस्कर को उनकी इस सफलता पर बधाई दी और उनके भविष्य में भी सफल होने की कामना की है।
3: मैं इस वक्त खड़ा हूं हैलाकांडी जिले के एक गांव में और इसी गांव का एक बेटी ने पूरा भारत का नाम जो है उजागर किया है। भारत का बाहर जाकर छोटा मोटा गाँव है, राह चलने का सड़क भी नहीं है, पीने का पानी की भी प्रॉब्लम है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन उस जगह से वो उठ कर जाके पूरा भारत का नाम जो है थाईलैंड में जाके चमकाती है। आज उसी के साथ हम लोग बात करेंगे।
4: हाँ, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ ऐसा मार्शल आर्ट में जाऊँ या टाइकंडो कराटे या फिर किसी में जाऊँ, मतलब मुझे इंटरेस्ट बहुत था। मेरा मन उधर था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी ताकि मैं खुद भी सेल्फ डिफेंस कर पाऊँ अगर ज़रूरत पड़े तो, और मैं और किसी का भी हेल्प कर पाओ। इसलिए मुझे इंटरेस्ट था कि अगर कोई मदद चाहे या फिर मैं मेरे तरफ से कुछ भी अगर ऐसा हेल्प कर पाओ तो मैं कर सकूँ। तो मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं या तो मार्शल आर्ट या फिर उसमें से जो भी कुछ भी हो मैं सीखूँ खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए और किसी सहायमंद इंसान को ऐसा हेल्प देने के लिए। हमारे गांव में तो ये सब मतलब टाइकंडो मार्शल आर्ट सब बहुत कम होता है, मतलब इतना स्कोप नहीं है हमारा। पर बाहर जब मैं गई, मैं अभी जो गुवाहाटी में भी रहती हूँ हैंडिक गर्ल्स कॉलेज में भी, उधर भी हमारे सर है एम्ब्रोस कुमार बोरा सर, वो भी मतलब इंकरेज करते हैं कि आप लोगों को आना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, मतलब सेल्फ डिफेंस तो सीखना चाहिए। अभी इस कलयुग में हर एक लड़कियों को मतलब अपने खुद के बचाने के लिए उन लोगों को ताइक्वांडो ये सब सीखना चाहिए। मतलब
2: मॉनसून के फुहारों के बीच विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी इस वर्ष पर्यटन के मामले में नए कीर्तिमान बना रही है। इस साल फूलों की घाटी में अब तक 18,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंचे रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक। जी हाँ, फूलों की घाटी में इस समय बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों, कलकल बहते प्राकृतिक झरनों और 500 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों ने घाटी की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है।
5: मॉनसून का यही तो सीजन है जब फूलों की घाटी में रंग बिरंगी दुनिया बसती है। तरह तरह के फूलों की खुशबू से पूरी वादी महकती है। मॉनसून की फुहारों के बीच उत्तराखंड में चमोली स्थित वैली ऑफ फ्लावर की खूबसूरती इन दिनों कई गुना बढ़ी हुई है। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, प्राकृतिक झरने और 500 से ज्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे दुर्लभ फूलों ने घाटी की सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि विश्व धरोहर के रूप में फूलों की ये दुनिया इस साल पर्यटन के मामले में भी कीर्तिमान बना रही है।
6: इस समय फूलों की घाटी का मुख्य सीजन चल रहा है। किस्म किस्म की प्रजातियां इस समय फूलों की घाटी में खिले हुए हैं। देश के कोने कोने से पर्यटक जो है वो दीदार करने फूलों की घाटी का आ रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है 18,000 पर्यटक अब तक, 1 जून को कपाट खुल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी और अभी 15 अगस्त भी पूरा नहीं हुआ और 18,000 पर्यटक जो है फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं, जो एक अपने आप में एक नया रिकॉर्ड यहां पे माना जा रहा है। पिछले वर्ष की बात करें तो सीधा दोगुना ये संख्या यहां पे देखी जा रही है।
5: दरअसल 15 जुलाई से 15 अगस्त तक फूलों की घाटी का मुख्य सीजन रहता है। यही वो समय होता है जब लगभग मानसून खत्म होने तक घाटी में रंग बिरंगी किस्म किस्म की प्रजाति के फूल खिले रहते हैं। ऐसे में देश विदेश से सैलानी फूलों की घाटी का दीदार करने आ रहे हैं, जिस वजह से इस बार पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और नए रिकॉर्ड बनाने की तरफ फूलों की घाटी बढ़ रही है।

0: विंड फ्लावर समेत कई दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिले हैं। ऐसे में वन विभाग यहाँ पहुँच रहे पर्यटकों से अपील भी कर रहा है कि यहाँ आने वाला हर शख्स घाटी की जैव विविधता को बरकरार रखते हुए ही फूलों से ढकी इस वादी का दीदार करें। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा हर घर लहराए तिरंगा, विकसित भारत का ले संकल्प, सोशल मीडिया पर शेयर की रील। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर होगी ग्रहण की शुरुआत, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण। चमोली की नीति घाटी में मिशन जिंदगी तेज, रस्सियों के सहारे किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू, राहत मिशन में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें शामिल। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और इसके बाद पुलिस ने वहां जमकर डंडे बरसाए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इंदौर के बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच में फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वहां पर जमकर डंडे बरसाए। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस के जवान एक दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों को बाहर निकालते हुए डंडे बरसा रहे हैं। लाठी चार्ज के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमान ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, फिर पुलिस ने कुछ अलग ही बर्ताव दिखाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस के जवान लोगों पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के जवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने वहां पर लाठियों की बरसात कर दी। वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि जो दिखता है वो वाकई सच नहीं होता है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये कन्नड़ भाषा जैसा लगा। नेपाल में कन्नड़ नहीं बोली जाती, ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे को लेकर आशंका भी हुई। साथ ही साथ वीडियो में कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी देखा जा सकता है, इससे ये इशारा मिल रहा है कि वीडियो पुराना है, हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये वीडियो हाल फिलहाल का होता तो अपने आप में कोई बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई जानकारी जरूर छपी होती। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नेपाल से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो 26 मार्च 2020 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां देश भर में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाया। सर्च के दौरान हमें 26 मार्च 2020 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि कर्नाटक के बेलगावी में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वहां मौजूद कई लोगों पर डंडे बरसाए थे। एक समाचार एजेंसी ने भी अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को 26 मार्च 2020 को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये घटना एक मस्जिद के बाहर की है, जहां लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का नहीं बल्कि कर्नाटक के बेलगावी का है। साल 2020 का ये वीडियो कोरोना महामारी के समय का है, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ यूजर्स उस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंदौर के व्यस्त बाजार का, जहां पुलिस और शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि इंदौर में पुलिस को चकमा देने के लिए चोर ने खतरनाक करतब दिखाए। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति का पीछा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए सड़क पर मौजूद वाहनों को पार करता है और एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बस से कूदकर सड़क किनारे लगी एक होर्डिंग पर चढ़ जाता है। वीडियो को मध्य प्रदेश के इंदौर का बताते हुए दावा किया जा रहा है कि एक शातिर चोर ने पुलिस को खूब छकाया। पोस्ट में बताया गया है कि इंदौर के व्यस्त बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही है। शख्स एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बस से कूदकर सड़क किनारे लगी होर्डिंग पर चढ़ जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो है, जहां पर एक चोर ने पुलिस को खूब छकाया और आखिरकार घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी चोर को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे वायरल वीडियो के असली होने पर हमें संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर पुलिसकर्मियों और भाग रहे व्यक्ति के शारीरिक संतुलन, दौड़ने की गति वास्तविक नहीं लगती है। व्यक्ति का चलती बस की छत पर चढ़ना और उछलकर होर्डिंग के टॉप पर पहुंचना भी असली नहीं लगता है। इसके अलावा भाग रहा व्यक्ति सड़क किनारे लगी जिस होर्डिंग पर चढ़ता है उस पर लिखे गए कई टेक्स्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर ये इंदौर का वीडियो होता तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र जरूर होता। लेकिन हमें कहीं भी इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक एक्स यूजर के अकाउंट पर 8 अगस्त को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पोस्ट में बताया गया है कि वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में 99.8% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। वायरल हुए वीडियो को हमने एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेकोमीटर पर भी जांचा। इस दौरान टूल के 6 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो के AI जनरेटेड होने की उच्च संभावना जताई। इसके अलावा हमने इंदौर में हाल के दिनों में हुई ऐसी किसी घटना के बारे में भी सर्च किया, जिसमें पुलिसकर्मियों के किसी चोर का पीछा करने, उसके बस की छत पर चढ़ने और फिर होर्डिंग पर पहुंचने जैसी घटना का जिक्र हो, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ, यह वीडियो AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: केरल में हालिया आई बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ दिखाया जा रहा है। यूजर्स इसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: केरला में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। केरल की बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसी भाषा लग रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो केरल का नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला, जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिलबोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिलबोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहराह ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे। वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
9: बेटियां जब अपने सपनों को पूरा करती हैं तो माता पिता के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात शायद ही कोई हो। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक ऐसा ही प्यारा पल लोगों का दिल जीत रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेटी ने पहली बार अकेले विमान उड़ाकर अपने जीवन का एक बड़ा सपना पूरा किया। अपनी इस खास उपलब्धि को उसने अपने पिता के नाम किया और सिर्फ 2 शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने अपने पापा को थैंक्स डैड कहा। बताया जा रहा है कि ये खास का है जहां बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से जब बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की तो उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चों के साथ कार की सफाई करता नजर आया। माहौल बिल्कुल सामान्य और प्यारा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने ऐसी मदद कर दी कि पिता के होश उड़ गए। वीडियो में छोटी बच्ची घर के बाहर पानी का पाइप हाथ में लिए खड़ी नजर आई। कार का फ्यूल टैंक खुला हुआ था। बच्ची निश्चल भाव से पाइप को टैंक के मुँह में डालकर पानी भरने लगी। वो खुशी खुशी पापा पापा चिल्लाती है ताकि पिता उसकी मदद देख सके। पीछे की तरफ पिता पूल साफ कर रहा था। जब वो मुड़ता है और नजारा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चीखता हुआ दौड़ता है, पाइप छीन लेता है, लेकिन तब तक काफी पानी फ्यूल टैंक में जा चुका होता है।
10: मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
9: एक माँ और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ किचन में रोटी बेल रही है, तभी वहाँ उसकी बेटी पहुँचती है और कहती है मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए। माँ एक रोटी निकाल कर दे देती है और कहती है कि पापा से पूछकर बताना कि सब्जी कैसे बनी है।
11: पापा से पूछ कर सब्जी कैसे बनी है।
10: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते हो।
9: उसके बाद बेटी जवाब देती है कि पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो। यूजर्स बच्ची के इस मासूमियत भरी जवाब पर जमकर अपना प्यार लौटा रहे हैं।
10: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते हो।
12: ये आंटी अराउंड मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से चलती हुई आ रही है।
9: बारिश से जलमग्न दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी सी मदद का बड़ा दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक बाइकर ने पानी भरी सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और उन्हें पीछे बैठाकर सुरक्षित पार कराया। वीडियो में दिखता है कि जैसे बाइकर की नजर उस महिला पर पड़ती है और उसके पास रुक जाता है, फिर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने में मदद करता है और उसे पानी से भरे रास्ते से होते हुए ले जाता है।
12: पानी में बहुत स्लो स्लो ये भाई मिला, बहुत बढ़िया लगा मेरे को देख के। मैं सोच रहा था कि कौन इनकी हेल्प करेगा। बढ़िया
9: बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं बल्कि डॉग ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं। ये नजारा इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों की मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से इतने साफ लहजे में हिंदी बोल रहा है कि लोग देखते ही रह गए।
13: थोड़ी
9: भारत के प्रति विदेशी बुजुर्ग की दीवानगी और बात करने का अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
8: देखिए सब सारी किताबें जर्मन में हैं और ये भिन्न-भिन्न देशों के बारे में।
9: इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जर्मन पर्यटक सिर्फ किताबी या बनावटी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके बोलने के तरीके में एक देसी टच साफ झलकता है। शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और माँ को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है। उसके चेहरे पर माँ की कमी का दर्द साफ नजर आता है। इस भावुक पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, वो बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 93 साल है और 71 साल इनके शादी के हो गए हैं, लेकिन इस दौरान इनका प्यार उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी जवां होता जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंचती है और उत्साहित होकर पूछती है इस ड्रेस में वो कैसे लग रही है। पति चौंक कर पूछता है क्या, पत्नी फिर बोलती है मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद पति दरवाजा खोल कर अपनी पत्नी को देखता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो ये दिखाता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब पति और पत्नी के बीच तालमेल बेहतर हो। कभी कभी किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश, किसी के लिए कही गई अच्छी बात या फिर अचानक मिला कोई प्यारा सा सरप्राइज भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक मेले या उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थीं और आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके लिए एक यादगार पल आने वाला है। इसी दौरान पास में मौजूद एक युवा कलाकार की नज़र महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी। उसने महिला अफसर का एक पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया और बिना किसी को परेशान किए उनका स्केच बनाने लगा। कलाकार काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। वो उनके चेहरे की बारीकियों को कागज पर उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। सबसे खास बात ये थी कि महिला अफसर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे स्केच पूरा हो गया। कलाकार ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उस पर एक प्यारा सा नोट भी लिखा। इसके बाद उसने अपनी स्केच बुक उठाई और सीधे महिला पुलिस अधिकारी के पास पहुंच गया। जब कलाकार ने महिला अफसर को उनका पोर्ट्रेट दिखाया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गयी। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी ड्यूटी के दौरान उनका इतना खूबसूरत स्केच बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर अपनी तस्वीर देखी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर आई खुशी देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि छोटा सा सरप्राइज उन्हें सच में पसंद आया। इंद्रो सामने आए हाथियों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नन्ना हाथी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जर की केबल में फंस जाता है। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता नजर आता है। उसके बाद उसकी माँ जो करती है उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि हाथी का बच्चा ईवी चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां मौजूद चार्जर की केबल किसी तरह उसके शरीर में उलझ जाती है। बच्चा केबल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो बेचैनी में इधर उधर हिलता है और अपनी माँ की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। बच्चे को परेशानी में देखकर हथिनी तुरंत उसके पास पहुंचती है। माँ अपने बच्चे को चारों तरफ से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस चीज में फंसा हुआ है। इसके बाद वो बिना ज्यादा समय गंवाए चार्जर की तरफ बढ़ती है। फिर आता है वीडियो का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा। हथिनी अपने सिर और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए चार्जर को जोरदार धक्का देती है। उसका एक ही धक्का इतना जोरदार होता है कि चार्जर नीचे गिर जाता है और बच्चे के लिए रास्ता साफ हो जाता है। बच्चा भी जैसे ही आजाद होता है राहत महसूस करता दिखाई देता है। माँ भी उसके पास बनी रहती है। हथिनी और उसके बच्चे की ये पूरी घटना चार्जिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: सावन की शिवरात्रि पर महादेव की कृपा, शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। जेएनटी पर नारी शक्ति की शिव भक्ति, बलिदान के सम्मान का दिवस। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में
7: विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव, सावन की शिवरात्रि पर शिव भक्तों पर महादेव की कृपा बरस रही है। गुड न्यूज टुडे पर नारी शक्ति की शिव भक्ति आज आपको दिखाएंगे। आस्था के सफर में महिला कावड़ियों की झलक भी देखिए। और चार दिन बाद बलिदान के सम्मान का दिवस, स्वतंत्रता दिवस से पहले 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल आगे दिखाएंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शहादरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। अगस्त तक रेलवे स्टेशन पर होगी वंदे मातरम की गूंज, अनाउंसमेंट के साथ बजेंगे देशभक्ति के गीत। झांसी मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशन पर पहल। कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, रात 9:04 पर होगी ग्रहण की शुरुआत, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल गई थी होमबाउंड।

शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की, बात सावन की शिवरात्रि की। देश भर में आज शिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही तमाम शिव मंदिरों में पूजा पाठ और जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस पवित्र श्रावण मास में सिर्फ सोमवार का ही नहीं बल्कि शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत मंगलकारी माना जाता है और जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या फिर पंचामृत से अभिषेक करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है।

0: श्रावण मास के दो सोमवार बीते, फिर आया शिवरात्रि का पर्व, जिसे लेकर शिव भक्तों में वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग और वही आस्था और भक्ति देखने को मिली। शहर दर शहर, छोटे बड़े तमाम प्राचीन शिव मंदिरों के अंदर और बाहर दिन भर शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार नजर आई, जो हाथों में गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, अक्षत, फल, फूल और पूजा सामग्री लेकर देवादिदेव महादेव का अभिषेक करने पहुँचे थे। कोई परिवार संग पहुँचा और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुँचा। ये दो तस्वीरें दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर और गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर की है, जहाँ दिन भर जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा।
1: आज सावन शिवरात्रि है और देश भर के हर एक शिवालय में जो है सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी चीज जो आज देखने के लिए हर किसी को मिल रही है वो है कांवड़ यात्रियों की इस यात्रा को पूरे होते हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पीछे भोले जो है वो लगातार भात निकलते हुए जो है वो नजर आ जाएंगे, क्योंकि आज लंबी यात्रा जो है इनकी पूरी हुई है। आज आखिरकार इन्होंने अपने महादेव के ऊपर जो है जल अर्पित किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है आस्था और तपस्या दोनों ही है और वही इन कांवड़ यात्रियों के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट भी लेकर आ रही है। जल चढ़ा के कैसा लग रहा है?
2: बहुत बढ़िया
1: अच्छा लग रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है,
2: बहुत ज्यादा।
1: ये मुस्कुराहट महादेव को देखकर है या फिर घर परिवार वालों को?
2: दोनों, घर परिवार वाले भी जरूरी, महादेव भी जरूरी है।
1: ये गौरी शंकर मंदिर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर भक्तों की अच्छी भीड़ जो है नजर आ जाएगी। आप जल चढ़ाने आए और आज तो सावन शिवरात्रि, कैसा लग रहा है?
3: बढ़िया लग रहा है जी, भोले की कृपा में आए।
0: वैसे तो पूरा श्रावण मास ही शिव आराधना के लिए सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन अगर मौका श्रावण मास के सोमवार और शिवरात्रि का हो तो शिव मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बुलंदशहर के बरासव शिव मंदिर और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर से आई ये तस्वीरें किसी की गवाही दे रही है। इस पर्व पर मंदिरों में गूंजते भजनों और जयकारों ने माहौल में ऐसा भक्ति रस घोला कि मंदिर पहुंचे श्रद्धालु तो शिव आराधना में मग्न हो झूमने ही लगे।
4: यहाँ मैंने सुना है जो भी अपने यात्री अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है। और वाकई में यहाँ पे है ऐसा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भोलेनाथ यहाँ पे पूरी करते हैं।
5: भोले बाबा से जो भी मन्नत मांगते हैं सब पूरा करे, पूरे परिवार को खुश रखे और हमारी सारी मनोकामना यहीं से पूरे हुए।
6: सावन का शिवरात्रि का कुछ ज्यादा ही महत्व है, महादेव पूरे मंथ पूरे महीने साल में ही रहते हैं।
0: धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत पूजन के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत मंगलकारी होता है। जो भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ का जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचामृत से अभिषेक करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि आज मंदिरों में आस्था का ये अनंत सैलाब देखने को मिला है।
7: श्रावण मास में शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने वाला सबसे पहले तो पूर्ण श्रावण मास का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है और भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। विशेष तौर पे दक्षेश्वर महादेव में जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपना जल अर्पण करे, रुद्राभिषेक करे या मात्र केवल एक लोटा जल ही चढ़ा दे, जलाभिषेक से भी उसको इतना पुण्य फल मिल जाता है जैसे मात्र अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो।
0: सावन की शिवरात्रि पर द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल देवघर और वाराणसी जैसे प्राचीन आध्यात्मिक शहरों में भी जलाभिषेक के लिए लोग देश भर से पहुंचे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या कांवड़ यात्रियों की रही। इसके चलते इन शहरों में मंदिर की ओर जाने वाले तमाम रास्ते केसरिया रंग से पटे नजर आए। इन कांवड़ यात्रियों में कोई परिवार की खुशहाली के लिए कांवड़ लेकर पहुंचा, कोई रोजी रोजगार की तरक्की के लिए और कोई दुख और तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए कांवड़ में जल लेकर आया है ताकि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सके।
8: कहा जाता है कि आज के दिन भोलेनाथ विश्वनाथ के दर्शन करने से, उनका जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। यही वजह है कि आज भोर से ही तमाम जो शिव भक्त हैं, आस्थावान हैं, वे काशी पहुंच रहे हैं, न केवल कांवड़ियों की शक्ल में, आम श्रद्धालुओं की शक्ल में, बल्कि जल अर्पित करने के लिए तमाम गंगा तमाम नदियों से यहाँ जल लेकर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
9: यहाँ दर्शन करने हम लोग आ रहे हैं, 5-6 साल से आ रहे हैं, और जैसा कि आज शिवरात्रि भी है तो बाबा को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, अभी सभी मनोकामनाएं इच्छा जो भी है उनसे मांग लो, वो सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं, वो सबके बाबा है। ओ हर हर महादेव।
8: तो न केवल शहर स्थानीय लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, बल्कि प्रदेश और देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं।
0: सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में पूजा पाठ, जल अभिषेक और रुद्राभिषेक के अलावा जगह जगह भंडारे और शिव महिमा का गुणगान जैसे धार्मिक आयोजन भी हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली से मनीषा लड्डा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।
10: और अगली खबर कावड़ यात्रा से ही जुड़ी हुई है। श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री जल भरकर शिवालयों की ओर आते हैं, और इनमें बड़ी संख्या में इस बार महिला कावड़ यात्री भी शामिल हैं, जो कि शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आई। इस कठिन यात्रा को वो कर रही हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर। इन महिला कावड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी शहर शहर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की गई, ताकि महिला कावड़ियों को यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े।

0: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की ज्योत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने ये कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
1: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल उठाएंगे।
2: क्या क्या कामना है बाबा से?
1: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
3: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहां तक आए।
2: कितना साल से आ रहे हैं?
3: 10 साल से।
4: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
2: कब कमर उठाई थी?
4: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
0: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
5: मैं आया, मैं पहली बार मानता मानी थी, मेरा मानता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ, बाबा पे जल चढ़ाने के लिए जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
6: पुरुलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
7: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते हैं तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तो मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
0: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी, साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
8: हर बार हम देखते हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और मूवेबल वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको कैरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
0: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, ताकि आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
9: बात बलिदान के सम्मान से जुड़े दिवस की, यहां बात स्वतंत्रता दिवस की हो रही है। दिल्ली के लाल किले के पास 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल शुरू हो चुका है। 15 अगस्त को 105 mm लाइट फील्ड गन से 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के अलावा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा है। हालांकि यह रिवाज उससे भी पुराना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों में तकनीक के दम पर अदृश्य सुरक्षा घेरा भी तैयार हो चुका है, जिसको लांघना किसी के लिए भी मुश्किल होगा।

देश के लिए बलिदान, संघर्ष और एकता के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ 4 दिन शेष है। 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली भी जुटी है। जश्न आजादी के मौके पर भारतीय सेना के तोपों की भी गर्जना सुनाई देने वाली है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस साल भी उसके लिए रिहर्सल शुरू हो चुका है। 2023 से 21 तोपों की सलामी के लिए स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल हो रहा है। सेना की परंपरा के मुताबिक इन तोपों से फायरिंग अभ्यास से पहले उनकी सफाई कर पूरे विधि विधान से पूजा की गई। भारतीय सैन्य संस्कृति में विधि विधान से की जाने वाली इस पूजा को शस्त्र पूजा कहा जाता है। सेना की सेरेमोनियल बैटरी की तरफ से पूरी निष्ठा से निभाई जाने वाली ये रस्म तोपों और शस्त्रों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और देश की विजय की कामना के लिए होती है।

0: साल 1982 से कई मोर्चों पर देश की सेवा कर रहे इन तोपों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए गोलों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्वदेशी तोप गोले दागने के बजाय फायरिंग की आवाज पैदा करती है। 105 mm लाइट फील्ड तोप से बहस 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में 96 घंटे से कम समय बचा है। देश की आजादी से जुड़ा ये वो ऐतिहासिक दिन है जब हर भारतवासी गर्व महसूस करता है। आजादी के आंदोलन के दौरान देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले हर बलिदानी के सम्मान में लाल किले की प्राचीर से भी तिरंगा फहराया जाएगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा दूसरी गणमान्य हस्तियां मौजूद होंगी, जिनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है।
1: इस 15 अगस्त को भारत के आजादी के 80 साल पूरे हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इस मौके पर सेलिब्रेशंस भी और बड़े और व्यापक तौर पर होने वाले हैं, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी डिटेल सुरक्षा जो है वो यहाँ लाल किले पर लगा रखी है। बताया ये जा रहा है कि करीब 25,000 लोग इस बार लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए आएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार 25,000 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा 15,000 तो बस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगी यहाँ पे, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनहोनी या एंटी सोशल एलिमेंट या अराजक तत्व जो है वो इस भीड़ में ना घुस पाए और देश की खुशियों में किसी भी तरह का खलल ना डाल पाए। इसके अलावा जो आप ये कैमरेज देख रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा में जो ये कैमरेज लगे हैं, ये सारे कैमराज जो हैं ये FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं। यानी अगर कोई अराजक तत्व यहाँ भीड़ में घुसने की कोशिश करता है तो उसे इन कैमरों से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी भीड़ से हटा दिया जाएगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा बनाए रखने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी आतंकी घटना में शामिल आतंकी या संदिग्ध तक कम समय में पहुंचने में मदद करेगा। आंख, नाक और जबड़े की बनावट ही किसी तरह की साजिश की राह में रुकावट बनेगी।
2: FRS के अंदर कैमरा है, वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो फेस के फीचर्स को कैप्चर करके जो हमारा डोजियर उससे मैच करता है। तो जितनी पब्लिक एंट्रीज हैं वहाँ पे जो CCTV है सब पे FRS हमने लगाया है और हमारे जो दिल्ली पुलिस का जो डेटाबेस है क्रिमिनल्स का उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया है।
0: जश्न आजादी के मौके पर अभिज्ञान ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से बनाया गया ये मोबाइल ऐप पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है, जो सिर्फ 35 सेकंड में फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी भी संदिग्ध या अपराधी की पहचान करने में उनकी मदद करेगा।
1: इस 15 अगस्त पे स्पेशल बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और AI का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। ये ऐप ऐसे काम करता है कि देखिए ऐसे रैंडम चेकिंग होती है। इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे रैंडमली चेकिंग होती है। रैंडमली चेकिंग में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। वहीं अगर इस तरीके से लाल साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके आपराधिक बैकग्राउंड है। सर कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात ये, इस सर्वर में कितने लोगों का डेटा है और किस तरीके से ये चेकिंग पूरी चलाई जाती है?
3: इस सर्वर में सर पूरे पैन इंडिया का डाटा है। 1,32,00,000 क्रिमिनल का डाटा बेस है, उनके बायोमेट्रिक है। और नेक्स्ट
1: सर SOP क्या है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपको आइडेंटिफाई होता है जिसके खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है या हीनियस क्राइम्स में संलिप्त है और बेल पर बाहर है, तो आपका क्या SOP है, आप लोग कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं?
3: सर कोई भी क्रिमिनल अगर सामने आता है ऐसा सस्पिशियस लगता है और सिटीजन की सेफ्टी के लिए हमें उसकी प्रॉब्लम क्रिएटर जस्ट लाइक दिखता है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसी प्रोसेस में हम किसी भी इस तरह से रैंडमली किसी सिटीजन को जैसा लगता है सस्पिशियस है बायोमेट्रिक लेते हैं। अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा जो टीम है वो उसको वेरीफाई करती है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं। अगर वो इनकेस ऑफ सेंसिटिविटी है कहीं तो उस पर लीगल एक्शन लेते हैं, अदरवाइज उसको रिलीज कर देते हैं। अगर इसका ग्रीन हिट आता है तो उसको हम उसी वक्त जाने के लिए आदेश
1: यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और थाने ले जाएगा फिर वहां वेरीफिकेशन।
3: यस यस सर।
0: लाल किले के आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए कई पोस्ट और मचान भी बनाए गए हैं, जहां से पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली के जवान तैनात होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह नेहरू प्लेस मार्केट में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर काफी व्यापक सुरक्षा इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं जो कोई भी एंट्री कर रहा है उसको इसी तरीके से चेक इन किया जा रहा है, फिर बाजार में उनको एंट्री दिया जा रहा है और इस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह घेर दिया गया है। पहले इस तरीके की नहीं होती थी, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस है और एक काफी मुख्य प्लेस है दिल्ली का। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट के जरिए सुरक्षा संबंधी निर्देश बताए जा रहे हैं और समय समय पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा पेट्रोलिंग भी यहां पर घूम के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है।
0: साफ है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, अभिज्ञान ऐप जैसी टेक्नोलॉजी के मदद से लाल किले के अलावा दिल्ली के दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है जिसको लांघना किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। दिल्ली से अंशुल सिंह और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बहुत लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: सूर्य ग्रहण का क्या है रहस्य, सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा होगा असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 11:06 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 7:59 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:01:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। आखिर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 12 अगस्त को रात में 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा 12 अगस्त की मध्य रात्रि जब बीत जाएगी, 13 अगस्त शुरू हो जाएगा, तो 13 अगस्त की बहुत सुबह 1:27 पर समापन होगा। यानी ये ग्रहण 12 अगस्त को रात में 9:04 पर शुरू होगा और इसका समापन 13 अगस्त को 1:27 प्रातः समाप्त होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, फिर भी भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम, किसी तरह के सूतक के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव देश दुनिया पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे, लेकिन जहां तक सूतक के नियमों की बात है, उसका पालन करने की भारत में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेष राशि, पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें।
धन की हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर लगभग अगले 3 महीने तक पड़ता है और राशियों पर इसका प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न में ये सूर्योदय आरंभ हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है सूर्य ग्रहण के समय और पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। इस ग्रहण के समय राहु और मंगल ये दोनों निकट अंशों में हैं। अब आप देखिए, कर्क राशि जल की राशि है, मीन लग्न जल का लग्न है, जल की राशियां प्रभावित हो रही हैं। तो इस सूर्य ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप के झटके लग सकते हैं या जल से आपदाओं की संभावना बन सकती है। सत्ता में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चूंकि स्वतंत्र भारत की राशि भी कर्क है और ये ग्रहण कर्क में ही लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थिति बन रही है। इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसका प्रभाव आम जनता पर और देश की राजनीति पर पड़ेगा। राहु और मंगल का करीबी अंश में होना अच्छा नहीं है। आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं, विस्फोट आदि की नौबत आ सकती है। तटीय स्थानों में जो समुद्र तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहां पर
विशेष समस्या का समय हो सकता है। तो ये ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं की सूचना दे रहा है। विस्फोट और उपद्रव जैसी स्थिति बनेगी इस बात की जानकारी भी दे रहा है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपको पहले भी बताया कि ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक 15 दिन तक पड़ेगा। तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको काफी परेशान कर सकती हैं, आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और करियर में आपको विशेष सफलताएं इस समय मिलेंगी, ग्रहण लाभकारी है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। कर्क राशि, करियर में आपके समस्या आ सकती है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। सिंह राशि, ग्रहण का प्रभाव दुर्घटना करवा सकता है, दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहिएगा। कन्या राशि, ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं आपके लिए, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, यात्राओं में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, पारिवारिक समस्या
आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में आपके सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक का हाल जाना कि उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, इनके काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य और जीवन में इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की और पारिवारिक समस्या वृश्चिक वालों को इस समय परेशान कर सकती है। ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। धनु राशि, ग्रहण की वजह से चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चोट चपेट और दुर्घटना से सावधान रहें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। मकर राशि, ग्रहण के कारण करियर में आपके समस्या आ सकती है और स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, ग्रहण आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं, तो मीन वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें और महत्वपूर्ण काम रुकेगा तो परेशान ना हो, कुछ समय बाद काम आपका बन जाएगा। ग्रहण काल में चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय में भगवान के नाम का मंत्र या गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, इसका जप अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे, ग्रहण काल में नाम जपेंगे या गुरु मंत्र जपेंगे, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको जरूर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ सकता हो, ऐसी स्थितियां हो, तो क्या करेंगे।
जो ग्रहण का समय है रात के 9 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच का, इस समय में शिव जी और सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्या है इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कैसा होगा आपकी राशियों पर असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बड़ी चौकसी। पंद्रह अगस्त तक रेलवे स्टेशन पर होगी वंदे मातरम की गूंज, अनाउंसमेंट के साथ बजेंगे देशभक्ति गीत, झांसी मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशन पर पहल। भारतीय नौसेना के लिए बन रहा युद्धपोत श्रुति लॉन्च, समंदर में परखी जाएगी ताकत, समुद्री निगरानी में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, रात 9:04 पर होगी ग्रहण की शुरुआत, भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण।

0: ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस शुरू। 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा। पिछले साल गई थी होम बाउंड। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राखी के त्यौहार की भी है जो कि जल्द ही आने वाला है। ऐसे में सेना के जवानों के प्रति सम्मान और प्रेम के संदेश के साथ नागपुर से करीब 3 लाख राखियां चारों ओर सुर्खियां बटोर रही हैं।
1: उत्तराखंड के बागेश्वर से आई ये तस्वीरें लोगों का दिल छू रही हैं। यहाँ सरयू और गोमती के पवित्र संगम पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। सफेद बालों वाली ये महिला मियाको केटलेट हैं, जो जापान से यहाँ सिर्फ इसलिए आई हैं कि वो अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, अपने पति की अस्थियाँ सरयू में प्रवाहित कर सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। ये तस्वीरें उसी की हैं। जापान से बागेश्वर पहुंची मियाको ने पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने दिवंगत अमेरिकी पति रॉबर्ट केटलेट की अस्थियां सरयू की पावन धारा में प्रवाहित किया। इस बीच वो कई बार भावुक भी नजर आए। मियाको के मुताबिक बागेश्वर की शांत वादियों और आध्यात्मिक परिवेश से रॉबर्ट का भावनात्मक लगाव था जो उनके अंतिम सांस तक कायम रहा। चमोली में बेली ब्रिज हादसे में लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। दूसरी ओर फंसे लोगों को आईटीबीपी के जवान रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाल रहे हैं, जबकि भारतीय सेना का डॉग स्क्वाड मलबे में लापता जवान की तलाश में जुटा है। चमोली जिले के सीमांत नीति घाटी में सोमवार शाम बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी थी। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी नदी में बह गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में नूसू गांव की बिजनेस वीमेन आसिया अकबर की चर्चा है। असल में इन्होंने जिस रास्ते पर चलकर कामयाबी की कहानी लिखी है वो लोगों को नई राह दिखा रहा है। आसिया के पास खेती के लिए बहुत जमीन नहीं थी, ऐसे में उन्होंने घर के अंदर मशरूम की खेती से शुरुआत की और बाद में अपने काम को छत पर खेती तक बढ़ाया। अब मशरूम के साथ साथ वो सब्जियां, मसाले और दूसरे पौधे भी उगाने लगी। जो छत कभी बेकार पड़ी रहती थी वो अब रोजी रोटी का जरिया बन गया। आसिया यही नहीं रुकी, कृषि विभाग की मदद से उन्होंने अपनी खेती की गतिविधियों को बढ़ाया और इसे एक बिजनेस में तब्दील कर दिया। उनका बिजनेस अब कमाई का एक पक्का जरिया बन गया है, जिससे उन्हें हर महीने 35,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की कमाई होती है। राखी का त्योहार बस आने ही वाला है। ऐसे में सेना के जवानों के प्रति सम्मान और प्रेम के संदेश के साथ नागपुर से करीब 3 लाख राखियां भेजी गई हैं। ये पहल प्रहार समाज जागृति संस्था की ओर से की गई है और इस पहल के तहत देश के अलग अलग सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा राखियां भेजी गई। सेनाओं के प्रति अपनापन और सम्मान की भावना जताने के मकसद से यहां एक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने देश के जवानों के प्रति कृतज्ञता और आदर की भावना जाहिर की। इस मौके पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सुजीत बैस ने कहा कि देशवासियों की ओर से सैनिकों के प्रति व्यक्त होने वाला प्रेम और आदर जवानों का मनोबल बढ़ाता है। देशभर में आजादी की सालगिरह का जश्न दिखने लगा है। शहर शहर, गांव गांव, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग तिरंगा थामे एकजुट होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। देशभक्ति के नारे और गीत हर तरफ गूंजने लगे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की केरन घाटी में तिरंगा रैली की हैं। यहाँ यूपीएस केरन बाला और हायर सेकेंडरी स्कूल केरन ने स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर एक गर्व और देशभक्ति से भरी संयुक्त तिरंगा रैली आयोजित की। वहीं बड़गाम में भी हर घर तिरंगा अभियान ने जोर पकड़ लिया है। आज यहाँ डीसी और एसएसपी ने बाइक और साइकिल रैलियों को हरी झंडे दिखाए। इसमें युवाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली।
0: न्यूज पथ में अब बात सावन की शिवरात्रि की। आज भगवान शिव की भक्ति का विशेष और पवित्र दिन है। मान्यता है कि सावन में शिवरात्रि का दिन भोले भंडारी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। चारों ओर भक्ति की अविरल धारा बह रही है। आज मंगलवार है जो हनुमान जी का दिन माना जाता है, ऐसे में इस दिन की महत्ता और बढ़ गई है। इसलिए प्रयागराज से लेकर हरिद्वार, अयोध्या से लेकर सोमनाथ, दिल्ली, गाजियाबाद, हर जगह जलाभिषेक के लिए शिव भक्त उमड़े और दर्शन कर महादेव से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगा।

0: शिव का महीना सावन। सावन में शिव को सबसे प्रिय दिन शिवरात्रि, भोले भंडारी को प्रसन्न करने का, वरदान पाने का सबसे उत्तम दिन। कहते हैं पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आराधना करने पर औघर दानी देते हैं आशीर्वाद और पूरी होती है हर मनोकामना। सावन की शिवरात्रि पर तड़के सुबह से भक्तों की भीड़ शिवालयों में लगनी शुरू हो गई। गाजियाबाद का नजारा तो देखने लायक था। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे ताकि वो महादेव का जलाभिषेक कर सकें और उनसे आशीर्वाद ले सकें। गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल, दूध, शहद, घी आदि से बाबा दूधेश्वर का जलाभिषेक करने पहुंचे। मान्यता है कि दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की महिमा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि शिवरात्रि के मौके पर दूर दराज से भी श्रद्धालु यहां दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं।
1: रावण ने खुद यहां अपना 11 शीशों का दान दिए थे और उसके पश्चात उनके पिताजी ने यहां तपस्या किया था, रावण ने भी तप किया था, जिनकी प्रभाव से ये विशेष शिवलिंग है। उन्हें काशी का उपज्योतिर्लिंग भी माना गया है, जो विश्वेश्वर के रूप में कहा गया है, तो इसलिए इनकी विशेष महत्ता बढ़ जाती है।
0: मान्यता ये भी है कि दूधेश्वर महादेव से सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है।
2: हरिद्वार से आए, बाबा का जलाभिषेक करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है हमें।
3: सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है, अनन्य भक्त आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
0: पूरे श्रावण मास में बाबा विश्वनाथ मंदिर भक्तों से खचाखच भरा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के दौरान ये नजारा और भी रौनक भरा हो जाता है। शिवरात्रि के चलते तड़के सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ने लगे। पूरा मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से भक्तिमय हो उठा। शिव भक्तों का मानना है कि सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
4: जल चढ़ाने से अपनी पूरी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। यहाँ दर्शन करने हम लोग आ रहे हैं, 5-6 साल से आ रहे हैं, और जैसा कि आज शिवरात्रि भी है तो बाबा को जल चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना, अभी सभी मनोकामनाएं इच्छा जो भी है उनसे मांग लो, वो सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं, वो सबके बाबा है। ओ हर हर महादेव।
0: शिवरात्रि के साथ सावन के मंगलवार को भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी रखती हैं। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है।
5: शिवरात्रि भी है और सावन में बोला जाता है, मंगला गौरी पार्वती जी का व्रत भी होता है मंगलवार को, वो सावन में ही होता है, तो आज के दोनों एक साथ ही पड़ा है। हम पहले मंगला गौरी गए थे दर्शन करने, उसके बाद अब विश्वनाथ जी आके यहाँ पे रुद्राभिषेक कराए।
0: देवघर में भी वातावरण शिवमय बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का मेला लगा हुआ है। मंदिर और आसपास के इलाके गेरुआ रंग में रंगे हुए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सुल्तानगंज से गंगाजल के साथ आगमन हो रहा है। गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर में इस खास अवसर पर महिला श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है, जो सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल ही देवघर पहुंच रही हैं। बाबा वैद्यनाथ की भक्ति को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है और ऊपर से सावन की शिवरात्रि, मानो इनकी मन की मुराद पूरी हो गई है।
6: कामना तो बहुत सारा है।
7: क्या क्या पूरा हुआ?
6: पूरा हुआ है, बहुत सारा पूरा भी हुआ है और कमी भी है, वही मांगने आए हैं।
7: क्या मांगेंगे जा रहे हैं? तो
6: बाल बच्चा अच्छा रहे और क्या मांगे, पति सलामत रहे, कहीं रहे।
8: बाबा से तो बहुत कामना है, अब देखिए क्या क्या पूरा करते हैं। बाबा हम लोगों सब चीज शुरू से दे दिए हैं, इसलिए अब ज्यादा नहीं है, सब परिवार को एकजुट रखे, हमारा देश तरक्की करे, यही कामना है।
9: दो इच्छा थी, बाबा बिना मांगे सब कुछ दे दिए हमने।
0: बाबा बैद्यनाथ की शरण में जो भी आता है भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। देवघर ऐसा आध्यात्मिक स्थान है जहां शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। मान्यता है कि बैद्यनाथ मंदिर के पास ही सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहां पर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए भी मन्नत मांगती हैं। श्रावणी शिवरात्रि के दिन प्रयागराज में सुबह से ही मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कांवड़िए भी गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि मंगलवार भगवान शिव के अंशावतार और श्री राम भक्त हनुमान जी का दिन होता है। ऐसे में जब सावन शिवरात्रि मंगलवार को आती है तो इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है।
10: सावन की शिवरात्रि है और बजरंग बली का भी दिन है, तो यहाँ पर दोनों देवता विराजमान है। मनकामेश्वर मंदिर की बहुत ज्यादा वो लोग आस्था और पूजन बहुत श्रद्धा भक्ति से आते करते हैं। बहुत भीड़ सावन में होती है और आज की रात्रि तो एक विशेष रात्रि होती है।
11: यहाँ पे आप चाहे एक लोटा जल भी लेके आइएगा ना तो आपकी पूजा सफल होगी। बाकी तो जो बेलपत्र है और गंगा जल है, दूध है, दही है, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। मनोकामना तो भोले बाबा सबकी पूरी करते हैं।
12: भोले बाबा का जो मनकामेश्वर है इसका पौराणिक रूप से बड़ा महत्व है। यहाँ भगवान श्री राम ने सब पत्नी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पूजा की थी।
0: गुजरात के सोमनाथ में शिवरात्रि पर भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पूरा माहौल भक्ति में बना हुआ है। सोमनाथ धाम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का भव्य संगम भी माना जाता है। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है। लेकिन शिवजी के ससुराल माने जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर का नजारा भव्य बना हुआ है। शिवरात्रि पर देर रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
13: सावन का शिवरात्रि का कुछ ज्यादा ही महत्व है। महादेव पूरे महीने ससुराल में ही रहते हैं।
14: यहाँ मैंने सुना है जो भी अपने यात्री अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है। और वाकई में यहाँ पे है ऐसा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भोलेनाथ यहाँ पे पूरी करते हैं।
0: दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी तड़के से ही महादेव के जलाभिषेक के लिए भक्त उमड़ने लगे थे। यहाँ पर सिर्फ शिव भक्त ही नहीं कांवड़ियों का भी जमावड़ा लगा था। जलाभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। सहारनपुर में शिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर प्राचीन सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें लगी रही और श्रद्धालु घंटों इंतजार के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते नजर आए। भूतेश्वर महादेव मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहां लगातार 40 दिन सच्चे मन से जल चढ़ाने और दीपक जलाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी आस्था के चलते हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर यहां पहुंचते हैं। अलवर में भी सावन की शिवरात्रि के मौके पर उत्सव जैसा माहौल है। सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का खास महत्व है। डाक कांवड़ और कांवड़िए लगातार पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और श्वेता झा, वाराणसी से रोशन जायसवाल, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, अलवर से हिमांशु शर्मा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा, सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी, सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: सिंगमुंग में करीब 3 दशक से जारी नक्सल गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान को मिली बड़ी सफलता। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को खास संदेश दिया है। उन्होंने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए पीएम ने कहा, आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में करीब 3 दशक से जारी नक्सल गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान को आज बड़ी सफलता मिली। कुल्हान, पोड़ाहाट और सरंडा के जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय बचे आखिरी इनामी जोनल कमांडर सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर ने 3 महिला नक्सलियों के साथ पुलिस और सीएपीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इन इनामी नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलवाद के खात्मे का भी ऐलान किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई के सिटी कॉलेज से राज्य में नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की और लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। इस मौके पर लोगों ने नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने, दूसरों को नशे की लत से बचाने, पुनर्वास प्रयासों में सहयोग करने और तमिलनाडु में अवैध मादक पदार्थों को खत्म करने में सरकार की सक्रिय रूप से मदद करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में सीएम विजय ने लोगों से, खासकर छात्रों से, राज्य में नशे की लत को खत्म करने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की।
16: நடவடிக்கைகளின் மூலம் போதைப் பொருட்களை தமிழ்நாட்டில் வேரறுக்க அரசுக்கு துணை நிற்பேன்.
0: अपनी आगामी फिल्म के लिए लोकेशन ढूंढने पटना पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी ने यहां बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की। सुनील शेट्टी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने उन्हें बिहार में फिल्म हब विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है, वो इसमें सरकार का भरपूर सहयोग करेंगे। मॉनसून की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आने वाले सप्ताह में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है।
15: न्यूज़ में आगे अब आपको शिव भक्ति का एक अलग रंग दिखाते हैं। झांसी की धरती, जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है, उसी ऐतिहासिक धरती पर आस्था और अध्यात्म के भी कई ऐसे केंद्र हैं जिनसे जुड़ी मान्यताएं सदियों से लोगों के विश्वास का हिस्सा बनी हुई। इन्हीं में से एक है झरनापति अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर, जहाँ भगवान शिव के शिवलिंग में अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के पीछे कभी एक झरना बहता था और इसी वजह से भगवान शिव यहाँ झरनापति महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं।
17: सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आस्था के रंग में रंगे भक्त, हर तरफ महादेव के जयकारे और भजन कीर्तन से गूंजता मंदिर परिसर। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और संघर्ष की गवाही देने वाली झांसी की धरती पर झरनापति अर्धनारीश्वर मंदिर में उमड़ता आस्था का सैलाब। सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन झांसी के इस मंदिर में भगवान शिव के अनोखे स्वरूप से लाखों शिव भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। इस मंदिर के शिवलिंग में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर के स्वरूप की झलक मिलती है। मंदिर में शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा सफेद है, शिवलिंग के नीचे का हिस्सा काले रंग का दिखता है। इसे शिव और शक्ति के संयुक्त रूप से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि यहाँ एक ही पिंडी में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। किसी जमाने में इस मंदिर के पीछे एक झरना बहता था जो वक्त के साथ लुप्त हो गया, इसी वजह से इस मंदिर को झरनापति महादेव के नाम से जाना जाता है।
18: झरनापति अर्धनारीश्वर मंदिर है। झरनापति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पीछे यहाँ हर जगह झरता है जी मंदिर, और झरने बने हुए हैं, और यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का बहुत प्राचीन अखाड़ा भी बना हुआ है बगल में, क्योंकि जी अर्धनारीश्वर है, यहाँ शिवलिंग छोटा है और शक्ति बड़ी है, तो यहाँ तांबूल और वस्त्र अर्पण करने से बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है।
17: ये मंदिर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी परंपराओं और कथाओं के कारण भी विशेष महत्व रखता है। ये मंदिर करीब 400 से 500 साल पुराने गोसाई काल का बताया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर बताया गया है कि झांसी किले की नींव पड़ने के समय से ही मंदिर अस्तित्व में रहा है। स्थानीय जानकारों और मंदिर से जुड़े लोगों के मुताबिक महारानी लक्ष्मीबाई के समय में मंदिर के पास एक अखाड़ा होता था। महिला सेना की वीरांगनाएं यहां युद्ध अभ्यास करती थी। यहां कुश्ती, मलखम और युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाता था। अभ्यास से पहले और बाद में मंदिर में पूजा अर्चना की परंपरा थी। झरनापति महादेव मंदिर के साथ लाखों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी है। माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ पूजा करने और जल चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल सावन के पूरे महीने इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। दूर दूर से शिव भक्त सावन में झरनापति महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और सावन की शिवरात्रि पर तो पूरे मंदिर परिसर में अनंत आस्था और अटूट विश्वास का अनोखा संगम दिखता है। शिवरात्रि पर भगवान का जलाभिषेक करने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में रंगा है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोले बाबा के दर्शन को आते हैं। सावन के मौके पर धार्मिक पर्यटन के रूप में आज आपको इस विशेष धाम के दर्शन कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें ये वीडियो भेजा है, उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा। घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आएं। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुँचें। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: जीएनटी की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों को प्रमोट किया जाए तो हमारे देश का टूरिज्म ही बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाइए अपना कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें भेज दीजिए 7303-409922 पर। हमें व्हाट्सएप आप करिए, हम उसे जीएनटी पर दिखाएंगे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार।
2: कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और अमेरिका और ईरान तनाव के बीच कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार 11 अगस्त को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 388 अंकों के गिरावट के साथ 78154 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 112 अंकों की गिरावट के साथ 24471 पर बंद हुआ। मंगलवार 11 अगस्त को गोल्ड की कीमतों में फिर मजबूती देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1200 रुपये चढ़कर 1,57,200 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2000 रुपये बढ़कर 2,42,000 रुपये पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से 11 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 95.43 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: नीब करौली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश को पसंद कर रहे हैं लोग। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
2: हनुमान अंश धीरे धीरे दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाती नजर आ रही है। सिनेमाघरों में रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित इस फिल्म की सादगी, भक्तिपूर्ण संगीत और मानवीय मूल्यों से जुड़े संदेश को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म की चर्चा लगातार लोगों के बीच बढ़ रही है और दर्शकों का प्यार इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। बुक माई शो पर मिली शानदार रेटिंग भी दर्शकों की पसंद को साफ तौर पर बयां कर रही है। नेशनल अवार्ड जीत चुके फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी अब फिल्म कॉमन आदमी के साथ बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़े हैं। अरित्र दास क्रिएशन और नर्चर राइज प्रोडक्शंस के साथ ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। फिल्म का निर्देशन खुशाल एस राठौर कर रहे हैं, जो पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं। कॉमन आदमी की कहानी भारत के एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट की असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म को अरित्र दास और प्रशांत प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की कास्ट और प्री टीजर लुक जल्द ही दर्शकों के सामने

0: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: भारतीय नौसेना के लिए बन रहा युद्धपोत श्रुति लॉन्च, समंदर में परखी जाएगी ताकत, समुद्री निगरानी में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बड़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, अकोला में मुस्लिम परिवार पांच पीढ़ियों से बना रहा देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल गई थी होम बाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे समंदर के अंदर सैर, पुनाट अंडरवाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र। चलिए न्यूज पत्र खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
2: पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना और मस्ती करना भी बेहद जरूरी है। स्कूल के मैदान में खेल कूद बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ उनके मानसिक विकास में भी मदद करता है। इन तस्वीरों में बच्चे गाने की धुन पर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बड़े ही मजेदार अंदाज में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस गतिविधि के जरिए बच्चों का बैलेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। पढ़ाई के बीच मस्ती भरे ये पल बच्चों को तरोताजा कर रहे हैं। ऊंचाइयां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। इन बच्चियों का अभ्यास भी इसी जज्बे की मिसाल है। मुश्किल लगने वाली गतिविधि को ये बेटियां पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पूरा करती नजर आ रही हैं। उनका संतुलन, एकाग्रता और लगातार प्रयास देखने वालों को भी प्रभावित कर रहा है। यही छोटी छोटी कोशिशें बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। इन बेटियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। शब्दों से खेलना हो तो इन बच्चों से सीखना चाहिए। क्लास में कराई जा रही यह मजेदार गतिविधि बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ाने का शानदार तरीका है। कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द तैयार किया जाता है, लेकिन बच्चे उन्हीं अक्षरों से नए नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बच्चे खेल खेल में सीख भी रहे हैं और अपनी सोच को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी और उत्साह देखकर आसपास मौजूद लोग भी उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। कहते हैं अकेले दबाव सहना मुश्किल होता है, लेकिन साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। इस गतिविधि के जरिए बच्चों को यही सीख दी जा रही है। टीचर एक एक ग्लास पर दबाव डालती हैं तो ग्लास आसानी से दब जाते हैं, लेकिन जब कई ग्लासों को एक साथ रखकर उनके ऊपर प्लेट रखी जाती है तो पूरा सेटअप संतुलित बना रहता है। ये छोटा सा प्रयोग बच्चों को बताता है कि एकता में ताकत होती है और मिलजुल कर मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। क्लास में पढ़ाई के साथ साथ मजेदार गतिविधियां भी बच्चों के सीखने का हिस्सा बन रही हैं। अब इस गेम को ही देख लीजिए, जिसमें बच्चों को बिना हाथ लगाए पेन को बोतल के अंदर डालना है। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं है। बच्चे पूरी एकाग्रता के साथ इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सफल हो रहा है तो कोई दोबारा प्रयास कर रहा है। खेल खेल में सीखने का ये अंदाज बच्चों को खूब पसंद आ रहा है।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र में सड़क किनारे लगने वाले चाइनीज फूड स्टॉल की। राज्य सरकार ने इन फूड स्टॉल के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद अभियान चलाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरे राज्य में रोड साइड चाइनीज फूड स्टॉल्स की जांच करने की तैयारी में है। खाने पीने की चीजों में मिलावट, घटिया दवाओं और अवैध गुटखा बिक्री पर लगाम लगाने के बाद अब चाइनीज फूड स्टॉल पर FDA का शिकंजा कसेगा। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया है कि फूड क्वालिटी और साफ सफाई पर जोर देते हुए चाइनीज फूड स्टॉल्स पर जल्द जांच अभियान शुरू होगी। दरअसल विभाग को राज्य

0: के तमाम शहरों में लगने वाले चाइनीज फूड स्टॉल्स के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। लोगों की शिकायतों को देखते हुए एफडीए के अधिकारी सड़क किनारे फूड स्टॉल्स पर बिकने वाले खाने की क्वालिटी की जांच करेंगे। अभियान के दौरान फूड स्टॉल पर साफ सफाई, फूड स्टोरेज और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच की जाएगी कि वो लोगों की सेहत के लिए सुरक्षित है या नहीं। एफडीए कमिश्नर के मुताबिक इस अभियान में लोगों को भी जोड़ा जाएगा। पोर्टल पर मिलने वाली हर शिकायत की जांच कराई जाएगी। तुकाराम मुंडे के एफडीए कमिश्नर बनने के बाद से ही विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से खाने पीने की चीजों की क्वालिटी को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र में सिंथेटिक तरीके से बनने वाले एनालॉग पनीर को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। स्कूलों में और आसपास जंक फूड बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब चाइनीज फूड स्टॉल पर होने जा रही कार्रवाई को लेकर हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
1: जो भी साफ सुथरा करने की चीजें होती हैं, वो आप सारे पालन करते हैं?
2: हाँ सर, सब पालन करते हैं। हाँ। जहाँ तक होते हैं हम सब पालन करते हैं। यहाँ तक अपने जो तेल वगैरह सब फ्रेश देते हैं, हम लोग रोज के रोज तेल चेंज करते हैं, खाना भी साफ सुथरा फ्रेश बनाते हैं। पब्लिक कोई कंप्लेंट नहीं करता, हर पब्लिक तारीफ कर जाता है खाना का भी, और अपने को भी थैंक्स बोल के जाते हैं। हाँ। बाकी सब चीज हमारे सब हिसाब ही सही है, कोई पब्लिक आज तक कोई कंप्लेंट नहीं किया तेल के बारे में या अभी हाइजीन के बारे में, साफ सफाई के बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं बोला है। बाकी अभी तक सब सही चल रहा है। अपना जो तेल वगैरह है फ्राई करने का, वो रोज चेंज होता है। अपना सेटिंग का तेल देख सकते हो, ओनली सब फ्रेश है। अपना वॉक भी फ्रेश है। और बाकी हम लोग जो क्लब्स वगैरह है, कैप वगैरह है, एप्रन वगैरह है, सब के सब हम लोग साफ सफाई से रहते हैं।
3: तुकाराम मुंडे जी का जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो गुटखा पे बैन लगाया है, गुटखा पकड़ा है, जो फूड स्टॉल ऐसी आप देखते हो गए रोड पे ऐसी पड़े रहते हैं, क्या तो उनके लिए अच्छा उन्होंने ये बनाया है। अच्छा, लोगों को एक अच्छा फूड दो तुम, वो खिलाफ नहीं है लोगों को एक अच्छा फूड दो। अब उन्होंने क्या बोला है कि रेस्टोरेंट में पानी फ्री दो, ये वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुम इतना जब पैसे ले दो
4: डायरेक्ट बिस्लरी ला के रख देते हो या दूसरा लाते हो उसका, हाँ सीधा पहले आप अपने होटल का अच्छा पानी दो।
3: हाँ अच्छा पानी दो, साफ सुथरा, अच्छा खिलाओ, साफ सुथरा रखो, तो अच्छा लगता है।
5: लेकिन यहाँ बात चाइनीज की हो रही है और चाइनीज एक फास्ट फूड है, बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं इसे, आपको क्या लगता है कि किस तरह का फूड है लोगों को खाना चाहिए?
3: नहीं, फूड तो चाइनीज फूड ऐसा है कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, यंगेस्ट लोग पसंद करते हैं, थोड़े मिडिल क्लास ये वगैरह सभी पसंद ही करते हैं, खाते हैं अच्छी तरह।
5: रीजनेबल रेट्स भी,
3: हाँ रीजनेबल रेट है, साफ सुथरा अच्छा रहना चाहिए, टेस्ट रहना चाहिए, कलर इसमें मिक्स ना होना चाहिए। जैसे सेजवान में कलर डालते हैं, सेजवान राइस में कलर डालते हैं, ये सब बैंड है, ये हमारे इधर बैंड है, ये हम पहले से ही बैंड है हमारे इधर, हमारे स्टॉल में हम कलर डालते ही नहीं, जो नेचुरल है वो नेचुरल में ही रखते हैं हम।
5: हाइजीन को लेकर के क्या कुछ खास करते हैं आप? जैसे मैं ऑयल की बात कर लूँ, तवे की बात करूँ, मसाले की करूँ, राइस की करूँ, या जो कुछ सामग्रियाँ पड़ती हैं?
3: ऑयल तो हमारा डेली चेंज होता है, रात को हम जो काले हो जाते हैं ऑयल हम उसको चेंज कर देते हैं, सब चीज नया ही आता है।
6: बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको मेरा सलाम है, पूरे देशवासियों की तरफ से सलाम है। तो जो जहर बिक रहा है उसको रोक रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो युवा है, बच्चा है, आज उस खाने की तरफ जा रहा है, लेकिन वो खाना एकदम जहरीला है। इसके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम, पूरे देशवासियों की तरफ ऐसे काम होते रहे ताकि वो खाना ही बेकार है, मतलब जो हमारे अंदर जहर, हम जहर ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोकथाम होना जरूरी है। तो इस रोकथाम के लिए अगर तुकाराम मुंडे जी काम कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं।
7: अच्छा ऑयल इस्तेमाल होना चाहिए। आपको पता होगा कि सायन हॉस्पिटल में वो जो चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ फूड के वजह से उसमें जो आरा रोड और अजीनोमोटो मिला रहता है, उसके वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार गिरे हैं, जिनके किडनी का प्रॉब्लम हुआ है। ये फूड के ऊपर तो प्रतिबंध होना चाहिए। तुकाराम मुंडे जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
8: अगर अच्छा खाना खिलाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। अभी बाहर का जो है वो क्या मालूम पीछे कौन सा तेल या ऑयल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है ना, हानिकारक ही है। वही जो घर में हम लोग बना के खिलाएंगे तो अच्छा खाएंगे बच्चे लोग, तो ठीक है। वो साफ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे।
9: तो अभी चाइनीज के आप बच्चा मानते हैं आपका चाइनीज?
8: नहीं नहीं, मैंने बता दिया उसको, वो बोला बाहर का जरा टेस्टी है मम्मी, तो मैं बोले नहीं मैं घर पर बना के दूँगी तेरे को, बाहर का मत खा। और जो अभी ये जो साफ कर रहे हैं तो पूरा करना चाहिए।
0: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज प्रगति मार्ग में बात करेंगे सहारनपुर के एक किसान की जो कि गाय के गोबर से कर रहा है कमाई। फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर हो चुके आदित्य त्यागी ने गाय के गोबर से संबरानी कप यानी कि धूप जलाने वाले कप का निर्माण शुरू किया है और इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। उनके बनाए उत्पाद देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खूब बिक रहे हैं।

0: गाय का गोबर बहुपयोगी होता है। ऐसे में लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस से बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक किसान हैं आदित्य त्यागी। 71 वर्षीय त्यागी गाय के गोबर से एक यूनिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो रही है। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर होने के बाद आदित्य त्यागी ने देसी गायों को पालना शुरू किया, लेकिन दूध बेचने से अपेक्षित मुनाफा नहीं होने की वजह से उन्होंने देसी गायों के गोबर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उन्होंने गायों के गोबर से संबरानी या धूनी कप बनाने का काम शुरू किया। धूनी कप में धूप और लोबान जलाने से घर में खुशबू आती है। आज उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से बिक रहे हैं और उन्हें हर महीने लाखों रुपए की आमदनी भी हो रही है। आदित्य त्यागी ने देसी गाय के गोबर में गूगल और लोबान जैसी प्राकृतिक सामग्री मिलाकर ऐसे संबरानी कप तैयार किए हैं, जिनका उपयोग घरों में धूनी देने और वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए होता है।
1: स्टेप बाय स्टेप है, जैसे बनाते हैं गोबर से बनाया तो उसको 3 दिन या 2 दिन छाया में सुखाते हैं, फिर 1 दिन धूप में सुखाते हैं, उसके बाद रख देते हैं, फिर उसका फिलिंग होगा, फिलिंग करने के बाद भी कम से कम 1 दिन अगर अच्छी धूप है, नहीं तो 2 दिन सुखाना पड़ता है, उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है। तो खर्च इस पर अगर सही करेंगे, मतलब सही चीज डालेंगे जो डालनी चाहिए, केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो खर्च ज्यादा आएगा।
0: बाजार में मिलने वाले अधिकतर संबरानी कप कोयले से बने होते हैं, जिनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस निकलती है, जबकि देसी गाय के गोबर से बने इन कप्स को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। अनिल त्यागी के अनुसार उनका उद्देश्य संबरानी कप से केवल व्यवसाय करना नहीं बल्कि लोगों तक शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद पहुंचाना है।
1: लेकिन इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों? मार्केट में काला वाला कप आ रहा है वो कोयले का। अब घर में जलाते हैं शुद्धि के लिए, कोयला जलाएंगे तो उसमें पॉल्यूशन होता है, उससे गाय के गोबर से ऑक्सीजन मिलती है जलने पे, तो इसलिए गाय के गोबर की लोग जागरूक हो गए, गाय के गोबर के संबरानी कप की काफी डिमांड है। इसमें गाय का गोबर है, गूगल लोबान और एक जो कोई नहीं मिलाएगा, बहुत महंगी चीज है, सुगंध कोकिल आती है, वो यहाँ हमारे यहाँ जड़ी बूटी नहीं होती है, नेपाल में होती है। मैं वन विभाग में रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानकारी है, सुगंध कोकिला मिलाते हैं इसके।
0: संबरानी कप से आदित्य त्यागी को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। एक संबरानी कप बनाने में लगभग 10 ग्राम देसी गाय का गोबर लगता है, जबकि एक कप की कीमत करीब 10 रुपए पड़ती है। इस हिसाब से गोबर का मूल्य 400 रुपए प्रति किलो से भी अधिक हो जाता है, जबकि उनका संबरानी कप होलसेल में करीब 90 रुपए और ऑनलाइन लगभग 220 रुपए में बिकता है। आदित्य त्यागी को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं, जिनमें दक्षिण भारत से सबसे अधिक मांग आ रही है। इस साल उन्होंने 20,000 संबरानी कप तैयार किए हैं, जिनमें से एक महीने के भीतर ही करीब 1/3 कप्स की बिक्री हो चुकी है।
1: मार्केटिंग की समस्या आती है, हमने उनको कहा कि बेचने की आपको परेशानी नहीं है, कुछ भी आप जितना बनाएंगे हम ले लेंगे, हम अपना कर देंगे। तो कई लोग हमसे, 3-4 लोग हमसे जुड़ गए हैं। अब उनको मेटीरियल, जो बनाने का मेटीरियल है, क्योंकि दूसरे पर भरोसा नहीं है कि वो क्या मिला देगा, मिक्स मटेरियल हम उनको तैयार करके देते हैं और वो अपने घर में बनाते हैं, उनको मशीन दे रखी है हमने, घर में बनाते हैं और सुखा के हमें दे जाते हैं, उनको पर पीस हम पैसा दे देते हैं।
0: संबरानी कप्स को तैयार करने से लेकर उसकी पूरी पैकिंग तक आदित्य त्यागी अपने घर में ही करते हैं और इसके लिए उन्होंने 5 से 7 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। आज उनकी नौकरी के समय मिलने वाली सैलरी से भी अधिक आमदनी इस व्यवसाय से ही हो रही है। आज उनका ये मॉडल उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है जो देसी गाय पालन से नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चीन के गांव ने बच्चों के लिए खाली जगह पर स्विमिंग पूल बनाया। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही है आपका इंतजार।
3: फ्रांस से 100 साल बाद आइवरी कोस्ट का पवित्र ड्रम वापस आ गया है। लोगों ने नाच गाने के साथ इसका जोरदार स्वागत किया। ये ड्रम 1916 में फ्रांसीसी शासन के दौरान आइवरी कोस्ट से ले जाया गया था। मार्च 2026 में बातचीत के बाद फ्रांस ने इसे वापस कर दिया। आइवरी कोस्ट के लोग इस ड्रम को अपनी पहचान और ताकत का प्रतीक मानते हैं। पहले इसका इस्तेमाल लोगों को खतरे और जरूरी खबरों की सूचना देने के लिए होता था। ड्रम के वापस आने पर इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। लोगों ने इस ड्रम की कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी थी। ड्रम की वापसी को आइवरी कोस्ट में अपनी पुरानी संस्कृति वापस पाने की जीत माना जा रहा है। चीन के गांव ने बच्चों के लिए खाली जगह पर स्विमिंग पूल बनाया है। गर्मी को दूर भगाने के साथ साथ बच्चों को यहां मस्ती करने का मौका मिला है। ये पूल करीब 600 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना है। पूल में छोटे बच्चों के सुरक्षित स्नान के लिए अलग उथला हिस्सा भी बनाया गया है। पूल में पास की नहर से रोज ताजा पानी भरा जाता है। शाम को पानी निकाल दिया जाता है ताकि पूल साफ और सुरक्षित रहे। बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव के 3 अधिकारी और कुछ स्वयंसेवक लगातार निगरानी करते हैं। जरूरत पड़ने पर वे तुरंत मदद के लिए तैयार रहते हैं। गर्मी की छुट्टियों में रोज करीब 200 बच्चे और उनके माता पिता यहां पहुंचते हैं। छुट्टी वाले दिनों में ये संख्या 500 से भी ज्यादा हो जाती है। चीन के चोंगकिंग में 12 साल के 3 बच्चों ने 1 मिनट में 496 बार रस्सी कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तीनों ने एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में यह कमाल कर दिखाया और साथ साथ कूद कर इतिहास रचा है। जरा सी गलती उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती थी, इसलिए तालमेल बेहद जरूरी था। इन बच्चों ने कई महीनों तक रोज जमकर अभ्यास किया। उनकी टीम रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में 8 से 10 घंटे तक ट्रेनिंग करती है। बच्चे इतनी ज्यादा रस्सी कूदते हैं कि एक सेमेस्टर में उनकी 1-2 रस्सियां टूट जाती हैं। टीम पिछले 26 साल से जंप रोप की ट्रेनिंग दे रही है। इन बच्चों ने अपनी जीत का श्रेय मेहनत और टीम वर्क को दिया। थोड़े आराम के बाद टीम अगले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी शुरू करेगी। चीन के चांगशा शहर में 12,000 वर्ग मीटर में स्नैक किंगडम बनाया गया है। यहाँ 6500 से ज्यादा ब्रांड के हजारों तरह के स्नैक्स मिलते हैं। स्नैक किंगडम में 25,000 से ज्यादा चीनी और 10,000 से ज्यादा विदेशी स्नैक्स हैं। यहाँ लोग अपनी पसंद के स्नैक्स खरीदने के साथ उन्हें देखकर उनके बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजों के बहुत बड़े मॉडल लगाए गए हैं जो लोगों का ध्यान खींचते हैं। इनके साथ फोटो खिंचवाना भी लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ सिर्फ सामान खरीदने नहीं बल्कि घूमने और मनोरंजन का भी इंतजाम है। यहाँ से लोग स्नैक्स के इतिहास को जान सकते हैं और अलग अलग किरदारों के साथ मस्ती कर सकते हैं। स्नैक किंगडम में खरीदारी को मनोरंजन से जोड़ा गया है, यानी यहाँ लोग सामान खरीदने के साथ घूमते खेलते और तस्वीरें भी लेते हैं।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
2: 11 साल की रेसिंग स्टार अतीका मीर ने एक और कामयाबी हासिल की है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
3: कार्टिंग की दुनिया के बड़े इवेंट FIA यूरोपियन चैंपियनशिप के चौथे राउंड में टॉप 10 में दो बार जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर रेसिंग स्टार अतीका मीर ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। महज 11 साल की अतीका ने 12-14 साल की कैटेगरी में हीट रेस के दौरान जबरदस्त स्पीड और लड़ने का जज्बा दिखाते हुए 9वां और 10वां स्थान हासिल किया। F1 एकेडमी से सपोर्ट पाने वाली पहली भारतीय अतीका ने P11 के लिए क्वालिफाई किया। उनका समय सबसे तेज रिकॉर्ड से सिर्फ 0.13 सेकंड पीछे था, जो ग्रिड में कड़ी टक्कर को दिखाता है। अपने दूसरे FIA इवेंट में वर्ल्ड कार्ड के तौर पर हिस्सा लेते हुए कश्मीरी मूल के इस भारतीय ड्राइवर ने ग्रिड में सबसे कम उम्र की होने के बावजूद 14 साल तक के ड्राइवरों को कड़ी टक्कर दी। वुशु के मैदान में कोटा के 18 साल की दिव्यांशी ने वो इतिहास रच दिया है जिसका इंतजार पिछले 36 वर्षों से था। एशियन गेम्स में वुशु पिछले 36 साल से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक राजस्थान का कोई खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में वुशु में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया था। दिव्यांशी इस सूखे को खत्म करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई है। जापान में 22 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में दिव्यांशी 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय वुशु टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। दिव्यांशी अब तक 12 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। राजस्थान के ही श्रीगंगानगर जिले में सीमा के करीब के इलाके अनूपगढ़ के 19 साल के वसंत मेघवाल ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में 2.21 मीटर की छलांग लगाकर बसंत किसी भी आयु वर्ग की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रतियोगिता में शीर्ष तीन खिलाड़ियों ने 2.21 मीटर की समान ऊंचाई पार की, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स के काउंट बैक नियम के तहत कम असफल प्रयासों के आधार पर पदक तय किए और बसंत कुमार मेघवाल को दूसरे प्रयास में सफलता मिलने के चलते सिल्वर मेडल मिला, जबकि अल्जीरिया के यूनेस अयाची ने स्वर्ण पदक जीता और ग्रेट ब्रिटेन के ओटिस पूल को ब्रॉन्ज मिला। असम के गांव की बेटी ने गोल्ड जीतकर थाईलैंड तक कामयाबी का परचम लहराया है। हैलाकांडी गांव की धरती से एक होनहार लड़की हमीदा नूर लस्कर ने टैलेंट, कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास से थाईलैंड में शानदार कामयाबी हासिल की है। नॉर्थ नारायणपुर की इस लड़की ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हैलाकांडी यानी बराक वैली का नाम रोशन किया। हाथ में मेडल, गले में कई सम्मान और चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान के साथ हमीदा की ये तस्वीर अब इस गाँव के लोगों के लिए गर्व की निशानी है।
2: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: भारतीय नौसेना के लिए बन रहा युद्धपोत श्रुति लॉन्च, समुद्र में परखी जाएगी ताकत, समुद्री निगरानी में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, अकोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल कई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, बुनाट अंडर वाटर पार्क बनाकर शुन का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राजशुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सावन और सावन के सूर्य ग्रहण की। देखिए मंगलवार को देशभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का जमघट रहा और शिवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्तों ने बाकायदा जलाभिषेक किया, लेकिन संयोग यह है कि शिवरात्रि के बाद बुधवार की रात को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सावन के सूर्य ग्रहण के भारत में लोगों की जिंदगी पर क्या असर होने जा रहा है और सूतक काल को लेकर क्या कंफ्यूजन है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद कांवड़ यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी पर भी बात करेंगे। हरिद्वार हो या देवघर, हजारों की तादाद में महिला शिव भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। कांवड़ यात्रा की नई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, शिव भक्ति में मगन बेटियों से भी बात करेंगे। सावन करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी से गंगा जल उठाया, इतनी बड़ी तादाद के बावजूद कांवड़ यात्रा को कामयाबी से संपन्न कराने वाले पुलिस वालों की बेमिसाल तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रहण के साथ। देखिए, शिवरात्रि के बाद श्रावण अमावस्या और उसी दौरान साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, ये संयोग इसे खास बना रहा है। ग्रहण 12 अगस्त की रात करीब 9 बजे शुरू होगा और देर रात करीब 1:30 बजे तक रहेगा। हालांकि भारत में साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के असर और सूतक काल को लेकर लोगों के मन में दुविधा है, कई सवाल हैं। चलिए सावन के सूर्य ग्रहण के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

0: पावन सावन और सावन में सौभाग्य वाली शिवरात्रि के ठीक बाद सूर्य ग्रहण। ये संयोग जल्द नहीं होता, इसीलिए श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या पर पड़ने वाला सूर्य ग्रहण न सिर्फ ज्योतिष बल्कि खगोल दोनों ही नजरियों से खास बन गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण क्यों अहम है। भारत में सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 से शुरू होगा। मध्य समय रात्रि 11:16 रहेगा और इसका समापन 13 अगस्त की सुबह 1:27 पर होगा। ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा और इसीलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं है। फिर भी सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका विशेष धार्मिक महत्व होता है, खासकर सावन में शिवरात्रि के बाद पड़ने वाले इस ग्रहण का सकारात्मक असर माना जा रहा है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर। जैसे धार्मिक स्थल बंद नहीं होंगे, वैसे भी ये रात का समय है, भारतीय मानक समय के अनुसार रात में 9:04 से लेकर के 1:28 तक ही सूर्य ग्रहण की स्थिति रहेगी। तो भारत भूमि में ऐसे समय में मंदिर आदि के कपाट वैसे भी बंद रहते हैं, तो सूतक के नियम का कोई आधार नहीं बनता है। भारत में दृश्य नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह भारत भूमि को प्रभावित नहीं करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। और इसी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव के संदर्भ में, तो कुछ राशियों को लाभ प्राप्त होगा तो कुछ राशियों को नकारात्मक प्रभाव भी प्राप्त होगा।
0: 2026 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। पहली बात तो ये है कि इसे यूरोप के कुछ हिस्सों और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में देखा जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन, पुर्तगाल, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में नजर आएगा। जानकारों की राय में ऐसा सूर्य ग्रहण धरती पर साल 1999 में नजर आया था और आगे 23 अगस्त 2090 को दिखाई देगा। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आता जाएगा, सूर्य का एक बड़ा हिस्सा उसकी छाया में छिपता जाएगा और जब ग्रहण अपने चरम पर होगा तब आसमान में रोशनी काफी कम हो जाएगी। दिन में रात जैसा नजारा होगा क्योंकि चंद्रमा सूर्य के करीब 90% हिस्सा ढक लेगा। लेकिन अगर ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो इस ग्रहण का समय विलक्षण है। शिवरात्रि पर ग्रहों का अद्भुत संयोग है और चतुर्ग्रही योग बना है। बुध, सूर्य, गुरु, चंद्रमा चारों कर्क राशि में हैं और इसकी वजह से बुधादित्य और गजकेसरी योग बना है।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभिष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव पर कुछ न कर पाइए तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, पंचामृत आदि वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। विभिन्न पदार्थों जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्रियां हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान इत्यादि हुआ को भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए और भगवान मृत्युंजय, भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए।
0: हालांकि सूर्य ग्रहण नजर नहीं आने से भारत में इसका सीधा असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानकार मान रहे हैं कि ग्रहण के किसी भी तरह के असर से बचने के लिए शिव की आराधना से बेहतर कोई उपाय नहीं, यानी सावन के सोमवार को उपवास रखें, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नियम से बेलपत्र अर्पित करें, साथ ही शिव पंचाक्षर स्त्रोत और शिव मंत्र का जाप भी करें।
2: देखिए जातक सारे सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड, जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा।
0: सावन की अमावस्या पर पड़ रहे सूर्य ग्रहण को लेकर एक दुविधा पितरों के लिए अर्पण और दान को लेकर है। जानकारों के मुताबिक सूतक लागू नहीं होने की वजह से इसमें कोई बाधा नहीं है। यहां तक कि ग्रहण का असर कम करने के लिए भी दान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और आइए बात करेंगे सावन में नारी शक्ति की। कांवड़ मार्ग पर केसरिया कपड़ों में बोलबम का जयघोष करती महिलाओं ने इस यात्रा को और भी ज्यादा भव्य बना दिया है। परिवार या दोस्तों के साथ इस साल कांवड़ यात्रा में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी है। हरिद्वार हो या देवघर, कांवड़ यात्रा में 8 से 10 साल की बेटियां भी बोलबम का जयकारा लगाते हुए शामिल हो रही हैं। परिवार के बुजुर्गों को कुछ भक्त कांवड़ में लेकर गंगा घाट तक गए, लेकिन नई पीढ़ी की बेटियों ने पैदल ही रास्ता तय किया। भक्ति के साथ इंस्टाग्राम वाली मस्ती भी नजर आई, यानी जल भी उठाया और रील भी बनाई। चलिए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा में नारी शक्ति पर हमारी खास रिपोर्ट।
0: ये तस्वीर उस आस्था की है जहाँ मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, जहाँ कदम भले ही थक जाएं, लेकिन विश्वास कभी नहीं डगमगाता। सावन आया तो शिव भक्तों का रंग भी गहराने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अपने आराध्य की ओर निकल पड़े और हैरत नहीं कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। कोई पति के साथ है, कोई बच्चों को लेकर चल रही है, तो कहीं महिलाओं की अपनी टोली है जो जयकारा लगाती बाबा के दरबार की ओर बढ़ती चली जा रही है। आज तक ये तस्वीर अद्भुत है। तन केसरिया, मन केसरिया, आंखों में भक्ति की आभा, मुख पर पवित्र हंसी। महिलाओं के लिए कांवड़ यात्रा कोई नई बात नहीं है। हाँ, साल दर साल महिलाओं की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है और अब इसमें हर तबके और हर उम्र की महिलाएं शामिल हैं। गंगा धाम से बाबा धाम तक करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करना अब इन्हें कठिन नहीं लगता।
4: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से जल उठाएंगे।
5: क्या क्या कामना है बाबा से?
4: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे।
5: और बताइए।
4: और क्या बताए, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
6: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहां तक आए।
5: कितना साल से आ रहे हैं?
6: 10 साल से।
5: क्या कामना है बाबा से?
6: कामना तो बहुत सारा है।
5: क्या क्या पूरा हुआ?
6: पूरा हुआ है, बहुत सारा पूरा भी हुआ है और कमी भी है, वही मांगने आए हैं, और क्या बताएं।
0: बाबा का नाम लिया, ठान लिया और बस चल पड़े। हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन शिव के सहारे इनकी राह बनती जाती है।
7: वैशाली जिला से आए हैं, सुल्तानगंज जाके जल भर के बाबा धाम जा रहे हैं। बाबा से तो कामना सब दिन रहने करता है लोग के, बड़े है कि नहीं रहता है, जो पूरा दे भगवान।
5: कैसा लगता है कांवड़ लेके चलते हैं तो?
7: बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, लेकिन परेशानियाँ बहुत है, थक जाते हैं।
8: सुल्तानगंज आए हैं मम्मी पापा के साथ और ये मेरा बेटा है, इसको घुमाने के लिए लेके आए हैं।
5: क्या मांगेंगे बाबा से?
8: क्या मांगेंगे बाबा से तो बहुत कामना है, आप देखिए क्या क्या पूरा करते हैं।
5: तो कैसा लग रहा है?
8: बहुत अच्छा लग रहा है।
5: कितने सालों से?
8: 2 साल से हम आ रहे हैं।
5: क्या मांगी बाबा से?
8: क्या बाबा से कुछ नहीं मांगे, बाबा को जो देना होगा दे देंगे, उसी से खुशी।
0: शिव की पूजा में ना कोई धार्मिक बंधन है ना कोई विशिष्ट विधान, सभी के लिए शिव को पूजना आसान। इसीलिए महिलाओं को हमेशा से भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा पर बराबर का अधिकार रहा है। हाँ, कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं की तादाद समय दर समय जरूर बढ़ी है और अब वास्तविकता ये है कि देवघर में महिलाएं हजारों हजार की तादाद में नजर आ रही हैं।
9: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
5: कब कमर उठाई थी?
9: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हाँ, हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में। हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
5: क्या कामना है बाबा से?
9: बाबा हम लोगों सब चीज शुरू से दे दिए हैं, इसलिए अब ज्यादा नहीं है, सब परिवार को एकजुट रखे और हमारा देश तरक्की करे, यही कामना है।
5: कोई एक चीज बताइए जो बाबा ने पूरा किया है आपका?
10: सब कुछ, जो इच्छा थी बाबा बिना मांगे सब कुछ दे दिया।
11: मैं अभी NIT सिक्किम से कॉलेज पास की हूँ और मुझे हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम रहता था, मुझे चलने में बहुत दिक्कत था, लेकिन बाबा का नगरी के लिए हम लोग कुछ भी हेल्प के लिए हम लोग चल देते हैं।
0: ये तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है, जहाँ पर कांवड़िए जेन जी ही नहीं बल्कि जनरेशन अल्फा भी नजर आती है। 8 से 10 साल की उम्र की बेटियाँ बोलबम का जय घोष करते यूपी से बिहार जा रही हैं। शिव भक्ति की इससे खूबसूरत तस्वीर भला और क्या हो सकती है। यात्रा शिव के धाम तक की है, थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ भी होंगी, लेकिन जो खुद शक्ति का प्रतीक है, भला उनके शिव तक जाने से कैसी बाधा।
12: भगवान के ऊपर में हम लोग का बहुत आस्था है, हम लोग पुरुलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है, लेकिन हम लोग आना जाना ट्रेन में दिक्कत होती है।
13: बाबा धाम तो आज तीसरा मेरा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, बाबा की नगरी में जाके मन एकदम खुश हो जाता है।
14: मन में आया, मैं पहली बार मनता मानी थी, मेरा मनता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
15: महिला होने के नाते मैं पुरुषों से कम नहीं होती महिला।
16: बस ऐसे ही अचानक से मन में आ गया, भाई जा रहे थे और भाभी साथ में जा रही थी, तो भाई गए मुझे लेने मेरे घर पे, तो बोले कि चलो आप भी घूम आओ, मैं बोली चलो ठीक है, इसलिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर।
17: हम लोग कवर इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते हैं तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तो मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं। भगवान के आस्था बहुत है, मन में भाव बहुत है कि बाबा के धाम पर कब पहुँचे, कब जल हम लोग लाए, बाबा से जो हम लोग मानते हैं हम लोग का मनोकामना पूरा करें।
0: कांवड़ यात्रा में महिलाओं की ऐसी भागीदारी इसलिए भी है क्योंकि सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम है। रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है। हरिद्वार में हालांकि कांवड़ यात्रा का समापन हो गया है, लेकिन इस मार्ग पर भी कांवड़ियों की भीड़ में महिलाओं की मौजूदगी जबरदस्त रही। पति और बच्चों के साथ, दोस्तों के ग्रुप में या फिर अकेले, कुछ उम्र के हिसाब से शिव का नाम जपते तो कुछ भक्ति के साथ मौज मस्ती करते।

0: एक हैरान करने वाली तस्वीर सहारनपुर से भी सामने आई, जहां 12 साल की परी अपने छोटे भाई के साथ 31 लीटर गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने निकली। कठिन रास्ता लेकिन अटल इरादा, कांवड़ उठाएंगे, जल लाएंगे और भोले का अभिषेक करेंगे। महिलाओं की भागीदारी देखते हुए यूपी के तमाम शहरों में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में महिला शिव भक्तों की सुविधा पर खास फोकस है। बागपत के मेला परिसर में अलग से पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी। साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन का मकसद है कि भीड़भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भी महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबल की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान किया जा सकेगा।
1: जनपद बागपत में पुरा महादेव जो मंदिर है, वहाँ पे लाखों कांवड़ियाँ हर साल आती हैं और इस बार हर बार हम देख रहे हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है, जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। ड्यूटी तो हर साल ही लगती है, पर यह कि महिला अधिकारी बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत एम्पैथी के साथ और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
0: कांवड़ यात्रा में महिलाओं की बढ़ती तादाद एक बड़ा बदलाव है, जिसके लिए सरकार और प्रशासन भी तैयार है, ताकि आस्था के पद पर उन्हें कोई परेशानी न हो। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, संभल से अभिनव माथुर, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनु देव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश भर के शिवालयों में शिवरात्रि के अवसर पर धूमधाम रही। लाखों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और इसके साथ ही हरिद्वार में चल रहे सावन मेले का समापन हो गया। इस साल कांवड़ यात्रा की अनगिनत खूबसूरत तस्वीरों में चंद ऐसी तस्वीरों में शुमार रही जिन पर लोगों का कम ही ध्यान जाता है। देखिए ये तस्वीरें पुलिस वालों की, कांवड़ यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पुलिसकर्मी और आला अधिकारी दिन रात मोर्चे पर तैनात रहे। ये तस्वीरें हैं बागपत की, जहां पर तेज बारिश में भीगते हुए पुलिस वाले कांवड़ियों की मदद करते हुए नजर आए। कांवड़ों पर जमा हुए पानी के बीच पुलिस के आला अधिकारी भी अपनी ड्यूटी में पूरी तरीके से मुस्तैद रहे। SP खुद भीगी वर्दी में होठों में सीटी दबाए कांवड़ियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते रहे और कभी हाथ के इशारे की बदौलत कांवड़ियों को आगे बढ़ाया तो कभी भीड़ को नियंत्रित किया, रास्ता साफ करवाते रहे। आस्था और फर्ज की इस खूबसूरत तस्वीर की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान बारिश, भीड़ और लगातार बढ़ते श्रद्धालुओं के दबाव के बावजूद पुलिस ने लगातार अपने फर्ज को अंजाम दिया। इसी तरीके से देखिए तस्वीर सहारनपुर से भी निकल कर आई, जहां पर सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद छाता लेकर बारिश के बीच सड़कों पर उतरे और कांवड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पर कई पुलिसकर्मी बारिश में बिना छाता के भीगते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आए। सड़कों पर पुलिसकर्मियों की लगातार मौजूदगी से कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई और पुलिस वालों की ये तस्वीर सेवा, सुरक्षा और समर्पण की मिसाल बनकर सामने आई। देखिए धर्मनगरी हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू हुआ कांवड़ मेला शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मेले के सफल समापन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भूलर ने हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक बकायदा किया और इस सावन में लगभग 4 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर जल उठाया। कांवड़ यात्रा में किसी को परेशानी ना हो इसके लिए पुलिसकर्मियों को संयमित और मधुर व्यवहार के निर्देश बाकायदा दिए गए थे और सभी पुलिस वालों ने बखूबी अपना फर्ज निभाया, शिव भक्तों की मदद की और जहां जरूरत पड़ी वहां पर सख्ती से काम भी लिया। हरिद्वार प्रशासन के मुताबिक शिवरात्रि के मौके पर एक हफ्ते तक सुरक्षा और सेक्टर व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र और कांवड़ पटरियों पर स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया। खास कार्यक्रम में तय देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्या है इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कैसा होगा आपकी राशियों पर असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: भारतीय नौसेना के लिए बन रहा युद्धपोत श्रुति हुआ लॉन्च, समुद्र में पर की जाएगी ताकत, समुद्री निगरानी में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, अकोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्म भेजने का प्रोसेस शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल गई थी होम आउट। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का रोका तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडरवाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
7: कल लगेगा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में दिखेगी अद्भुत खगोलीय घटना। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से धरती के कई हिस्सों में दिन में होगा रात, 3 दशक के बाद सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में छाएगा अंधेरा। 1999 के बाद पहली बार देखेगा ऐसा सूर्य ग्रहण। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोप के कुछ हिस्सों, ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में देखेगा ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार रात

0: 9:04 से लेकर 1:27 के बीच दिखेगा ग्रहण। रात का समय होने की वजह से भारत में दिखाई नहीं देगा कल का सूर्य ग्रहण। दिखाई नहीं देने के कारण सूतक भी नहीं लगेगा। देश में जहाज निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश की तटीय अपतटीय सुरक्षा गश्त और समुद्री निगरानी को मिलेगी मजबूती। कोलकाता में लॉन्च किया गया अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोलिंग जहाज श्रुति। मुजफ्फरपुर के घनश्याम जायसवाल का कमाल, गरीबी से नहीं मानी हार, पढ़ाई के जरिए बदले किस्मत, पास की यूपीएससी परीक्षा। मुजफ्फरपुर के बैरैया बस स्टैंड पर चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं घनश्याम के पिता। राजस्थान के कोटा से 1,000 श्रद्धालु मदुरई और रामेश्वरम के लिए हुए रवाना। स्पेशल ट्रेन के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा पर रवाना हुए श्रद्धालु। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए गुड न्यूज। मौजूदा वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक 23.09% बढ़कर 8.11 लाख करोड़ हुआ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। नेट कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 19.83% बढ़कर लगभग 2.70 लाख करोड़ हुआ। मध्य प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार। राज्य सरकार ने 47,990 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी। कोलकाता मेट्रो के विस्तार से जुड़ी हुई गुड न्यूज। कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन पर सुरंग की खुदाई में मिली सफलता। खेदरपुर से विक्टोरिया के बीच 1.72 किलोमीटर लंबी दूसरी समानांतर भूमिगत सुरंग का निर्माण हुआ पूरा। महाराष्ट्र के कुला से आई सामाजिक तानेबाने की सुंदर तस्वीर। यहां एक मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से रक्षाबंधन के लिए बना रहा है देव राखी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले अपने आराध्य को राखी अर्पित करने की है परंपरा। बेहतर होगी जयपुर की परिवहन व्यवस्था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पीएम ई बस सेवा के तहत 16 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। गुजरात में कल खेल योजना शक्तिदूत 2.0 का होगा शुभारंभ। कार्टिंग के फॉर्मूला 1 में आतिका मीर के नाम नई उपलब्धि। एफआईए यूरोपीय चैंपियनशिप के राउंड 4 में टॉप 10 में 2 बार जगह बनाने वाली पहले भारतीय। आज देश भर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। मंदिरों में बढ़ी रौनक, भोले के जयकारों की गूंज। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में परिसर में जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें। बड़ी संख्या में कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं कालकाजी मंदिर। ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी देर रात से जुटने लगी शिवभक्तों की भारी भीड़। भोलेनाथ के जयकारे। गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। बोल बम के नारों से गुंजायमान हुआ परिसर। प्रयागराज के कोटेश्वर धाम में लगा शिवभक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। कोटेश्वर धाम का धार्मिक और पौराणिक महत्व। मान्यता के अनुसार रावण वध के बाद भगवान राम ने यही रीत से 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। प्रयागराज का नैनी अरेल घाट शिव भक्तों के लिए अनूठी पहल। पूरे सावन घाट पर फ्री रुद्राभिषेक। घाट पर आयोजित संस्था की ओर से हर श्रद्धालु को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है पूजा की समस्त सामग्री। अलवर में भी शिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़। महादेव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रही है कांवड़िया। सावन की शिवरात्रि पर उज्जैन में भगवान महाकाल का हुआ विशेष अभिषेक। हर हर महादेव के जयकारे। शिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें। बोलबम के जयकारे। काशी में सावन की शिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ की गई मंगल आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रावण शिवरात्रि के चलते भारी संख्या में एक बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि को दशेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। मेरठ के बाबा ओखड़नाथ मंदिर में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पुरी में सावन शिवरात्रि पर उतारी गई भगवान जगन्नाथ की भव्य आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इंदौर सेंट्रल जेल में गूंजा हर हर महादेव, 1000 कैदियों ने बनाए 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग। महज 1 घंटे में पूरा हुआ शिवलिंग निर्माण, इसके बाद विधि विधान के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवरात्रि पर कांवड़ियों की भारी संख्या, बड़ी संख्या में महिला कांवड़िए भी पहुंचे। छोटे बच्चों को गोद में उठाए दिखी नजर आई महिला कांवड़िया, और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सावन में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आते हैं बाबा धाम। संभल में भी महिला कांवड़ियों की रौनक, हरिद्वार और ब्रिजघाट गंगा घाट से कांवड़ लेकर पहुंची महिलाएं। कांवड़ में ला रही महिला पवित्र गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सहारनपुर में भी दिख रहे हैं शिव भक्ति के अलग अलग रंग, कांवड़ लेकर धार्मिक यात्रा पर निकली महिलाएं। कंधे पर भारी भरकम कांवड़ उठाए नजर आ रही है महिला श्रद्धालु, अलग अलग मनोकामना लेकर पहुंची। कांवड़ यात्रा में हर आयु वर्ग की महिला शिव भक्त सफर के दौरान इंस्टा रील्स भी बनाई। औरैया में नजर आई अनोखी कांवड़, कैदी के भेष में कांवड़ लेकर औरैया के प्रसिद्ध भगवान शंकर देवकली मंदिर पहुंचे। कानपुर से अनोखी कांवड़ लेकर औरैया पहुंचे पेड़ियों में जकड़े संदीप। बगहा में अनोखी कांवड़ लेकर निकला भक्त, 3 पालतू डॉग्स के साथ कांवड़। 12 दिन में 111 किलोमीटर की पैदल यात्रा का रामनगर के नर्मदेश्वर शिव मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र। संभल में नजर आई अनोखी कांवड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और IPS के विश्नोई की फोटो लगाकर पहुंचे। सावन के पवित्र महीने में सड़क मार्ग और ट्रेनों के माध्यम से अपने शिव मंदिरों के लिए रवाना हो रहे हैं भक्त। महाराष्ट्र के डोंबिवली में भव्य कांवड़ पदयात्रा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध पंपलेश्वर महादेव मंदिर में कंधों पर कांवड़ लेकर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में देखा भक्ति का अनूठा रंग, स्कूटी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा। हरिद्वार से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंदर का जबरदस्त स्वागत हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते हुए नजर आए पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी है महाभारत कालीन अनोखा शिव मंदिर, मान्यता है कि इस मंदिर को दुर्योधन ने बनवाया। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर इस पश्चिम मुखी शिव मंदिर में मन्नत लेकर दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। राखी और उपहार भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग की शानदार पहल, राखी पर डाक विभाग ने शुरू कर दी वाटर प्रूफ लिफाफा सेवा। छोटा लिफाफा 10 रुपए, बड़ा लिफाफा 15 रुपए में होगा उपलब्ध। चंदौली में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, लोगों ने लगाया भारत माता के जयकारे। यात्रा को लेकर महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह, गाए गए देशभक्ति के गीत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनसे मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ। महिलाओं के लिए वरदान बनी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 योजना, सालों से दबंगों से परेशान महिला को 1 शिकायत पर न्याय मिला। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्बुलेंस और ब्लड डोनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। 15 अगस्त के नजदीक आते ही सामने आने लगा देशभक्ति का जज्बा, शोपिया में पुलिस और नागरिक प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द नजर आया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, लाल किले के पास दंगल पार्क में स्वतंत्रता दिवस 2026 से पहले 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल। 15 अगस्त की पारंपरिक तैयारियों का एक अहम हिस्सा होता है यह अभ्यास। रक्षाबंधन से पहले कानपुर में सरहद के प्रहरियों के लिए अनोखा कार्यक्रम, देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 3 लाख राखियां। आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा सेना की अलग अलग पोस्ट पर भेजी गई राखियां। इस कार्यक्रम में शामिल हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सुजीत बैस। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के तरानों से गूंजा झांसी रेलवे स्टेशन पर, अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए गूंज रहे देशभक्ति के गीत। झांसी समेत रेल मंडल के 100 से ज्यादा स्टेशनों पर 15 अगस्त तक गूंजेंगे देशभक्ति के तराने। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी आई देशभक्ति के जज्बे वाली शानदार तस्वीर, ऑल टेरेन व्हीकल पर निकली तिरंगा यात्रा। गुजरात के महीसागर जिले में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में 14 फीट लंबे घायल किंग कोबरा का किया गया इलाज। सहारनपुर के 71 साल के किसान आदित्य त्यागी गाय के गोबर से बना रहे हैं धूनी कप। आदित्य के बनाए धूनी कप की देश भर में काफी डिमांड, इस काम से उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया। आसनसोल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ नजर आए लोग। संसद के बाहर सांसद बाबुल सुप्रियो ने छेड़ी सुरीली तान, बारिश के बीच देशभक्ति का गीत। विदेशी नागरिकों के लिए भारत आना हो जाएगा और आसानी, ई वीजा लिस्ट में जुड़े 11 नए पोर्ट्स। मुंबई में सोने की चट्टान पर विराजे गौतम बुद्ध, 18 लाख की गोल्ड ईंट पर स्थापित हुई प्रतिमा। मुंबई के गोल्डन मैन ने किया अनोखा काम, रोहित पिस्साल ने बनवाई गोल्ड की ईंट। गया जी में शहीद फौजी की डॉक्टर बेटी की अनोखी पहल, फौजियों के बच्चों का मुफ्त इलाज। डॉक्टर बीडी शर्मा को शहीद पिता से मिली देश सेवा की प्रेरणा। पुलवामा हमले ने बदल दी डॉक्टर की जिंदगी, सरकारी नौकरी छोड़कर गया लौटे डॉक्टर बीडी शर्मा। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों को भीषण गर्मी से मिल रही राहत, हफ्ते भर की गर्मी के बाद आई बारिश। असम के मरांगी में बाढ़ के हालात में सुधार, बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब भी हालत सामान्य होने बाकी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आया फ्लैश फ्लड, पुलिस और SDRF के त्वरित रेस्क्यू ने बचाई 7 लोगों की जान। उत्तराखंड के चमोली में फ्लैश फ्लड, तमक इलाके में फ्लैश फ्लड में बाल बाल बचे लोग। मणिपुर में बहाल होगी जरूरत की सभी आपूर्ति। दिल्ली के आरुष तिवारी ने रच दिया इतिहास, एशियन ओपन फिगर स्केटिंग ट्रॉफी 2026 में जीता सिल्वर। 15 साल के आरुष का कमाल, लगातार 2 साल एशियन ओपन फिगर स्केटिंग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म के ट्रेलर में मुन्ना भैया का स्वैग। फिल्म के ट्रेलर में मिर्जापुर की सत्ता बदला, खून खराबे का नया चैप्टर। मिर्जापुर वेब सीरीज की जबरदस्त सफलता के बाद 4 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या है इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कैसा होगा आपकी राशियों पर असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
7: गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है, चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आए। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुंचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303400922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: लगने जा रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या है इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कैसा होगा आपकी राशियों पर असर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉकड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका हमारे देश पर और हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
2: ग्रहण काल में चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय में भगवान के नाम का मंत्र या गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, इसका जप अवश्य करें। अगर आप ऐसा करेंगे, ग्रहण काल में नाम जपेंगे या गुरु मंत्र जपेंगे, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको जरूर होगा।
0: और आइए जान लेते हैं 12 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्राम।

0: तक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 7:59 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि इस बार सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है।
0: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण की। आखिर इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से 12 अगस्त को रात में 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा 12 अगस्त की मध्य रात्रि जब बीत जाएगी, 13 अगस्त शुरू हो जाएगा, तो 13 अगस्त की बहुत सुबह 1:27 पर समापन होगा। यानी ये ग्रहण 12 अगस्त को रात में 9:04 पर शुरू होगा और इसका समापन 13 अगस्त को 1:27 प्रातः समाप्त होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। हालांकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, फिर भी भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियम, किसी तरह के सूतक के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण को लेकर के किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव देश दुनिया पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे, लेकिन जहां तक सूतक के नियमों की बात है, उसका पालन करने की भारत में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें, धन की हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
0: देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया पर लगभग अगले 3 महीने तक पड़ता है और राशियों पर इसका प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो अब ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न में ये सूर्योदय आरंभ हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं सूर्य ग्रहण के समय और पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। इस ग्रहण के समय राहु और मंगल ये दोनों निकट अंशों में हैं। अब आप देखिए, कर्क राशि जल की राशि है, मीन लग्न जल का लग्न है, जल की राशियां प्रभावित हो रही हैं। तो इस सूर्य ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप के झटके लग सकते हैं या जल से आपदाओं की संभावना बन सकती है। सत्ता में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें पद से हटाया जा सकता है। चूंकि स्वतंत्र भारत की राशि भी कर्क है और ये ग्रहण कर्क में ही लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थिति बन रही है। इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसका प्रभाव आम जनता पर और देश की राजनीति पर पड़ेगा। राहु और मंगल का करीबी अंश में होना अच्छा नहीं है। आतंकवादी घटनाएं घट सकती हैं, विस्फोट आदि की नौबत आ सकती है। तटीय स्थानों में जो समुद्र तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यहां पर विशेष समस्या का समय हो सकता है। तो ये ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं की सूचना दे रहा है। विस्फोट और उपद्रव जैसी स्थिति बनेगी, इस बात की जानकारी भी दे रहा है।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो जानेंगे पंडित जी से ही आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न महिमा ने हमें लिखा है और महिमा हमें मेल लिखती हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1992। जन्म का समय रात में 9:50। जन्म स्थान है जबलपुर। महिमा पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। महिमा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह तय होने का समय चल रहा है। ज्यादातर संभावना ये लगती है कि अभी 1 से 2 महीने में आपकी शादी तय होगी और 2027 के शुरुआती समय में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले हिस्से में आपकी शादी होनी चाहिए। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न अतुल ने हमें लिखा है और अतुल जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1994। जन्म का समय सुबह के 7:35। जन्म स्थान है मुंबई। अतुल कह रहे हैं कि मैं 1 साल नौकरी किया था और अब मैं अपना व्यापार कर रहा हूं। क्या मुझे व्यापार में सफलता मिलेगी या मुझे वापस नौकरी में जाना चाहिए। अतुल जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में बने रहना चाहिए। व्यापार की स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं और परिश्रम करेंगे तो अगले साल व्यापार और ज्यादा बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर आपने परेशानी लिखी है, उसको लेके बहुत चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा। अक्टूबर 2026 के बाद आपके स्वास्थ्य के हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए देखते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा।
0: देखिए, आपको पहले भी बताया कि ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक 15 दिन तक पड़ेगा। तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं इस समय आपको काफी परेशान कर सकती हैं, आपका तनाव काफी बढ़ सकता है। वृषभ राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और करियर में आपको विशेष सफलताएं इस समय मिलेंगी, ग्रहण लाभकारी है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। कर्क राशि, करियर में आपके समस्या आ सकती है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। सिंह राशि, ग्रहण का प्रभाव दुर्घटना करवा सकता है, दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहिएगा। कन्या राशि, ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं आपके लिए, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
1: और अब हम जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, यात्राओं में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। और पहली छह राशियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब बाकी छह राशियों के बारे में हम जानेंगे।
0: तो हमने मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक का हाल जाना कि उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक के लोगों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा है, इनके काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य और जीवन में इनके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की और पारिवारिक समस्या वृश्चिक वालों को इस समय परेशान कर सकती है। ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार और आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। धनु राशि, ग्रहण की वजह से चोट चपेट और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चोट चपेट और दुर्घटना से सावधान रहें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। मकर राशि, ग्रहण के कारण करियर में आपके समस्या आ सकती है और स्थान परिवर्तन के योग इस समय बन सकते हैं। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, ग्रहण आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। तो मीन वाले सेहत को लेकर सतर्क रहें और महत्वपूर्ण काम रुकेगा तो परेशान ना हो, कुछ समय बाद काम आपका बन जाएगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में आपके सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब देखते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका लेते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न राधे श्याम जी ने हमें लिखा है और राधे श्याम जी हमें मेल लिखते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1965, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है हाथरस उत्तर प्रदेश और मेल लिखते हैं मथुरा से। राधे श्याम जी लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, किसी न किसी कारण से मेरे स्वास्थ्य में समस्या बनी रहती है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए।

0: और तन्वी हमें मेल लिखती हैं जयपुर राजस्थान से। तन्वी की जन्म तारीख है 6 मई 1990। जन्म का समय शाम के 5:55। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। तन्वी कह रही हैं कि मेरा एक बार विवाह हो करके ब्रेक हो चुका है, आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तन्वी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में होगा। स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ दूसरा विवाह जब भी करिएगा उस समय कुंडली एक बार मिला लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका शीघ्र विवाह हो, विवाह आपका सुखद रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 12 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि सूर्य ग्रहण के सूतक के जो नियम हैं वो इस बार भारत में क्यों लागू नहीं होंगे। देखिए, ग्रहण के नियम वहीं लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में किसी भी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे।
1: गुडलक में जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 12 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में अपने पितरों पूर्वजों के नाम से अनाज का दान करिएगा। आपको अपने पितरों का पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 12 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।

0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। आज की गुड लक राशि है मिथुन। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा बेहतर बनी रहेगी।
1: गुड लक में हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव अशुभ पड़ सकता हो, ऐसी स्थितियां हो, तो क्या करेंगे? जो ग्रहण का समय है रात के 9 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच का, इस समय में शिव जी और सूर्य देव के मंत्रों का जप करिएगा। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं या आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री चलकर शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांवड़ यात्री भी शुमार हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो इस कठिन यात्रा को कर रही हैं। वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन महिला कांवड़ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर शहर शहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि महिला कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े।
7: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की ज्योत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने एक कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
8: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल उठाए हैं।
9: क्या क्या कामना है बाबा से?
8: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
10: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर महनार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहाँ तक आए।
9: कितना साल से आ रहे हैं?
10: 10 साल से।
11: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
9: कब कमर उठाई थी?
11: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
7: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
12: मैं आया, मैं पहली बार मानता मानी थी, मेरा मानता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ, बाबा पे जल चढ़ाने के लिए जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
13: पुरुलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
14: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते हैं तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तो मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
7: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं, इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी। साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
4: हर बार हम देखते हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और मूवेबल वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
7: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, ताकि आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे बलिदान के सम्मान से जुड़े दिवस की। यहाँ बात हो रही है स्वतंत्रता दिवस की। दिल्ली के लाल किले के पास 21 स्तूपों की सलामी का रिहर्सल शुरू हो चुका है। 15 अगस्त को 105 mm लाइट फील्ड गन से 52 सेकंड्स में 21 स्तूपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के अलावा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी 21 स्तूपों की सलामी देने की परंपरा रही है। हालांकि ये रिवाज उससे भी पुराना है।
15: देश के लिए बलिदान, संघर्ष और एकता के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ 4 दिन शेष हैं। 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली भी जुटी है। जश्न आजादी के मौके पर भारतीय सेना के तोपों की भी गर्जना सुनाई देने वाली है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस साल भी उसके लिए रिहर्सल शुरू हो चुका है। 2023 से 21 तोपों की सलामी के लिए स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल हो रहा है। सेना की परंपरा के मुताबिक इन तोपों से फायरिंग अभ्यास से पहले उनकी सफाई कर पूरे विधि विधान से पूजा की गई। भारतीय सैन्य संस्कृति में विधि विधान से की जाने वाली इस पूजा को शस्त्र पूजा कहा जाता है। सेना की सेरेमोनियल बैटरी की तरफ से पूरी निष्ठा से निभाई जाने वाली ये रस्म तोपों और शस्त्रों के प्रति सम्मान, सुरक्षा और देश की विजय की कामना के लिए होती है।

0: साल 1982 से कई मोर्चों पर देश की सेवा कर रहे इन तोपों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए गोलों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्वदेशी तोप गोले दागने के बजाय फायरिंग की आवाज पैदा करती है। 105 mm लाइट फील्ड तोप से बहस 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न में 96 घंटे से कम समय बचा है। देश की आजादी से जुड़ा ये वो ऐतिहासिक दिन है जब हर भारतवासी गर्व महसूस करता है। आजादी के आंदोलन के दौरान देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले हर बलिदानी के सम्मान में लाल किले की प्राचीर से भी तिरंगा फहराया जाएगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा दूसरी गणमान्य हस्तियां मौजूद होंगी, जिनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है।
1: इस 15 अगस्त को भारत के आजादी के 80 साल पूरे हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इस मौके पर सेलिब्रेशंस भी और बड़े और व्यापक तौर पर होने वाले हैं, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी डिटेल सुरक्षा जो है वो यहाँ लाल किले पर लगा रखी है। बताया ये जा रहा है कि करीब 25,000 लोग इस बार लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए आएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार 25,000 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा 15,000 तो बस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगी यहाँ पे, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनहोनी या एंटी सोशल एलिमेंट या अराजक तत्व जो है वो इस भीड़ में ना घुस पाए और देश की खुशियों में किसी भी तरह का खलल ना डाल पाए। इसके अलावा जो आप ये कैमरेज देख रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा में जो ये कैमरेज लगे हैं, ये सारे कैमराज जो हैं ये FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं। यानी अगर कोई अराजक तत्व यहाँ भीड़ में घुसने की कोशिश करता है तो उसे इन कैमरों से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी भीड़ से हटा दिया जाएगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा बनाए रखने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी आतंकी घटना में शामिल आतंकी या संदिग्ध तक कम समय में पहुंचने में मदद करेगा। आंख, नाक और जबड़े की बनावट ही किसी तरह की साजिश की राह में रुकावट बनेगी।
2: FRS के अंदर कैमरा है, वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो फेस के फीचर्स को कैप्चर करके जो हमारा डोजियर उससे मैच करता है। तो जितनी पब्लिक एंट्रीज हैं वहाँ पे जो CCTV है उनमें सब पे FRS हमने लगाया है और हमारे जो दिल्ली पुलिस का जो डेटाबेस है क्रिमिनल्स का उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया है।
0: जश्न आजादी के मौके पर अभिज्ञान ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से बनाया गया ये मोबाइल ऐप पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है, जो सिर्फ 35 सेकंड में फिंगरप्रिंट स्कैन करके किसी भी संदिग्ध या अपराधी की पहचान करने में उनकी मदद करेगा।
1: इस 15 अगस्त पे स्पेशल बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी और AI का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस ने डेवलप करवाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान ऐप। ये ऐप ऐसे काम करता है कि देखिए ऐसे रैंडम चेकिंग होती है। इस वक्त हम लाल किले के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे रैंडमली चेकिंग होती है। रैंडमली चेकिंग में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आते हैं। अगर ग्रीन रिजल्ट आया है तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का किसी भी तरीके का कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। वहीं अगर इस तरीके से लाल साइन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके आपराधिक बैकग्राउंड है। सर, कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात ये, इस सर्वर में कितने लोगों का डेटा है और किस तरीके से ये चेकिंग पूरी चलाई जाती है?
3: इस सर्वर में सर पूरे पैन इंडिया का डाटा है। 1,32,00,000 क्रिमिनल का डाटा बेस है, उनके बायोमेट्रिक है। और नेक्स्ट
1: सर, SOP क्या है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा आपको आइडेंटिफाई होता है जिसके खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है या हीनियस क्राइम्स में संलिप्त है और बेल पर बाहर है, तो आपका क्या SOP है? आप लोग कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे?
3: सर, कोई भी क्रिमिनल अगर सामने आता है ऐसा सस्पिशियस लगता है और सिटीजन की सेफ्टी के लिए हमें उसकी प्रॉब्लम क्रिएटर जस्ट लाइक दिखता है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसी प्रोसेस में हम किसी भी इस तरह से रैंडमली किसी सिटीजन को जैसा लगता है सस्पिशियस है बायोमेट्रिक लेते हैं। अगर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलता है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा जो टीम है वो उसको वेरीफाई करती है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं। अगर वो इनकेस ऑफ सेंसिटिविटी है कहीं तो उस पर लीगल एक्शन लेते हैं, अदरवाइज उसको रिलीज कर देते हैं। अगर इसका ग्रीन हिट आता है तो उसको हम उसी वक्त जाने के लिए आदेश
1: यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और थाने ले जाएगा, फिर वहां वेरीफिकेशन।
3: यस यस सर।
0: लाल किले के आसपास के क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए कई पोस्ट और मचान भी बनाए गए हैं, जहां से पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली के जवान तैनात होंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह नेहरू प्लेस मार्केट में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर काफी व्यापक सुरक्षा इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं और यहां पर देख सकते हैं जो कोई भी एंट्री कर रहा है उसको इसी तरीके से चेक इन किया जा रहा है, फिर बाजार में उनको एंट्री दिया जा रहा है और इस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह घेर दिया गया है। पहले इस तरीके की नहीं होती थी, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस है और एक काफी मुख्य प्लेस है दिल्ली का। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट के जरिए सुरक्षा संबंधी निर्देश बताए जा रहे हैं और समय समय पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा पेट्रोलिंग भी यहां पर घूम के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है।
0: साफ है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, अभिज्ञान ऐप जैसी टेक्नोलॉजी के मदद से लाल किले के अलावा दिल्ली के दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है जिसको लांघना किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। दिल्ली से अंशुल सिंह और आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन हुनर ऐसा कि दुनिया सलाम करे। चीन के 12 साल के तीन बच्चों ने जंप रूप में ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे देखकर बड़े बड़े एथलीट भी दंग रह जाएंगे। महज 60 सेकंड्स में 496 सफल जंप, और वो भी इतनी जबरदस्त स्पीड और तालमेल के साथ कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। देखिए इन नन्हे चैंपियंस की रिकॉर्ड तोड़ कहानी।
6: रस्सी घूम रही है, पैर थिरक रहे हैं और रफ्तार इतनी तेज कि आंखें भी धोखा खा जाएं। ये कोई कंप्यूटर एनिमेशन नहीं बल्कि बच्चों का कमाल है। ये तीनों बच्चे सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन इनका कारनामा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है। चीन के चोंगकिंग में इन तीन नन्हे एथलीट्स ने जंप रोप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तीनों के नाम है लेंग हाउरान, ओ जुताओ और जू चेंगसी। तीनों ने 2026 एशियन जंप रोप चैंपियनशिप में सिर्फ 60 सेकंड में 496 सफल जंप लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस चैंपियनशिप में 9 एशियाई देशों के 1160 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तीन नन्हे सितारों की हुई। जंप रोप के इस स्पीड इवेंट में रफ्तार के साथ तीनों का तालमेल भी बेहद खास रहा। एक छोटी सी गलती और रिकॉर्ड हाथ से निकल सकता था, लेकिन महीनों की मेहनत और लगातार प्रैक्टिस ने इन तीनों को चैंपियन बना दिया। इनकी स्कूल टीम पिछले 26 साल से जंप रोप की ट्रेनिंग दे रही है। बच्चे रोज 2 से 3 घंटे और छुट्टियों में 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि प्रैक्टिस करते करते इनकी रस्सियां तक टूट जाती हैं। अब इन नन्हे चैंपियंस का अगला लक्ष्य है अगले साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसके लिए ये अभी से प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और मेहनत अगर बड़े हो तो दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार पांच पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अमावस्या की तिथि जो समर्पित मानी जाती है पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए, सावन में आने वाली इस अमावस्या पर प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे हरियाली अमावस्या की तिथि से जुड़े हुए कुछ खास महाप्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है।

0: सावन में चारों ओर छाई हरियाली, महादेव होंगे प्रसन्न, आएगी खुशहाली। गौरी शंकर की पूजा से होगा कल्याण, अखंड सुहाग का मिलेगा वरदान। पेड़ पौधे खोलेंगे भाग्य के द्वार, धन धान से भर जाएगा घर संसार।
1: जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
0: पितरों की मुक्ति के लिए करें महाप्रयोग, परमेश्वर की कृपा पाने का है ये शुभ संयोग, क्योंकि आ गई हरियाली अमावस्या की शुभ तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश के चलते पेड़ पौधों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसी के चलते सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है।
2: यह तिथि प्रकृति पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, शिव आराधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों के तर्पण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, शनि दोष है, केतु का दोष है या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का दोष है किसी भी तरीके से, तो उसके शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।
0: हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त यानी कल है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करके आप विधाता की कृपा पा सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की रात 1:52 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 अगस्त को रात 11:07 पर होगा। इसीलिए हरियाली अमावस्या की तिथि 12 अगस्त को होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, इसके चलते गौरी योग का निर्माण होगा। जो जातक पितृ कर्म करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त फलदायी रहने वाला है। इस तिथि फल देने वाले वृक्ष लगाने से उत्तम फल प्राप्त होता है।
2: इस दिन मदार अर्क का पौधा लगाना चाहिए, पलाश जिसे ढाक भी कहा जाता है उसको लगाने से चंद्रमा ठीक होता है, आग मदार का लगाने से सूर्य ठीक होता है, खैर लगाने से मंगल ठीक होता है, आम का जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने से बुध ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होते हैं, गुलर का लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शमी का पौधा लगाने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, इसी प्रकार कुश और दुर्वा इनसे राहु और केतु ग्रह मजबूत होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सावन मास का बुधवार होने के साथ साथ शिव योग और कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना सबसे पुण्यकारी माना गया है। धन ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इस दिन सभी सुहागने पूर्ण मनोयोग से शिव और पार्वती की कृपा पाने का जतन करती है। माना जाता है कि ईश्वर और पितरों की कृपा पाने की ये तिथि अमोघ है। तो आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण विधि।
2: हरियाली अमावस्या पर पितरों के मोक्ष का विधान बताया गया शास्त्रों में। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। पीपल एवं बरगद के वृक्ष के नीचे सायंकाल प्रदोष काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा यदि ऐसा करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है।
0: इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन उपवास रखने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के तर्पण की पूजा विधि करें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस तिथि पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि पर विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी दीर्घायु होता है, साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की कृपा के साथ ही ग्रहों की भी शांति हो जाती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर कैसे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि इस दिन दान और पुण्य करने से ना सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।

0: हरियाली अमावस्या पर करें माता पार्वती संग भोलेनाथ की भक्ति। पितरों के तर्पण और पिंडदान से पितरों की होगी मुक्ति। हरियाली अमावस्या, जब हरियाली की चादर ओढ़ती है धरती, पेड़ पौधों के श्रृंगार से सज जाती है प्रकृति। मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
1: पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करना चाहिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा, विशेष करके पार्थिव पूजन करके, पार्थिव बना करके उसका पूजन कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दिन भर व्रत रहिए, पितरों के दिन में पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में ही, पति पत्नी यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर के भगवान शिव की विशेष पूजा करें। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त किया कर्मकांड चार चरणों में किया जाता है। चार चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना शामिल है। विश्वदेव, पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना है। पिंडदान, दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करें। तर्पण, तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोज कराना, चौथा चरण, पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होता है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं हरियाली अमावस्या के खास उपाय।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभिष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, पंचामृत आदि वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और इस दिन उनके किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है।
0: हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी के अभिषेक के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। पांच तरह की मिठाइयों को अलग अलग पांच पीपल के पत्तों पर रखें। ओम सर्वे भयो पितृ देवो भयो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दे लेकिन स्वयं ना खाए। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल रखें। इसमें एक सूखा नारियल और 11 रुपए बांधकर 21 बार घुमाएं। इसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ न लगाए। इसके बाद एक गिलास में जल और गुलाब का फूल रखें। साथ में इत्र और सफेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखे। पितरों से अपनी गलती के लिए माफी मांगे। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करें, तो वो आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। चलिए आपको एक और महा उपाय बताते हैं, जो पितृ दोष की पीड़ा का निवारण कर सकता है। हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रख कर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं, इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका घर सदैव फलता फूलता रहेगा। तो सावन के पावन महीने में आप भी कीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के जतन, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण।
2: तो चलिए अब आपको बताते हैं सावन की अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दावा किया जा रहा है कि ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में रात होने से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये ग्रहण खास होता है।

0: हरियाली अमावस्या की तिथि पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। सूतक के नियम भी नहीं होंगे लागू, विधिवत होगी पूजा अर्चना। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगी सूर्य ग्रहण की घटना। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को विशेष खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कहीं भी हो, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर पड़ता है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर।
0: जानकार बताते हैं कि जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां उस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होता, इसीलिए 12 अगस्त को मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से ही की जा सकेंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल पत्र अर्पण, दान पुण्य, पितरों के तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात्रि 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:16 पर होगा। इस ग्रहण का समापन 13 अगस्त को प्रातः 1:27 पर होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है, खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को यह खग्रास सूर्य ग्रहण विश्व के कई जगहों से दिखाई देगा और इसका असर भी कई जगहों पर होगा, परंतु भारत भूमि से दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
0: दावा किया जा रहा है कि ये ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में लोग ग्रहण के कारण कभी भी स्नान किए बिना दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है। इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण की घटना का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए खगोल विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि इसी पावन माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में चंद्र ग्रहण की भी छाया है। तो आप सावन में महादेव की भक्ति कीजिए, जिनके अधीन ही सारे ग्रह हैं। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: Good News Today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री चलकर शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांवड़ यात्री भी शुमार हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो इस कठिन यात्रा को कर रही हैं। वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन महिला कांवड़ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर शहर शहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि महिला कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े।

0: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की ज्योत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने एक कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
1: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल उठाएंगे।
2: क्या क्या कामना है बाबा से?
1: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
3: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयबपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहां तक आए।
2: कितना साल से आ रहे हैं?
3: 10 साल से।
4: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
2: कब कमर उठाई थी?
4: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हाँ, हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
0: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल है, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
5: मैं आया, मैं पहली बार मानता मानी थी, मेरा मानता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ, बाबा पे जल चढ़ाने के लिए जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
6: पुरलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
7: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तो मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
0: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी, साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
8: हर बार हम देखते हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और मूवेबल वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं या जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
0: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। ताकि आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: कार मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और इसके बाद पुलिस ने वहां जमकर डंडे बरसाए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इंदौर के बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच में फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस ने वहां पर जमकर डंडे बरसाए। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस के जवान एक दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों को बाहर निकालते हुए डंडे बरसा रहे हैं। लाठी चार्ज के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमान ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, फिर पुलिस ने कुछ अलग ही बर्ताव दिखाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म

0: बावजूद भी मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के जवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने वहां पर लाठियों की बरसात कर दी। वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि जो दिखता है वो वाकई सच नहीं होता है। दावे की सच्चाई जानने के लिए पाक्षक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये कन्नड़ भाषा जैसा लगा। नेपाल में कन्नड़ नहीं बोली जाती। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे को लेकर आशंका भी हुई। साथ ही साथ वीडियो में कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी देखा जा सकता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि वीडियो पुराना है, हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये वीडियो हाल फिलहाल का होता तो अपने आप में कोई बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई जानकारी जरूर छपी होती। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नेपाल से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो 26 मार्च 2020 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां देश भर में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाया। सर्च के दौरान हमें 26 मार्च 2020 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि कर्नाटक के बेलगावी में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वहां मौजूद कई लोगों पर डंडे बरसाए थे। एक समाचार एजेंसी ने भी अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को 26 मार्च 2020 को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये घटना एक मस्जिद के बाहर की है, जहां लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का नहीं बल्कि कर्नाटक के बेलगावी का है। साल 2020 का ये वीडियो कोरोना महामारी के समय का है, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ यूजर्स उस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंदौर के व्यस्त बाजार का, जहां पुलिस और शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि इंदौर में पुलिस को चकमा देने के लिए चोर ने खतरनाक करतब दिखाए। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति का पीछा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए सड़क पर मौजूद वाहनों को पार करता है और एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बस से कूदकर सड़क किनारे लगी एक होर्डिंग पर चढ़ जाता है। वीडियो को मध्य प्रदेश के इंदौर का बताते हुए दावा किया जा रहा है कि एक शातिर चोर ने पुलिस को खूब छकाया। पोस्ट में बताया गया है कि इंदौर के व्यस्त बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही है। शख्स एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बस से कूदकर सड़क किनारे लगी होर्डिंग पर चढ़ जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो है, जहां पर एक चोर ने पुलिस को खूब छकाया और आखिरकार घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी चोर को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए

0: फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे वायरल वीडियो के असली होने पर हमें संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर पुलिसकर्मियों और भाग रहे व्यक्ति के शारीरिक संतुलन, दौड़ने की गति वास्तविक नहीं लगती है। व्यक्ति का चलती बस की छत पर चढ़ना और उछलकर होर्डिंग के टॉप पर पहुंचना भी असली नहीं लगता है। इसके अलावा भाग रहा व्यक्ति सड़क किनारे लगी जिस होर्डिंग पर चढ़ता है उस पर लिखे गए कई टेक्स्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर ये इंदौर का वीडियो होता तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र जरूर होता। लेकिन हमें कहीं भी इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक एक्स यूजर के अकाउंट पर 8 अगस्त को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पोस्ट में बताया गया है कि वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में 99.8% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। वायरल हुए वीडियो को हमने एक और एआई डिटेक्शन टूल डी फेकोमीटर पर भी जांचा। इस दौरान टूल के 6 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो के एआई जनरेटेड होने की उच्च संभावना जताई। इसके अलावा हमने इंदौर में हाल के दिनों में हुई ऐसी किसी घटना के बारे में भी सर्च किया जिसमें पुलिसकर्मियों के किसी चोर का पीछा करने, उसके बस की छत पर चढ़ने और फिर होर्डिंग पर पहुंचने जैसी घटना का जिक्र हो, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। यह वीडियो एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: केरल में हालिया आई बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ दिखाया जा रहा है। यूजर्स इसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: केरला में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। केरल की बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसी भाषा लग रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो केरल का नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला, जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिलबोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिलबोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहराह ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: बेटियां जब अपने सपनों को पूरा करती हैं तो माता पिता के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात शायद ही कोई हो। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक ऐसा ही प्यारा पल लोगों का दिल जीत रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेटी ने पहली बार अकेले विमान उड़ाकर अपने जीवन का एक बड़ा सपना पूरा किया। अपनी इस खास उपलब्धि को उसने अपने पिता के नाम किया और सिर्फ 2 शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने अपने पापा को थैंक्स डैड कहा। बताया जा रहा है कि ये खास का है जहां बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से जब बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की तो उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चों के साथ कार की सफाई करता नजर आया। माहौल बिल्कुल सामान्य और प्यारा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने ऐसी मदद कर दी कि पिता के होश उड़ गए। वीडियो में छोटी बच्ची घर के बाहर पानी का पाइप हाथ में लिए खड़ी नजर आई। कार का फ्यूल टैंक खुला हुआ था। बच्ची निश्चल भाव से पाइप को टैंक के मुँह में डालकर पानी भरने लगी। वो खुशी खुशी पापा पापा चिल्लाती है ताकि पिता उसकी मदद देख सके। पीछे की तरफ पिता पूल साफ कर रहा था। जब वो मुड़ता है और नजारा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चीखता हुआ दौड़ता है, पाइप छीन लेता है, लेकिन तब तक काफी पानी फ्यूल टैंक में जा चुका होता है।
6: मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
5: एक माँ और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ किचन में रोटी बेल रही है, तभी वहाँ उसकी बेटी पहुँचती है और कहती है मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए। माँ एक रोटी निकाल कर दे देती है और कहती है कि पापा से पूछ कर बताना कि सब्जी कैसे बनी है।
7: पापा से पूछ कर सब्जी कैसे बनी है।
6: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते हो।
5: उसके बाद बेटी जवाब देती है कि पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो। यूजर्स बच्ची के इस मासूमियत भरी जवाब पर जमकर अपना प्यार लौटा रहे हैं।
6: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते।
8: ये आंटी अराउंड मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से चलती हुई आ रही है।
5: बारिश से जलमग्न दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी सी मदद का बड़ा दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक बाइकर ने पानी भरी सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और उन्हें पीछे बिठाकर सुरक्षित पार कराया। वीडियो में दिखता है कि जैसे बाइकर की नजर उस महिला पर पड़ती है और उसके पास रुक जाता है, फिर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने में मदद करता है और उसे पानी से भरे रास्ते से होते हुए ले जाता है।
8: पानी में बहुत स्लो स्लो ये भाई मिला, बहुत बढ़िया लगा मेरे को देख के। मैं सोच रहा था कि कौन इनकी हेल्प करेगा। बढ़िया
5: बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं बल्कि डॉग ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं। ये नजारा इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों ही मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से इतने साफ लहजे में हिंदी बोल रहा है कि लोग देखते ही रह गए। भारत के प्रति विदेशी बुजुर्ग की दीवानगी और बात करने का अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
9: सारी किताबें जर्मन में हैं और ये भिन्न भिन्न देशों के बारे में।
5: इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जर्मन पर्यटक सिर्फ किताबी या बनावटी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके बोलने के तरीके में एक देसी टच साफ झलकता है। शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और माँ को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है। उसके चेहरे पर माँ की कमी का दर्द साफ नजर आता है। इस भावुक पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है वो बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 93 साल है और 71 साल इनके शादी के हो गए हैं, लेकिन इस दौरान इनका प्यार उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी जवां होता जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंचती है और उत्साहित होकर पूछती है इस ड्रेस में वो कैसे लग रही है। पति चौंक कर पूछता है क्या, पत्नी फिर बोलती है मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद पति दरवाजा खोल कर अपनी पत्नी को देखता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो ये दिखाता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब पति और पत्नी के बीच तालमेल बेहतर हो। कभी कभी किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश, किसी के लिए कही गई अच्छी बात या फिर अचानक मिला कोई प्यारा सा सरप्राइज भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक मेले या उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थीं और आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके लिए एक यादगार पल आने वाला है। इसी दौरान पास में मौजूद एक युवा कलाकार की नज़र महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी। उसने महिला अफसर का एक पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया और बिना किसी को परेशान किए उनका स्केच बनाने लगा। कलाकार काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। वो उनके चेहरे की बारीकियों को कागज पर उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। सबसे खास बात ये थी कि महिला अफसर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे स्केच पूरा हो गया। कलाकार ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उस पर एक प्यारा सा नोट भी लिखा। इसके बाद उसने अपनी स्केच बुक उठाई और सीधे महिला पुलिस अधिकारी के पास पहुंच गया। जब कलाकार ने महिला अफसर को उनका पोर्ट्रेट दिखाया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी ड्यूटी के दौरान उनका इतना खूबसूरत स्केच बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर अपनी तस्वीर देखी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर आई खुशी देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि छोटा सा सरप्राइज उन्हें सच में पसंद आया। इन दिनों सामने आए हाथियों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नन्ना हाथी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जर की केबल में फंस जाता है। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता नजर आता है। उसके बाद उसकी माँ जो करती है उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि हाथी का बच्चा ईवी चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां मौजूद चार्जर की केबल किसी तरह उसके शरीर में उलझ जाती है। बच्चा केबल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो बेचैनी में इधर उधर हिलता है और अपनी माँ की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। बच्चे को परेशानी में देखकर हथिनी तुरंत उसके पास पहुँचती है। माँ अपने बच्चे को चारों तरफ से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस चीज में फंसा हुआ है। इसके बाद वो बिना ज्यादा समय गवाए चार्जर की तरफ बढ़ती है। फिर आता है वीडियो का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा। हथिनी अपने सिर और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए चार्जर को जोरदार धक्का देती है। उसका एक ही धक्का इतना जोरदार होता है कि चार्जर नीचे गिर जाता है और बच्चे के लिए रास्ता साफ हो जाता है। बच्चा भी जैसे ही आजाद होता है राहत महसूस करता दिखाई देता है। माँ भी उसके पास बनी रहती है। हथिनी और उसके बच्चे की ये पूरी घटना चार्जिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा, घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आए। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुँचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति। निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज। शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव। राखियां सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू। 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा। पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका। पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर। पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।
0: अमावस्या की तिथि जो समर्पित मानी जाती है पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए। सावन में आने वाली इस अमावस्या पर प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे हरियाली अमावस्या की तिथि से जुड़े हुए कुछ खास महाप्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है।

0: सावन में चारों ओर छाई हरियाली, महादेव होंगे प्रसन्न, आएगी खुशहाली। गौरी शंकर की पूजा से होगा कल्याण, अखंड सुहाग का मिलेगा वरदान। पेड़ पौधे खोलेंगे भाग्य के द्वार, धन धान से भर जाएगा घर संसार।
1: जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
0: पितरों की मुक्ति के लिए करें महाप्रयोग, परमेश्वर की कृपा पाने का है ये शुभ संयोग, क्योंकि आ गई हरियाली अमावस्या की शुभ तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश के चलते पेड़ पौधों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसी के चलते सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है।
2: यह तिथि प्रकृति पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, शिव आराधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों के तर्पण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, शनि दोष है, केतु का दोष है या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का दोष है किसी भी तरीके से, तो उसके शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।
0: हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त यानी कल है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करके आप विधाता की कृपा पा सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की रात 1:52 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 अगस्त को रात 11:07 पर होगा। इसीलिए हरियाली अमावस्या की तिथि 12 अगस्त को होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, इसके चलते गौरी योग का निर्माण होगा। जो जातक पितृ कर्म करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त फलदायी रहने वाला है। इस तिथि फल देने वाले वृक्ष लगाने से उत्तम फल प्राप्त होता है।
2: इस दिन मदार अर्घ का पौधा लगाना चाहिए, पलाश जिसे ढाक भी कहा जाता है उसको लगाने से चंद्रमा ठीक होता है, आग मदार का लगाने से सूर्य ठीक होता है, खैर लगाने से मंगल ठीक होता है, आम का जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने से बुध ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होते हैं, गुलर का लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शमी का पौधा लगाने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, इसी प्रकार कुश और दुर्वा इनसे राहु और केतु ग्रह मजबूत होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सावन मास का बुधवार होने के साथ साथ शिव योग और कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना सबसे पुण्यकारी माना गया है। धन ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इस दिन सभी सुहागने पूर्ण मनोयोग से शिव और पार्वती की कृपा पाने का जतन करती है। माना जाता है कि ईश्वर और पितरों की कृपा पाने की यह तिथि अमोघ है। तो आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण विधि।
2: हरियाली अमावस्या पर पितरों के मोक्ष का विधान बताया गया शास्त्रों में। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। पीपल एवं बरगद के वृक्ष के नीचे सायंकाल प्रदोष काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा यदि ऐसा करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है।
0: इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन उपवास रखने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के तर्पण की पूजा विधि करें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस तिथि पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि पर विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी दीर्घायु होता है, साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की कृपा के साथ ही ग्रहों की भी शांति हो जाती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर कैसे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि इस दिन दान और पुण्य करने से ना सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।

0: हरियाली अमावस्या पर करें माता पार्वती संग भोलेनाथ की भक्ति। पितरों के तर्पण और पिंडदान से पितरों की होगी मुक्ति। हरियाली अमावस्या, जब हरियाली की चादर ओढ़ती है धरती, पेड़ पौधों के श्रृंगार से सज जाती है प्रकृति। मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
1: पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करना चाहिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा, विशेष करके पार्थिव पूजन करके, पार्थिव बना करके उसका पूजन कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दिन भर व्रत रहिए, पितरों के दिन में पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में ही, पति पत्नी यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर के भगवान शिव की विशेष पूजा करें। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त किया कर्मकांड चार चरणों में किया जाता है। चार चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना शामिल है। विश्वदेव, पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना है। पिंडदान, दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करें। तर्पण, तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोज कराना, चौथा चरण, पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होता है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं हरियाली अमावस्या के खास उपाय।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभीष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, पंचामृत आदि वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और इस दिन उनके किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है।
0: हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी के अभिषेक के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। पांच तरह की मिठाइयों को अलग अलग पांच पीपल के पत्तों पर रखें। ओम सर्वे भयो पितृ देवो भयो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दे लेकिन स्वयं ना खाए। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल रखें। इसमें एक सूखा नारियल और 11 रुपए बांधकर 21 बार घुमाए। इसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ न लगाए। इसके बाद एक गिलास में जल और गुलाब का फूल रखें। साथ में इत्र और सफेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखें। पितरों से अपनी गलती के लिए माफी मांगे। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करें तो वो आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। चलिए आपको एक और महा उपाय बताते हैं जो पितृ दोष की पीड़ा का निवारण कर सकता है। हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रख कर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका घर सदैव फलता फूलता रहेगा। तो सावन के पावन महीने में आप भी कीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के जतन, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण।
2: तो चलिए अब आपको बताते हैं सावन की अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दावा किया जा रहा है कि ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में रात होने से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये ग्रहण खास होता है।

0: हरियाली अमावस्या की तिथि पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। सूतक के नियम भी नहीं होंगे लागू, विधिवत होगी पूजा अर्चना। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगी सूर्य ग्रहण की घटना। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को विशेष खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कहीं भी हो, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर पड़ता है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर।
0: जानकार बताते हैं कि जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां उस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होता, इसीलिए 12 अगस्त को मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से ही की जा सकेंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल पत्र अर्पण, दान पुण्य, पितरों के तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात्रि 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:16 पर होगा। इस ग्रहण का समापन 13 अगस्त को प्रातः 1:27 पर होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है, खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को यह खग्रास सूर्य ग्रहण विश्व के कई जगहों से दिखाई देगा और इसका असर भी कई जगहों पर होगा, परंतु भारत भूमि से दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
0: दावा किया जा रहा है कि ये ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में लोग ग्रहण के कारण कभी भी स्नान किए बिना दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है। इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण की घटना का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए खगोल विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि इसी पावन माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में चंद्र ग्रहण की भी छाया है। तो आप सावन में महादेव की भक्ति कीजिए, जिनके अधीन ही सारे ग्रह हैं। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री चलकर शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांवड़ यात्री भी शुमार हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो इस कठिन यात्रा को कर रही हैं। वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन महिला कांवड़ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर शहर शहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि महिला कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े।
11: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की ज्योत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने एक कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
12: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल उठाएंगे।
13: क्या क्या कामना है बाबा से?
12: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
14: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर महनार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहाँ तक आए।
13: कितना साल से आ रहे हैं?
14: 10 साल से।
15: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
13: कब कमर उठाई थी?
15: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हाँ, हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
11: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
9: मैं आया, मैं पहली बार मानता मानी थी, मेरा मानता है पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
16: पुरलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
17: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते हैं तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तब मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
11: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी, साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
18: हर बार हम देख रहे हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
11: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, ताकि आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव, राखियां सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर, सैर पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
19: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और इसके बाद पुलिस ने वहां जमकर डंडे बरसाए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इंदौर के बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच में फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
19: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वहां पर जमकर डंडे बरसाए। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
20: लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस के जवान एक दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों को बाहर निकालते हुए डंडे बरसा रहे हैं। लाठी चार्ज के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमान ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, फिर पुलिस ने कुछ अलग ही बर्ताव दिखाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
19: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है।

0: पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के जवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने वहां पर लाठियों की बरसात कर दी। वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि जो दिखता है वो वाकई सच नहीं होता है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये कन्नड़ भाषा जैसा लगा। नेपाल में कन्नड़ नहीं बोली जाती। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे को लेकर आशंका भी हुई। साथ ही साथ वीडियो में कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी देखा जा सकता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि वीडियो पुराना है, हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये वीडियो हाल फिलहाल का होता तो अपने आप में कोई बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई जानकारी जरूर छपी होती। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नेपाल से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो 26 मार्च 2020 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां देश भर में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाया। सर्च के दौरान हमें 26 मार्च 2020 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि कर्नाटक के बेलगावी में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वहां मौजूद कई लोगों पर डंडे बरसाए थे। एक समाचार एजेंसी ने भी अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को 26 मार्च 2020 को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये घटना एक मस्जिद के बाहर की है, जहां लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का नहीं बल्कि कर्नाटक के बेलगावी का है। साल 2020 का ये वीडियो कोरोना महामारी के समय का है, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ यूजर्स उस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंदौर के व्यस्त बाजार का, जहां पुलिस और शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि इंदौर में पुलिस को चकमा देने के लिए चोर ने खतरनाक करतब दिखाए। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति का पीछा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए सड़क पर मौजूद वाहनों को पार करता है और एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बस से कूदकर सड़क किनारे लगी एक होर्डिंग पर चढ़ जाता है। वीडियो को मध्य प्रदेश के इंदौर का बताते हुए दावा किया जा रहा है कि एक शातिर चोर ने पुलिस को खूब छकाया। पोस्ट में बताया गया है कि इंदौर के व्यस्त बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही है। शख्स एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बस से कूदकर सड़क किनारे लगी होर्डिंग पर चढ़ जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो है, जहां पर एक चोर ने पुलिस को खूब छकाया और आखिरकार घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी चोर को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा।

0: इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे वायरल वीडियो के असली होने पर हमें संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर पुलिस कर्मियों और भाग रहे व्यक्ति के शारीरिक संतुलन, दौड़ने की गति वास्तविक नहीं लगती है। व्यक्ति का चलती बस की छत पर चढ़ना और उछलकर होर्डिंग के टॉप पर पहुंचना भी असली नहीं लगता है। इसके अलावा भाग रहा व्यक्ति सड़क किनारे लगी जिस होर्डिंग पर चढ़ता है उस पर लिखे गए कई टेक्स्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर ये इंदौर का वीडियो होता तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र जरूर होता, लेकिन हमें कहीं भी इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक एक्स यूजर के अकाउंट पर 8 अगस्त को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पोस्ट में बताया गया है कि वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में 99.8% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। वायरल हुए वीडियो को हमने एक और एआई डिटेक्शन टूल डी फेकोमीटर पर भी जांचा। इस दौरान टूल के 6 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो के एआई जनरेटेड होने की उच्च संभावना जताई। इसके अलावा हमने इंदौर में हाल के दिनों में हुई ऐसी किसी घटना के बारे में भी सर्च किया जिसमें पुलिसकर्मियों के किसी चोर का पीछा करने, उसके बस की छत पर चढ़ने और फिर होर्डिंग पर पहुंचने जैसी घटना का जिक्र हो, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। यह वीडियो एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: केरल में हालिया आई बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ दिखाया जा रहा है। यूजर्स उसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: केरला में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। केरल की बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसी भाषा लग रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो केरल का नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला, जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिलबोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिलबोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहराह ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: बेटियां जब अपने सपनों को पूरा करती हैं तो माता पिता के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात शायद ही कोई हो। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक ऐसा ही प्यारा पल लोगों का दिल जीत रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेटी ने पहली बार अकेले विमान उड़ाकर अपने जीवन का एक बड़ा सपना पूरा किया। अपनी इस खास उपलब्धि को उसने अपने पिता के नाम किया और सिर्फ 2 शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने अपने पापा को थैंक्स डैड कहा। बताया जा रहा है कि ये खास का है जहां बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से जब बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की तो उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चों के साथ कार की सफाई करता नजर आया। माहौल बिल्कुल सामान्य और प्यारा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने ऐसी मदद कर दी कि पिता के होश उड़ गए। वीडियो में छोटी बच्ची घर के बाहर पानी का पाइप हाथ में लिए खड़ी नजर आई। कार का फ्यूल टैंक खुला हुआ था। बच्ची निश्चल भाव से पाइप को टैंक के मुँह में डालकर पानी भरने लगी। वो खुशी खुशी पापा पापा चिल्लाती है ताकि पिता उसकी मदद देख सके। पीछे की तरफ पिता पूल साफ कर रहा था। जब वो मुड़ता है और नजारा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चीखता हुआ दौड़ता है, पाइप छीन लेता है, लेकिन तब तक काफी पानी फ्यूल टैंक में जा चुका होता है।
6: मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
5: एक माँ और उसकी बेटी की मजेदार बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ किचन में रोटी बेल रही है, तभी वहाँ उसकी बेटी पहुँचती है और कहती है मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए। माँ एक रोटी निकाल कर दे देती है और कहती है कि पापा से पूछकर बताना कि सब्जी कैसे बनी है।
7: पापा से पूछकर सब्जी कैसे बनी
6: है। पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई की बहाने ढूंढते हो।
5: उसके बाद बेटी जवाब देती है कि पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो। यूजर्स बच्ची के इस मासूमियत भरी जवाब पर जमकर अपना प्यार लौटा रहे हैं।
6: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते हो।
8: ये आंटी अराउंड मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से चलती हुई आ रही है।
5: बारिश से जलमग्न दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी सी मदद का बड़ा दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक बाइकर ने पानी भरी सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और उन्हें पीछे बिठाकर सुरक्षित पार कराया। वीडियो में दिखता है कि जैसे बाइकर की नजर उस महिला पर पड़ती है और उसके पास रुक जाता है, फिर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने में मदद करता है और उसे पानी से भरे रास्ते से होते हुए ले जाता है।
8: पानी में बहुत स्लो स्लो ये भाई मिला, बहुत बढ़िया लगा मेरे को देख के। मैं सोच रहा था कि कौन इनकी हेल्प करेगा। बढ़िया है।
5: बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं बल्कि डॉग ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं। ये नजारा इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों की मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से इतने साफ लहजे में हिंदी बोल रहा है कि लोग देखते ही रह गए। भारत के प्रति विदेशी बुजुर्ग की दीवानगी और बात करने का अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
9: सारी किताबें जर्मन में हैं और ये भिन्न भिन्न देशों के बारे में।
5: इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि जर्मन पर्यटक सिर्फ किताबी या बनावटी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके बोलने के तरीके में एक देसी टच साफ झलकता है। शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और माँ को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है। उसके चेहरे पर माँ की कमी का दर्द साफ नजर आता है। इस भावुक पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, वो बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 93 साल है और 71 साल इनके शादी के हो गए हैं, लेकिन इस दौरान इनका प्यार उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी जवां होता जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंचती है और उत्साहित होकर पूछती है, इस ड्रेस में वो कैसे लग रही है। पति चौंक कर पूछता है, क्या? पत्नी फिर बोलती है, मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद पति दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी को देखता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो ये दिखाता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब पति और पत्नी के बीच तालमेल बेहतर हो। कभी कभी किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश, किसी के लिए कही गई अच्छी बात या फिर अचानक मिला कोई प्यारा सा सरप्राइज भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक मेले या उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थीं और आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके लिए एक यादगार पल आने वाला है। इसी दौरान पास में मौजूद एक युवा कलाकार की नजर महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी। उसने महिला अफसर का एक पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया और बिना किसी को परेशान किए उनका स्केच बनाने लगा। कलाकार काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। वो उनके चेहरे की बारीकियों को कागज पर उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। सबसे खास बात ये थी कि महिला अफसर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे स्केच पूरा हो गया। कलाकार ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उस पर एक प्यारा सा नोट भी लिखा। इसके बाद उसने अपनी स्केच बुक उठाई और सीधे महिला पुलिस अधिकारी के पास पहुंच गया। जब कलाकार ने महिला अफसर को उनका पोर्ट्रेट दिखाया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी ड्यूटी के दौरान उनका इतना खूबसूरत स्केच बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर अपनी तस्वीर देखी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर आई खुशी देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि छोटा सा सरप्राइज उन्हें सच में पसंद आया। इंद्र सामने आए हाथियों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नन्ना हाथी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जर की केबल में फंस जाता है। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता नजर आता है। उसके बाद उसकी माँ जो करती है उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि हाथी का बच्चा ईवी चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां मौजूद चार्जर की केबल किसी तरह उसके शरीर में उलझ जाती है। बच्चा केबल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो बेचैनी में इधर उधर हिलता है और अपनी माँ की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। बच्चे को परेशानी में देखकर हथिनी तुरंत उसके पास पहुँचती है। माँ अपने बच्चे को चारों तरफ से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस चीज में फंसा हुआ है। इसके बाद वो बिना ज्यादा समय गवाए चार्जर की तरफ बढ़ती है। फिर आता है वीडियो का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा। हथिनी अपने सिर और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए चार्जर को जोरदार धक्का देती है। उसका एक ही धक्का इतना जोरदार होता है कि चार्जर नीचे गिर जाता है और बच्चे के लिए रास्ता साफ हो जाता है। बच्चा भी जैसे ही आजाद होता है राहत महसूस करता दिखाई देता है। माँ भी उसके पास बनी रहती है। हथिनी और उसके बच्चे की पूरी घटना चार्जिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
10: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा, घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आएं। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुंचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठमांडू धाम पहुंचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए तो अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303400992 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।
0: अमावस्या की तिथि जो समर्पित मानी जाती है पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए। सावन में आने वाली इस अमावस्या पर प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे हरियाली अमावस्या की तिथि से जुड़े हुए कुछ खास महाप्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है।

0: सावन में चारों ओर छाई हरियाली, महादेव होंगे प्रसन्न, आएगी खुशहाली। गौरी शंकर की पूजा से होगा कल्याण, अखंड सुहाग का मिलेगा वरदान। पेड़ पौधे खोलेंगे भाग्य के द्वार, धन धान से भर जाएगा घर संसार।
1: जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
0: पितरों की मुक्ति के लिए करें महाप्रयोग, परमेश्वर की कृपा पाने का है ये शुभ संयोग, क्योंकि आ गई हरियाली अमावस्या की शुभ तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश के चलते पेड़ पौधों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसी के चलते सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है।
2: यह तिथि प्रकृति पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, शिव आराधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों के तर्पण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, शनि दोष है, केतु का दोष है या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का दोष है किसी भी तरीके से, तो उसके शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।
0: हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त यानी कल है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करके आप विधाता की कृपा पा सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की रात 1:52 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 अगस्त को रात 11:07 पर होगा। इसीलिए हरियाली अमावस्या की तिथि 12 अगस्त को होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, इसके चलते गौरी योग का निर्माण होगा। जो जातक पितृ कर्म करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त फलदायी रहने वाला है। इस तिथि फल देने वाले वृक्ष लगाने से उत्तम फल प्राप्त होता है।
2: इस दिन मदार अर्घ का पौधा लगाना चाहिए, पलाश जिसे ढाक भी कहा जाता है उसको लगाने से चंद्रमा ठीक होता है, आग मदार का लगाने से सूर्य ठीक होता है, खैर लगाने से मंगल ठीक होता है, आम का जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने से बुध ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होते हैं, गुलर का लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शमी का पौधा लगाने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, इसी प्रकार कुश और दुर्वा इनसे राहु और केतु ग्रह मजबूत होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सावन मास का बुधवार होने के साथ साथ शिव योग और कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना सबसे पुण्यकारी माना गया है। धन ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इस दिन सभी सुहागने पूर्ण मनोयोग से शिव और पार्वती की कृपा पाने का जतन करती है। माना जाता है कि ईश्वर और पितरों की कृपा पाने की ये तिथि अमोघ है। तो आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण विधि।
2: हरियाली अमावस्या पर पितरों के मोक्ष का विधान बताया गया शास्त्रों में। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। पीपल एवं बरगद के वृक्ष के नीचे सायंकाल प्रदोष काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा यदि ऐसा करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है।
0: इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन उपवास रखने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के तर्पण की पूजा विधि करें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस तिथि पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि पर विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी दीर्घायु होता है, साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की कृपा के साथ ही ग्रहों की भी शांति हो जाती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर कैसे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि इस दिन दान और पुण्य करने से ना सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।

0: हरियाली अमावस्या पर करें माता पार्वती संग भोलेनाथ की भक्ति। पितरों के तर्पण और पिंडदान से पितरों की होगी मुक्ति। हरियाली अमावस्या, जब हरियाली की चादर ओढ़ती है धरती, पेड़ पौधों के श्रृंगार से सज जाती है प्रकृति। मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
1: पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करना चाहिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा, विशेष करके पार्थिव पूजन करके, पार्थिव बना करके उसका पूजन कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दिन भर व्रत रहिए, पितरों के दिन में पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में ही, पति पत्नी यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर के भगवान शिव की विशेष पूजा करें। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त किया कर्मकांड चार चरणों में किया जाता है। चार चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना शामिल है। विश्वदेव, पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना है। पिंडदान, दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करें। तर्पण, तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोज कराना, चौथा चरण, पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होता है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं हरियाली अमावस्या के खास उपाय।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभिष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, पंचामृत आदि वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और इस दिन उनके किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है।
0: हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी के अभिषेक के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। पांच तरह की मिठाइयों को अलग अलग पांच पीपल के पत्तों पर रखें। ओम सर्वे भयो पितृ देवो भयो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों से अप

0: अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दे, लेकिन स्वयं ना खाए। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल रखें। इसमें एक सूखा नारियल और 11 रुपए बांधकर 21 बार घुमाएं। इसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ न लगाए। इसके बाद एक गिलास में जल और गुलाब का फूल रखें। साथ में इत्र और सफेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखें। पितरों से अपनी गलती के लिए माफी मांगे। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करें, तो वो आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। चलिए आपको एक और महा उपाय बताते हैं जो पितृ दोष की पीड़ा का निवारण कर सकता है। हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका घर सदैव फलता फूलता रहेगा। तो सावन के पावन महीने में आप भी कीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के जतन, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण।
1: तो चलिए अब आपको बताते हैं सावन की अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दावा किया जा रहा है कि ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में रात होने से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये ग्रहण खास होता है।

0: हरियाली अमावस्या की तिथि पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। सूतक के नियम भी नहीं होंगे लागू, विधिवत होगी पूजा अर्चना। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगी सूर्य ग्रहण की घटना। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को विशेष खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कहीं भी हो, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर पड़ता है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर।
0: जानकार बताते हैं कि जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां उस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होता, इसीलिए 12 अगस्त को मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से ही की जा सकेंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण, दान पुण्य, पितरों के तर्पण और अन्य

0: धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात्रि 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:16 पर होगा। इस ग्रहण का समापन 13 अगस्त को प्रातः 1:27 पर होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है। खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को। यह खग्रास सूर्य ग्रहण विश्व के कई जगहों से दिखाई देगा और इसका असर भी कई जगहों पर होगा, परंतु भारत भूमि से दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
0: दावा किया जा रहा है कि ये ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में लोग ग्रहण के कारण कभी भी स्नान किए बिना दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है। पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है। इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण की घटना का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए खगोल विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि इसी पावन माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में चंद्र ग्रहण की भी छाया है। तो आप सावन में महादेव की भक्ति कीजिए, जिनके अधीन ही सारे ग्रह हैं। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री चलकर शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांवड़ यात्री भी शुमार हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो इस कठिन यात्रा को कर रही हैं। वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन महिला कांवड़ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर शहर शहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं ताकि महिला कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े।
6: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की जोत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने एक कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
7: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से जल उठाए हैं।
8: क्या क्या कामना है बाबा से?
7: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
9: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहाँ तक आए।
8: कितना साल से आ रहे हैं?
9: 10 साल से।
10: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
8: कब कमर उठाई थी?
10: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हाँ, हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
6: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
11: मैं आया, मैं पहली बार मनता मानी थी, मेरा मनता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
12: पुरुलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
13: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते हैं तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते हैं तब मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
6: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी, साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
14: हर बार हम देखते हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और मूवेबल वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर

0: मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
1: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, ताकि आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय। गुड न्यूज टुडे
2: इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और इसके बाद पुलिस ने वहां जमकर डंडे बरसाए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इंदौर के बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच में फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस ने वहां पर जमकर डंडे बरसाए। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
1: लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस के जवान एक दरवाजे के पास

निकालते हुए डंडे बरसा रहे हैं। लाठी चार्ज के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमान ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, फिर पुलिस ने कुछ अलग ही बर्ताव दिखाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर

0: वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस के जवान लोगों पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के जवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने वहां पर लाठियों की बरसात कर दी। वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि जो दिखता है वो वाकई सच नहीं होता है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये कन्नड़ भाषा जैसा लगा। नेपाल में कन्नड़ नहीं बोली जाती। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे को लेकर आशंका भी हुई। साथ ही साथ वीडियो में कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी देखा जा सकता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि वीडियो पुराना है, हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये वीडियो हाल फिलहाल का होता तो अपने आप में कोई बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई जानकारी जरूर छपी होती। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नेपाल से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो 26 मार्च 2020 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां देश भर में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाया। सर्च के दौरान हमें 26 मार्च 2020 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि कर्नाटक के बेलगावी में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वहां मौजूद कई लोगों पर डंडे बरसाए थे। एक समाचार एजेंसी ने भी अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को 26 मार्च 2020 को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये घटना एक मस्जिद के बाहर की है, जहां लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का नहीं, बल्कि कर्नाटक के बेलगावी का है। साल 2020 का ये वीडियो कोरोना महामारी के समय का है, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ यूजर्स उस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंदौर के व्यस्त बाजार का, जहां पुलिस और शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि इंदौर में पुलिस को चकमा देने के लिए चोर ने खतरनाक करतब दिखाए। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति का पीछा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए सड़क पर मौजूद वाहनों को पार करता है और एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बस से कूदकर सड़क किनारे लगी एक होर्डिंग पर चढ़ जाता है। वीडियो को मध्य प्रदेश के इंदौर का बताते हुए दावा किया जा रहा है कि एक शातिर चोर ने पुलिस को खूब छकाया। पोस्ट में बताया गया है कि इंदौर के व्यस्त बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही है। शख्स एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बस से कूदकर सड़क किनारे लगी होर्डिंग पर चढ़ जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो है, जहां पर एक

0: चोर ने पुलिस को खूब छकाया और आखिरकार घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी चोर को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे वायरल वीडियो के असली होने पर हमें संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर पुलिस कर्मियों और भाग रहे व्यक्ति के शारीरिक संतुलन, दौड़ने की गति वास्तविक नहीं लगती है। व्यक्ति का चलती बस की छत पर चढ़ना और उछलकर होर्डिंग के टॉप पर पहुंचना भी असली नहीं लगता है। इसके अलावा भाग रहा व्यक्ति सड़क किनारे लगी जिस होर्डिंग पर चढ़ता है उस पर लिखे गए कई टेक्स्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर ये इंदौर का वीडियो होता तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र जरूर होता। लेकिन हमें कहीं भी इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक एक्स यूजर के अकाउंट पर 8 अगस्त को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पोस्ट में बताया गया है कि वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में 99.8% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। वायरल हुए वीडियो को हमने एक और एआई डिटेक्शन टूल डी फेकोमीटर पर भी जांचा। इस दौरान टूल के 6 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो के एआई जनरेटेड होने की उच्च संभावना जताई। इसके अलावा हमने इंदौर में हाल के दिनों में हुई ऐसी किसी घटना के बारे में भी सर्च किया जिसमें पुलिसकर्मियों के किसी चोर का पीछा करने, उसके बस की छत पर चढ़ने और फिर होर्डिंग पर पहुंचने जैसी घटना का जिक्र हो, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। यह वीडियो एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: केरल में हालिया आई बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ दिखाया जा रहा है। यूजर्स उसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: केरला में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। केरल की बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसी भाषा लग रही थी, मतलब ये कि वायरल वीडियो केरल का नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिलबोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिलबोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहराह ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: बेटियां जब अपने सपनों को पूरा करती हैं तो माता पिता के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात शायद ही कोई हो। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक ऐसा ही प्यारा पल लोगों का दिल जीत रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेटी ने पहली बार अकेले विमान उड़ाकर अपने जीवन का एक बड़ा सपना पूरा किया। अपनी इस खास उपलब्धि को उसने अपने पिता के नाम किया और सिर्फ दो शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने अपने पापा को थैंक्स डैड कहा। बताया जा रहा है कि ये खास का है जहां बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से जब बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की तो उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चों के साथ कार की सफाई करता नजर आया। माहौल बिल्कुल सामान्य और प्यारा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने ऐसी मदद कर दी कि पिता के होश उड़ गए। वीडियो में छोटी बच्ची घर के बाहर पानी का पाइप हाथ में लिए खड़ी नजर आई। कार का फ्यूल टैंक खुला हुआ था। बच्ची निश्चल भाव से पाइप को टैंक के मुँह में डालकर पानी भरने लगी। वो खुशी खुशी पापा पापा चिल्लाती है ताकि पिता उसकी मदद देख सके। पीछे की तरफ पिता पूल साफ कर रहा था। जब वो मुड़ता है और नजारा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चीखता हुआ दौड़ता है, पाइप छीन लेता है, लेकिन तब तक काफी पानी फ्यूल टैंक में जा चुका होता है।
6: मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
5: एक माँ और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ किचन में रोटी बेल रही है, तभी वहाँ उसकी बेटी पहुँचती है और कहती है मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए। माँ एक रोटी निकाल कर दे देती है और कहती है कि पापा से पूछकर बताना कि सब्जी कैसे बनी है।
7: पापा से पूछकर सब्जी कैसी बनी है।
8: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते हो।
5: उसके बाद बेटी जवाब देती है कि पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो। यूजर्स बच्चे के इस मासूमियत भरी जवाब पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
6: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते।
8: ये आंटी अराउंड मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से चलती हुई आ रही है।
5: बारिश से जलमग्न दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी सी मदद का बड़ा दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक बाइकर ने पानी भरी सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और उन्हें पीछे बिठाकर सुरक्षित पार कराया। वीडियो में दिखता है कि जैसे बाइकर की नजर उस महिला पर पड़ती है और उसके पास रुक जाता है, फिर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने में मदद करता है और उसे पानी से भरे रास्ते से होते हुए ले जाता है।
8: पानी में बहुत स्लो स्लो ये भाई मिला, बहुत बढ़िया लगा मेरे को देख के। मैं सोच रहा था कि कौन इनकी हेल्प करेगा। बढ़िया
5: बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं बल्कि डॉग ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं। ये नजारा इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों ही मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से इतने साफ लहजे में हिंदी बोल रहा है कि लोग देखते ही रह गए। भारत के प्रति विदेश बुजुर्ग की दीवानगी और बात करने का अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
9: सारी किताबें जर्मन में है और ये भिन्न-भिन्न देशों के बारे में।
5: इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जर्मन पर्यटक सिर्फ किताबी या बनावटी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके बोलने के तरीके में एक देसी टच साफ झलकता है। शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और माँ को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है। उसके चेहरे पर माँ की कमी का दर्द साफ नजर आता है। इस भावुक पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, वो बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 93 साल है और 71 साल इनके शादी के हो गए हैं, लेकिन इस दौरान इनका प्यार उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी जवां होता जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंचती है और उत्साहित होकर पूछती है इस ड्रेस में वो कैसे लग रही है। पति चौंककर पूछता है क्या, पत्नी फिर बोलती है मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाना चाहती हूं। इसके बाद पति दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी को देखता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो ये दिखाता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब पति और पत्नी के बीच तालमेल बेहतर हो। कभी कभी किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश, किसी के लिए कही गई अच्छी बात या फिर अचानक मिला कोई प्यारा सा सरप्राइज भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक मेले या उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थी और आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके लिए एक यादगार पल आने वाला है। इसी दौरान पास में मौजूद एक युवा कलाकार की नजर महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी। उसने महिला अफसर का एक पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया और बिना किसी को परेशान किए उनका स्केच बनाने लगा। कलाकार काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। वो उनके चेहरे की बारीकियों को कागज पर उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। सबसे खास बात ये थी कि महिला अफसर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे स्केच पूरा हो गया। कलाकार ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उस पर एक प्यारा सा नोट भी लिखा। इसके बाद उसने अपनी स्केच बुक उठाई और सीधे महिला पुलिस अधिकारी के पास पहुंच गया। जब कलाकार ने महिला अफसर को उनका पोर्ट्रेट दिखाया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी ड्यूटी के दौरान उनका इतना खूबसूरत स्केच बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर अपनी तस्वीर देखी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर आई खुशी देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि छोटा सा सरप्राइज उन्हें सच में पसंद आया। इन दिनों सामने आए हाथियों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नन्ना हाथी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जर की केबल में फंस जाता है। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता नजर आता है। उसके बाद उसकी माँ जो करती है उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि हाथी का बच्चा ईवी चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां मौजूद चार्जर की केबल किसी तरह उसके शरीर में उलझ जाती है। बच्चा केबल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। वो बेचैनी में इधर उधर हिलता है और अपनी माँ की तरफ मदद के लिए बढ़ता है। बच्चे को परेशानी में देखकर हथिनी तुरंत उसके पास पहुंचती है। माँ अपने बच्चे को चारों तरफ से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो किस चीज में फंसा हुआ है। इसके बाद वो बिना ज्यादा समय गंवाए चार्जर की तरफ बढ़ती है। फिर आता है वीडियो का सबसे मजेदार और हैरान करने वाला हिस्सा। हथिनी अपने सिर और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए चार्जर को जोरदार धक्का देती है। उसका एक ही धक्का इतना जोरदार होता है कि चार्जर नीचे गिर जाता है और बच्चे के लिए रास्ता साफ हो जाता है। बच्चा भी जैसे ही आजाद होता है राहत महसूस करता दिखाई देता है। माँ भी उसके पास बनी रहती है। हथिनी और उसके बच्चे की ये पूरी घटना चार्जिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा, घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आए। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुंचे। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि गुड न्यूज टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।
0: अमावस्या की तिथि जो समर्पित मानी जाती है पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए। सावन में आने वाली इस अमावस्या पर प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे हरियाली अमावस्या की तिथि से जुड़े हुए कुछ खास महाप्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है।

0: सावन में चारों ओर छाई हरियाली, महादेव होंगे प्रसन्न, आएगी खुशहाली। गौरी शंकर की पूजा से होगा कल्याण, अखंड सुहाग का मिलेगा वरदान। पेड़ पौधे खोलेंगे भाग्य के द्वार, धन धान से भर जाएगा घर संसार।
1: जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
0: पितरों की मुक्ति के लिए करें महाप्रयोग, परमेश्वर की कृपा पाने का है ये शुभ संयोग, क्योंकि आ गई हरियाली अमावस्या की शुभ तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश के चलते पेड़ पौधों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसी के चलते सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है।
2: यह तिथि प्रकृति पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, शिव आराधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों के तर्पण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, शनि दोष है, केतु का दोष है, या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का दोष है किसी भी तरीके से, तो उसके शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।
0: हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त यानी कल है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करके आप विधाता की कृपा पा सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की रात 1:52 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 अगस्त को रात 11:07 पर होगा। इसीलिए हरियाली अमावस्या की तिथि 12 अगस्त को होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, इसके चलते गौरी योग का निर्माण होगा। जो जातक पितृ कर्म करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त फलदायी रहने वाला है। इस तिथि फल देने वाले वृक्ष लगाने से उत्तम फल प्राप्त होता है।
2: इस दिन मदार अर्क का पौधा लगाना चाहिए, पलाश जिसे ढाक भी कहा जाता है उसको लगाने से चंद्रमा ठीक होता है, आग मदार का लगाने से सूर्य ठीक होता है, खैर लगाने से मंगल ठीक होता है, आम का जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने से बुध ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होते हैं, गुलर का लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शमी का पौधा लगाने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, इसी प्रकार कुश और दुर्वा इनसे राहु और केतु ग्रह मजबूत होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सावन मास का बुधवार होने के साथ साथ शिव योग और कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना सबसे पुण्यकारी माना गया है। धन ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इस दिन सभी सुहागने पूर्ण मनोयोग से शिव और पार्वती की कृपा पाने का जतन करती है। माना जाता है कि ईश्वर और पितरों की कृपा पाने की ये तिथि अमोघ है। तो आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण विधि।
2: हरियाली अमावस्या पर पितरों के मोक्ष का विधान बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। पीपल एवं बरगद के वृक्ष के नीचे सायंकाल प्रदोष काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन यदि ऐसा करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है।
0: इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन उपवास रखने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के तर्पण की पूजा विधि करें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस तिथि पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि पर विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी दीर्घायु होता है, साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की कृपा के साथ ही ग्रहों की भी शांति हो जाती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर कैसे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि इस दिन दान और पुण्य करने से ना सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।

0: हरियाली अमावस्या पर करें माता पार्वती संग भोलेनाथ की भक्ति। पितरों के तर्पण और पिंडदान से पितरों की होगी मुक्ति। हरियाली अमावस्या, जब हरियाली की चादर ओढ़ती है धरती, पेड़ पौधों के श्रृंगार से सज जाती है प्रकृति। मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
1: पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करना चाहिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा, विशेष करके पार्थिव पूजन करके, पार्थिव बना करके उसका पूजन कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दिन भर व्रत रहिए, पितरों के दिन में पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में ही, पति पत्नी यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर के भगवान शिव की विशेष पूजा करें। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त किया कर्मकांड चार चरणों में किया जाता है। चार चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना शामिल है। विश्वदेव, पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना है। पिंडदान, दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करें। तर्पण, तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोज कराना, चौथा चरण, पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होता है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं हरियाली अमावस्या के खास उपाय।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या,
2: तो चलिए अब आपको बताते हैं सावन की अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दावा किया जा रहा है कि ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में रात होने से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये ग्रहण खास होता है।

0: हरियाली अमावस्या की तिथि पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। सूतक के नियम भी नहीं होंगे लागू, विधिवत होगी पूजा अर्चना। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगी सूर्य ग्रहण की घटना। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को विशेष खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कहीं भी हो, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर पड़ता है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर।
0: जानकार बताते हैं कि जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां उस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होता, इसीलिए 12 अगस्त को मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से ही की जा सकेंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण, दान पुण्य, पितरों के तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात्रि 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:16 पर होगा। इस ग्रहण का समापन 13 अगस्त को प्रातः 1:27 पर होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है, खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को यह खग्रास सूर्य ग्रहण विश्व के कई जगहों से दिखाई देगा और इसका असर भी कई जगहों पर होगा, परंतु भारत भूमि से दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
0: दावा किया जा रहा है कि ये ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में लोग ग्रहण के कारण कभी भी स्नान किए बिना दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है। इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण की घटना का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए खगोल विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि इसी पावन माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में चंद्र ग्रहण की भी छाया है। तो आप सावन में महादेव की भक्ति कीजिए, जिनके अधीन ही सारे ग्रह हैं। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री चलकर शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांवड़ यात्री भी शुमार हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो इस कठिन यात्रा को कर रही हैं। वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन महिला कांवड़ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर शहर शहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि महिला कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े।
6: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की ज्योत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने एक कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
7: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल उठाएंगे।
8: क्या क्या कामना है बाबा से?
7: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
9: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयबपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहाँ तक आए।
8: कितना साल से आ रहे हैं?
9: 10 साल से।
10: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
8: कब कमर उठाई थी?
10: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हाँ, हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
6: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
11: मैं आया, मैं पहली बार बनता मानी थी, मेरा मानता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
12: पुरलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
13: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते हैं तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तो मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
6: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी, साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
14: हर बार हम देखते हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और मूवेबल वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी है वो वहाँ पे तैनात है।
6: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, ताकि आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय। गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति, निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज, शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव राखियां, सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू, 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल। झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी और इसके बाद पुलिस ने वहां जमकर डंडे बरसाए। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इंदौर के बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच में फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि ये वीडियो नेपाल का है, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वहां पर जमकर डंडे बरसाए। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
16: लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस के जवान एक दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों को बाहर निकालते हुए डंडे बरसा रहे हैं। लाठी चार्ज के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमान ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, फिर पुलिस ने कुछ अलग ही बर्ताव दिखाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस के जवान लोगों पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो नेपाल का, जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद भी मुसलमानों ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के जवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन लोगों ने वहां पर लाठियों की बरसात कर दी। वीडियो को हाल फिलहाल का बताकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि जो दिखता है वो वाकई सच नहीं होता है। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा भी और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये कन्नड़ भाषा जैसा लगा। नेपाल में कन्नड़ नहीं बोली जाती। ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे को लेकर आशंका भी हुई। साथ ही साथ वीडियो में कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी देखा जा सकता है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि वीडियो पुराना है, हाल फिलहाल का नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये वीडियो हाल फिलहाल का होता तो अपने आप में कोई बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई जानकारी जरूर छपी होती। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नेपाल से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।
16: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो 26 मार्च 2020 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में मिला, जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कर्नाटक के बेलगावी की है, जहां देश भर में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से हटाया। सर्च के दौरान हमें 26 मार्च 2020 को प्रकाशित एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि कर्नाटक के बेलगावी में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वहां मौजूद कई लोगों पर डंडे बरसाए थे। एक समाचार एजेंसी ने भी अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को 26 मार्च 2020 को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये घटना एक मस्जिद के बाहर की है, जहां लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का नहीं बल्कि कर्नाटक के बेलगावी का है। साल 2020 का ये वीडियो कोरोना महामारी के समय का है, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ यूजर्स उस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंदौर के व्यस्त बाजार का, जहां पुलिस और शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट देखिए।
16: सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से

0: देने के लिए चोर ने खतरनाक कर्तव्य दिखाए। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति का पीछा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए सड़क पर मौजूद वाहनों को पार करता है और एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वह बस से कूदकर सड़क किनारे लगी एक होर्डिंग पर चढ़ जाता है। वीडियो को मध्य प्रदेश के इंदौर का बताते हुए दावा किया जा रहा है कि एक शातिर चोर ने पुलिस को खूब छकाया। पोस्ट में बताया गया है कि इंदौर के व्यस्त बाजार में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज नजारा देखने को मिला। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही है। शख्स एक चलती हुई बस की छत पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बस से कूदकर सड़क किनारे लगी होर्डिंग पर चढ़ जाता है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो है, जहां पर एक चोर ने पुलिस को खूब छकाया और आखिरकार घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपी चोर को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे वायरल वीडियो के असली होने पर हमें संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर पुलिसकर्मियों और भाग रहे व्यक्ति के शारीरिक संतुलन, दौड़ने की गति वास्तविक नहीं लगती है। व्यक्ति का चलती बस की छत पर चढ़ना और उछलकर होर्डिंग के टॉप पर पहुंचना भी असली नहीं लगता है। इसके अलावा भाग रहा व्यक्ति सड़क किनारे लगी जिस होर्डिंग पर चढ़ता है उस पर लिखे गए कई टेक्स्ट पूरी तरह से अस्पष्ट है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर ये इंदौर का वीडियो होता तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर होती, कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र जरूर होता। लेकिन हमें कहीं भी इस वीडियो की कोई जानकारी नहीं मिली, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच में भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यही वीडियो एक एक्स यूजर के अकाउंट पर 8 अगस्त को पोस्ट किया हुआ मिला। इस पोस्ट में बताया गया है कि वीडियो को एआई की मदद से तैयार किया गया है। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। ऐसे में हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में 99.8% स्कोर के साथ इसे संभावित एआई जनरेटेड बताया। वायरल हुए वीडियो को हमने एक और एआई डिटेक्शन टूल डी फेकोमीटर पर भी जांचा। इस दौरान टूल के 6 अलग अलग डिटेक्टर्स ने वीडियो के एआई जनरेटेड होने की उच्च संभावना जताई। इसके अलावा हमने इंदौर में हाल के दिनों में हुई ऐसी किसी घटना के बारे में भी सर्च किया जिसमें पुलिसकर्मियों के किसी चोर का पीछा करने, उसके बस की छत पर चढ़ने और फिर होर्डिंग पर पहुंचने जैसी घटना का जिक्र हो, लेकिन इस दौरान हमें ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। यह वीडियो एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: केरल में हालिया आई बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ दिखाया जा रहा है। यूजर्स उसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: केरला में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।

0: मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। केरल की बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया और जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसी भाषा लग रही थी। मतलब ये कि वायरल वीडियो केरल का नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि इस दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहाँ का है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला, जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिल बोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिल बोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहराह ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
6: बेटियां जब अपने सपनों को पूरा करती हैं तो माता पिता के लिए उससे ज्यादा खुशी की बात शायद ही कोई हो। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक ऐसा ही प्यारा पल लोगों का दिल जीत रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बेटी ने पहली बार अकेले विमान उड़ाकर अपने जीवन का एक बड़ा सपना पूरा किया। अपनी इस खास उपलब्धि को उसने अपने पिता के नाम किया और सिर्फ 2 शब्दों में अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने अपने पापा को थैंक्स डैड कहा। बताया जा रहा है कि ये खास का है जहां बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसके पिता का भी बड़ा योगदान रहा। शायद इसी वजह से जब बेटी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट पूरी की तो उसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में एक पिता अपने बच्चों के साथ कार की सफाई करता नजर आया। माहौल बिल्कुल सामान्य और प्यारा था, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने ऐसी मदद कर दी कि पिता के होश उड़ गए। वीडियो में छोटी बच्ची घर के बाहर पानी का पाइप हाथ में लिए खड़ी नजर आई। कार का फ्यूल टैंक खुला हुआ था। बच्ची निश्चल भाव से पाइप को टैंक के मुंह में डालकर पानी भरने लगी। वो खुशी खुशी पापा पापा चिल्लाती है ताकि पिता उसकी मदद देख सके। पीछे की तरफ पिता पूल साफ कर रहा था। जब वो मुड़ता है और नजारा देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चीखता हुआ दौड़ता है, पाइप छीन लेता है, लेकिन तब तक काफी पानी फ्यूल टैंक में जा चुका होता है।
5: मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए।
6: एक माँ और उसकी बेटी की ये मजेदार बातचीत सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ किचन में रोटी बेल रही है, तभी वहाँ उसकी बेटी पहुँचती है और कहती है मम्मी पापा को एक और रोटी चाहिए। माँ एक रोटी निकाल कर दे देती है और कहती है कि पापा से पूछकर बताना कि सब्जी कैसे बनी है।
7: पापा से पूछकर सब्जी कैसे बनी
5: है। पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई की बहाने ढूंढते हो।
6: उसके बाद बेटी जवाब देती है कि पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, तो क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढती हो। यूजर्स बच्ची के इस मासूमियत भरी जवाब पर जमकर अपना प्यार लौटा रहे हैं।
5: पापा शांति से खाना खा रहे हैं ना, क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढते।
8: ये आंटी अराउंड मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से चलती हुई आ रही है।
6: बारिश से जलमग्न दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी सी मदद का बड़ा दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक बाइकर ने पानी भरी सड़क पर पैदल चल रही बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपनी बाइक रोकी और उन्हें पीछे बिठाकर सुरक्षित पार कराया। वीडियो में दिखता है कि जैसे बाइकर की नजर उस महिला पर पड़ती है और उसके पास रुक जाता है, फिर वो उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठने में मदद करता है और उसे पानी से भरे रास्ते से होते हुए ले जाता है।
8: पानी में बहुत स्लो स्लो ये भाई मिला, बहुत बढ़िया लगा मेरे को देख के। मैं सोच रहा था कि कौन इनकी हेल्प करेगा। बढ़िया है।
6: बारिश का मौसम आते ही बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे भीगने और मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही बारिश में खेलते कुछ बच्चों का एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान बच्चों ने नहीं बल्कि डॉग ने अपनी ओर खींच लिया। बच्चों की हर हरकत पर डॉग लगातार भौंकता रहता है, जबकि बच्चे भी उसे मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए बारिश में डांस करते रहते हैं। ये नजारा इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इन दोनों ही मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जर्मन बुजुर्ग सड़क पर खड़े होकर भारतीय पर्यटकों से इतने साफ लहजे में हिंदी बोल रहा है कि लोग देखते ही रह गए। भारत के प्रति विदेशी बुजुर्ग की दीवानगी और बात करने का अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है।
9: सारी किताबें जर्मन में हैं और ये भिन्न भिन्न देशों के बारे में।
6: इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि जर्मन पर्यटक सिर्फ किताबी या बनावटी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इनके बोलने के तरीके में एक देसी टच साफ झलकता है। शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही दिन किसी अपने की कमी को और ज्यादा महसूस करा देता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। वीडियो में दूल्हा अपनी शादी के दौरान अचानक भावुक हो जाता है और माँ को याद करके स्टेज पर ही रोने लगता है। उसके चेहरे पर माँ की कमी का दर्द साफ नजर आता है। इस भावुक पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो गए और अब वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल छू रहा है। एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है वो बुजुर्ग दंपति के इस वीडियो को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र 93 साल है और 71 साल इनके शादी के हो गए हैं, लेकिन इस दौरान इनका प्यार उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी जवां होता जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्नी धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंचती है और उत्साहित होकर पूछती है इस ड्रेस में वो कैसे लग रही है। पति चौंक कर पूछता है क्या। पत्नी फिर बोलती है मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद पति दरवाजा खोल कर अपनी पत्नी को देखता है। वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो ये दिखाता है कि रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब पति और पत्नी के बीच तालमेल बेहतर हो। कभी कभी किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े तोहफे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी कोशिश, किसी के लिए कही गई अच्छी बात या फिर अचानक मिला कोई प्यारा सा सरप्राइज भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक मेले या उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ के बीच महिला पुलिसकर्मी अपने साथी अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थीं और आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके लिए यादगार पल आने वाला है। इसी दौरान पास में मौजूद एक युवा कलाकार की नजर महिला पुलिस अधिकारी पर पड़ी। उसने महिला अफसर का एक पोर्ट्रेट बनाने का फैसला किया। वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप एक तरफ बैठ गया और बिना किसी को परेशान किए उनका स्केच बनाने लगा। कलाकार काफी देर तक महिला पुलिसकर्मी का पोर्ट्रेट बनाता रहा। वो उनके चेहरे की बारीकियों को कागज पर उतारने की कोशिश करता दिखाई दिया। सबसे खास बात ये थी कि महिला अफसर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे स्केच पूरा हो गया। कलाकार ने सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उस पर एक प्यारा सा नोट भी लिखा। इसके बाद उसने अपनी स्केच बुक उठाई और सीधे महिला पुलिस अधिकारी के पास पहुंच गया। जब कलाकार ने महिला अफसर को उनका पोर्ट्रेट दिखाया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनकी ड्यूटी के दौरान उनका इतना खूबसूरत स्केच बना रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कागज पर अपनी तस्वीर देखी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। उनके चेहरे पर आई खुशी देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि छोटा सा सरप्राइज उन्हें सच में पसंद आया। इन दिनों सामने आए हाथियों का ये वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक नन्हा हाथी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी चार्जर की केबल में फंस जाता है। बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो अपनी माँ को मदद के लिए बुलाता नजर आता है। उसके बाद उसकी माँ जो करती है उसे
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
10: Good news today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है, चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इस बीच उत्तराखंड में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु केवल सावन ही नहीं बाकी मौसम में भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सावन के मौके पर आज धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों के समूह वाले इस विशेष धाम के दर्शन आपको कराते हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें जो वीडियो भेजा है उसके जरिए जानिए कैसे अपनी दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए बाबा का ये पावन पौराणिक और ऐतिहासिक धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

0: उत्तराखंड का अल्मोड़ा घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर सा शिवालय। आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ एक ऐसे धाम के जो छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है। नाम है श्री जागेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी यहाँ कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनमें जागेश्वर धाम अपने मंदिर समूह और ज्योतिर्लिंगों को लेकर बरसों से आस्था की लौ जलाता रहा है। इस मंदिर में दरअसल मुख्य रूप से शिवजी के बाल स्वरूप को पूजा जाता है, जिन्हें बाल जागेश्वर कहते हैं। इनके अलावा यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति और सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। अपनी दिव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर इस मंदिर समूह का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण समेत कई और धार्मिक ग्रंथों में भी है। इस मंदिर के शिलालेख, नक्काशी और मूर्तियां अगर आप देखेंगे तो वो एक खजाना है। ऐसी मान्यता है कि जटा गंगा नदी किनारे बसे इस पावन धाम में भोलेनाथ और सप्त ऋषियों ने लंबे समय तक तप किया और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। बताया तो ये भी जाता है कि ये पावन धाम लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद और मध्य काल से पहले कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। वहीं इतिहास के पन्नों में तो ये भी दर्ज है कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ जाने से पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने यही ध्यान लगाया और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मंदिर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की जैसी है। यहाँ तक कि इस मंदिर के अंदर करीब 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो जागेश्वर धाम के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की विशेषता दिखाते हैं। यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। या तो आप दिल्ली से जागेश्वर आने के लिए पहले लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय कर हल्द्वानी तक ट्रेन या बस से आएं। इसके बाद हल्द्वानी से बस या कैब से लगभग 120 किलोमीटर का सफर कर जागेश्वर धाम पहुँचें। वहीं दिल्ली से ट्रेन या बस के जरिए काठगोदाम से भी आप जा सकते हैं। फिर यहीं से बस या कैब के जरिए लगभग 115 से 125 किलोमीटर की दूरी तय कर अल्मोड़ा से होते हुए आप जागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ पल शांति सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, अध्यात्म और आस्था से आपका गहरा लगाव है, तो जागेश्वर धाम आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
1: तो जैसा कि आपको पता है कि ये गुड न्यूज़ टुडे की आप सभी दर्शकों से अपील है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों पर अगर आप प्रमोट करते हैं तो हमारे देश का टूरिज्म और बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको बस इतना सा करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर कोई पौराणिक धाम है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह आपको नजर आती है, कैमरा उठाइए, ब्लॉग बनाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज़ टुडे पर दिखाएं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: समंदर में बढ़ेगी नौसेना की शक्ति। निगरानी जहाज श्रुति लॉन्च हुआ अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। दिल्ली में आजादी के जश्न की तैयारियां तेज। शाहदरा में प्रशासन की मॉक ड्रिल, नेहरू प्लेस मार्केट में बढ़ी चौकसी। महाराष्ट्र में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। कोला में मुस्लिम परिवार 5 पीढ़ियों से बना रहा है देव। राखियां सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती हैं राखी। ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने का प्रोसेस हुआ शुरू। 9 सितंबर को होगी भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा, पिछले साल की गई थी होमबाउंड। क्रोएशिया में गर्मी से बचने का अनोखा तरीका, पर्यटक बिना डाइविंग कर रहे हैं समुद्र के अंदर सैर, पुनाट अंडर वाटर पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। अमावस्या की तिथि जो समर्पित मानी जाती है पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध क्रम और पिंडदान के लिए। सावन में आने वाली इस अमावस्या पर प्रकृति भी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे हरियाली अमावस्या की तिथि से जुड़े हुए कुछ खास महाप्रयोग जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है।

0: सावन में चारों ओर छाई हरियाली, महादेव होंगे प्रसन्न, आएगी खुशहाली। गौरी शंकर की पूजा से होगा कल्याण, अखंड सुहाग का मिलेगा वरदान। पेड़ पौधे खोलेंगे भाग्य के द्वार, धन धान से भर जाएगा घर संसार।
1: जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
0: पितरों की मुक्ति के लिए करें महाप्रयोग, परमेश्वर की कृपा पाने का है ये शुभ संयोग, क्योंकि आ गई हरियाली अमावस्या की शुभ तिथि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सावन में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश के चलते पेड़ पौधों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है, इसी के चलते सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है।
2: यह तिथि प्रकृति पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, शिव आराधना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पितरों के तर्पण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, शनि दोष है, केतु का दोष है, या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का दोष है किसी भी तरीके से, तो उसके शांति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है।
0: हरियाली अमावस्या हरियाली तीज से 3 दिन पहले आती है। हरियाली अमावस्या के दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त यानी कल है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करके आप विधाता की कृपा पा सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त की रात 1:52 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 अगस्त को रात 11:07 पर होगा। इसीलिए हरियाली अमावस्या की तिथि 12 अगस्त को होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे, इसके चलते गौरी योग का निर्माण होगा। जो जातक पितृ कर्म करते हैं उनके लिए ये मुहूर्त फलदायी रहने वाला है। इस तिथि फल देने वाले वृक्ष लगाने से उत्तम फल प्राप्त होता है।
2: इस दिन मदार अर्क का पौधा लगाना चाहिए, पलाश जिसे ढाक भी कहा जाता है उसको लगाने से चंद्रमा ठीक होता है, आग मदार का लगाने से सूर्य ठीक होता है, खैर लगाने से मंगल ठीक होता है, आम का जो फलदार वृक्ष है उसको लगाने से बुध ग्रह ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होते हैं, गुलर का लगाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शमी का पौधा लगाने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, इसी प्रकार कुश और दुर्वा इनसे राहु और केतु ग्रह मजबूत होते हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सावन मास का बुधवार होने के साथ साथ शिव योग और कई दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस योग में तर्पण पिंडदान करना सबसे पुण्यकारी माना गया है। धन ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि इस दिन सभी सुहागने पूर्ण मनोयोग से शिव और पार्वती की कृपा पाने का जतन करती है। माना जाता है कि ईश्वर और पितरों की कृपा पाने की ये तिथि अमोघ है। तो आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की संपूर्ण विधि।
2: हरियाली अमावस्या पर पितरों के मोक्ष का विधान बताया गया शास्त्रों में। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए, पीपल एवं बरगद के वृक्ष के नीचे सायंकाल प्रदोष काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन ऐसा यदि ऐसा करते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है।
0: इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तब घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पहले सूर्य देव को अर्घ दें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन उपवास रखने का प्रयास करें। इस दिन पितरों के तर्पण की पूजा विधि करें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस तिथि पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। हरियाली अमावस्या पर सुबह उठकर पूरी भक्ति के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का आवाहन करना चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि पर विवाहित महिलाएं सिंदूर से देवी पार्वती की पूजा शुरू करती हैं और फिर प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी दीर्घायु होता है, साथ ही घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रवेश होता है। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की कृपा के साथ ही ग्रहों की भी शांति हो जाती है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर कैसे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे कामना पूर्ति के महा उपाय। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: हिंदू धर्म में अर्पण और तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान को आप भोग अर्पित करके उनकी कृपा पाते हैं और तर्पण से आपके पूर्वज तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि इस दिन दान और पुण्य करने से ना सिर्फ पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि आपको भी जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस विधि से पितृ शांति के उपाय करके अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।

0: हरियाली अमावस्या पर करें माता पार्वती संग भोलेनाथ की भक्ति। पितरों के तर्पण और पिंडदान से पितरों की होगी मुक्ति। हरियाली अमावस्या, जब हरियाली की चादर ओढ़ती है धरती, पेड़ पौधों के श्रृंगार से सज जाती है प्रकृति। मान्यता है कि इस तिथि पर लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
1: पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा करना चाहिए। भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा, विशेष करके पार्थिव पूजन करके, पार्थिव बना करके उसका पूजन कर सकते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन दिन भर व्रत रहिए, पितरों के दिन में पूजा करिए, पितरों का तर्पण करिए और शाम को प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके, घर में ही पति पत्नी यदि विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर के भगवान शिव की विशेष पूजा करें, जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
0: कहते हैं कि पूर्वजों के निमित्त किया कर्मकांड चार चरणों में किया जाता है। चार चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापना, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोज कराना शामिल है। विश्वदेव, पहला चरण, एक पुजारी से परामर्श करना और अनुष्ठान करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना है। पिंडदान, दूसरा चरण, चावल, गाय का दूध, जौ, घी, शहद और चीनी से बने भोजन का दान करें। तर्पण, तीसरा चरण, तर्पण में जल सहित तिल, जौ, कुश, घास, सफेद आटा अर्पित करना होता है। ब्राह्मणों को भोज कराना, चौथा चरण, पितृ पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराकर संपन्न होता है। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि हरियाली अमावस्या पर कुछ उपाय करके हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं हरियाली अमावस्या के खास उपाय।
1: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना करने से अभिष्ट की शुद्धि मिलती है, ऐसा माना गया है। इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना करना चाहिए। विशेष आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप का अनुष्ठान कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, चीनी, पंचामृत आदि वस्तुएं अर्पित करते हुए भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और इस दिन उनके किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है।
0: हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काले तिल डालकर मंदिर जाएं, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव जी के अभिषेक के बाद पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। पांच तरह की मिठाइयों को अलग अलग पांच पीपल के पत्तों पर रखें। ओम सर्वे भयो पितृ देवो भयो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद उस प्रसाद को गरीबों में बांट दे लेकिन स्वयं ना खाए। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर आप पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे पितरों से जुड़ी तमाम समस्याएं भी समाप्त होंगी। इसके अलावा आप हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। 1.25 मीटर सफेद कपड़े में 250 ग्राम साबुत चावल रखें। इसमें एक सूखा नारियल और 11 रुपए बांधकर 21 बार घुमाएं। इसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई हाथ न लगाए। इसके बाद एक गिलास में जल और गुलाब का फूल रखें। साथ में इत्र और सफेद रंग की मिठाई पितरों के निमित्त रखे। पितरों से अपनी गलती के लिए माफी मांगे। माना जाता है कि अगर आप पूरे मन से पितरों से क्षमा याचना करें, तो वो आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। चलिए आपको एक और महा उपाय बताते हैं, जो पितृ दोष की पीड़ा का निवारण कर सकता है। हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल पर जल चढ़ाएं, इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपका घर सदैव फलता फूलता रहेगा। तो सावन के पावन महीने में आप भी कीजिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के जतन, जिससे आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण।
2: तो चलिए अब आपको बताते हैं सावन की अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दावा किया जा रहा है कि ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में रात होने से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण का असर देश और दुनिया पर पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों ये ग्रहण खास होता है।

0: हरियाली अमावस्या की तिथि पर है पूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण। सूतक के नियम भी नहीं होंगे लागू, विधिवत होगी पूजा अर्चना। कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगी सूर्य ग्रहण की घटना। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को विशेष खगोलीय घटना माना जाता है, जबकि ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर कहीं भी हो, लेकिन इसका प्रभाव देश दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर पड़ता है।
1: जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ती है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से राहु सूर्य के प्रभाव पर नकारात्मक प्रभाव स्थापित करता है, इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका महत्व है, परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का सूतक के नियम नहीं लगेंगे भारतीय भूमि पर।
0: जानकार बताते हैं कि जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखाई नहीं देता तो वहां उस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होता, इसीलिए 12 अगस्त को मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और पूजा पाठ सहित सभी धार्मिक गतिविधियां नियमित रूप से ही की जा सकेंगी। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, बिल पत्र अर्पण, दान पुण्य, पितरों के तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या की तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात्रि 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 11:16 पर होगा। इस ग्रहण का समापन 13 अगस्त को प्रातः 1:27 पर होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, अतः किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है, खग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को यह खग्रास सूर्य ग्रहण विश्व के कई जगहों से दिखाई देगा और इसका असर भी कई जगहों पर होगा, परंतु भारत भूमि से दृश्य नहीं है, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से इस सूर्य ग्रहण का कोई महत्व नहीं है।
0: दावा किया जा रहा है कि ये ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में लोग ग्रहण के कारण कभी भी स्नान किए बिना दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है। इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ज्योतिषीय शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण की घटना का हर राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। तो चलिए खगोल विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है, क्योंकि इसी पावन माह में सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसके साथ ही इसी माह में चंद्र ग्रहण की भी छाया है। तो आप सावन में महादेव की भक्ति कीजिए, जिनके अधीन ही सारे ग्रह हैं। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: श्रावण मास में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री चलकर शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कांवड़ यात्री भी शुमार हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो इस कठिन यात्रा को कर रही हैं। वो भी भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर इन महिला कांवड़ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर शहर शहर प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि महिला कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न उठानी पड़े।

0: सावन का महीना और मन में शिव भक्ति की जोत जलाकर घर से निकल पड़ी हैं ये महिला कांवड़ यात्री, जिनके कांधे पर रंग बिरंगे कांवड़ और कांवड़ में है गंगा जल, जिससे भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का संकल्प इन कांवड़ियों ने लिया है। ये तस्वीर प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम की है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। इन्हीं में ये महिला कांवड़ यात्री भी शामिल हैं, जो पड़ोसी राज्य बिहार के अलग अलग जिलों से आई हैं, जिन्होंने बताया कि परिवार की खुशहाली के लिए उन्होंने एक कठिन यात्रा की। आस्था के इस सफर में शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, खासकर महिलाओं को, इसके लिए प्रशासन खास चौकसी बरत रहा है।
1: समस्तीपुर से आए हैं सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से जल उठाएंगे।
2: क्या क्या कामना है बाबा से?
1: बाबा से तो कामना है कि बाल बच्चा सब सुखी रहे, घर वाला सलामत रहे, और सब सुविधा अच्छा मिला है इस बार, सब जगह से अच्छा सुविधा है, और बाबा की कृपा रहेगा तो जब तक शरीर चलेगा आते रहेंगे।
3: हम वैशाली से आए हैं, मेरा घर मानार है, गांव तैयोपुर है, वहां से चल के आए हैं सुल्तानगंज, जल भरे हैं, उसके बाद पैदल यात्रा करके यहां तक आए।
2: कितना साल से आ रहे हैं?
3: 10 साल से।
4: 2004 से लगातार हम लोग आ रहे हैं, जब कोरोना सब था उस समय 2 साल के लिए ड्रॉप हुआ, नहीं तो उसके बाद हर साल लगातार हम लोग आते हैं।
2: कब कमर उठाई थी?
4: हम लोग उठाए थे फ्राइडे को। हाँ, हम लोग का इसमें एक गेट टुगेदर भी हो जाता है साल भर में, हम लोग जो विदेश देश विदेश सब जगह रहते हैं, फैमिली वाले सारे एकजुट होते हैं, उसके बाद सारे।
0: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का रेलवे स्टेशन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां से देवघर धाम की यात्रा ट्रेन के जरिए करते हैं, जिनमें महिला भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं तो बच्चों के साथ भी कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस की ओर से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खास निगरानी की जा रही है।
5: मैं आया, मैं पहली बार बनता मानी थी, मेरा मानता पूरा हो चुका है, मैं इसीलिए जा रही हूँ बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, जाने की इच्छा है, अच्छा लगता है बाबा के यहाँ जाने को।
6: पुरलिया बंगाल से आए हैं बाबा का दर्शन करने, दर्शन भी ठीक है हुआ, रास्ता में भी ठीक ही सुजग सुविधा सभी मिलता है।
7: इस तीसरा बार है, यहाँ से हम लोग जाते हैं सुल्तानगंज, वहाँ पर नहाते धोते हैं, संकल्प लेते हैं भगवान की कृपा से, वहाँ से कवर उठाते तो हम लोग पैदल जाते हैं, जब नहीं चल पाते तो मतलब कि थोड़ा सहारा गाड़ी मोटर का ले लेते हैं।
0: चंदौली जैसे ही यूपी के दूसरे शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल और बागपत में भी महिला कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसकी एक तस्वीर बागपत से सामने आई, जहां इस बार मेला परिसर में अलग पिंक शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में महिलाएं कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगी, साथ ही पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन का मकसद है कि भीड़ भाड़ के बीच महिलाओं को किसी जरूरी सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला अधिकारियों और महिला कांस्टेबलों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन का मानना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी से कांवड़ लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी समस्याएं बताने में आसानी होगी और शिकायतों का फौरन समाधान भी किया जा सकेगा।
8: हर बार हम देखते हैं कि महिला कांवड़ियों की जो नंबर है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसके दृष्टिगत हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से टेंट्स लगे हुए हैं रुकने के लिए। इसके अतिरिक्त हमने जो एक बस थी उसको पिंक टॉयलेट के रूप में उसको कन्वर्ट किया है और मूवेबल वो पूरे मेले में रहेगी। इसके अलावा जो है जो ई व्हीकल्स हमने यहाँ पर रखे हैं अराउंड 20 के आसपास, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए भी पार्किंग से लेकर मंदिर तक ये उनको फेरी करेगी। सभी शिविरों में जहाँ पे भी महिलाएं हैं वहाँ पर हमने महिला कांस्टेबल्स और यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं वो वहाँ पे तैनात हैं।
0: बीते कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड से यूपी और बिहार से झारखंड तक महिला कांवड़ियों के लिए कई जरूरी कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं, माता की आस्था के इस कठिन सफर पर निकली महिलाओं को कोई दिक्कत न पेश आए। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, चंदौली से उदय गुप्ता, सहारनपुर से राहुल कुमार और बागपत से मनुदेव उपाध्याय, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम